दुनिया में जल्दी हासिल होने वाले फायदों का ख्वाहिशमंद हो उसे यही हम दे देते हैं जो कुछ भी जिसे देना चाहें, फिर उसके मकसूम में जहन्नुम लिख देते हैं जिसे वो तापेगा मलामत ज़दा और रहमत से महरूम होकर। और जो आखिरत का ख्वाहिशमंद हो और उसके लिए साई करे जैसी के उसके लिए साई करनी चाहिए और हो वो मोमिन तो ऐसे हर शख्स की साई मशकूर होगी। इनको भी और उनको भी दोनों फरीकों को हम दुनिया में सामान ज़ीस्त दिए जा रहे हैं। ये तेरे रब का अतिया है और तेरे रब की आता को रोकने वाला कोई नहीं है। मगर देख लो दुनिया ही में हमने एक ग्रोह को दूसरे पर कैसी फजीलत दे रखी है और आखिरत में उसके दर्जे और भी ज्यादा होंगे और उसकी फजीलत और भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर होगी। तू अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद न बना वरना मुलामत जदा और बे यारो मददगार बैठा रह जाएगा। तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम लोग किसी की इबादत न करो मगर सिर्फ उसकी। वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहें तो उन्हें उफ तक न कहो, न उन्हें झिड़क कर जवाब दो, बल्कि उनसे एहतराम के साथ बात करो और नरमी और रहम के साथ उनके सामने झुक कर रहो और दुआ किया करो कि परवरदिगार इन पर रहम फरमा जिस तरह इन्होंने रहमत और शफ़क़त के साथ मुझे बचपन में पाला था। तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। अगर तुम सालेह बनकर रहो तो वो ऐसे सब लोगों के लिए दरगुजर करने वाला है जो अपने कसूर पर मुतनब्बे होकर बंदगी के रवैये की तरफ पलट आए। रिश्तेदार को उसका हक दो और मिस्कीन और मुसाफिर को उसका हक। फजूल खर्ची न करो। फजूल खर्च लोग शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। अगर इनसे यानी हाजतमंदों रिश्तेदारों मिस्कीनों और मुसाफिरों से तुम्हें कतराना हो इस बिना पर कि अभी तुम अल्लाह की उस रहमत को जिसके तुम उम्मीदवार हो तलाश कर रहे हो

0: हमने इस कुरान में तरह तरह से लोगों को समझाया कि होश में आए, मगर वो हक से और ज्यादा दूर ही भागे जा रहे हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि अगर अल्लाह के साथ दूसरे खुदा भी होते जैसा कि ये लोग कहते हैं, तो वो मालिक अर्श के मकाम को पहुंचने की जरूर कोशिश करते। पाक है वो और बहुत बाला और बरतर है उन बातों से जो ये लोग कह रहे हैं। उसकी पाकी तो सातों आसमान और जमीन और वो सारी चीजें बयान कर रही हैं जो आसमान और जमीन में हैं। कोई चीज ऐसी नहीं जो उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह न कर रही हो, मगर तुम उनकी तस्बीह समझते नहीं हो। हकीकत यह है कि वो बड़ा ही बुर्दबार और दरगुजर करने वाला है। जब तुम कुरान पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और आखिरत पर ईमान न लाने वालों के दरमियान एक पर्दा हायल कर देते हैं और उनके दिलों पर ऐसा गिलाफ चढ़ा देते हैं कि वो कुछ नहीं समझते और उनके कानों में गिरानी पैदा कर देते हैं। और जब तुम कुरान में अपने एक ही रब का जिक्र करते हो तो वो नफरत से मुंह मोड़ लेते हैं। हमें मालूम है कि जब वो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं तो दरअसल क्या सुनते हैं, और जब बैठकर बाहम सरगोशियां करते हैं तो क्या कहते हैं। ये जालिम आपस में कहते हैं कि ये तो एक सहरजदा आदमी है जिसके पीछे तुम लोग जा रहे हो। देखो कैसी बातें हैं जो ये लोग तुम पर छांटते हैं। ये भटक गए हैं, इन्हें रास्ता नहीं मिलता। वो कहते हैं जब हम सिर्फ हड्डियां और खाक होकर रह जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा करके उठाए जाएंगे। इनसे कहो तुम पत्थर या लोहा भी हो जाओ या इससे भी ज्यादा सख्त कोई चीज जो तुम्हारे जहन में कबूल हयात से बईद तर हो, फिर भी तुम उठ कर रहोगे। वो जरूर पूछेंगे कौन है वो जो हमें फिर जिंदगी की तरफ पलटा कर लाएगा। जवाब में कहो वही जिसने पहली बार तुमको पैदा किया। वो सर हिला हिला कर पूछेंगे अच्छा तो ये होगा कब। तुम कहो क्या अजब कि वो वक्त करीब ही आ लगा हो जिस रोज वो तुम्हें पुकारेगा तो तुम उसकी हम्द करते हुए उसकी पुकार के जवाब में निकल आओगे, और तुम्हारा गुमान उस वक्त ये होगा कि हम बस थोड़ी ही देर इस हालत में पड़े रहे हैं। सदकल्लाहुल अज़ीम।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामीन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में फजर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

इसे सैयदुल इस्तगफार कहा जाता है, जिसने पूरे यकीन के साथ इसे सुबह के वक्त पढ़ लिया और उस दिन वो फौत हो गया तो वो जन्नत में चला गया, और जिसने शाम के वक्त इसे पूरे यकीन के साथ पढ़ा और उसी रात वो फौत हो गया तो वो जन्नत में दाखिल हो गया। रिवायत है बुखारी की।

0: नोजल को आग के बेस की तरफ फोकस करें, ना कि आग के ऊपर। नंबर तीन है एस, जो के है स्क्वीज। हैंडल को धीरे से स्क्वीज करें ताकि एक्सटिंग्विशिंग एजेंट रिलीज हो। और चौथा है दोबारा से एस, यानी स्वीप। नोजल को साइड टू साइड घुमाते हुए आग पर स्प्रे करें, जब तक आग पूरी तरह से बुझ ना जाए। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने से पहले ये भी जरूरी है कि आप इमरजेंसी नंबर या लोकल फायर डिपार्टमेंट का कॉन्टेक्ट नंबर हाथ में रखें, और किसी भी बड़े हादसे से बचने के लिए आप सभी को फायर सेफ्टी ट्रेनिंग दें। FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है।
1: अगर आप ये मानते हैं कि ख्वाब हकीकत का रूप ले सकते हैं, तो तैयार हो जाइए एक जबरदस्त सफर के लिए, जहां आइडिया सिर्फ सोच तक महदूद नहीं रहते, बल्कि इनोवेशन बन जाते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, क्यूरियोसिटी को फुल मोड पर लगाइए और कनेक्ट हो जाइए कतर इनोवेट्स के साथ, जहां सोच बदलती है, आइडियाज ग्रो करते हैं और फ्यूचर शुरू होता है अभी। कतर इनोवेट्स विद आरजे सफा एवरी मंडे 7:15 PM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन FM 107। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
3: दिल से देसी।

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए आज महविश खान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ एफएम 107 पर।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश। उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अच्छे होंगे। आज सूरह रहमान की आयत नंबर 60 लेकर आई हूं मैं आपके लिए। सूरह रहमान पूरी ही बहुत खूबसूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोगों की जो फेवरेट सूरत है, जिसको लोग कहते हैं, वो इसकी जो खूबसूरती है, तवाजुन है, उसकी वजह से सूरह रहमान को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। और जो आयत मैं आपके लिए लेकर आई हूं, ये आयत भी बहुत खूबसूरत है। तर्जुमा, नेकी यानी एहसान का बदला, एहसान के सिवा और क्या हो सकता है। ये आयत एक सवालिया अंदाज में एक अजीम हकीकत बयान करती है कि जो बंदा इखलास, ईमान और हुस्ने अमल के साथ अल्लाह की बंदगी करे, अल्लाह उसका बदला बेहतरीन एहसान के साथ अता फरमाता है। इसी तरह इंसानी ताल्लुकात में भी भलाई का जवाब भलाई होना चाहिए। आयत अदल, रहमत, शुक्र, इखलाक और जजा के जामी उसूल को बयान करती है। सूरह रहमान कुरान मजीद की निहायत खूबसूरत और दिलों को झंझोर देने वाली सूरत है। इसे बास अहले इल्म ने उरुसुल कुरान यानी कुरान की दुल्हन भी कहा है, क्योंकि इसमें अल्लाह की नेमतों, रहमतों, कुदरतों और आखिरत की जजा और सजा को निहायत हसीन उसलूब में बयान किया गया है। इस सूरत की खास पहचान बार बार आने वाली

0: FM 107. Time check.
1: प्रेजेंट सर या मैम, अस्सलाम वालेकुम. मैं दोहा वाला कबीर एफ 107 पे. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. सवेरे सवेरे फवेरे फवेरे आता हूँ मैं. और आज आज भी जब मैं आया तो अच्छी खिली धूप मिली है मुझे. ये जो कन्फ्यूजन चल रही है, और मई को थोड़ी सी जल्दी है, विच इज़ ओके फाइन. आज 11 मई हो चुकी है तारीख. आई डोंट नो आपको ये फील हो रहा है, लेकिन मुझे ये फील हो रहा है मई थोड़ा सा जल्दी में है. पता नहीं अच्छी बात है कि नहीं. पता नहीं. आज वैसे मैं एक बहुत ही छोटी सी कहानी लेके आया हूँ, लेकिन अच्छी कहानी है. दूसरी चीज़, एक बहुत ही ज़बरदस्त आज मुझे सवाल पूछना है. इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके आने वाले कल को डिसाइड कर सकता है भाई साहब. आपको क्या लगा भारी बात नहीं कर सकता आपका भाई? पहले तो आप आ जाइए व्हाट्सएप पर. 666-221-107 नंबर है. 666-221-107. उसके बाद ज़रा शुरू करेंगे सुबह के अधिकार 10 मिनट 33 सेकंड के, एंड देन वी विल बिगिन. पर आपकी हाजिरी बहुत ज़रूरी है. क्या है ना, 10 मिनट के बाद आपके मैसेजेस ना हों तो दिल ऐसा मतलब टूट सा जाता है, समझ रहे हैं आप? तो 666 गला गया मेरा. 666-221-107. अधिकार के बाद मिलते हैं. जाना अपने यानी बेस्ट जगह पर. आप मैं मतलब ये कहने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हो दिल के अंदर. स्टे ट्यून्ड.
2: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है. इन्हीं पाकीजा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुजूल होता है, और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं. इरशाद खुदावंदी है, وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो. और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर.

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار الصبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دوحہ والا کبیر FM 107 پہ, 6:13 ہو گئے اور آج کچھ ایسا ہے نہیں. میں ایسا بولوں کہ آج کا دن آپ کو یاد رہے گا, میں امید کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے یاد رہے, مگر مبارک ہو 11 مئی اور مئی کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے. السلام علیکم, میں جی دوحہ والا کبیر آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں. آپ ہمارے واٹس ایپ پہ آ جائیے, بڑھیا کر کے میسج کھیلیں گے. میں ذرا ابھی جو چارجنگ ہے میں چارجنگ سے نکال دیتا ہوں. میوزک تھوڑا لاؤڈ ہو گیا کیا ابھی؟ ٹھیک ہے, آپ کی گاڑی میں صحیح سنائی دے رہا ہے. اوکے, تو بلال بھائی کیسے ہیں؟ بلال بھائی وعلیکم السلام, گڈ مارننگ آفٹر لانگ ٹائم میرے بھائی. ایک میسج ہے, وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سمیع بھائی, کیسے ہیں سمیع بھائی؟ ایک میسج ہے, السلام علیکم, گڈ مارننگ کبیر انکل. عائشہ, عائشہ ہاؤ آر یو بچے؟ ٹوڈے آئی ہیو اے ہندی ایگزام, کائنڈلی پرے فار می, آئی لو یور اسٹوریز. بیٹا جب آپ جیسے پیارے پیارے بچے یہ بولتے ہیں نا, لو یور اسٹوریز, یو میڈ مائی ڈے, جب آپ نے میرا دن سیٹ کر دیا ہے تو سویٹ ہارٹ آپ کا دن تو بہت بڑھیا جائے گا. ہندی ایگزام آپ کا بہت بڑھیا جائے گا, آئی نو دس فور شور. پر نا میرے کو رپورٹ کرنا ہوگا, جب بڑھیا چلا جائے تو پارٹی تو میں لوں گا, ہے نا؟ ٹھیک ہے, لاٹس آف لو ٹو یو اینڈ آل دا بیسٹ. اچھے سے ایگزام میں پرفارم کرنا اینڈ بتا دینا کتنے نمبر آئے. سچ اے سویٹ ہارٹ یار, بچے کتنے پیارے یار. میرے کو یہ جو انکل بول کے یہ بچے رکھ دیتے نا, آئی لو یور اسٹوریز, مطلب دن سیٹ ہو جاتا ہے میرا. کیا دشمن ہمیں پریشان کرے گا. ایک میسج سواج بھائی کا, السلام علیکم, ویری گڈ مارننگ بھائی, ویری گڈ مارننگ. جاوید بھائی کہتے ہیں گڈ مارننگ, گڈ مارننگ کبیر صاحب. وعلیکم السلام جاوید صاحب. اتنی صاحب آپ ہیں, میرے کو اتنی عزت تھوڑی سی ہے, قائم چورن کھا کے بھی ہضم نہیں ہوگی, اتنا کافی ہے. صاحب آپ نہیں چلے گا, بھائی بول دو آپ. سمیع بھائی وعلیکم السلام, الحمد للہ آپ سنو. میں جی ودیا ایک دم دسو. اینڈ میسج آیا عبدالسلام صاحب کا, وعلیکم السلام, گڈ مارننگ. اور کوئی میسج تو مس نہیں ہوا. ہاں تو کچھ لوگ جو تھے وہ اس دن بات کر رہے تھے, اور کل کے میسج ابھی بھی آئے تو میں اس کو ابھی سے بتا دیتا ہوں. دیکھو بھائی, صاف سیدھی بات ہے, 1 جون سے شو چینج ہو جائیں گے, کچھ چھپانے والی بات نہیں ہے. 1 جون سے میں آپ کو ایوننگ میں سنائے دوں گا, ٹھیک ہے؟ یہ لو میں نے کہہ دیا, میں نے بتا دیا کلیئر. اس سے پہلے آپ بولیں کہ دیکھو اچانک سے بتایا بھی نہیں اور یہ نہیں وہ نہیں, تو میں ابھی سے ہی کلیئر کر دوں آپ کو. انشاءاللہ یہ ہے سین آگے کا. باقی ابھی تو بہت ٹائم ہے, تو بہت زیادہ ٹائم ہے, تو اس میں مطلب ابھی 19 دن ہیں اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو وہ بعد کی بات دیکھی جائے گی. لیکن ابھی جو ہے بہت ساری باتیں کرنی ہیں, اس پہ آ جاتے ہیں. دیکھو بابا, کل جو ہے میں ایک پول ڈالنے والا تھا سیدھا سوشل میڈیا پہ, میں نے کہا نہیں, سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوں گے تو سیدھا کہانی کے ساتھ ہوں گے, اس سے پہلے نہیں ہوں گے. 666-22107 نمبر ہے, اور میں جو ہوں آپ سے ایک سوال پوچھنے جا رہا ہوں. ایک سیکنڈ, ایک میسج ہے میرے پاس. وہ جو ہے کیا میسج ہے؟ ہاں یہ میسج ہے, بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم کبیر بھائی, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. میں ایسا نہیں کر رہا بھائی, میں ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے میرا بھائی. بہرحال میں جو ہوں آپ سے ایک سوال جو پوچھنا چاہ رہا ہوں اس پہ فوکس کر لیتے ہیں. سوال بڑا سمپل ہے, مجھے آپ یہ بتا دیں کہ گھر میں جو اتنے سارے کام کرنے ہوتے ہیں, اگر یہ لٹرلی ڈویژن ہو جائے, کیونکہ میں نے ایک سروے پڑھا اور اس میں دیسی سروے کا جو رزلٹ آیا ہے وہ بڑا ہی کمال کا ہے, تو میں نے سوچا کیوں نہ سیم سوال میں ذرا آپ سے پوچھ کے دیکھوں. تو اگر گھر کے 2 کاموں میں سے 1 کام چننا ہو, ایک ہے برتن دھونے کا اور ایک ہے کپڑے پریس کرنے کا, تو بھائی صاحب آپ کون سا کام چننا چاہیں گے؟ اور آپ کو چوز کرنا ہی پڑے گا, ٹھیک ہے؟ کوئی چوتھا پانچا مت گنانا, کول بننے کے چکر میں فائدہ نہیں ہے. تو یہ جو ہے ایک سمجھ لیجیے ہماری طرف سے ایک سروے ہے, آپ کو یہ بتانا ہے 666-22107 پہ کہ اگر دونوں میں سے ایک کام آپ کو چننے ہوتے تو کون سے کام چنتے آپ. आपको लगता है कि बर्तन मांझना आसान है या कपड़े इस्त्री करना, प्रेस करना ज्यादा आसान है, या फॉर द फैंसी पीपल आयरनिंग माय क्लॉथ्स, तो कौन सा आपको लगता है कि ज्यादा इजी है, या आप चूज करते हैं? 666-22-107 में बताइएगा, 666-22-107 पर, एंड लेट मी नो। बाकी आप जो है कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। एक सेकेंड ना, ओके, 666-22-107 नंबर है। एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग ब्रदर, गुड मॉर्निंग ब्रदर, हाउ आर यू? सलीम अख्तर भाई, कैसे मेरा भाई? एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई। वालेकुम अस्सलाम शाहिद भाई, कैसे मेरा भाई? मैं एकदम बढ़िया। एंड एक मैसेज है, भाई आज आप लेट आए हैं क्या? मैं भाई मैं लेट आ ही नहीं सकता, मैं लेट कैसे आ जाऊँगा, चांस ही नहीं है। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, सारे काम आसान है, बस एक काम करना वाली होनी चाहिए साथ में। देखा मैं कह रहा था ना, सही जवाब नहीं मिलेगा मुझे, सीधा जवाब हम लोग देते ही नहीं है। क्या पूछा मैंने? मैंने ये पूछा कि बर्तन मांझना या कपड़े प्रेस करना, क्या आप चूज करेंगे दोनों के बीच में? वो तो इंशाल्लाह ताला आपको मिले, मैं बिल्कुल दुआ करता हूँ आपकी ब्याह के लिए। एक मैसेज है तबस्सुम बहन का, लिखने, अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह इतनी इंटरेस्टिंग और दिमाग लगाने वाला सवाल। बहन मैं ऐसा ही हूँ, थोड़ा टेढ़ा चलूँ। एक मैसेज, सलाम कबीर भाई, आई विल चूज डिश वॉशिंग, बस सोप और स्पंज लगाओ, काम खत्म। देखिए ये देखा, ये एक ये आया, सटीक रिप्लाई, सटीक रिप्लाई। तो इस तरह जी की तरफ से मैसेज आया कि उनको तो लगता है बस डिश वॉशिंग इज मच ईजियर, सोप और स्पंज होना चाहिए, बाकी काम खलास। समीर भाई कह रहे जी बर्तन धोना, भाई कोई कपड़े प्रेस करने का सोच भी नहीं रहा है। किसी के दिमाग में भी नहीं आ रहा है, बताइए। एक मैसेज है, ये भी डिश वॉश कह रहे हैं सलीम अख्तर भाई, तो अभी तक डिश वॉश का जो है मामला भारी है, अब सारे ही कपड़े बर्तन धोएंगे तो कपड़े कौन प्रेस करेगा? क्या हो रहा है मेरे देशवासियों, कपड़े की तरफ भी ध्यान दो। कोई नहीं चूज कर रहा, मतलब सच में मुश्किल काम तो है। एक मैसेज है, दोहा से वॉशरमैन को फाइनल एग्जिट पर भेज रहे हैं क्या कबीर भाई? नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैंने बताया शुरुआत में इरशाद भाई, सवाल का मकसद ये है कि कल मैंने एक रेडिट पोस्ट पढ़ा था, उस पर वो लोग बात कर रहे थे कि इंडियन हाउस होल्ड में क्या फ़र्क होता है, मतलब इंडियन हाउस होल्ड एजन की जितना भी देसी हाउस होल्ड है उसमें क्या फ़र्क रहता है, और बाहर के जो लोग हैं उनमें क्या फ़र्क रहता है, इन टर्म्स ऑफ चूजिंग बिटवीन टू हाउस होल्ड चोर्स। ठीक है, सो काम चोरी नहीं करने का, दोनों में से एक चीज करनी है, या तो बर्तन मांझना या कपड़े प्रेस करना, तो आप क्या चूज करेंगे? एक मैसेज है, आई प्रिफर आयरनिंग, आई डोंट लाइक समवन आयरनिंग माय क्लोथ्स, ये थोड़ा कुछ नया पता लगा। परवेज भाई प्लीज मुझे, मैं चाहता हूं आप भी एक्सप्लेन करें। परवेज भाई ने डंके की चोट पर कहा है, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे कपड़े प्रेस करे। ऐसा क्यों परवेज भाई? मैं जानना चाहता हूं ऐसा क्यों, कोई मेरे कपड़े ना धोए इज अ डिफरेंट थिंग, कोई मेरे कपड़े प्रेस ना करे क्यों भाई? ऐसा क्या मिल जाएगा? अच्छा क्वालिटी, ओहो, अपने सिवा मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। एक मैसेज है, मुश्किल काम है क्लोथ प्रेस करना। ठीक है, तो एक ही बंदा है परवेज भाई हैं जो कपड़े प्रेस करना पसंद करेंगे, बाकी सब डिश वॉशर की तरफ जा रहे हैं, मतलब डिश वॉशर नहीं, खुद डिश वॉश करनी है, आलसी हूँ। तो बस मैंने लिखा है, मेरे लिए तो आयरन करना, और हस्बैंड से पूछो, उन्होंने बोला उन्हें बर्तन धोना पसंद है, काम आसान है इस घर अलबत्ता कोई करता नहीं है रियलिटी में। बहन आपको जो है अभी हथियार उठाने की ज़रूरत है, और वो है आपका नखरा, वही सबसे बड़ा हथियार है। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मुझे प्रेस करना ज़्यादा अच्छा लगता है गुलरेज भाई। तो तीन लोग मिले हैं भाई साहब अभी तक जो प्रेस करने के लिए आ गए हैं, बाकी सारे के सारे बर्तन धोने में बिजी हैं। ये तो सर्वे का बिल्कुल उल्टा जवाब आ रहा है भाई, क्या हो क्या रहा है? एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, आई विल चूज कपड़े प्रेस करना, बर्तन धोना मुझे वॉर लगता है, इसलिए मैं डिस्पोजल बर्तन रखता हूँ, खाओ और फेंको। ये हमारे घर के सदस्य लग रहे हैं भाई। भाई अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ रहते हैं? आप छोड़िए सब, इधर आइए, आप दिल्ली वाले तो नहीं हैं गलती से? ये तो हमारे वाली सोच रखते हैं मेरा भाई, ये मैं भी करता हूँ भाई, ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं, ठीक है, करनी ही नहीं है। पर आपने चूज़ किया है वो ठीक है, आई विल चूज़ कपड़े प्रेस करना, तो कपड़े प्रेस करने वाले अभी आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। एक मैसेज है, इस तरह के सवाल करके आप गृहणियों के मन में उम्मीद जगा रहे हैं कि पति महाशय इनमें से एक काम तो करेंगे ही, कर लो ना, नेकी कमा लो, और क्या चाहिए तुमको, ये बताओ। है ये तो अच्छी बात है इरशाद भाई, नेकी कमाओ, एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, कपड़े प्रेस आई लाइक, कपड़े प्रेस आई लाइक, वेरी नाइस, आप तो प्रेस वाले ज़्यादा हो रहे हैं अबरार भाई। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, दोनों वाइफ के लिए है, ये कौन है? यासिर भाई, कैन यू प्लीज इलेबोरेट योर आंसर, आई रियली वॉन्ट टू नो। एक मैसेज है, ये बर्तन धोना, बर्तन धोने का भी स्कोर और प्रेस धोने का कह रहा हूँ, कपड़े प्रेस करने का स्कोर ऑलमोस्ट इक्वल चल रहा है। मैं सवाल दोहरा दूँ और वजूहात बता दूँ मैंने क्यों पूछा है। तो बड़ा सिंपल है ये सवाल, मैंने इसलिए पूछा कल मैं एक रेडिट पोस्ट की तरफ से जा रहा था, उसमें बड़े इंटरेस्टिंग सर्वेस थे। तो कुल मिला के 30,000 लोगों पे सर्वे किया गया, एंड दिस हैपेंड इन इंडिया इन 2023, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, पूरा नॉर्थ जो था उसे कवर किया गया। और उसमें सेम सवाल पूछा गया था कि घर के अंदर कौन सा काम प्रेफरेबली ईजी है, कपड़े धोना कपड़े प्रेस करना या बर्तन धोना। तो दोनों में से एक काम आप बताइए, देखते हैं कि हमारे यहाँ जो लार्जर जनता है, डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है, तो यहां पे पब्लिक क्या चूज कर रही है। 666-22107 आज यही सवाल है। तो आप क्या चूज करेंगे, क्या लगता है आपको ज्यादा आसान क्या है, बर्तन धोना या ज्यादा आसान है कपड़े प्रेस कर लेना? जहाँ की अपने गिरेवान के अंदर हो मुझे सही जवाब दीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप कॉल भी कर लें 4434377 पर, 4434377। आप चाहें तो मुझे बोल सकते हैं, मैं कॉल कर लूँगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक कॉल वैसे तो आ गई है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, कैसे हो?
1: मैं एकदम बढ़िया मेरे भाई, क्या हो रहा है?
2: मैं बढ़िया हूँ, लेकिन अभी थोड़े देर पहले ही अपने बात करते हो तुमने कहा कि नेकी कमा लीजिए। तो कुछ लोगों के मैं जानता हूँ, कुछ लोगों को जिनके कथनी और करनी में बहुत डिफरेंस होता है
1: ना। देखिए
2: करीब से जानता हूँ,
1: पांचों उंगलियों में चार मेरी तरफ है मुझे पता है, लेकिन मैं बर्तन धोने में एक्सपर्ट हो गया हूँ, आपको बता दूं मैं मिलेश भाई।
2: देखो भाई, अब डिस्पोजल बर्तन कैसे धोए जाता है ये तो मुझे नहीं पता।
1: देखिए नहीं जो होते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना आप, मेरी क्षमताओं पे शक मत कीजिए।
2: मैं भावनाओं को समझ रहा हूँ, क्षमताओं को समझने की जो जरूरत मैं क्यों करूँ भाई।
1: बात तो सही है, पोटेंशियल तो कंपनी देखेगी।
2: वो तब क्यों इतने मेहनत करे। तो, लेकिन हाँ। मैं बताता हूँ, मतलब अगर तुमने जो सवाल पूछा है मुझसे, मैं बर्तन धोने वाला आदमी हूँ, मतलब वो भी नहीं धोने वाला आदमी, लेकिन ऑप्शन मिलेगा तो बर्तन ही धोऊंगा।
1: अच्छा, तो ज्यादा आसान होगा तो बर्तन। हाँ
2: आसान है, क्योंकि उसमें कोई टेक्निकल, और जो प्रेस करने वाले लोग हैं उनको तो मतलब एक तो बहुत बहुत मतलब टेक्निकल काम है, घुमा फिरा के देखो आप तो है ना। प्रेस करना, टी शर्ट प्रेस करना और मोजे प्रेस करने वालों की मैं कर रहा हूँ, शर्ट जो है क्रीज वाले पैंट होते हैं और बहुत सारी वो मतलब आसान नहीं है, आपने इधर किया उधर गलत हो जाता है वो, है ना। तो वो एक टेक्निकल टास्क जैसा है, और मैं भगवान की कृपा से ना मेरे घर में किसी ने मुझे सिखाया ना करने दिया, जब हॉस्टल पहुंचा तो वहां मेरे दोस्त बहुत अच्छे, उनको फिर से सैल्यूट है, उन्होंने मेरे मतलब कपड़े प्रेस किए, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी ना मुझे आता है सच्ची।
1: ओके, तो उसमें मतलब बिल्कुल ही स्टेज वन पे भी नहीं पहुंचे हैं आप बेसिकली।
2: नहीं नहीं, और जिन लोगों को नहीं आता मैं उनको बताता हूँ, उसमें से 50-60% आदमी जो है अपनी धर्म पत्नियों से जो है वो दो चार गुणगान जरूर सुनती हूँ कि है माँ ने कुछ नहीं सिखाया तुम्हें।
1: हाँ ये तो, अरे ये तो वो है क्या कहते हैं उसको, यूनिवर्सल चीज है ये, सुनना पड़ता, आपको भी सुनना पड़ा वैसे,
2: ये सब बातें जो है वो सार्वजनिक जगहों पर नहीं बताई जाती।
1: अच्छा अच्छा, वो तो ठीक है। पर मुझे लग रहा है जिस हिसाब से आपने इस बात को डॉज किया है, मुझे लग रहा है कि ट्रेनिंग के लिए,
2: मैंने अपने लिए अकेले टॉन्ट नहीं किया है।
1: अच्छा,
2: लोगों के लिए कुछ बहुत
1: नहीं नहीं,
2: अगर आपका शादी का दूसरा तीसरा साल चल रहा है तब तो बाबू सोना चलता रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है ये जो टॉन्ट है वो आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं,
1: ऑटोमेटिकली आते हैं। बात तो सही, बात तो सही
2: है ना,
1: हमारा नेता कैसा हो भी मुंबई जैसा हो।
2: बस खत्म बात।
1: नहीं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही विलेश भाई, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, जो आज आपसे आज से आप बोलेंगे सब ठीक है भाई, अग्री। ठीक है फिर, थैंक यू भाई, ख्याल रखो भाई। तो मिलेश भाई ने जो बोला है वो सही टॉन्ट मारा है, सही जगह पर जाके लग भी गया है। एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, कैसे हैं आप? सबसे ज़्यादा आसान खाना बनाना है कबीर भाई, मेरा सवाल है कि ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं, कैसे दोस्त कहाँ मिलते हैं ये बताइए नौशाद भाई। और ये सिद्रा भाई ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो मैसेज आया है कबीर अंकल हाउ यू, टुडे इज़ माई साइंस एग्जाम। अलीना ऑल द बेस्ट टू यू स्वीट हार्ट, लॉट्स ऑफ लव टू यू। साइंस में बेटे आप आग लगा दोगी, मुझे पता है। सो मैं यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट टू यू अलीना, लॉट्स ऑफ लव टू यू बच्चे, एंड प्लीज़ परफॉर्म वेल, उसके बाद पाड़े। बाकी सिद्रा बहन ने मैसेज किया है, वो कह रही हैं कि मैं दोनों नहीं करती। ज़रा वो लाना माइक्रोस्कोप, नहीं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुझे चेक करना है, ये अभी चेक करते हैं। मैंने होटल में क्या है, विमलेश भाई के कपड़े प्रेस करने वाले भाई मिलते हैं ऐसे दोस्त नौशाद भाई, क्या बात कर रहे हैं आप। एक मैसेज है, पिंक पिंक ट्रक, अरे समी भाई को पिंक ट्रक दिख गया, अरे बाप रे बाप, ये क्या है? ओह मेरी आंखों में दर्द हो गया भाई ये देख के। पिंक गाड़ी ठीक थी लेकिन पिंक ट्रक, खुदा ये किसने, इसको भाई गाड़ी रोक के पूछो किसने, मालिक ने करवाया कलर ये। एक मैं सुभाष भाई का है, सुभाष भाई कह रहे हैं डिश वॉश करना ज़्यादा इजी है, कपड़े के सिलबट्टे हटाते हटाते माथे पर सिलबट्टे आ जाते हैं भाई। ये तो बात ठीक है। और गलती से अगर ज़्यादा बटन वाले कपड़े मिल गए प्रेस करने के लिए तो आप धुआं छोड़ देंगे, बता रहा हूं मैं प्रेस से पहले। कबीर भाई आप मेरे ड्रीम में आए, मैं आपके सपने में आया, क्या कर रहा था भाई मैं? मतलब ये तो जानने वाली चीज़ है, मेरे को बताओ प्लीज़ एलेबोरेट, मैं सपने में कर क्या रहा था? पिंक ट्रक तो नहीं चला रहा था, बाकी सब ठीक है। बाकी सब माफ है, पिंक ट्रक नहीं होना चाहिए बस, बाकी चलेगा। स्माइल कर रहा था मैं, अच्छा फिर ठीक है, फिर तो भाई बड़ा ही नॉर्मल और सादा जीवन है आपका, उस हिसाब से आपको अच्छी ड्रीम आए, बहुत बढ़िया। एंड चलिए, ये गाड़ी तो पिंक नहीं है जो आपने भेजी है, ये इसरा की तरफ से मैसेज आया है, इसरा जी ये तो ठीक है, मैंने पिंक ट्रक देख लिया है अभी। समी भाई ने मेरे पूरे दिन जो है वो इस ट्रक, अब मेरी तलाश शुरू है, इट्स लाइक एन ऑपरेशन, मैं इस ट्रक को ढूंढना चाहता हूँ। एक मैसेज है, बहुत खुश हो रहे थे आप मुझसे मिलकर। मेरा भाई मैं तो हर किसी से मिलकर खुश होता हूँ भाई, बस लोग मुझसे मिलकर खुश नहीं होते। देख रहे हैं आप वो सैडिस्टिक दोस्त, देखा आपने जो हर बात को सेट बना देता है। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, सदा दोनों नहीं करती हैं, यहाँ खादिम दोनों कर लेता है। सादिक भाई वालेकुम अस्सलाम। और ये ब्लू, अच्छा नहीं ब्लू कार, फिर भी मैं बताऊँ ब्लू कार फिर भी माफ है, मैं एक पल को पर्पल गाड़ी भी माफ कर दूँ, पिंक नहीं कर पाऊंगा ये, वो भी बेबी पिंक, ये नहीं हो पाएगा, सॉरी मैं दोस्तियां खराब कर लूँ इस चक्कर में। एनीवे मेरा सवाल बड़ा ही सिंपल है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। एक सर्वे के मुताबिक जब पूछा गया कि क्या ज़्यादा आसान है, बर्तन मांजना या कपड़े प्रेस करना, तो बहुत भर के जवाब आए, 30,000 लोगों ने उस सवाल का जवाब दिया, पूरा सैंपल तैयार किया। आप बताइए कि आप किस तरफ हैं, आपको क्या काम आसान लगता है? और जो लोग कह रहे हैं कि ये काम करने के लिए तो बीवी चाहिए, नेकी कमा लो थोड़ी सी, मतलब है इसी दुनिया में कमा लो बेहतर है, दूसरा तो कुछ है नहीं हिसाब किताब। तो 666-22107 नंबर है, मुझे ये बता दें कि आपके लिए क्या काम आसान है। एक भाई ने मैसेज किया है, भाई मैं तो बैचलर हूँ, मेरी कुर्सी पे 4 शर्ट पड़ी हुई हैं, अभी आपने जिस तरह बताया है अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो 4 शर्टें अभी तक प्रेस क्यों नहीं हुई हैं। वेरी गुड, तो आपने डिस्कवर कर लिया कि ये बहुत मुश्किल काम है। एक और भाई है, साजिद भाई ने मैसेज किया, साजिद भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, वालेकुम अस्सलाम, कह रहे हैं कि मेरी वाइफ ने मुझे पहले ही बर्तन धोने का टास्क दिया हुआ है, हालांकि मैं थोड़ा सा तेज़ हूँ, मैं डिस्पोजेबल रखता हूँ, लेकिन फिर भी जब रात खाना होता है तो वो कहती है कि बच्चों को इंस्पायर कीजिए और आप बर्तन धोने में लग जाइए, मैं प्रेस करने के लिए कभी खुद से बोलूँगा भी नहीं क्योंकि मैंने अपनी स्कूल कॉलेज लाइफ में बहुत ट्राई किया है, उसमें कामयाबी हासिल नहीं होती। वेरी गुड, कह रहे मुझे पता है, अगर वाइफ प्रेस करने के लिए नहीं कह रही है, सिर्फ बर्तन तक महदूद है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं कर लूँगा। एक मैसेज है, एज इफ एज अ हस्बैंड वन विल हैव अ चॉइस टू सेलेक्ट, कह रहा अच्छा हस्बैंड होने के बाद तो चॉइस मिलती है क्या? कुछ भी बोलते हैं रेडियो वाले, कह रहे हैं आई एम गुड इन आयरनिंग क्लोथ दो स्पेशली ड्रेस शर्ट एंड ट्राउजर एक्सेट्रा। ताहिर भाई ने ऐसे गीला करके रुमाल मारते हैं चटाक करके। एक कॉल आ रही है, रुकिए। अस्सलाम वालेकुम,
2: وعلیکم السلام.
1: جی ہاں ٹھیک ہے الحمد للہ. آپ کا نام؟
2: کم کم.
1: کم کم بھائی. جی کم کم بھائی بتاؤ کیا کہہ رہے تھے میرے بھائی؟
2: جی ٹھیک ہے سب بڑھیا ہے.
1: ہاں تو سوال سنا آپ نے؟
2: سوال سنا ہے. آپ کو کیا کام اچھا لگتا ہے؟
1: ہاں کام اچھا نہیں لگتا. کیا کام آپ چوز کریں گے دونوں میں سے ایک بتائیے.
2: ہم کو کھانا بنانا بچپن سے بہت شوق ہے. نہیں
1: نہیں پر سوال یہ نہیں ہے نا میرے بھائی. سوال سنا نہیں آپ نے دھیان سے. سوال یہ نہیں تھا. سوال یہ تھا کہ برتن دھونا زیادہ آسان لگتا ہے یا کپڑے پریس کرنا؟ یہ ہے سوال. ہیلو.
2: کپڑے پریس کرنا آسان ہے برتن دھونا؟
1: ہاں دونوں میں سے کیا کام چوز کریں؟
2: تو دونوں سیم سیم ہیں لیکن برتن دھونا آسان ہے.
1: ہاں سیم سیم تو نہیں ہے ورنہ برتن دھونے کی طرف تو نہیں جاتے. ٹھیک ہے.
2: کرنے میں بہت مشکل ہوتا ہے. پینٹ ہے تو مشکل نہیں ہاتھ میں بہت مشکل ہوتا ہے.
1: ہاں اب آئے نا لائن پہ اب سچ نکل رہا ہے اندر سے پھر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کم کم بھائی بہت بہت شکریہ میرے بھائی. تھینک یو سو مچ. اوکے تو کم کم بھائی کے بعد کچھ میسیجز ذرا پڑھتا ہوں. فراز بھائی نے میسج کیا. سلام بھائی وعلیکم السلام. فرد بھائی وعلیکم السلام. خیریت سے الحمد للہ. کمالت الشیخ صاحب وعلیکم السلام. گڈ مارننگ. دین السلام علیکم. بھائی برتن بیسٹ آپشن ہے. بیسٹ آپشن ہے. نکل لو جتنی جلدی موقع ملے. ذیشان بھائی نے میسج کیا ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں. کپڑے پریس کرنا فراز بھائی آپ کو کپڑے پریس کرنا آسان لگ رہا ہے؟ السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
1: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ. السلام علیکم میرے بھائی. کیسے ہیں
3: بھائی؟ الحمد للہ. ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں کیسے ہیں؟
1: میں تو ایک دم صحیح سے چل رہا ہوں. آپ بتائیے کیا چل رہا ہے؟
3: کیا ہو گیا؟ میٹرو میں بیٹھ کے بات کر رہے ہو کیا؟
1: ہاں یہ ابھی میٹرو چل رہی ہے نا. دلی والی میٹرو. وہ بھی دو والی نہیں دلی والی میٹرو.
3: انجن کے سامنے. انجن کے سامنے.
1: انجن کے سامنے. تو طلا بھائی یہ بڑا ہی مشکل سوال آیا ہے آج سامنے. اور سوال یہ
3: بہت انٹلیکچوئل باتیں کر رہے ہیں آپ وہی صبح نا. میں یقین پر حضم نہیں کر پا رہا ہوں. مجھے آج نا
1: دیکھیے میں
3: انگلیوں میں نا.
1: میں کل رات پہاڑی پہ بیٹھا ہوا تھا اور پھر ایک دم سے مجھے الہام آیا. میری آنکھ کھلی. میں نے سوچا کہ یہ بہت بڑھیا سوال ہے. تو بس اس میں گہرا وہ ہے گہن ہے سمجھ رہے ہیں.
3: ٹپڑی
1: پیش کر رہا ہوں. تو آپ کے لیے کیا کام آسان ہے تلا بھائی؟ کیا کام آسان لگتا ہے؟
3: دیکھو میری جان دیکھو ویسے تو سگڑ آدمی ہوں گا تو وہ پتا ہے میرا نا. شریف انسان سگڑ کام کا بہترین بندہ. وہ برتن تو میں دیتا ہوں.
1: ٹھیک ہے.
3: اور ہاں ہاں برتن کو میں ہاتھ میں لگا دیتا. بیگم چندے دھوتی ہے میں دوں گا. خود دوں گا میں خود دھوتا ہوں برتن سارے کا. اور وہ پھر استری جو ہے نا پریس جو ہے نا بھائی وہ پریس مجھے کسی اور ہاتھ کی سمجھ میں آتی نہیں. ایون لانڈری والی کی سمجھ نہیں آتی. تو بھی میری مجبوری ہے. میں خود کرتا ہوں پھر وہ.
1: یہاں پہ بھی مجبوری ہے؟ اچھا یہ ایسا ہے کیا؟
3: ہاں ہاں.
1: ارے کیوں یار مطلب باہر تو
3: چائے بھی مجھے کسی اور کے ہاتھ کی نہیں پسند تو میں خود بناتا ہوں. بس ایسا ہے. سمجھو بات کو.
1: میں ہوں ہی نہیں اس دنیا کی. یہ تو زیادہ ہو گیا بھائی. ایسا مت کریے بھائی. مطلب باہر تو اچھی خاصی پریس ہوتی ہے. چلو میں کھانے اور چائے کا مان سکتا ہوں لیکن بڑے نخرے ہیں بھائی صاحب. بہت زیادہ نخری لے یار. اتنے ٹینٹرم. آپ میٹ گالا کیوں نہیں چلے جاتے؟ یہ بتائیے کیا کر رہے ہیں؟
3: میں تو جانا چاہ رہا ہوں. میں جانا چاہ رہا ہوں. وہ آنے نہیں دے رہے.
1: اچھا وہاں سے اچھا تو گھر پہ کر لیتے ہیں. وہاں سے اچھا گھر پہ کر لیتے
3: ہیں. تم کیا ہو گے تم؟ ہاں کہہ رہے ہو تمہیں ہم سمجھ ہی نہیں آئیں گے. تم کیا ہو گے؟ میں خود کر لوں. تم خود ہی کر لو جو کرتے ہو نا.
1: واہ واہ واہ واہ واہ. صبح سیٹ کر دیا آپ نے. اچھا پر تو گھر میں آپ کو ایک کام ملا ہوا ہے یا پھر آپ سیزنلی کام کرتے ہیں دونوں میں سے ایک کام؟
3: نہیں نہیں یار دیکھو کام ملتا نہیں ہے میری جان. دیکھو آپ دیکھو جس میں جستجو ہوتی ہے نا آپ کی. اللہ تعالیٰ قدرت جو ہے نا کائنات آپ کو ملا دیتی ہے اس کام سے نا. تو وہ جو کائنات کی ملی بھگت ہے.
1: اچھا
3: میری بیگم کی بڑی اچھی دوست ہے یہ کائنات.
1: تو ٹھیک ہے یہ میں سمجھ پا رہا ہوں. تو سوال کرنے کے لیے کچھ بچا نہیں.
3: ہاں
1: جو آپ نے جس طرح سے بتایا. نہیں ہو پائے گا تلا بھائی. میں آگے نہیں بات کر رہا ہوں. کائنات کے جو یہ جو پلٹ الٹ پھیر ہے میں سمجھ پا رہا ہوں جو ہو رہا ہے. یہ بھی
3: بتا رہا ہوں زندگی میں جس کے پاس کائنات ہے نا اس کے پاس بچا نہیں کچھ بھی.
1: कुछ भी नहीं बचा,
3: कायनात है बस, काफी है,
1: काफी
3: और कुछ नहीं चाहिए।
1: फिर भी हिम्मत करके जवाब दें, क्या आसान लग रहा है आपको कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करने या बर्तन धोना? क्या
3: कपड़े धोना भी लगा दे तो मुझे है, अब कपड़े धोना भी
1: नहीं, नहीं वो तो मशीन कर लेगी उसमें तो आपको मैं सुनूंगा
3: नहीं, नहीं। बोल रहा भाई सुन लिया ना अगर नहीं, तो ये होगा अरे सुबह सुबह हुआ था कपड़े धोना भी था ये भी सुना था मैंने,
1: अभी मैं मिस्त्री का काम गया हूँ, दो ईंटे लगा के आया हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, फिर भी बताओ बताओ, कोशिश करो बताओ कि दोनों में से क्या आसान है, कपड़े प्रेस करने या बर्तन धोने?
3: बर्तन पाने चमका के रख देता है
1: एकदम चमका के, ये बढ़िया था। अरे बापरे, ठीक है तला भाई, मैं समझ रहा हूँ कि आपकी वजह से बहुत सारे लोग ट्रिगर हुए हैं और बहुत सारे रिस्पॉन्स और भी आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत प्यार
3: भाई, तुम मुझे हल्का लेते हो, मैं यकीन करो तो मुझे ना लेकिन हाथ धो के पीने चाहिए तो मेरे यार, तुम कदर नहीं करते मेरी,
1: हाथ पहले बर्तन धो यार फिर बात करेंगे।
3: ओके वो इम्पोर्टेंट है,
1: वो इम्पोर्टेंट है, ये तो बातें होती रहेंगी।
3: हाँ ये तो होती रहेंगी भाई, तुम्हारा मस्तर तुम तो घर से निकलवा दो मुझे।
1: ठीक है, ओके तला भाई, थैंक यू सो मच भाई, बहुत सारा आपको, ओके भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और तला भाई की बहुत सारी बातों के बाद मजा आ गया, अब जरा बात करते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ये मिस्टर अब्दुल भाई लिख रहे हैं, फराज भाई कह रहे हैं कायनात वाज माय नेबर इन द होम कंट्री, अस्सलाम वालेकुम उनको। एक जरा कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम कबीर भाई, क्या हाल?
1: अल्हम्दुलिल्लाह नदीम भाई, आप सुनाए मेरे भाई, क्या हाल है?
4: बस वो तला भाई की बातें सुन के ऐसा लगा, वो मैं हमेशा एक बात सुनता हूँ कि बीवी घुटने पे चल के आई थी मेरे पास, पहले हाफ ऐसा था, बोले अच्छा फिर क्या हुआ, फिर सेकंड हाफ ऐसा था, बोलिए आप बेड से बाहर आ जाओ और नहीं मारूंगी।
1: ये अच्छा था, मैं इस्तेमाल करूंगा, वेरी गुड वेरी गुड। तो नदीम भाई आपका क्या सीन है, आपको क्या आसान लगता है?
4: यार आप मेरा देखो ऐसे ऐसे सवाल मत लाया करो, फिर बाद में बेगम कभी सुन लेगी ना एफएम तो वो बोलेगी वहां तो बड़ा बोल रहे थे कि बर्तन धोना आसान है, यहाँ पे क्या हो रहा है।
1: पर एक अगर आपको चूज करना पड़ जाए, मजबूरी हो जाए, एक दिन भाभी बोले नहीं नदीम आज से सब कुछ बदलेगा,
4: मैं धोता हूँ कभी कभी बर्तन धोता हूँ, तो बर्तन ही ठीक है, मतलब आयरन भी मैं अपने कपड़े पहले खुद से ही आयरन करता था जब जॉब वर्क करते थे, फिर जब जॉब हट गई तो फिर अपन टी शर्ट जींस में आ गए, बोले बहुत हो गया आयरन।
1: हाँ ये सबसे सही है, ये टी शर्ट को ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ती, पैंट कौन ही देकर आया लड़कों की, ठीक है
4: आयरन तो मैं तो ऐसे ही उठा के पहन लेता हूँ, आयरन कौन से जमाने में किया था पता नहीं, फॉर्मल्स होंगे तो करने पड़ते, अदरवाइज टी शर्ट जींस तो कभी आयरन किया ही नहीं, टी शर्ट को कौन आयरन करता
1: भाई, बहुत रिस्की चीज है जो आप बोल रहे हैं अभी कपड़ों के बारे में, हो सकता है कि आपको कल से भाभी अगर सुन ले तो बोले नदीम कुछ बोला था तुमने और फिर वही सीन हो जाए कि आ जाओ बैठ के नीचे, अरे नहीं मार रही बाहर आ जाओ।
4: नहीं मेरे बैठ के नीचे तो मैं जा भी नहीं पाऊंगा, पेट फंस जाएगा।
1: नहीं पर ये जो डेटा है ना बड़ा कमाल का डेटा था, इसलिए मैंने कहा ये बड़ा ऐसा सवाल है जो है तो बड़ा अजीब सा ही छोटा सा,
4: मर्द जो है वो तो बर्तन ही बोलेंगे क्योंकि क्या है बर्तन थोड़ा आसान भी पड़ जाते हैं, और अगर जब जिसके फैमिली मेंबर ज्यादा होंगे ना वो बोलेगा भाई मेरे को कपड़े आयरन करने दे दो, बाकी दो चार लोगों में बर्तन ठीक है।
1: पर मुझे सच में लगता है कि कपड़े प्रेस करना थोड़ा टेक्निकल काम है, मतलब उसमें आपको थोड़ा सा टेक्निकल प्रोवेस चाहिए,
4: वो पता है सेटिस्फेक्शन नहीं आती है, वो थोड़ा बहुत अगर कुछ रह जाएगा ना आपका लाइन वाइन आ जाएगी, या कभी कभी क्या होता है मतलब कुछ कुछ कपड़े तो इतने जिद्दी होते हैं कि उनकी लाइन मैच नहीं होती दोनों साइड की।
1: हाँ भाई ये बहुत बहुत जिद्दी कपड़े, आदमी पानी छिड़के जा रहा कपड़ों में, अरे हो क्यों नहीं रहा है,
4: होते ही नहीं है कुछ कुछ कपड़े, फिर वो ऐसे कितनी बार ऐसा हो चुका है कि वो कपड़े फिर पहने भी नहीं जाते, वो कि यार इसको कौन इस्त्री करे छोड़ो।
1: अपने ही कपड़े प्रेस करके मन नहीं कर रहा है पहनने का, बताइए कौन सा आलम है। ठीक है नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई, थैंक यू सो मच, ओके भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो नदीम भाई ने भी बता दिया है, और नदीम भाई के बाद कुछ और मैसेजेस हैं, बर्तन धोना आसान काम है ये बिलाल भाई कह रहे हैं, और तला भाई फ्रॉम अलखोर, उन्होंने मैसेज किया है भाई आसान कुछ नहीं लगता, बर्तन धोने पड़ते हैं क्योंकि दो दफा बेगम का दुपट्टा जला चुका हूँ, शादी पे जो सूट पहन के जाना था तो उसके बाद बेगम आयरन नहीं करने देती। अरे भाई तला भाई कह रहे हैं मुझे प्रेस करने से वैसे ही मना किया गया है, दो बार दुपट्टा जला चुके हैं। ये आपकी चाल तो नहीं है, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ये आपकी चाल तो नहीं है, पता नहीं। तला भाई मुझे अचानक से आपका मैसेज पढ़ने के बाद एक एहसास हुआ, हो सकता है कि साजिश हो इसके पीछे। एक कॉल आ रही है, फिर बात करते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कबीर भाई क्या चाल
1: है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, आप सुनाइए मेरे भाई।
2: अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाइए। ठीक है,
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, क्या कहना चाह रहे हैं भाई बताइए।
2: कबीर भाई वैसे तो दोनों काम जो है ना सख्त है,
1: सख्त है, ठीक है।
2: बर्तन अगर आप लोगे तो बर्तन के हिसाब से जो है ना उसके साथ सफाई भी अच्छी तरह होनी चाहिए,
1: आसपास मतलब किचन की सफाई। हाँ हाँ,
2: वो भी सख्त काम है,
1: ठीक है।
2: और आयरन जो है ना, बस आजकल आपको पता है लोग जो है ना ज्यादातर ट्राउजर और पैंट शर्ट पहनते हैं, तो वो थोड़ा आसान लगता है वैसे मुझे।
1: अच्छा, तो ज्यादा आसान क्या लगता है? कपड़े प्रेस करना, ऐसा?
2: कपड़े पे प्रेस करना
1: भाई। बहुत कम लोगों ने ये बोला है, सब तो डर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि पता नहीं कैसे लोग कर लेते इतने अच्छे से प्रेस, तो आपने बर्तन को इग्नोर कर दिया। वाह वाह वाह वाह वाह।
2: बर्तन बर्तन में देखो कबीर भाई, तकरीबन एक घंटा डेढ़ घंटे यानी तकरीबन आपको कड़ा होना पड़ता है उस पर जो है ना, सही सही काम अगर करना है तो मतलब टाइम ज्यादा लगता है, सही है। और फिर उसके साथ सफाई भी लेके आना है, और कपड़े प्रेस करना, टेबल पे खड़ा हो जाओ बस, इधर तो बिजली बिजली का टेंशन भी नहीं है।
1: क्या बात है, कितनी आसानी से आपने कह दिया। अब मुझे पता है आपकी बात सुनके सच में लग रहा है कि प्रेस करना ही आसान है। कितना हल्का
2: और और ज्यादातर अगर आपको थोड़ा सा वो जो गीला कपड़ा मिलेगा ना, वो वाशिंग के वाशिंग करने के बाद जो ऑटोमेटिक मशीन है उससे डायरेक्ट निकालो प्रेस करो, वो ज्यादा आसान है।
1: अच्छा ठीक है।
2: और फिर जो है ना उधर बाहर कड़ा रखो सूरज पे, थोड़ा सा धूप मिलेगा उसको।
1: भाई आपने तो मतलब आपने वो है ना, तो वो अभी कोई बहाना बना नहीं पाएगा प्रेस को लेके, आपने ऐसी बात कर दी है। अभी सबको सब बोलेंगे नहीं भाई बात तो सही कह रहा है। वैसे आपकी शादी हो चुकी है?
2: हाँ जी जी,
1: माशाल्लाह। अच्छा चलो भाई, अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे लोग सब बेगमों पे डाल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि बेगम जो है वो गुस्सा करती है, वो डिवाइड कर रखा है। तो आपके घर में भी ऐसा डिविजन रहा है कि मतलब तुम ये कर लो मैं ये कर लूंगा, ऐसा कुछ है?
2: नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा नहीं मिला है और ना किया है।
1: अच्छा,
2: बस अगर मिला तो इंशाल्लाह वो कपड़े मैं चूज करूंगा, क्योंकि कपड़ों में ऐसा है कि मतलब बर्तन दिन में लाजम आपको दो तीन बार आपको धोना पड़ेगा।
1: बात तो सही यार, आपने मैथ्स लगा दी इसमें, दो तीन बार तो लाजम धोने पड़ेंगे, लेकिन कपड़ों का एक ही बार।
2: और आयरन आयरन जो है ना बस एक ही बार में तकरीबन करो एक दिन में, शायद आपको दूसरे दिन में थोड़ा रेस्ट मिलेगा।
1: चाल है चाल है चाल है भाई, बहुत बढ़िया। ये जो आपने रास्ता बताया ना, एक बार की मेहनत है और बहुत दिनों का आराम है, सिर्फ एक मरता मेहनत,
2: बहुत दिनों का आराम है, बहुत टाइम का आराम है जी।
1: ठीक है ठीक है भाई, आपने सोच बदली है, कम से कम मेरी तो थोड़ी बदली है। थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम तो बता दो मेरे भाई, अपना नाम बता के जाइए।
2: मेरा नाम शाकिरुल्लाह जी।
1: शाकिरुल्लाह भाई, बहुत प्यारी बात कही मेरे भाई, थैंक यू सो मच शाकिर भाई को, बहुत सारा प्यार।
2: ओके वेलकम, थैंक यू मेरा
1: भाई, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम। शाकिर भाई के बाद जो है एक जरा मैं कॉल और कर लूँ, क्योंकि भाई ने बोला कॉल करने का, तो कॉल करने का ये है तौकीर अहमद भट्ट साहब, इनको भी मैं कॉल लगाऊंगा। उठ जाए, अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम कबीर जानी,
1: मेरी जान कैसे हैं आप?
5: ठीक ठाक सर, आप कहते हैं ठीक ठाक?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बताइए क्या कहना चाहते हैं भाई?
5: अच्छा कबीर जानी, ये कहाँ से अतरंगी टॉपिक लेके आते हैं यार? कभी जो है वो मतलब ये बर्तन धोने वाला और कपड़े धोने वाला,
1: भाई मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा सीरियस बात करूं कोई फायदा है नहीं। देखो मेरे मेरे बोलने से मोहल्ला नहीं बदल रहा, दुनिया का कद्दू बदलेगी, तो मैंने कहा चलो एक ऐसा सवाल पूछ लेते हैं लोगों को मजा आ जाए, तो इसीलिए।
5: तो मेरे ख्याल में ये जो भाई ने बात किया ना कि कपड़े इस्त्री करना ज्यादा आसान है, कबीर भाई आप हफ्ते में एक बार कपड़े इस्त्री करने पड़ते हैं, ठीक है, और ज्यादातर लोग ट्रोजर शर्ट पहनते हैं, तो मतलब कपड़े वो ट्रोजर शर्ट इस्त्री करना आसान, लेकिन अगर कॉटन का सूट हो वो भी माया लगा हुआ फिर उसको तो आप जो है ना इस्त्री करना जान का अजाब बन जाता है।
1: तो आप किस तरफ है वैसे? तो आपको ड्यूटी वैसे अलॉटेड है घर पे? नहीं
5: सर, मैं जो है ना सारे काम कर लेता हूँ सर।
1: अरे माशाल्लाह माशाल्लाह
5: सर, वो अभी जो जब याद मुझे ऐसा ना कि अगर बच्चे संभालने हैं तो मैं बेगम या तो बच्चे को पकड़ लेगी तो मैं को काम कर लूंगा, या मैं बच्चों को पकड़ लूंगा और बेगम काम कर लेगी। तो मतलब बच्चे मेरे छोटे हैं ना, एक 3 साल का और एक जो है 2 साल का।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ
5: तो दूसरा जो बर्तन धोने वाला है, बर्तन धोना मुश्किल काम है सर यार, क्योंकि अगर बर्तन करो दो फैमिली के बंदे हैं ना, फिर तो आसान है, चलो एक एक दो प्लेटें हैं, दो ग्लास हैं, तो बंदा धो लेगा, लेकिन अगर घर के बर्तन हैं 6-7 और खाना पक भी ऐसे पतीले में रहा है जिसके अंदर बैठ कर उसको साफ करना पड़ता है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है।
1: स्पेशली जो बड़ी बड़ी देगे होते हैं भाई, इनमें लिटरली बैठ के साफ करना पड़ता है।
5: और जहाँ पे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है ना, वहाँ पे खाना भी ऐसा पकता है जैसे हमारे पठान भाई हैं, वो 12-14 लोग इकट्ठे रहते, 3-3 भाई उनके, 3-3 बच्चे आगे, जब 14-15 लोगों का खाना बनता है, एक देख जितने खाना बनता है, तो कभी जब वो पतीला तो ना, तो पतीले के अंदर बैठ के उसको मांजना, तो वो बहुत मुश्किल काम है।
1: तो बेसिकली अभी कहने जा रहे हैं बर्तन मांजने इसलिए मुश्किल है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, ज्यादा होंगे तो आपकी लग गए भाई साहब।
5: अगर आप और आपकी बेगम है सिर्फ दो बनने हैं, चलो फिर तो मतलब आसान है ना, दो कप चाय बनेगी, दो वो बर्तन धो लेने, चले ठीक है, जो खाना बनेगा दो प्लेटें होगी, दो गिलास होंगे, वो धो लेने बर्तन, लेकिन जहाँ पे 15-20 लोग होंगे फिर वहाँ पे तो मुश्किल है ना।
1: हाँ ये तो है, ये तो है। और बताइए तो भट्ट साहब, आपकी बिटिया जो है बहुत अभी कुछ रिसेंटली स्कूल जाना शुरू किया है, अभी कैसा चल रहा है स्कूल, सब बढ़िया?
5: जी जी माशाल्लाह, अभी स्कूल छोड़ के उसको ड्रॉप करके मैं काम पे जा रहा हूँ रस्ते में।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह।
5: तो आपका प्रोग्राम जब मैं डेली जाता हूँ सुबह, तो आपका प्रोग्राम जो है वो सुन रहा होता हूँ, फिर मैं 7 बजे ड्यूटी पे पहुंचना होता है, तो फिर मैसेज करता हूँ ताकि स्टोरी में मिल जाए। तो फिर
1: ऑफकोर्स जाकिर भाई, बहुत कोई मसला नहीं, पर प्यार दीजिएगा बहुत सारा, एंड बड़े अच्छा लगा कि स्कूल चलो बढ़िया से जा रहा है ना, अभी नखरे वखरे तो नहीं है? पहले दिन तो आई एम श्योर शी वाज वेरी एक्साइटेड, लेकिन उसके बाद सब
5: वो सर बड़ी एनर्जेटिक होती है सुबह स्कूल जाने के लिए।
1: चलो अल्हम्दुलिल्लाह,
5: तो सुबह उसको जब मैं उठाता हूँ रेडी करता हूँ, माशाल्लाह अभी अभी रेडी हो जाती है, फिर स्कूल छोड़ के मैं उसकी माँ उधर ही छोड़ दे, उसकी जो मदर है वो थोड़ी देर रुकती है उधर 15-20 मिनट, तो जब वो
1: हमारी बेगम तो जींस भी प्रेस करके देती है, भाई आयरन के कपड़े पहना करें, मैंने जिंदगी में कभी जींस आयरन नहीं की थी भाई। जींस को आयरन करके पहना जा रहा है मार्केट में, तला भाई फ्रॉम अलखुर, ये क्या हो रहा है? लड़कों कहाँ है हमारी कमिटी, ये जींस को कब से तुम लोग प्रेस करने लगे? ये क्या हो रहा है? ये और भाई ने बताया, वैसे मुझे शक है आप पे तला भाई फ्रॉम अलखुर, ये कह रहे हैं कि इन्होंने पहले जो है बेगम के जो है दो दुपट्टे जला दिए थे इन्होंने प्रेस करते हुए, तब से बेगम को इन पे भरोसा नहीं, तो भाभी इन पे यकीन ही नहीं करती, तो इन्हें प्रेस का काम देती ही नहीं है मुझे, लेकिन क्यों लग रहा है ये साजिश है आपकी? आगे लिखते हैं, नहीं भाई पहले हम शर्ट आयरन करते थे, वो सही हो गई, आयरन गर्म थी, दुपट्टा पतला था, वो आयरन से बिल्कुल ही चिपक गया, साजिश है, साजिश है क्लियरली। देखो मैं मिस्ट्री स्टोरी सुनाता हूँ तला भाई, आई कैन सी द सस्पेक्ट, समझ रहे हैं, सब बताया मुझे, मेरे से नहीं बच पाओगे, ये जो तुमने चाल चली है। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, डिश वॉशर लिया था और वो ख़राब हो गया और फिर चिरागों में रोशनी ना रही। रात के बर्तन धोने पड़ते हैं, आतिफ भाई कह रहे, आतिफ भाई पढ़ते हैं का मतलब आपको ज़्यादा आसान लग रहा है। एक मैसेज, ओ इट्स आयरन से मुझे एलर्जी है, और अगर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो तो क्लोथ्स आसानी से, और अगर डिश वॉशर है तो बर्तन, हम दोनों में एक्सपर्ट हैं, कोर्सेज अवेलेबल हैं मेरे साथ। ये कौन कोर्सेज? अब्दुल भाई कोर्स ऑफर कर रहे हैं, 15 रियाल पर घंटे के हिसाब से दोनों चीज़ें सिखा रहे हैं।

0: मैसेज और आया है कहाँ गए भाई एक सेकंड ये हमारे यहाँ भी जीन्स पे प्रेस करते हैं अरे लड़कों जीन्स पे प्रेस क्यों कर रहे हो मतलब मुझे लग रहा है कि हमारी कम्युनिटी ख़राब है क्या मेरी तरफ वाले तो नहीं कर रहे फराज भाई अस्सलाम वालेकुम भाई मैं भी जीन्स और टी शर्ट प्रेस करके पहनता हूँ हैं ये इतने सालों से मैं ही गलत कर रहा हूँ क्या कहाँ छुपूं मैं जाके एक मुझे सलाम दिस इज़ अब्बास खान से सलाम टू तौकीर अहमद भट्ट साहब तौकीर भाई आपको अब्बास भाई सलाम कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग अच्छे टॉपिक से कबीर भाई स्ट्रेस तो रहता है ऐसे फन टॉपिक्स फ्रेश कर देते हैं ग्रेट शो थैंक यू सो मच जज़ाकअल्लाह नाज़िश यही मेरा टारगेट है बहन मैं चाहता ही नहीं प्रेशर दूँ मैं बोलूँ आपसे ये क्या करो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी एक दिन आप मुझे सुना के जाएंगे और कान पे एक टैटू बना के लग जाएंगे फरद भाई ने मैसेज किया कबीर भाई मुझको आयरन प्रेस करना नहीं आता बर्तन ज़बरदस्त वॉश कर देता हूँ वगैरह चमकीले एकदम शक्ल देख लो अब न्यूज़ में जो ऐड आते सिल्वर की हो तो चमकाने का अलग ही मज़ा आता है अरे आप तो कता ही मतलब फैन फेवरेट निकले फरद भाई को तो मज़े आ रहे हैं बर्तन धोने में सिर्फ चूज नहीं कर रहे वो उनको अच्छा लग रहा है एक मैसेज है फौरन के फौरन धो दें कोई मसला नहीं है इस्त्री करना चाहिए बहुत अच्छी इस्त्री करनी चाहिए बहुत अच्छी ये जो मैसेज क्या है आपने अपने नाम मेंशन नहीं किया एक मैसेज और है एक मैसेज मुझसे मिस तो हुआ है कहीं ना कहीं आई डोंट नो हाँ अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत से हूँ मेरे को कुछ भी पसंद नहीं दो भी करना है भाई कुछ भी पसंद नहीं इतना आलस बेटे कहाँ तक ले जाओगे इब्राहिम अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम कमल भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ इसलिए मैं मैसेजेस को रीड कर लेता हूँ एक मैसेज है बर्तन धो लेने चाहिए हम दो लोग हैं घर में धो लेने चाहिए नहीं आली भाई ये बताइए धो कौन रहा है धो लेने चाहिए वो तो मतलब जाहिर है धो कौन रहा है ये है सवाल और इस मैंने मैसेज किया है सलाम क्या मैं हरियाणवी में बोल रहा हूँ वापस इवनिंग में आ जाओ मैनेज नहीं हो रहा है हो रहा है पर ये इब्बे हरियाणवी में बोल रहा हूँ बहुत बढ़िया वैसे भाई सही हरियाणवी पकड़ रहे हो धीरे धीरे पुलकर ट्रेन हो जाओगे एक आपको बढ़िया गाड़ी दिला देंगे ऊपर लिखवा देंगे जाट बॉयज खालिद भाई लिखते हैं मेरी 8 साल की बेटी को बर्तन वॉश करना सिखा दिया है अभी आई एम फ्री खालिद भाई वाह जी वाह वाह जी वाह तला भाई ने मैसेज किया इन सबको क्या बिरादरी से निकालो फौरन है ना मैं तला भाई कंफ्यूज इसी बात से हूँ जीन्स पे प्रेस हो रहा है यार ये अलखोर से मैसेज आया है तला भाई का ये कह रहे हैं अरे नहीं भाई कोई चाल नहीं है हमेशा अपने कपड़े आयरन किए थे हमें क्या पता लड़कियों का दुपट्टा पहले ऐसे तो पतला होता है बेचारे अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम और कबीर भाई क्या हाल
0: है मैं बढ़िया भाई एकदम शानदार आप सुनाए मेरे भाई
1: भाई आपको किसमें आसानी हो रही है ये बताइए
0: मैं बर्तन धोने की तरफ हूँ थोड़ा सा
1: हाँ क्योंकि आपको सुबह सुबह जो है वो चीज मिला है बोले मैं राय ले लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ
0: जी नहीं मैंने तो ये रात में सर्वे पढ़ा फिर मैंने अपने गिरेबान में झाका मैंने कहा देखो औकात अनुसार तो बर्तन ही धो सकता हूँ मैं तो मैंने कहा यही ठीक है तो कपड़े के धोने के भाई वो प्रेस करने की क्वालिटी नहीं है मुझ में मैंने बहुत कोशिश करी है पहले और बहुत सारे फेलियर्स भी देखे हैं इसलिए मैं पैंट को प्रेस ही नहीं करता हूँ ऐसे ही सही है आप बताइए आप किस तरफ हैं
1: मैं तो भाई खाना पकाना बर्तन धुलना सब सब कपड़ा प्रेस करना
0: पर आसान काम क्या है आसान काम क्योंकि दोनों आप कर लेते हैं काम तो आपको क्या काम आसान
1: काम तो आसान काम ये है कि भाई अगर आप कपड़े धुल रहे हैं तो जल्दी हो जाते हैं अपना बस क्या बोलते हैं बर्तन धुल रहे हैं तो फटक से धो के खत्म हो जाता है
0: हाँ कपड़े प्रेस करने में टाइम लगता है थोड़ा खास क्या
1: कपड़े प्रेस करने में टाइम लगता है लेकिन मुझे जो है अपने हाथ से कपड़े प्रेस करके पहनने की आदत है
0: ये भी है आप शौक भी तो है हाँ। शौक भी तो बड़ी चीज है
1: अच्छा अगर घर वालों को बोल देता हूँ अगर कभी जाता हूँ छुट्टी पे घर वालों को बोलता हूँ तो वो ऐसा आड़ा टेढ़ा मार देते हैं
0: हाँ।
1: पहने दिल नहीं करता इसलिए फिर अपने हाथ से करता हूँ इसे अपने हाथ से ही कर लो हाँ भाई
0: अरे मतलब आप तो बहुत क्रिटिसाइज करते होंगे प्रेस करने में मेरा भाई ये क्या किया है वाह वाह वाह
1: इसीलिए तो घर पे जाता हूँ तो कभी कहीं जाना होना होता है तो सारा कपड़े लाके बच्चे लोग अपने हमारी भाभी सब दे देती है हमारे भी करके दो
0: आपको पकड़ा दिए जाते दोनों को इसलिए तो ट्रेनिंग इतनी सॉलिड है आपकी इसलिए तो इतनी ट्रेनिंग सॉलिड हो चुकी है भाई की

0: था, फिर ठीक है, फिर तो मैं समझ सकता हूँ। तो आप बेसिकली देखो, अभी जो सर्वे चल रहा है उस हिसाब से अभी तक बर्तन धोने का हिसाब किताब थोड़ा ज्यादा है, लोग कह रहे हैं बर्तन धोना काफी आसान है। लेकिन एक भाई ने एक बात बोली, शाकिर भाई आए, शाकिरुल्ला भाई कह के गए कि यार कपड़े प्रेस करना ज्यादा आसान है, आप एक दिन में कर लीजिए, दो तीन दिन की छुट्टी, ऐसा उनका कहना। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: नहीं, एक दो दिन करके अभी कबाड़ में रखने के बाद फिर वो मजा नहीं रहता,
0: मजा नहीं रहता, अब मजा भी तो चाहिए। क्या हो रहा है? हाँ। अच्छा ठीक है कमाल भाई, फिर तो मैं आपका समझ चुका हूँ, आप एकदम डटे हुए हैं बर्तन धोने की तरफ। ठीक है, और आज की कहानी जरूर सुनिएगा भाई, छोटी है लेकिन बढ़िया कहानी, मजा आएगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है,
1: कल भी छोटी थी, आज भी छोटी,
0: आज भी छोटी कहानी है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, देखिए ड्यूरेशन बढ़ती चली जाएगी। 40 मिनट की भी आने वाली
1: बात है, उसके बाद मालूम पड़ा कबीर भाई गायब।
0: नहीं नहीं नहीं, अभी अभी 40 मिनट की आएगी इस बार कहानी, फिक्र ना करें आप, देखिए देखते रहिए। ठीक है, ओके मेरा भाई, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मतलब वही सुनते रहिए, समझ गए ना आप। एक मैसेज तौफीक साहब, तौफीक लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई तौफीक। और फिर मैसेज आया, भाई आयरन करना बहुत पसंद है। पसंद है, और जीन्स कभी भी विदाउट आयरन नहीं पहनी। मैं भाई, मैं समझ गया, पूरे जीवन में ही गलत हूँ शायद। आज आप लोगों ने ना मुझे ये एहसास करा दिया है। सादिक मलिक भाई, मुझे कभी लगता नहीं था कि जीन्स को प्रेस करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन जिस सीरियसनेस से आपने मुझे बताया है, आज मुझे लग रहा है, बहुत गलत तो नहीं हूँ मैं कि मिसिंग यू यार, टाइमिंग सूट नहीं कर रही। अवेश भाई इंशाल्लाह। एक मैसेज आया है, नादिश क्या लिखती हैं, नहीं आप मॉर्निंग में ही रहें जुलाई तक, फिर वेकेशन होगी तो इवनिंग वाला शो भी ज्वाइन करूँगी। देखिए बहन, थैंक यू सो मच फॉर दिस अप्रिसिएशन। फरहत भाई ने मैसेज किया है, घर में जो वॉल्केनो होता है उसको शांत रखने की जिम्मेदारी हमारी होती है, हर डिश वॉश कर दो फिर देखो। हाँ, डिश वॉश कर दो फिर देखो, ये कह रहे हैं ये वो ना, मैं इस इलाके का जयकांत चिकरे। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, सारे काम लेता हूँ, कुकिंग वॉशिंग प्रेसिंग सब काम, बट अभी तक शादी नहीं हुई। अरे वाह वाह वाह वाह वाह, ये तो मेहर भाई आप सही टाइम पे हैं। कह रहे हैं, और जो काम आप करना चाहो, जो कर हैं, एक सेकेंड, और जो काम आप करना चाहो, जो काम करने का इरादा रखते हो वो आसान ही लगता है। देखो मोटिवेशन तो मुझको देना नहीं, ठीक है, मोटिवेशन रखो अपने पास। ये मोटिवेशन नहीं चाहिए मुझे, कह रहे जो काम का आसान लगता हो कर सकते हो करो, नहीं चाहिए मोटिवेशन। ठीक है, बर्तन धो रहा हूँ ऑलरेडी, नहीं तो जबरदस्ती। पर भाई एक बहुत ही गुणी लड़का हमें मिल गया है, भाई ने अपना बायोडाटा भेजा है, मेहर अजीज नाम है, कह रहे हैं कि मैं सब कर लेता हूँ, कुकिंग वॉशिंग प्रेसिंग, पर शादी नहीं हुई है। मोटिवेशन मत दो, ठीक है, मोटिवेशन दे रहे हैं, बताओ। सोच लो तो ये हो जाएगा, नहीं वो हो जाएगा, कराऊं टेड टॉक अभी। तला भाई कह रहे हैं, भाई जो आपकी बाजी दे दें वो आसान है बस। देखिए ये देखे मेहर भाई, देख रहे हो, तला भाई सीखे हुए हैं, तला भाई देखो कितने मासूम हैं, एक एक चीज़ को बहुत ही ट्रेजिक्ट्री के साथ फॉलो कर रहे हैं। एक मैसेज, हाय कबीर भाई, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास एक बेगम है, इसलिए मुझे कोई काम करना नहीं पड़ता। अल्लाह का शुक्र तो है, लेकिन उसमें शुक्र में इजाफा तब होगा जब साथ देंगे ना पठान भाई। ये भी तो करना पड़ेगा ना, ऐसे तो बहुतों के पास है। एक मैसेज और है तो सर का, लिखते हैं, कबीर भाई कैसे हो, होप ऑल इज गुड, गुड मॉर्निंग। एक दोस्त भी था, डिनर के बाद बीवी बर्तन धोई तो घर में वेल्थ नहीं बढ़ती, आप समझ लो है। एक दोस्त भी कहा करता था डिनर के बाद बीवी बर्तन धोए तो घर में वेल्थ नहीं बढ़ती। ये रेखाएं मिटाने के बाद सुदीप तो सर बता रहे हैं, हाथ की रेखाएं बची नहीं, साबुन ले गया। एक मैसेज है, भाई कपड़े धोना पसंद है वॉशिंग मशीन में, शादी हो गई तुम्हारी लल्ला? ये मैसेज क्या है नोमी भाई ने, नोमी भाई क्या सीन है? एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, ईजी से ईजी काम है, मैं कपड़े प्रेस कर देता हूँ, वो पास खड़े होकर बर्तन धुलवा लेती हैं, धुलवा लेती हैं। 50-50 जोक सपाट, प्रेस करना इज बेटर बिकॉज मेस विच इज क्रिएटेड आफ्टर वॉशिंग यूटेंसिल इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय अदर पार्टी। कह रहे बर्तन धोने के बाद जो मेस क्रिएट होता है वो दूसरी पार्टी को समझ में नहीं आता है। इमरान भाई कह रहे कपड़े प्रेस करना आसान है, उसमें ज्यादा मेस नहीं होता, आदमी निकल लेता है। एक मैसेज है आसिफ भाई का उनका पर्दा डिलीट कर दिया। समीरा बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, मैंने आज तक कभी कपड़े आयरन नहीं किए हैं, ना शादी से पहले ना शादी के बाद, पहले मेरा भाई बहन क्या करते थे, अब मेरे हस्बैंड करते हैं, एंड ही डज दैट रियली गुड। एक बार बैठे बैठे बैठे और फिर 15 दिन

फुर्सत, जो लोग जीन्स आयरन करते हैं आई थिंक उनकी फुर्सत बहुत है। ये जीन्स आयरन करने वाले लोग, पहले तो मुझे अपने अपने सोशल मीडिया से ब्लॉक करो, ठीक है? हैं, जीन्स क्यों प्रेस कर रहे हो भाई? पूरा जीवन मेरा एकदम शक में चला गया है कि ऐसा भी होता है। मिलते हैं।

0: 107 टाइम चेक।
1: साथ दो और साथ आप भी देते रहो, घड़ी भी कह रही है और मैं भी कह रहा हूँ, प्लीज हमारा साथ दीजिए। सुबह से आप साथ दे रहे हैं, एक घंटा हो चुका है, तो साथ दो। एंड द मेजर थिंग इज, हम सुबह नहीं चाहते कि आपको इतना भर भर के मोटिवेशन दो, जो आप बोले वो मेरा सब कुछ भरा जाएगा। तो इसलिए जो है सुबह सुबह ज्ञान देने के बजाय मैं सोच रहा हूँ कि आज आपको जो है उन बातों की तरफ ले जाएं जो खामा खाएं, लेकिन अपने आप ही मजा है। तो इसलिए मैंने आज खामा खाएं एक सवाल सोचा, और खामा खाएं सवाल जो है अभी तक तो अच्छा जा रहा है। तो मैं ये पूछ रहा था कि क्या काम ज़्यादा आसान है अगर घरेलू काम में दो काम को डिवाइड किया जाए, एक है जी बर्तन धोना और दूसरा है कपड़े प्रेस करना, विच इज़ मोर ईजियर। तो ये एक भाई ने मैसेज किया है, ये अभी मुझसे टेड टॉक कर रहे हैं, इनका कुछ करना पड़ेगा। ये नोमी भाई ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी में प्रेस करने से बेहतर है कोई बड़ा काम कर लें, कामयाब हो जाएंगे। एक बात बताऊं, शादी हो गई, सिंगल हो, फिर आगे की बात करेंगे। हिशाम साहब वालेकुम अस्सलाम, मैसेज कुकिंग क्लीन क्या, अस्सलाम वालेकुम भाई, बेगम का इंतज़ार है, बस फिर उसका पूरा साथ देंगे हर काम में, कुकिंग क्लीनिंग। देखो कितने कितने नेक लोग हैं ये, ये खाली क्यों, ये अभी तक सिंगल क्यों है मुर्शिद आलम साहब? मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, कभी कपड़े प्रेस कर लेता हूँ, कभी प्रेस करना आसान है, कपड़े प्रेस करना आसान है। ओके, कपड़े प्रेस करना आसान है, ये भाई ने मैसेज किया है वसीम खान साहब ने, और कह रहे हैं मैरिड भाई, मैरिड पता नहीं, मुझे आप पे भरोसा नहीं हो रहा है नोमी भाई, आई हैव ट्रस्ट इशूज़। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, मेरे मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन वाइफ को मेरे हाथ का खाना समझ में नहीं आता। ओह बाकी सब आराम से कर लेता हूँ। हकीम भाई खाने की तस्वीर भेजिएगा मुझे, लेट मी जज। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू, कैसे हैं कबीर भाई?
1: मैं बढ़िया मेरे भाई, आप सुनाएं क्या हाल है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। कपड़े प्रेस करना और बर्तन धोना, यही है ना आज का टॉपिक?
1: हाँ यही है, क्या आप चूज करेंगे आप?
2: मैं तो ना बर्तन पे जाऊंगा, क्योंकि बर्तन फटाफट मांजो और एक दो बाल्टी में पानी रखो, एक में डालो, दूसरे में फाइनल कर लो, बाद में तीसरे में शिफ्टिंग करते चले जाओ। लेकिन वो जो प्रेस करने वाला मामला है, वो तो कभी क्रीज बैठी नहीं, कभी अस्तीन कहाँ जाती है, कभी कॉलर कहाँ जाता है, कभी चला जाता है, बिल्कुल नहीं। और जितने इस्त्री करने वाले को मैं अप्रिशिएट करूंगा, वो इतनी लंबी लंबी साड़ियां कैसे इस्त्री करते हो
1: भाई? उनको तो मैं सलाम मेरा सलाम, लोग पर्दे वर्दे प्रेस कर ले रहे हैं भाई, उनको मेरा सलाम है, सलूट। ये
2: बिल्कुल,
1: हाँ ये लोग जो हैं अलग अलग धरती के हैं। और एक एक और मैसेज आया है आपके लिए, आया है कि क्या ये शहजादा सलीम बात कर रहे हैं?
2: जी, मैं शहजादा सलीम ही हूँ 107 पे
1: क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बोला नहीं ना आज इसीलिए लोग पहचान नहीं पा रहे।
2: हाँ मेरी हेडिंग मैंने एंट्री नहीं किया ना, तो इसके लिए हम हैं आपके साथ
1: वेरी सिंपल तो भाई ने एंट्री नहीं करी है। अच्छा ठीक है, तो

0: वेरी गुड वेरी गुड. तो अभी आपका घर पे काम डिवाइडेड है या आपने अभी कुछ मतलब ट्राई किया है कुछ और करने का?
1: मैं तो काफी टाइम से असल में गल्फ में रहा ना, तो जब मुझे खाना नहीं बनाने आता था तो मैं मैथ पार्टनर में था ना मैथ, तो मैं

0: खाने बनाने सीखे।
1: क्या बात
0: है, बहुत अच्छे अच्छे बासी खाने को मोटिवेशन करना, कैसे उसको रीडेवलप करना, फिर दोबारा खा लेना, वेस्ट नहीं करना, काफी कुछ सीखा। तो ये गल्फ में ना ये सारा कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहा मैंने। और मैंने अपना कंपनियों में जो स्टार पार्टी होता है ना, तो उस पे मैंने खाने का ये लिया था कि ठीक है भले खाने का मैं बना दूंगा। तुम हमारे पूरे स्टार पर मिला के ना 100 लोग थे, 100 बंदे थे, पूरे 100 टोटल थे। तो मैंने ना बिरयानी बनाया था, यकीन करो मेरा जो सेल सुपरवाइजर वगैरह सब थे ना, तो वो बोलते हैं ना रेस्टोरेंट खोल लो। मैं बोला क्यों? अरे बोले यार ये तो रेस्टोरेंट का सेम टेस्ट है। मैं बोला इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
1: यार अब तो मतलब पहले आपने बोला खाना बनाता नहीं था, अब 100 लोगों की बिरयानी बना डाली, भाई क्या हो, कोई मतलब कोई सुपर ऊपर हीरो हो क्या, ये चक्कर है। अच्छा बहुत बढ़िया यार, वेरी इंप्रेसिव।
0: जो बंदे बनाते थे ना उनके साथ किचन में खड़ा रहता था ना साथ में, मीटिंग करके, तो वो लोग करते रहते, तो फिर मैं अपना उसमें एक नई नई चीजें ना एक्सपेरिमेंट करते गया, ये चीज के बदले वो चीज डालना, उसको बाद में डालना, उसको पहले बघार,
1: ठीक है ठीक है,
0: टाइट कर लेना, फिर उसको मोटिवेशन करना, तो कई कई ऐसी है ना डिशे ना सक्सेसफुल हुए।
1: चलो मुबारक मुबारक हो, ठीक है ना। बाबा इतना काफी इन्फॉर्मेशन के, हमारे टाइम थोड़ा सा कम है, पर शहजाद सलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल करी, अच्छा लगा मेरे भाई। कीप इट अप, कीप इट अप, बहुत बढ़िया।
0: ओके
1: मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। शहजाद सलीम के बाद एक और मेरे पास मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, व्हेन एवर आई ट्राई टू हेल्प माई वाइफ इन हर हाउस होल्ड वर्क, प्लीज डोंट हेल्प, यू विल इंक्रीज माई वर्क और डबल इट। वेरी नाइस, तनवीर अहमद साहब कामयाबी की शिखर पर हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे साथ साथ साथ रहे। अरे
1: यो बड़ा साथ रेखा जी को बुलाइए बाप।
2: बात तो बनेगी।
1: अरे फवाद कैसे हो मेरे भाई, आए क्या धो लेते हो, बर्तन धो लेते हो या फिर कपड़े प्रेस कर लेते हो, क्या काम अच्छा करते हो? आए
2: बर्तन धो के बेगम की पूजा कर लेते हैं।
1: बर्तन धो के बर्तन धो के बेगम कहते हैं, ये क्या किया है तुमने फवाद?
2: तुम किचन से चले क्यों नहीं जाते?
1: अरे बाप रे, तो क्या का, किस काम में?
2: देखिए हमारे आपकी तरह के ख्याल आते हैं, प्लेस्टेशन हो, सोफा हो, रिक्लाइनर में बैठे हो और बोल रहे हो
1: मुझे मत लपेटो, मुझे मत लपेटो, बहुत तेज हो रही है तुम बवाद।
2: बेचारा वो लोगों का ताल्लुक आपकी तरफ बढ़े। गलत सीमत पे लेके जा रहे हैं हमको।
1: हाँ वो ये सही है क्या, मैं अगर पिस रहा हूँ तो क्यों ना तुम्हें भी ले चलूँ, चलो मेरे साथ।
2: तो सबको पिटवाने के चक्कर में है, चलो शादीशुदा वाले तो बच जाएंगे, जो शादीशुदा वाले हैं वो पिट जाएंगे।
1: पर आप देख रहे हैं कितने कितने काबिल लोग हैं मार्केट में, और आप जो है सोफे की सोच लेके बैठे हुए, देख रहे हैं आप क्या क्या हो रहा है।
2: काबिल लोग जो है ये हम लोग खुद काबिल है सारे,
1: हाँ
2: लेकिन उनकी नजर से हम बेकार हैं।
1: मुझे लगा आप बोलेंगे एक बार शादी कर लो सब धरा का धरा रह जाएगा सारी कामयाबी।
2: ये जिन्होंने पहले पहले बहुत सारे काम किए ना, ये शादी के बाद जीरो काम करेंगे।
1: यार थोड़ा मोटिवेशन देने चाहिए फवाद भाई, यार मॉर्निंग शो है भाई, थोड़ा मोटिवेशन दो यार, ये कोई बात होती
2: है? ये पहले शादी दिखाने के लिए
1: है। अच्छा ऐसा।
2: उसके बाद हम हर तरीके से खुश रखेंगे, बेगम को फूल ला के देंगे, बहुत अच्छी है आप बेगम, बहुत अच्छी है, मोटिवेशन देना चाहिए बेगम को बस।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा इंप्रेस्ड हूँ मैं आपसे, जिस हिसाब से आपने मार्केट में नाम फैलाया है। आप और
2: क्या करें?
1: तो आप एक चूज कर लीजिए फिर, बर्तन धोना या कपड़े प्रेस करना, क्या आसान लगता है आपको?
2: सर वैसे इन दोनों में से अगर चूज करना पड़े इस तरह, बर्तन धोना,
1: बर्तन धोना ज्यादा आसान लगता है।
2: कपड़े इस्त्री करना तो बहुत मुश्किल काम है।
1: हाँ
2: क्योंकि अब तो 1-2-3 मशीनें भी आ गई है, लेकिन कपड़े फिर भी मुश्किल है।
1: फिर भी मुश्किल है, तो आपने ट्राई कर लिया है बेसिकली, मैं समझ रहा हूँ।
2: मैंने सब ट्राई किया है सर, खाना बनाना, बर्तन धोना, किचन धोना, बाथरूम धोना, कहते हैं, और तो सर बस बस इतना ही काफी है।
1: तो आप जो बोल रहे थे कि स्पोर्ट्स करने की वजह से घुटने में सर्जरी हुई, वो झूठ तो नहीं था?
2: नहीं सर, सर्जरी अभी तो आप मिले नहीं, देखेंगे आप सर्जरी के बाद कितनी इम्प्रूवमेंट आ गई है।
1: अच्छा अब काम अच्छे से करने लगे हैं आप, अब तो कूद कूद के बर्तन धोते हो। क्या बात है, मुझे लगा ये सब काम करने के बाद घुटनों में दर्द हो गया था, इतने सारे काम गिना दिए आपने। वेरी गुड,
2: घुटनों में दर्द तो काम ना करने की वजह से हुआ था, सोफे बैठ बैठ के तोड़ते थे।
1: ये आप जो बोल रहे हैं खुद ही बोल रहे हैं, देखिए मैंने नहीं बुलवाया, ये कभी कोई सोचे, ये आदमी ने खुद बोला है। ठीक है।

0: वेरी गुड
1: सर, आप ये जो बातें कर रहे हैं ना ये बात सही नहीं है।
0: क्यों?
1: मैं वीकेंड को चेक करूंगा आपको क्या कर रहे हैं
0: आप। मुझे कॉल कीजिए या मेरे घर के नीचे आ जाइए, लेकिन बर्तन तो मैं कहूंगा भाई। ठीक है मोहम्मद भाई, बहुत सारा
1: आप
0: भी ख्याल रखिए। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। तो फवाद भाई ने बोला है कि बर्तन धोने चाहिए, बर्तन धोने वाले कई सारे लोग हैं भाई आए। एक कह रहे हैं कि व्हाट इज द क्वेश्चन फॉर द डे। अमन भाई क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, हम ये कह रहे हैं कि बर्तन धोना आसान है, कपड़े प्रेस करना आसान है। नदीमा कह रहे हैं शादी से पहले तो कहते थे चांद तारे लाऊंगा और शादी के बाद बर्तन नहीं धो सकते यार, ये डायलॉग सुनने को मिलेगा। ये तो है, चांद तारे बाद में लाना बर्तन धो पहले। एक मिनट से भाई, बर्तन धोना आसान है और वो भी मेटल की, कांच के बर्तन धोने का दर्द प्रेस करने जितना ही है। सादिक भाई ये जो आपने टेक्निकलिटी बताई है मैं आपके साथ हूँ, आई अग्री, इसमें किसी को गवाही देने की ज़रूरत नहीं। नसीम साहब का कहना है भाई शादी से आप लोगों को क्यों डरा रहे हो, कौन डरा रहा है, हम तो कह रहे हैं काम बांटो, ब्याह करने के बाद हम ये कह रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं। आदिल साहब वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। एक मैसेज है हमारी बहन नाजिया का, लिखते हैं क्या स्टोरी थी बेचारा सैम पर, लाजवाब हमेशा की तरह नरेशन। थैंक यू सो मच बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। एक कॉल और आ रही है, उठा ही लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत भाई? अल्हम्दुलिल्लाह एकदम शानदार, आप सुनाए। जी भाई जी बताइए बताइए क्या कहने वाले हैं।
1: कहने वाले ये बस अभी अभी तो एफएम खोला है रेडियो।
0: क्यों अभी अभी क्यों खोला, सुबह से कहाँ थे, हम इतनी बातें कर चुके आप बीच में छलांग लगा रहे हैं। तो भाई हम आप जब आ ही गए हो तो ये बता दो कि क्या काम ज्यादा आसान है, बर्तन धोना आसान है कि कपड़े प्रेस करना आसान है।
1: सब डिपेंड होता है बर्तन किस चीज का है, प्लास्टिक का है, स्टील का है, मिट्टी का है।
0: नखरे बहुत हैं, प्लास्टिक का है कि कांच का। अब घर में तो तीनों टाइप के होंगे ना बर्तन, अब ड्यूटी मिली है तो पूरा ही करना पड़ेगा, आदत तो छोड़ोगे नहीं, तो क्या काम आसान है?
1: आसान तो बस बर्तन धोना आसान है, कपड़े सब अच्छी बात करिए इस्त्री करना, किधर क्रीस डबल टूट जाता है, कभी क्रीस नहीं टूटता है, किसी को क्रीस पीछे पसंद पड़ता है, शर्ट पे किसी को नहीं पड़ता है, तो बर्तन तो बस आसान है धोना।
0: हाँ तो ये
1: बहुत,
0: हाँ तभी तो मैं ये सवाल पूछ रहा था। वेरी गुड, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और सुबह भी आया करें, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह, ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़। इनके बाद जो है और मैसेज ज़रा पढ़ देता हूँ मैं, क्या है आसान है लेकिन बर्तन धोना ज़्यादा आसान है, ये मैसेज किया है अमन भाई ने मैसेज किया। इरफान भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल इज़ गुड, शादी से पहले कपड़े प्रेस करते थे, अब अल्लाह का शुक्र है प्रेस करने प्रेस क्या शुक्र है प्रेस मिल जाती है, खाना खाकर बर्तन किचन ले जाते हैं और वंस इन थ्री मंथ्स बर्तन वॉश ओनली प्लेट्स एंड कप्स, देखची आई हेट भाई, हमसे ना हो पाएगा। इरफान भाई ने हाथ खड़े कर दिए, कह रहे हमसे तो नहीं हो रहा भाई। एक और मैसेज है अस्सलाम वालेकुम, ये क्या भेजा है आपने, एक सेकंड भाई, भाई माशाल्लाह ये बन क्या रहा है मार्केट में, काफ़ी टेस्टी सा खाना लग रहा है और ये भेजा कि इन्होंने, मैं इधर ये बढ़ो हकीम भाई ने, हकीम भाई खाने की शक्ल तो अच्छी है, फिर भाभी को क्यों नहीं पसंद आ रहा। याया भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या बर्तन कहाँ तक सुनाऊँ, बस पीरियोडिक लॉन्ड्री करवा लेता हूँ, ये काम अब नहीं होता, टाइम की बचत करो, बाकी काम भी तो करना है, साथ जो देना है। अरे मेरा भाई पैसा हो तो आदमी क्या नहीं बोल सकता। याया भाई एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी मेरा भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन बात कर रहे हैं?
2: नजर मोहम्मद।
0: नजर मोहम्मद साहब बताइए, नजर साहब क्या कहना चाहते हैं आप?
2: जी काम तो दोनों ही आसान है अगर दिल से किया जाए।
0: अरे मोटिवेशन मत दो, दिल से किया जाए, कोई नहीं कर रहा दिल से प्रेस। पहले ये बताओ दोनों में से आसान क्या, ये तो हमें पता, हमें मैं आपको सच्ची बताऊं, जितने भी देसी भी सुन रहे हैं, हमें ना बड़ा मजा आता है ऐसी भारी भारी बात करने में, दिल से किया जाए तो हो जाता है, प्रेस कौन कर रहा है दिल से ये बताओ। कोई नहीं कर रहा है, अब बताइए क्या आसान है।
2: बस मेरे लिए अपना बर्तन धोना।
0: हाँ तो ये बोलो सीधा, बर्तन धोना सा क्यों, प्रेस करने में क्यों, मतलब आप शुरुआत से अच्छे नहीं है या फिर हमारी तरह अभी रिसेंटली खराब हुए, क्या सीन क्या है?
2: प्रेस का ये है तो कभी कट सही नहीं हो जाता, कभी तो कमी से बर्तन तो सीधे सीधे साबुन मारो।
0: वेरी गुड वेरी गुड,
2: अपनी जान छोड़ा।
0: वेरी गुड मेरे भाई, बहुत शानदार। और आप कहाँ से मेरे भाई वैसे?
2: मैं पाकिस्तान कराची से।
0: पाकिस्तान कराची से, थैंक यू सो मच मेरे भाई कॉल कर।

करने के लिए, बहुत सारा प्यार मेरे भाई को, थैंक यू सो मच भाई। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और भाई के बाद जो है एक और दो मैसेजेस हैं, लेकिन मैं वो सारे मैसेजेस एक गाने के बाद लूँगा। कहाँ गया ये जो नया गाना आया है, ये सुना आपने बादशाह का भी? इसमें एक रैप है, पता नहीं वी हैव कैप्ट द रैप और नॉट, बट इट इज स्टिल देयर। 7:16 बाय द क्लॉक। मैं दोहा वाला कभी रेफ 107 मिलता हूँ उस गाने के बाद। बर्तन धो के आया

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: कोई ऐसी किताब है जो किताबों को समझने में मदद करे, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो मस्ती मजाक में ही सही लेकिन लाइफ के लेसन्स भी दे पाए।
2: कस के जूता, कस के बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी।
1: वेल, ये कोई सुपरफिशियल एड नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि FM 107 लेकर आया है एक खास शो फॉर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स गाइड, द स्टूडेंट्स गाइड। तो सुनिए हर मंडे दोहा वाले कबीर के साथ, कबीर के साथ, द स्टूडेंट्स गाइड, एंड बी द गाइडिंग लाइट फॉर स्टूडेंट्स, हमारे साथ दोपहर 3:30 बजे से, सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं वेक अप विद दोहा वाला कबीर, सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।

भाई पंच ऑफ द डे सुनो, बहुत बढ़िया पंच मारा, बहुत बढ़िया भाई ने पंच. ये तला भाई ने, नहीं तला भाई ने वैसे कह रहा है, बैक टू बैक गाने, वाकई बर्तन धोने चले गए क्या? भाई अमेजिंग, ये आपने जो पंच मारा ये है बढ़िया, ये पूरे दिन में बेस्ट है. मुझे नहीं लगता कोई और इसको टॉप कर पाएगा. मैं आई वुड लिटरली लाइक टू क्लैप, मतलब ये सरकैज़म नहीं है, आई मीन इट. और एक मैसेज आया है, इन्हें कहना है कि बाय द वे आप स्टोरी इतना लेट क्यों शुरू करते हैं, थोड़ा सा अर्ली टाइम कर लें. कितने मुझे बताइए, यू सजेस्ट बताएं एक बारी कितने टाइम पे होनी चाहिए स्टोरी. वी कैन ऑल्सो मतलब डू अ लिटिल बिट ऑफ चेंज. फवाद भाई डॉट लगा के भेज रहे हैं. फरद भाई ने मैसेज किया है, अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से है भाई? भाई टुडे आई एम फीलिंग वेरी सैड क्योंकि 500 ओवर स्पीडिंग फाइन आया एक सॉन्ग के चक्कर में. वैसे भाई मैं बर्तन धो लेता हूँ और रोज 6 लोगों का खाना बनाता हूँ. हैं, रोज 6 लोगों का खाना बना फैसल भाई? भाई भाई सब ठीक, और ये 500 का सीरियल का ओवर स्पीडिंग सॉन्ग के चक्कर में क्या चक्कर है ये, थोड़ा एक्सप्लेन करो. नाजिम लिखती हैं, बर्तन धोना और खाना बनाना काम वाली का काम है. देखिए बड़े लोग बड़ी बात है, हम क्या कर सकते हैं, हम मासूम आदमी हैं. खादर भाई कह रहे हैं कि लॉन्ड्री इज़ प्रिफर्ड बिकॉज यूटेंसिल्स आर मोर, वेयर एज द लॉन्ड्री हैव लिमिटेड क्लोथ्स, आई विल गो फॉर द लॉन्ड्री. ये अचानक सी अमीर जनता कहाँ से आ गई है भाई? वैसे मेरी वाइफ के साथ सिर्फ और सिर्फ प्रेस करने पे ही झगड़ा होता है, बाकी तुम्हारा भाई बहुत खूंखार है, बर्तन खुद ही धोता है. कामरान भाई कह रहे वैसे तो आपका भाई जो है मतलब एकदम खूंखार है, बर्तन बस प्रेस करने में थोड़ा सा आलस आता है. एक मैसेज है, कबीर भाई अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर काम आता है, मैं हर काम कर लेता हूँ. मुझे घर पर हरफन मौला बोलते हैं, चूल्हे पर पकाना है, बर्तन धोना है, झाड़ू मारनी है, कपड़े प्रेस करना है, फंक्शन में पकाना है या मैयत में पकाना है या नमाज पढ़ानी, अल्हम्दुलिल्लाह हर काम सीख के बैठ गया. कहाँ बैठ गए इतना काम सीख के, बैठे मत रहो मंजूर भाई, काम करो यार, बैठिए, सीख के बैठना नहीं है, उठो. अब्दुल भाई मैसेज करे, अस्सलाम वालेकुम, बर्तन धोना आसान है. देख रहे हो मंसूर भाई कितने गिना चुके हैं और आप कह रहे हो बर्तन धोना, कुछ और करो. अस्सलाम वालेकुम, दो भी काम आसान नहीं है नावेद भाई, इसलिए आपकी मेरी दोस्ती है. अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं? पूछ लो बर्तन वॉश करते हो, एक गिलास तोड़ा है आगे, आपको पता है. ये जो मोहम्मद साहब आपकी चीज़ें हैं, ये जो आप बर्तन धोने के नाम पे गिलास को शहीद कर रहे हैं, इसका हिसाब किताब तो होगा. एक मैसेज है हुस्ना फातिमा जी का, उनका कहना है, अस्सलाम वालेकुम माय डैड सरवाइव, जिस चीज़ से भाग नहीं सकते उससे दोस्ती करने में भलाई है, टाइम लिमिट रखने पर दोनों ही और आसान है. जस्ट लाइक मैन लव बर्तन धोना, वुमेन लव प्रेसिंग क्लोथ्स, लॉन्ड्री इज थ्योरेपेटिक. वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या ये ऊँची लोग ऊँची पसंद वाली बात है. मैं भाई निःशब्द हो गया हूँ अभी. मेरे क्या है, अस्सलाम वालेकुम, अपन तो अपना काम खुद कर लेते हैं, मेरे हिस्से में तो हमेशा बर्तन धोने ही आता है. ये क्या मैसेज है भाई, किन्होंने किया है? नाम मेंशन नहीं किया इनके बाद. नहीं भाई अपना ठीक से नहीं पढ़ा. अच्छा एक सेकंड दोबारा पढ़ता हूँ मैं, काम वाली के हर काम ऑफिस जॉब के साथ बहुत किया. अच्छा बहुत किया, नाजे बहन माजरत चाहता हूँ मैं, माजरत, क्या माफ़ी मिलेगी? ये सब इतना किया है कि सब मुझे भी पसंद नहीं है. कॉम्बैट है, मॉर्टल कॉम्बैट है, क्या सूरज को भी कहीं बर्तन है? सूरज को भी कहीं बर्तन कपड़े धोने के लिए भेज दो, इससे कोई भी काम करा लो प्लीज़. सूरज तो अभी अपने उरूज पर है और अभी तो तंग कराएगा. एक मैसेज है अरसलान भट्ट भाई का, लिखते हैं, कबीर भाई इंटरेस्टिंग टॉपिक, आई थिंक डिश वॉशिंग इज ईजियर इन कंपेरिजन, 99% टाइम मेड ही काम करती है. आप बड़े लोग अरसलान भाई, दोस्ती करोगे मुझसे क्या भाई, बेस्ट फ्रेंड. इरफान भाई कह रहे हैं मिसिंग योर रैप.

भाई आएगा, एक प्रोमो जल्दी बन रहा है, तैयार हो रहा है, बेकिंग सोडा छिड़क के बनाऊंगा एकदम। एक मैसेज है भाई, मैं तो वाइफ को जब कतर विजिट कराता हूँ सोचता हूँ थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन काम से आने के बाद बर्तन और कपड़े मैं ही धोता हूँ, उल्टा प्लेट्स मुझे ही धोने पड़ते हैं। मुझे बिल्कुल रोना नहीं आ रहा। वेल डन अमन भाई, आई एम सो प्राउड ऑफ यू यार। आपको क्या लगा इमोशनल कर लोगे मुझे ऐसी? ये तो काम है बेटे, करो। ज्यादा आना कानी नहीं। मैसेज है, कपड़े जल गए थे 2005 में, उसके बाद से कभी प्रेस नहीं किया। ये अपने जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला किया फैसल भाई, इससे बढ़िया फैसला आप ले नहीं सकते थे। एक मैसेज अजीज भाई का, अजीज भाई थैंक यू सो मच एंड देन गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। क्या हैप्पी संडे, यहाँ बर्तन धुलवा रहे। अच्छा तो ये सारे मैसेजेस थे जो आज हमारे पास आए, जजाकल्ला बहुत बहुत शुक्रिया। एंड प्लीज बता मुझे, आज बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने मुझे वो करने की कोशिश करी, क्या कहते हैं ज्ञान, आपको पता ना हमारी जनता कैसी है, कई सारे लोग कॉल करके बहुत ज्ञानी बन जाते हैं, उनको भारी बात करने में बड़ा मजा आता है। आप कभी नोटिस करना, चलो मैं गलत कह रहा हूँ ना, आप नोटिस कर लेना, आप कोई भी टॉपिक लेके आइए है ना, कोई ना कोई बीच में आके कॉल करके उसको इतना सीरियस बना देगा कि आप बोलेंगे भाई ये सैड एंगल तो मैंने सोचा ही नहीं था। अभी बताइए, बात चल रही थी बर्तन धोना आसान है कि कपड़े धोना, उस पर क्या मैसेज आए मेरे पास, ध्यान दें क्या मैसेज आए, दिल लगा के दोनों काम किए जाए तो दोनों ही अच्छे हैं। अरे अरे ये इतना आगे नहीं जाना था, इतना बताने का था कि क्या काम आसान है क्या काम नहीं, दिल लगाना पड़ेगा, क्यों लगाऊं दिल में। फरद भाई कह रहे हैं ये तो काम है बेटा, करो वो भी वो और क्या, खुशी से करो। घर पे काम करते करते अब ऐसा लगता है कि रामू काका हूँ। रामू काका चाय नहीं मिली मुझे सुबह से। एक मैसेज है, भाई हम तो आपके दीवाने हैं, दोस्ती से बहुत आगे मेरा अरसलान भाई, देखो ये ऐसे नहीं करने का, फिर मैं फैल जाता हूँ, समझ रहे हो आप। बहुत मोहब्बत भाई को, मैं भाई से एक ही मरतबा मिला हूँ, बट इतने अच्छे से अखलाक इतने अच्छे से मिले थे मेरे भाई। थैंक यू सो मच असलान भाई फॉर गिविंग मी सो मच लव एंड रिस्पेक्ट, थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार भाई को। अरसलान भाई से कोई नहीं बोलेगा बर्तन धुलवाने के बारे में, बता रहा मैं। इरफान भाई कह रहे हैं बर्तन धोना क्या धोना डे भी होना चाहिए, आप दोनों में से कोई काम कर नहीं रहे और आपको चाहिए दिन होना चाहिए इरफान भाई। अगर कबीर भाई बिठाने का मतलब ये नहीं कि मैं सीख लिया हूँ काम, जो भी मुझे काम से बुलाता है मैं कर लेता हूँ, मेरी ज़रूरत पड़ी तो मुझे कोई भी आवाज़ देगा काम करेगा हाथ के है? मैं भाई इतना अवेलेबल मत रहिए आप कि कोई आवाज़ लगा रहा है और काम के लिए तैयार है। मंसूर भाई आपको काम आता है अच्छी बात है, पर एक आवाज़ में खड़े मत हो जाया करो मेरे भाई। ये गलत है, कह रहे किसी के ये किसी की बेगम मोबाइल लेके मैसेज कर रही हैं दिल लगा के काम करने वाला। नदीम भाई कह रहे हैं जो कह रहे हैं ना दिल लगा के काम करो, ये उनकी वाइफ मैसेज करवा रही है, वो नहीं कर रहे। एक मैसेज है, दिल लगाने की बात है तो मैं खाना खाने में दिल लगाऊंगा। अरे यार कह रहे भाई कौन जीता है बर्तन है, भाई कौन जीता है बर्तन और कपड़े धोने के लिए। आपको पता है जो कॉलिंग का नंबर है फोन तक डाउन हो गया भाई, फोन ने हार मान ली। ये क्या सवाल चल रहा है। अच्छा ठीक है, मैं कहानी की तरफ बढ़ रहा हूँ। सो क्या है बर्तन धोना ज़्यादा आसान है, लास्ट रिप्लाई में ले लेता हूँ। ये अब्दुल रहमान मोहम्मद साहब ने मैसेज किया, बट अमेजिंग इतने नॉर्मल सवाल को भी लोगों ने सीरियस बना दिया, छोड़ा नहीं इसको भी। बिल्कुल नहीं छोड़ा इसको भी, देखो थोड़ा सा कम सीरियस हुआ करो प्लीज, अंडरस्टैंड द वाइब्स ओके। अब जरा मैं कहानी की तरफ बढ़ता हूँ। तो आज की जो स्टोरी है थोड़ी छोटी है बट यू विल लव इट, इसमें कॉन्टेंट थोड़ा सा ऐसा है कि चलो वो खुद ही सुन लेंगे आप, बट एनीवेज छोटी कहानी है तो मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। कई मरतबा ऐसी कहानियाँ होती हैं जो मैं इसलिए इग्नोर कर रहा था पिछले साल कि यार छोटी है चलो छोड़ देते हैं नहीं सुनाते, पर अब इस साल मुझसे रहा नहीं जा रहा, तो मैं सोच रहा हूँ कि जब अगर छोटी कहानी भी अच्छी है तो क्यों ना सुनाई जाए, वॉट इज़ द हार्म है ना। बट आई प्रोमिस यू इस हफ्ते है ना 40 मिनट की भी कहानी आने वाली है, डोंट वरी आई हैव अ 40 मिनट स्टोरी एज वेल, एंड यकीन जानो बोर नहीं हो गया आप एक भी मिनट उन 40 सेकंड्स में, ये मेरा वादा है। मगर आज छोटी कहानी है तो मेरे साथ दीजिए, एक गाने के बाद मिलते हैं एंड देन द स्टोरी विल कम। 666-22-107 नंबर है। एंड जी मैं दो हवाला कबीर, एक सेकंड भाई साहब, एक हम आ गए हैं और डांडा भाई ना चलें तो ऐसा तो होने नहीं दूंगा, आपको तो पता ही है मेरा नेचर। इरफान भाई क्या कह रहे हैं, भाई मिसेस की इतनी तारीफ करो कि वो बोले बर्तन और कपड़े धोने के मेरा बाएं हाथ का काम है,
करके देख लीजिए आप, आपका आपकी तरफ ये काम कर रहा हो तो हमारी तरफ इन उसका काम नहीं किया इरफान भाई। फॉरएवर ढांडा भाई का गाना है ढांडा न्यूड़ी वाला। मैं दो हवाला कबीर जी आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड, इस गाने का उस पार है भाई सब बढ़िया गानी एकदम गणी का सूती आग ला देंगे।

गुड मॉर्निंग डांडा भाई का गाना। भाई साहब मारा मन कर रहा है ये बता, एक रैप करना पड़ेगा, हरियाणवी रैप भी करना पड़ेगा। करते हैं, बनाते हैं, बढ़िया से रैप बनाते हैं, हरियाणवी में करना पड़ेगा भाई, अब बहुत हो लिया। बाकी आप कहानी का वक्त है तो स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे। मैं सबसे पहले तो भाई साहब रिकॉर्डिंग ऑन कर लूँ वरना फिर दूंगा कैसे आपको स्टोरी। सो हेलो जी, शुरू करें तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर, इस गाने का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है, गाने किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है। एफएम 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है, प्योर देसी की है भाई आज की कहानी, ठीक है? तो ज़रा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए एंड अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा है बेटर क्वालिटी विद द म्यूज़िक, बिकॉज जब मैं रिकॉर्डिंग देता हूँ उसमें म्यूज़िक नहीं होती है, बिकॉज मैं अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथ साथ बोलते हुए। मगर अगर आप कहीं और रिकॉर्ड कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे भेजिएगा सो दैट एवरीबडी कैन गेट इट। चलो वॉल्यूम बढ़ा दी जाए, लेट्स बिगिन। तो जो आज का किस्सा है उसे सुनाने के लिए मैं आपको 90s में ले चलता हूँ, एंड वेरी अर्ली 90s, इनफैक्ट बस 1991 शुरू होने वाला था, दिसंबर की 27 तारीख थी। और ऐसे में सेवन मैरीलैंड यूएसए में एक घर में, एक मॉडेस्ट होम में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था ब्रैडी फीगल। ब्रैडी फीगल जो था वो जिस घर में पैदा हुआ उस घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे एंड थिंग्स वर नॉट रियली वर्किंग आउट, मगर उन्होंने जैसे तैसे ब्रैडी के आने पे एक तो खुशी का इजहार किया और बाकायदा उस खुशी का इजहार करते हुए उसके लिए जितना कुछ कर सकते थे उतना उसके लिए करने की कोशिश करी। फिर एक टाइम आया कि उसके माँ बाप जो थे वो सरवाइव नहीं कर पाए एंड जो बाकी एक्सटेंडेड फैमिली थी उन्होंने एंड ऑफ द डे हार मान के ब्रैडी फीगल को भेज दिया अडॉप्शन सेंटर में। और फिर उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी उस बच्चे की कि बहुत कम एज में ही वॉज अडॉप्टेड, और जिन पेरेंट्स जो उसके नए पेरेंट्स बने जिन्होंने अडॉप्ट किया उन्होंने दिल से उसको प्यार किया, एक दिन भी उसे ना ही कभी एहसास हुआ कभी ना कभी लगने दिया कि वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड है, नेवर हैपेंड। एंड ही ग्रू आउट टू बिकम अ ग्रेट प्लेयर। वो जब बड़ा हुआ तो बड़ा होते हुए तो उसका एक शौक था जो साथ साथ पनप रहा था, वो था बेसबॉल का शौक। लाइक ब्रेडी यूज टू लव बेसबॉल। बेसबॉल ना एक ऐसा गेम है जो कहीं ना कहीं आपको

क्रिकेट की याद दिला देगा बहुत बहुत हद तक. इट्स अ वेरी डिफरेंट गेम बट इट्स अ वेरी नाइस गेम. आप बेसबॉल नहीं जानते तो एक बार देख लीजिएगा आफ्टर द स्टोरी एंड्स. लेकिन बहरहाल वो बेसबॉल का शौकीन था और सही था कि पता नहीं घर वाले मेरे साथ देंगे नहीं देंगे. और जो घर वाले थे ऑफ कोर्स दे वर रियली इनटू हिज ड्रीम. वो चाहते थे कि वो जो लड़का सपना देख रहा है वो पूरा हो, वो बड़े होके ब्रेडी फिगल एक बहुत अच्छा पिचर बनाए. पिचर बेसिकली जो बॉल फेंकते हैं. ही इज वेरी गुड इन बेसबॉल और फिर आगे जाके वो बाकायदा एक माइनर लीग का हिस्सा भी बना. मगर फिर हालात थोड़े से ऐसे हो गए कि इंजरी हो जाती है जब खेल में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उन्हें अपनी सेहत का एक एक हड्डी का ख्याल रखना पड़ता है. सो थिंग्स वर लाइक यू नो कभी अच्छी कभी बहुत बुरी, कभी हालात ऐसे कि गेम से अलग रहना पड़ रहा है, थिंग्स वर हैपनिंग. अब मैं कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ. कहानी जो है पहुँचा देते हैं हम 2015 में. सुबह का वक्त था, अक्टूबर का महीना था, ठीक है, और एक जगह थी स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर और ये बर्मिंगम अलबामा में थी इन यूएसए. इस जगह पे एक रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी. वो रिसेप्शनिस्ट जो थी बहुत बिजी थी. वो रिसेप्शन में बैठे बैठे इतनी ज़्यादा बिजी थी कि उसके सामने दो कंप्यूटर्स थे और ये दोनों कंप्यूटर्स के अलग अलग माउस, अलग अलग कीबोर्ड्स, अलग अलग सिस्टम. शी वॉज रियली टाइड अप क्योंकि उसके जो बॉस थे वो कोई ऐसे वैसे नहीं, बहुत मशहूर डॉक्टर थे और उनके मशहूर होने की वजह से उनके पेशेंट्स भी ज़्यादा थे. और इस वक्त वो एक सिस्टम पे शेड्यूल देख रही थी कि आने वाले कौन कौन से अपॉइंटमेंट हैं, कैसे कैसे कितने कितने लोग कब कब आएंगे और उनको मैनेज कर रही थी, यानी अपकमिंग सर्जरीज. और एक और सिस्टम उसके पास खुला हुआ था, सेपरेट सिस्टम था बाकायदा, उस पर वो लोगों को कॉल करने वाली थी जिनकी जिनकी सर्जरीज होने वाली हैं एक दो दिन में. अभी जो डॉक्टर थे, जो बहुत फेमस डॉक्टर थे, ये एक ऑर्थोपेडिक सर्जन थे जिनका नाम था डॉक्टर जेम्स एंड्रयूज. एंड माइंड यू बहुत बहुत नाम था. अब क्योंकि नाम था तो काम भी बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए उनका शेड्यूल पूरा पैक्ड रहता था. और इसीलिए ये रिसेप्शन पे जो बैठी थी इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी शेड्यूल को बाकायदा देख के अपनी पैनी नज़रों से कि कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, टाइम ऊपर नीचे ना हो जाए, सबका बिल्कुल हिसाब किताब से चले. शी वॉज रियली रियली फोकस्ड. फिर अगला काम था दूसरे कंप्यूटर में, जब ये काम खत्म किया, कि अब उन लोगों को कॉल की जाए जिनकी आने वाले दिनों में सर्जरीज है. तो लाइन अप कर रही थी वो, तो उनके सामने शेड्यूल में जिसकी सर्जरी अगले दिन है, एक बंदे का नाम सामने आया जो कि माइनर लीग बेसबॉल प्लेयर है, जिसका नाम है ब्रैडी फीगल. उसकी होनी थी एल्बो सर्जरी, कोहनी की सर्जरी होनी थी उसकी, तो और उसको आना था अगले ही दिन, मतलब कल उसे सुबह आना है. तो आज ये रिसेप्शनिस्ट जो है उसे कॉल करने के लिए जा रही है. जो नंबर दिया गया था उस पर उन्होंने कॉल करी, उधर से कॉल उठाई, और जो कॉल उठाने वाला बंदा था वो ब्रैडी फीगल नहीं था, वो एक्चुअली में ब्रैडी का एथलेटिक ट्रेनर था. उन्होंने कॉल उठाई और जब कॉल उठाई तो रिसेप्शनिस्ट ने सीधा हेलो बोला और फिर अपनी बात को कन्वे कर दिया बिना हाउ आर यू ये सब पूछे पूछे. तो वो शुरू हो गई, उन्होंने हेलो या दिस इज़ ये आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस इज दिस. और फिर उन्होंने बोला कि देखिए सर्जरी कल सुबह ही होगी, एवरीथिंग इज़ कन्फर्म्ड और कुछ डिटेल्स है जो मैं आपसे कन्फर्म करना चाहती हूँ, देन वी विल टेक दिस फॉरवर्ड. और वो बोलती चली गई. उसके बाद जो एथलेटिक ट्रेनर था कॉल पे उसने बोला मैडम रुकिए एक सेकेंड. और फिर देयर वाज अ मोमेंट ऑफ साइलेंस, कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ चुप. और कोच बोला मैम कुछ कंफ्यूजन है, ब्रैडी फीगल की सर्जरी हो चुकी है. रिसेप्शनिस्ट बोली अरे नहीं हुई है, कल है ना सर्जरी. तो वो बोला मैम मैं उसका कोच हूं, मैं कह रहा हूं उसकी सर्जरी हो चुकी है. अरे वो 6 महीने पहले हुई थी सर्जरी उसकी, उस वजह से खेल भी नहीं पाया अभी तक. तो बोली देखिए आप समझ नहीं रहे, उसके लिए सर्जरी नहीं हुई है, कुछ दिनों पहले ही कंसल्टेशन के लिए आया था, सर्जरी नहीं हुई है बाबा, उसको कल ही आना है. अब ये कोच और रिसेप्शनिस्ट आपस में भिड़ चुके हैं और बहुत ही अजीब बात पे भिड़े हुए हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या कह रहा है, हो क्या रहा है. रिसेप्शनिस्ट बोली अरे नहीं सर्जरी कल है, और जो कोच है वो कह रहा है अरे सर्जरी हो चुकी है, क्या बात कर रही हैं आप. और ये कॉल पे ही बात चल रही है और गर्मा गर्मी का माहौल हो गया, दोनों को नहीं पता कि हो क्या रहा है. रिसेप्शनिस्ट ने बोला एक सेकंड मेरी बात सुनिए आप, पहले तो अपनी टोन को जरा नीचे कीजिए, मुझे बताइए कि इतना यूनिक लुकिंग बंदा, बाय द वे रिसेप्शनिस्ट जो थी उनको क्रश भी हो गया था प्लेयर पे, बोली इतना यूनिक

किंग बंदा, मुझे कैसे याद नहीं रहेगा है? 6 फुट 4 इंच का है ना वो, ब्राइट रेड हेयर है, थिक दाढ़ी है, प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर है ना वो, यही ना? कोच बोला हाँ, मतलब हाँ है तो वही। तो बोले हाँ बस वो आया था कंसल्टेशन के लिए, उसकी कल सर्जरी है, आप कह रहे हैं 6 महीने पहले हुई है। तो बोला मैडम कुछ बहुत भारी कंफ्यूजन है, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। तो बोली एक बात बताइए, एक यूनिक सर्जरी यूनिक आदमी की मैं कैसे भूल जाऊंगी, मुझे पता है, आप बस उन्हें बता दीजिए, डिटेल्स के लिए मैं दोबारा कॉल करूंगी। एंड दोनों की जब कॉल कटी तो दोनों के दोनों कंफ्यूज थे एंड कोई भी कंफर्म नहीं था कि कौन सही बात कर रहा है। इस बीच एक और कॉल आई और ये कॉल जो थी वो भी बहुत अजीब थी। इस बंदे ने जब कॉल की, उन्होंने बोला कि मैडम एक्चुअली क्या है कि मेरे लड़के की अभी सर्जरी हुई थी कुछ टाइम पहले एंड आई वांटेड टू नो कि फॉलो अप अपॉइंटमेंट मुझे कैसे मिलेगी। रिसेप्शनिस्ट ने बोला यस श्योर लेट मी हेल्प यू, नाम क्या है? तो ये जो शख्स थे उन्होंने बोला मेरे बेटे का नाम है ब्रैडी फीगल। रिसेप्शनिस्ट जैसे उसने किसी भूत की आवाज सुन ली हो, वो 2 मिनट के लिए एकदम ठंडी पड़ गई। शी डिड नॉट रियलाइज कि अभी अगला पॉइंट क्या होने वाला है। और उसने अपने आप को संभालते हुए बोलने की कोशिश करी, सर क्या नाम बताया आपने? बोला मैम ब्रैडी फीगल। आप इतना क्यों हैरान हो रही है, मतलब अपॉइंटमेंट नहीं है क्या? नहीं आप अगर नहीं है तो मुझे बता सकती हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। बोला नहीं सर आप एक काम कर सकते हैं क्या, आप कितनी देर में आ सकते हैं, अगर अवेलेबिलिटी हो कल आ सकते हैं आप कल ही आ जाइए। तो बोला श्योर वाई नॉट, तो मैं अपने बेटी को लेके आऊँ? तो बोली हाँ आप उनको लेके आइए। उन्होंने कहा फाइन नो प्रॉब्लम वाई नॉट। अगले दिन अंकल जो थे अपने लड़के को लेके पहुंचे जिसका नाम था ब्रैडी फीगल। अब जिस ब्रैडी फीगल की कल सर्जरी है उसके कोच से बहस करके बैठी थी रिसेप्शनिस्ट, वो कंफ्यूज थी अगर ये ब्रैडी फीगल है तो वो कौन सा ब्रैडी फीगल है एंड इट इज सो कंफ्यूजिंग। रिसेप्शनिस्ट ने मत्थे पे सर मारा, बिल्कुल मत्थे पे हाथ रख लिया एंड शी वाज रियली गोइंग क्रेजी। ऑल ऑफ अ सडन शी कॉल्ड, उन्होंने दोबारा उस एथलेटिक कोच को कॉल करी, बोली देखिए मैं आपसे बहस करने के लिए कॉल नहीं कर रही हूँ एंड दिस कॉल इज टोटली डिफरेंट, क्या आप इतना कर सकते हैं कि कल आप अपने ब्रैडी फीगल को लेके आ सकते हैं क्या हॉस्पिटल? तो बोला मैडम मैं क्यों लेके आऊंगा, अरे ही इज वेरी बिजी राइट नाउ, अभी रिकवर किया है। तो बोली प्लीज इट इज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन फॉर द हॉस्पिटल, आप सिर्फ 5 मिनट के लिए यहां से होके जाइए और कोई दिक्कत नहीं है। एथलेटिक कोच अग्री कर गया बिकॉज ये बहुत ही अजीब किस्म का केस हो रहा था उसके लिए भी, इन हिज ओन माइंड वो सोच रहा था हो क्या रहा है। अगले ही दिन तकरीबन 11 बजे के करीब 2 ब्रैडी फीगल हॉस्पिटल में खड़े हुए थे, दोनों के दोनों सही थे, रिसेप्शनिस्ट भी और एथलेटिक कोच भी, दोनों के दोनों ब्रैडी फीगल थे, दोनों के दोनों 6 फुट 4 इंच के थे, दोनों के दोनों रेड हेयर थे, दोनों की दाढ़ी थिक थी, दोनों के दोनों पिचर थे और दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सेम एरिया से थे, दोनों के दोनों एल्बो सर्जरी कराने के लिए सेम हॉस्पिटल में आए थे। इट वॉज सो शॉकिंग फॉर एवरीबडी, पेशेंट से लेकर डॉक्टर से लेकर कोई ऐसा स्टाफ मेंबर नहीं बचाता हॉस्पिटल का जो मुड़कर इन दोनों को ना देख रहा हो। इनफैक्ट ये दोनों जब आमने सामने आए थे तो इन दोनों को इतना धक्का लगा था, दे कुड नॉट इवन प्रोसेस कि वो देख क्या रहे हैं। आवाज तक सेम है, आवाज तक, आई एम नॉट किडिंग, दिस इज अ रियल केस। एक फर्क था दोनों के बीच में और वो ये था कि आंखों का रंग थोड़ा अलग था, एक की हल्की ब्राउन थी और एक की लिटरली ब्लैक थी। सो इसके अलावा कोई बता ही नहीं सकता कि कोई फर्क है। रिसेप्शनिस्ट इतनी ज्यादा कंफ्यूज थी, शी ऑलमोस्ट फेंटेड। इन दोनों के बीच की सिमिलैरिटीज को जब इन दोनों ने बातचीत करी तो सामने आई, एक जो था वो इकोनॉमिक्स में मेजर था तो दूसरा साइंस में मेजर था। दोनों के बेस्ट फ्रेंड मार्क थे, मार्क स्टैलन, दोनों के बेस्ट फ्रेंड्स के नाम बिल्कुल
सेम थिंग.

इनफैक्ट दोनों के दोनों सेम टाइप की आइसक्रीम पसंद करते थे, दोनों के दोनों सेम ब्रांड की गाड़ी चला रहे थे, बस अलग अलग मॉडल थे। अब इतना ज्यादा खतरनाक इत्तफाक होने के बाद आपको क्या लगता है, सानू की जिंदगी? नहीं, इन दोनों के घर वालों की जो पूरी जिंदगी है वो उथल पुथल हो चुकी थी। अभी दोनों जब आमने सामने आए और बाहर एक दूसरे से मिले तो इन दोनों के बीच में एक बात क्रिएट हुई कि हमारे मां बाप हमें धोखा तो नहीं दे रहे, हमसे इतने सालों से झूठ तो नहीं बोला जा रहा, कहीं हम भाई तो नहीं है। पर इनमें से एक ब्रेडी फीगल जो था वो कह रहा था नहीं ऐसा नहीं है, मेरे माँ बाप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे, मैं उनसे पूछूंगा जाके। और दोनों ने अपने घर जाके पूछा, घर वालों से लड़ लिए, फिर आपस में लड़ लिए, एंड दे कुड नॉट फिगर आउट कि हो क्या रहा है। इनफैक्ट इनमें तो वापस दोस्ती हुई, इन दोनों ने साथ में जब बेसबॉल की फील्ड में कदम रखा तो देखने वाले बेसबॉल को नहीं देख रहे थे, सिर्फ इन्हें देख रहे थे। दे हैड लिटरली द सेम स्टाइल, सेम तरीका ऑफ प्लेइंग बेसबॉल। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोच ने, क्योंकि अभी ने सेम टीम में डाल लिया था तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक को अलग नाम देना पड़ा, फ्रेड देना पड़ा, बिकॉज नाम अलग देने के बावजूद भी कन्फ्यूजन थी कि दोनों में से कौन क्या है, इट वॉज दैट कन्फ्यूजिंग। ये कोशिश जारी थी और फिर एक शख्स जो था वो आया, उसने बोला कि तुम दोनों काम क्यों नहीं करते, मुझे लगता है कि तुम दोनों भाई तो हो, जो तुम्हारे मन में भी आ चुका होगा, एक काम करो, लेट्स टेक अ डीएनए रिपोर्ट और देख लेते हैं कि कौन सही है कौन नहीं, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुमसे झूठ बोला है, क्योंकि इनमें से एक ब्रेडी फीगल जो है वो अडॉप्टेड है। तो अडॉप्शन में क्या दो लड़के दिए गए थे और एक कोई और ले गया और एक किसी और के समय ऐसा हुआ, ये कैसे हो सकता है? तो या तो दोनों के पेरेंट्स ने झूठ बोला है या फिर किसी एक के पेरेंट ने झूठ बोला है, समथिंग समथिंग समथिंग। तो अभी जो है इन दोनों को डीएनए जो है वो चेक कराने की बड़ी जरूरत है। ये दोनों के दोनों ने सलाइवा टेस्ट दिया और इस बीच जब तक ये टेस्ट हुआ और गया ये लैब लेबोरेटरी में कि रिजल्ट आएगा, उस बीच डॉक्टर जेम्स एंड्रीज जो इस मशहूर अस्पताल के मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन से उनसे बात की गई कि सर आपको धोखा नहीं हुआ कि इन दोनों को दिखे? उन्होंने बोला हाँ मुझे धोखा हुआ, पर मैं इन दोनों से 6 महीने के गैप में मिला तो मुझे लगा सेम ही बंदा है। इनफैक्ट इतने मशहूर डॉक्टर वो कहने लगे कि मैं खुद गलती करने वाला था, हो सकता है मैं इसको दोबारा ऑपरेट कर देता। इट वॉज दैट कन्फ्यूजिंग एंड इट वॉज सो कन्फ्यूजिंग कि ये न्यूज़ जो थी वो नेशन वाइड फैली और फिर इंटरनेशनल हो गई। बिगर चैनल्स, बिगर देन BBC एंड ऑल द स्टफ वॉज हैपनिंग, सब आर्टिकल लिख रहे थे, सब कर रहे थे, सबको इंतज़ार था सिर्फ एक ही चीज़ का, ये ऐसा हो गया था जैसे मेन इवेंट, और सबको इंतजार था कि डीएनए रिपोर्ट क्या कहती है। दोनों ऑलरेडी अपने आप को भाई तो मान ही चुके थे बिकॉज एकदम सेम दिखते हैं, लिटरली कोई फर्क नहीं है। आप ऑनलाइन जाके गूगल कर सकते हैं, आप मेरी बात ना माने तो आप ऑनलाइन जाइएगा, प्लीज़ फाइंड ब्रेडी फीगल FEIGL। बहरहाल डीएनए रिपोर्ट जब सामने आई तो वो और भी शॉकिंग थी। डीएनए रिपोर्ट्स में सामने आया कि दोनों के दोनों भाई नहीं है, they have literally no connection to each other। समझ रहे हैं आप? इस बात की खुशी थी कि उनके माँ बाप ने उनसे झूठ नहीं बोला, बट they could not understand, दोनों सेम है पर दोनों भाई नहीं है। उनका जो डीएनए रिपोर्ट जब सामने आया, रिजल्ट सामने आया तो 53% दोनों के दोनों जर्मनी की जीन्स लेके बैठे हुए थे, मगर शॉकिंगली दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, पर दोनों एक दूसरे की कॉपी है, लिटरली कार्बन कॉपी। जस्ट फाइंड देम एंड यू विल बी शॉक्ड एज वेल। एंड ये कहानी एक और चैप्टर बनी जहां पे ट्विंस के बारे में पढ़ने के लिए एक और चैप्टर मिला लोगों को। सो समटाइम्स यू नो इवन बहुत ज़्यादा लोग इसमें बहुत सारी बातें करते हैं कि एक इंसान के साथ हम चकल होते हैं, आई डोंट नो, मैं इस बारे में नहीं जानता, मुझे कोई इसमें सॉलिड प्रूफ नहीं है, आई कैन नॉट से येस और नो, पर इतना सेम दिखना ये मेरे समझ के थोड़ा सा बाहर है। दोनों का सेम जगह पे पहुंच जाना, सेम बीमारी होना, सेम खेल खेलना, इसके बावजूद दोनों का भाई ना होना इज मोर शॉकिंग टू मी। कल को अगर मेरा हमशक्ल मेरे सामने खड़ा हो और वो कोई और काम करता हो मुझे चलेगा, पर अगर वो भी बोले कि मैं भी रेडियो पे बोलता हूँ तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा

अपने आप को. तो ये जो सिचुएशन है, इट इज सो अमेजिंग कि इट एडेड अ न्यू चैप्टर इन द मेडिकल फील्ड. और आज भी इस बारे में बात होती है. इट्स बिन 11 इयर्स. तो ये था आज का किस्सा. आई नो स्मॉल स्टोरी, बट आई होप कि आपको अच्छी लगी हो. 666-22-107 पर जरूर बताइएगा. 666-22-107. एंड अगर आपने इन दोनों की फोटोज नहीं देखे, शौक होने के लिए तैयार हो जाइए. ब्रेडी फीगल टाइप कीजिएगा, आपको भी शौक लगेगा. 666-22-107 टू लेट मी नो कि आज का किस्सा आपको कैसा लगा. हाँ जी, करण ओजला बादशाह प्लेयर 752.

0: नाम से विलेन काम से हीरो
1: मैं भी जरा कॉल मिला लूं क्योंकि आसिफ भाई ने बोला कॉल आसिफ भाई क्या है कि सिस्टम ऐसा हो गया कि हैंग सा हो रहा है हैंग सा कॉल नहीं लग रही है बट रुको मैं एक बार ट्राई करता हूँ आपके कहने पे कॉल नहीं मिलेगी तो मैसेज में पढ़ी दूंगा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे कई सारे मैसेजेस हैं स्टोरी को लेके आपकी बहुत बहुत मेहरबानी क्या हाय गब्बर भाई मैं जी डंबल प्री था हैरी पॉटर से मैं एक कैरेक्टर डिज़ाइन कर रहा हूँ वैसे बाय द वे मेरा प्लान है कि डंबल प्रीत नाम का एक कैरेक्टर लाया जाए रेडियो पे एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम आपका भाई अब्दुल रहमान आपका भाई कबीर कैसा ही गब्बर खुद शर्मा गया है अमन भाई कह रहे पहली मरतबा गब्बर को चाय मांगते हुए सुना है अरे ये तो होता रहेगा हमें जो रेखा जी ने बोला है वो ये है रेखा जी कह रही है कि पहले जिंगल चला दो उसके बाद तुम्हें जितनी बात करनी है उतनी कर लो और आजकल मैं रेखा जी की पूरी बात सुनता हूँ तो पहले जिंगल चलेगा जब तक लोड हो जाएगा तब देखेंगे 666-222-107 ये रहा जिंगल बड़ा दबाइए

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे। कहानी सुनने के बाद कुछ लोगों को शॉक लगा, कुछ मैसेज आए हैं।

अस्सलाम वालेकुम, नाइस कनेक्टर। क्या एक मैसेज है, क्या कह रही हैं? हाँ ओके, ये जो मैसेज किया है इन्होंने बोला है कि आई जस्ट सॉ ब्रेडी फिगल्स लिटरली शॉक टुडेज स्टोरी गेव मी चिल्स। कोई हॉरर स्टोरी वाइब्स आ रही थी, है ना, मुझे भी शुरुआत वाइब पे। मैंने आप लोगों को नहीं नहीं नहीं, ये जो सिर्फ दो आदमी मिलते जुलते हैं। और उन्होंने मैसेज भी किया, 40 मिनट वाली स्टोरी का शेड्यूल पहले ही बता देना भैया, ताकि उस दिन मैं अपनी बेटी को स्कूल ड्रॉप करके जाऊँ और थोड़ा जल्दी शुरू करना 7 बजे। ओके डन डन डन, 40 मिनट वाली कहानी मैं पहले ही सुना दूंगा, कोई गाल नहीं है, पहले आ जाएगी। और आगे लिखा है, किसी दिन रियल लाइफ बेस्ड पैरानॉर्मल स्टोरी भी ट्राई करिएगा। मैं कर चुका ट्राई, शाम में तो मैं वही सुना रहा था, बहुत सारे भर भर के पैरानॉर्मल स्टोरी सुनाई मैंने शाम में। भाई मैं आपको आसिफ भाई कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, फोन इज नॉट वर्किंग करंटली, देर आर समथिंग रॉन्ग। सादिक भाई ने मैसेज किया, माशाल्लाह वेरी गुड स्टोरी। ऐसी प्रोबेबिलिटीज आजकल और ज्यादा बढ़ रही हैं क्योंकि जेन जी अपना नाम लायरा आयरा फायरा लग रहे हैं। सादिक भाई कह रहे हैं ऐसी प्रोबेबिलिटीज ज्यादा बढ़ रही हैं आजकल, ये तो जेन जी वाले हैं ना, ये लायरा फायरा कायरा अपना नाम रख रहे। सारा गुस्सा आपने मेरे ही मैसेज में निकाल दिया। निशान शरीफ भाई कह रहे हैं, सलाम वालेकुम ब्रदर, आई मिस्ड योर मैसेज, मुझे मोबाइल नंबर सेंड किया है, यू कैन सेंड मी आई दिस रिलेटेड। ओके मैं ज़रूर भेजूंगा। तब उसमें मैंने मैसेज किया है, लिखती हैं क्रेजी सिमिलैरिटीज़ इंटरनेट पे देखा, बहुत अजीब है। इमेजिन दो दो कबीर भाई, सिर्फ एक डिफरेंस, एक मॉर्निंग शो में एक इवनिंग शो में, पैरेलल यूनिवर्स। दो दो कबीर, अच्छा आइडिया है। अगर मेरा हमशक्ल होता तो एक को सुबह में लगा देता मैं और मैं खुद शाम में लग जाता, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। अहमद भाई कह रहे हैं, कहीं किसी ने जानबूझ के डीएनए में कोई झोल तो नहीं किया मजे लेने के लिए? देखो प्रोबेबिलिटी तो उसकी भी है। एक मैसेज, सर जी माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। फरद भाई ने मैसेज किया है, भाई ये बंधन प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है वाली बात हो गई। बोले थे भाई इमोशन सॉन्ग्स में भी ऐसे म्यूजिक होती है जिसमें मज़ा आ जाता है। थैंक यू सो मच भाई, ढांडा भाई के गाने बोल रही हूँ। अहमद भाई कह रहे हैं, एक हमशक्ल आरजे कबीर तो आप भी डिजर्व करते हैं। बिल्कुल डिजर्व करता हूँ मैं, हैं मैं, मेरे में क्या कांटे लगे, मुझे भी चाहिए हमशक्ल, मुझे भी चाहिए। अब वाकि भाई वालेकुम सलाम, नाइस स्टोरी, थैंक यू भाई। एंड और किसी का मैसेज तो मिस नहीं हुआ, एक मैसेज मुझसे मिस हुआ है, देखा आप लोगों के चक्कर में ये हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम भाई जान, वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद इमरान भाई। भाई पता नहीं फ़ोन को क्या हो गया, चल नहीं पा रहा है। तला भाई ने मैसेज किया, कह रहे हैं तुम एक बर्दाश्त नहीं हो रहे। देखो बर्दाश्त एक ना हो तो हदें पार करनी चाहिए, बर्दाश्त करने की हदें जो होती है ना तला भाई, वो क्रॉस करनी चाहिए, वो करें आप। कौन मुझे बर्दाश्त करने के लिए सुनता है। अस्सलाम वालेकुम, शेख उल्लाह साहब ने मैसेज किया, वालेकुम अस्सलाम भाई, कह रहे बहुत दिनों बाद दो बेचारों को मिले हो, दो बेचारे को मिले हो, दो बेचारे पता नहीं भाई भाई नहीं थे वो, ऐसे खामखा एक जैसे दिखते थे वो, ऐसे बहुत सारे होते हैं भाई। दिल टूट गया, अब देखो मैं दिल तो टूट गया लेकिन मैं फ़ोन कोशिश कर रहा हूँ तब से ठीक करने की। मैं जितना अच्छा इलेक्ट्रीशियन हूँ नहीं इतना अच्छा, लेकिन मैं ट्राई पूरा कर रहा हूँ। अगर कर पाया तो कामयाबी जो है कदम चूमेगी, नहीं कर पाया तो भाई मैं कुछ कह नहीं सकता, बट आई एम स्टिल ट्राइंग के फ़ोन ऑन हो जाए। अगर ऑन हो जाता है तो आपसे बात हो पाएगी। बाकी आप मैसेज कर सकते हैं जिन्होंने स्टोरी सुन ली है, एक से भले दो कबीर भाई, मैं तो बता रहा हूँ अभी होने वाला ना, अभी कह रहा है ना कबीर, कबीर का डोपल गैंगर, कभी कभी आपकी आवाज़ दूसरे भाई ये सादिक भाई, सादिक भाई आप जो है ना मैं बता बेस्ट बेस्टेस्ट फ्रेंड में से गई है। सादिक भाई कह रहे हैं कि डोपल गैंगर है ना आपका, दूसरे चैनल पे सुनाई देता है। क्या बात है, सही पकड़े हैं, बहुत तेज हो रहे हो सादिक, तुम बहुत तेज हो रहे हो मेरा भाई। एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, अगर आप 40 मिनट वाली स्टोरी सुनाने वाले हैं कभी तो मुझे पहले ही बता दीजिएगा, मैं पॉपकॉर्न लेके बैठ जाऊंगा। मैं बताऊं, इस हफ्ते मेरा प्लान है, एक लंबी चौड़ी स्टोरी है उसकी तैयारी कर रहा हूं मैं। अगर वो स्टोरी बहुत बढ़िया से बन गई, तैयार हो गई, तब तो इंशाल्लाह आपको जो है बहुत अच्छी स्टोरी मिलेगी। अगर नहीं तैयार हुआ तो मैं कुछ नहीं

छुट्टी में नहीं पढ़ना चाहिए, फालतू की बात है। एक सेकेंड रुको, मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। नहीं भाई, कॉल नहीं लग पा रही है। नसीम साहब ने मैसेज किया, नसीम अरे नसीम भाई ने भी ढूंढ ली पिंक गाड़ी, पिंक गाड़ी मिल गई। सुबह सुबह मुझे जो है समी भाई ने पिंक ट्रक दिखाया था, अब नसीम भाई ने मुझे पिंक गाड़ी दिखा दी। वाह वाह वाह, सच में ऐसा लग रहा है जैली वैली जा रही है सड़क भाई। ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक पिंक कलर है यार, ये कुछ ज़्यादा बुरा कलर है ये। पता वो वाला कलर फिर भी ठीक था जो सुबह मैंने पिंक ट्रक देखा था, ये थोड़ा बुरा है जो आपने मुझे भेजा है। यूसुफ भाई वालेकुम अस्सलाम, रिमाइंडर ऑफ व्हाट, केड़ा रिमाइंडर भाजी? मैं फिर सुनता क्योंकि मुझे पता नहीं आपने किस चीज़ का रिमाइंडर मुझे दिया है, सुना ही नहीं मैंने। मैं सुनता हूँ कुछ देर बताता हूँ फिर। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स भाई, स्टोरी आपकी बहुत अच्छी लगी मुझे, एंड मैं अभी जाके इंटरनेट पर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे आपने कोई हॉरर स्टोरी सुनाई। नहीं, हॉरर नहीं है भाई, मेरे फालतू के इल्ज़ाम मत लगाओ, कोई हॉरर नहीं सुनाई है मैंने। हाँ तो अच्छी कहानी थी ना, अच्छी कहानी थी, हॉरर नहीं थी। हाँ, और ये पिंक गाड़ी के लिए मेरा अगला गाना, ये जो सड़कों पे पिंक रंग की गाड़ी लेके फिर रहे हैं, दोहा वाले कबीर की तरफ से गाना कबूल फरमाएं आपकी छोटी सी प्यारी सी गाड़ी के लिए। और ले लीजिए, ले लीजिए,

0: दस मिनट हो गए। मैं दो हवाला कबीर एफ एम सेवन पे, मैं जरा मैसेज की तरफ बढ़ूँ, उसके बाद मैं कतर की खबरों पे। यार एक कॉल आ रही है, कॉल आना शुरू हो चुकी है। मुबारक जी, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जनाब क्या हाल चाल है?
0: पार्टी, बस मैं सोच रहा था कि फोन कब ऑन होगा और आपने ही फोन को ऑन किया है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, मुबारक हो। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? अरे बहुत दूर की चीज है भाई, आप बताइए।
1: अरे नहीं,
0: हाँ जी भाई बताओ।
1: कहानी तो भाई, कहानी मैंने तो थोड़ी आधी से सुनी, मगर आधी से सुनने के बाद तो मजा आ गया। मगर सबसे ज्यादा तो मजा पता मुझे दो चीजों में आया भाई। एक तो मच्छर पे सर मारना।
0: मैं उसे शराफत से बोलना चाह रहा था, लेकिन मेरे वो है ना, अंदर का जाट निकला तो मत्था ही निकला। मैं क्या करूं, ये बोल ही देता हूँ।

0: ये क्या चीज है?
1: नहीं हुआ क्या, मैं कहानी सुनाते हुए ना हमेशा थोड़ा सा एजुकेटेड साउंड करना चाहता हूँ. उस वक्त क्या हुआ कि मेरे अंदर का एकदम से जाट जा गया, मैंने मत्था बोल दिया. मैंने कह रहा बोल दिया है तो कवर अब कैसे करूँ. पर बहरहाल कहानी कैसी लगी मेरे भाई को ये बताया.
0: कहानी बहुत बढ़िया जबरदस्त थी. हमारे यहाँ पे भी ट्विन्स हैं तो कुछ सेम है.
1: हाँ अच्छा सेम है मतलब वो तो भाई होंगे ना फिर.
0: हाँ वो भाई हैं, वो दूसरे के नहीं.
1: पर से देखो यहाँ पे तो भाई भी नहीं है ये, और सेम दिखते हैं भाई, सेम हाइट है, समझ रहे हैं. इत्तफाक की बात कर दी.
0: मैं भी सोच रहा था वो तो भाई साहब आपने डीएनए का खुलासा कर दिया लास्ट में, नहीं तो पब्लिक कंफ्यूज आ जाती बहुत तगड़ी तरीके से.
1: बहुत खतरनाक कन्फ्यूजन होती, इसलिए मैंने क्लियर कर दी. मैं अच्छा इंसान हूँ ना मेरे भाई, इंटेलेक्चुअल बहुत हूँ. हाथ से ज्यादा इंटेलेक्चुअल हूँ.
0: डीएनए भी करा लिया था.
1: नहीं मैं हाथ से ज्यादा क्या बता
0: दी? अच्छा डीएनए टेस्ट करा दिया कि भाई के नहीं ये दोनों.
1: हाँ तो करना,
0: कोई रिश्ता नहीं.
1: जिम्मेदारी है मेरी भाई ये सब कराना. मैंने तो कौन कौन कराएगा, मैंने तो और कौन. इसलिए और बताए
0: भाई तो वो क्रश वाली जो बात कही थी ना आपने, क्रश
1: है ना,
0: मजा आ गया था सुन के भाई साहब.
1: ये तो देखिए आप, आपकी आंख उसी चीज से खुली होगी मेरे हिसाब से. आंख खुल गई होगी जैसे बोला रिसेप्शनिस्ट को क्रश था. आंख खुल गई. क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, लव स्टोरी तो चल रही है?
0: नहीं मैंने कहा यार क्रश, यार नर्स हैगी और इतना रिसेप्शनिस्ट हैगी और वो इतना रिक्वेस्ट कर रही है और वो कह रही है डायरेक्ट क्रश. अरे भाई
1: अरे तो भाई तो
0: हमें भी ऐसा होता है ना कहीं कहीं, हम भी जाते हैं रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं ना तो हमें भी क्रश हो जाता है यार.
1: देखिए एक सपने तो सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं. यही है साइंटिस्ट. इस बात को ध्यान में रखिए बस, बाकी जिंदगी आसान हो जाएगी है ना. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई कि आपने मेरा फोन जगा दिया क्योंकि टेलीफोन अभी बंद हो गया था, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू मेरे भाई.
0: कल भी लगाया टाइम ही नहीं.
1: नहीं आज आज अल्हम्दुलिल्लाह चलिए बात तो हुई, अच्छा हुआ ये कि आपने कॉल लगा.
0: हाथ भी लगाना जरूरी है ना भाई के पास.
1: बिल्कुल भाई बिल्कुल, हाथ से बता के थोड़ी होते हैं मेरी जान.
0: थैंक यू
1: ओके भाई, ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिए भाई, अल्लाह हाफिज. अब भाई की जब जब कॉल लगना शुरू हो ही चुकी है तो मैं एक काम क्यों नहीं. अच्छा कॉल आ रही है, वाह वाह वाह वाह. अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, कैसे हैं कभी भाई?
1: मैं एकदम भला चंगा मेरे भाई, आप सुनाए मेरा भाई.
0: बस कुछ आधा आधा महसूस हो रहा है कि आपके कोई एक पैर है दुनिया में बस, लेकिन कहाँ है वो ढूंढना पड़ेगा.
1: मुझे भी ऐसा शक सा हो रहा है, मैं बता रहा हूँ कोई ना कोई
0: कहीं तंजानिया में, कहीं उगांडा, कैम्बिया, कहीं पे कोई एक आरती होगा किसी और जमान में.
1: मेरा बहरूपिया किसी ठंडे इलाके में है, मैं आपको बता दूँ पहले.
0: तो फिर साइबेरिया में ढूंढना.
1: हाँ वही वही किसी कोहरे में बैठ के, इग्लू में बैठ के शो कर रहा होगा वो. मुझे शक है.
0: करते हैं ऐसा ही हो बस, और किसी दिन प्लेस स्विच करने को भी मौका मिल जाए आपको.
1: अरे मेरा भाई तो ये कहानी आपको, आपको क्या लगा था दोनों भाई निकलेंगे आखिर में?
0: नहीं मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि दोनों भाई निकल जाएं, कुछ तो निकल जाए. मैं तो अंदर अंदर मना रहा था भाई इनका कुछ रिश्ता निकल जाए तो इत्मीनान हो जाए कि हाँ भाई चलो हो गया. लेकिन कुछ भी नहीं निकला तो फिर हमने कहा यार ये तो वो एंटी क्लाइमैक्स हो गया.
1: देख रहे हैं ये मार्केट में क्या क्या हो रहा है भाई, ये सारे इत्तफाक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अंग्रेजों के साथ क्यों होते हैं, हमारे साथ क्यों नहीं होते. या हमारे पास टाइम नहीं है इत्तफाक देखने.
0: सुनी थी बचपन, और एक स्टोरी मेरी भी है छोटी सी, वो सुनाऊं?
1: हाँ बताओ बताओ बताओ बताओ, क्या क्या आपकी क्या स्टोरी है?
0: बचपन में एक मतलब हमने ये सुना था कि एक इंसान के साथ हम शक्ल होते हैं, अब पता नहीं है सच है कि गलत है, लेकिन ये कि वो कब होंगे कहाँ होंगे नहीं पता है. लेकिन ये कि एक लाइफस्टाइल में या मतलब दुनिया में हर इंसान के 7 आइडेंटिकल होते हैं.
1: हाँ ये तो लोग कहते हैं,
0: मैंने कभी सुना था.
1: ये तो लोग कहते
0: हैं लोग, किसी को प्रूफ पड़ी है, ये तो बस ऐसी मशहूर चीज है.
1: ये एक्चुअली ना
0: हो रहा है मतलब ये अब दो हो गए तो हो सकता है दो तीन और भी हो जाते होंगे कहीं ना कहीं.
1: हाँ पता नहीं क्या चक्कर है, और मसला क्या है ना, हम लोगों को ऐसी चीजों में, मसालेदार चीजों में यकीन करने में मजा आता है.
0: मजा तो आता है,
1: दिमाग कह रहा है कि ये थोड़ी अजीब सी चीज है, लेकिन दिल कह रहा नहीं मजा तो आ रहा है. तो ये चीज मान ले
0: कहीं ना कहीं तो मिलेंगे.
1: इसलिए हम लॉजिक को थोड़ा सा खिड़की के बाहर फेंक देते हैं, लगता है वाह साथ हम शक्ल मेरे कहीं ना कहीं तो होंगे.
0: कहीं तो कोई तो होगा, कोई तो होगा. अच्छा मैं अपना वाक्य आपको बताऊं?
1: जी भाई बताइए.
0: बिल्कुल सिमिलर ही है, लेकिन उतना डीएनए वगैरह तक तो बात नहीं गई. मैं जब यहाँ पे आया था कॉलेज के बाद के टाइम पे, तो उस वक्त इत्तेफाक ये हुआ था कि हमारे क्लास में एक लड़की हुआ करती थी.
1: ओके.
0: मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे बैचमेट थी. सर मेरा इंटरेक्शन वैसे ज्यादा नहीं था, लेकिन एक बार मैं

0: यहाँ पे कहीं टहल रहा था, पता नहीं कहाँ सुबह किसने आया कहाँ टहल रहा था, और मैंने बिल्कुल उसे देखा, मैंने कहा यार ये तो हमारी क्लास की लड़की लग रही है,
1: अच्छा
0: ये तो फला है बैचमेट है। अब मैं कंफ्यूज हो गया कि भाई वो यहाँ पे क्यों आएगी, यहाँ से क्या है, किस तरह से क्या हो सकता है। तो मैंने सोचा जाके पूछ लूँ कि भाई आप वही हो ना, फिर मैंने कहा यार पूछना मुनासिब नहीं है यार, खातून ने कोई भी यार,
1: ऑब्वियसली ऐसे कैसे बोलो।
0: तो मैं इतना ज्यादा क्यूरियस, और मैंने भी मतलब ऐसा नहीं था कि एक एक ग्लिम्स देखा हो ना, वहां गुजरते गुजरते मेरे ख्याल से वाकई भी था मॉल था क्या था, तो मैंने मतलब गौर से देखा ये वही है ना, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला। अच्छा फिर घर आने के बाद हमने नंबर निकाला अपने दूसरे दोस्तों के जरिए, मेरे पास नंबर भी नहीं था, फिर मैंने उसको मैसेज किया, बोले कि तुम यहाँ पे तो नहीं हो, फिर वही एंटी क्लाइमेक्स ही हुआ कि बोला नहीं मैं तो नहीं हूँ।
1: अरे अच्छा हुआ नहीं पूछा मेरे भाई, अच्छा हुआ नहीं पूछा। मेरे दिल की धड़कन तेज करा दिया आपने, अच्छा क्या नहीं पूछा, वेरी नाइस।
0: अच्छा हुआ नहीं, इसीलिए नहीं पूछा था ना, मैंने कहा मैंने उसी सोच लिया कि यार अब जाके पता वेरीफाई तो करना पड़ेगा ये है कि नहीं है कौन है।
1: हाँ फिर ठीक है, सेम गेम।
0: इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो नहीं निकले जो होना चाहिए, तो मतलब नहीं बनी, तो हो सकते हैं हम शक्ल हो। अब वो तो एक मिनट दो मिनट, अब उतना तो डिटेल में नहीं देगा कि भाई पूरे हाइट वोट बराबर है या नहीं है, वो है, लेकिन हाँ शक्ल बहुत मिलती जुलती थी, और यहाँ तक हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस और सब जो मुझे
1: भाई, यहाँ तो सेम हॉस्पिटल सेम इंजरी सेम
0: हैबिट सब कुछ सेम निकल चुका है यहाँ पे, ये तो एक अलग ही लेवल की चीज हो चुकी है
1: यहाँ पे, अलग ही सीन चल रहा
0: है। पर आपकी चॉइस बड़ी यूनिक यूनिक है इस तरह की, तो स्टोरी लेकिन थोड़ा लंबी लेके आया कि नहीं,
1: मैं
0: तो लग रहा है अभी तो मजा आना शुरू हुआ था जब तक क्लाइमेक्स आ गया।
1: एक आप लोगों ने कहानी पता नहीं सुनी नहीं, अहमद भाई पता नहीं आपने सुनी नहीं सुनी, एक कहानी थी इसमें ट्रिपलेट्स की कहानी सुनी क्या आपने, मुझसे नहीं सुनी है अभी तक।
0: नहीं ट्रिपलेट्स की कहानी तो नहीं सुनी, शाम में सुनाई थी या दिन में सुनाई थी?
1: मुझे खुद याद नहीं, मुझे बिल्कुल याद नहीं मैंने कब सुनाई थी।
0: आपने शाम में सुनाई होगी तो 90% नहीं सुनी होगी। अच्छा आपको मैं कह रहा था कि आपका अगर दूसरा वाला भी भाई मिल जाए कुछ भी है ना, तो सुबह में कोशिश करें एक ऐसे रहे, हमें सुबह में चाहिए फिर बेहतर है हमारे लिए
1: भाई। लेकिन 1 जून से देखो क्या मामला होता है, फिलहाल तो है और फिलहाल तो डिलीवर करते रहेंगे कहानी इंशाल्लाह।
0: हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे, आप आगे भी आते रहे, अपना एक क्लोन करा ले तो फिर आपको इजी हो जाएगा, मसला नहीं है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन अभी आएगा इंशाल्लाह, 1-40 मिनट की कहानी आने वाली है इस हफ्ते इंशाल्लाह, लंबी कहानी जल्दी शुरू भी करेंगे,
0: मैं उसके लिए तैयार हूँ इंशाल्लाह।
1: बहुत
0: आए तो मैं सुनता रहता हूँ, रिकॉर्डिंग से मिलेगा।
1: डन मेरे भाई, बिल्कुल
0: चलिए, जज़ाकअल्लाह
1: खैर, अल्लाह हाफिज़ मेरे भाई, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अब जो है मैं एक ज़रा कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला था और मैं कॉल नहीं कर पाया था, अफसोस अफसोस। पहले तो मैं नहीं कॉल करूँगा क्योंकि बहुत टाइम से भाई की कॉल पेंडिंग है, तो मैंने कॉल लगा दी, उठाई तो ठीक, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। एक और मैसेज मीन वाला आया है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई,
1: पार्टी क्या फ़ोन बंद करवा दिया है?
2: क्या
1: भाई सग
2: क्या
1: अच्छा
2: बोल रहा भाई, मालूम आज पहली बार मतलब मैं जल्दी जल्दी उठ के गाड़ी में नहीं बैठा, मैं बैठ के अपने रूम में सुना भाई तुम्हारी स्टोरी।
1: अच्छा ओके, तो फिर तो और आनंद सुख की प्राप्ति।
2: गूगल गूगल पे जाके सर्च किया FM रेडियो दोहा वाला कबीर लाइव शो, और भाई ऑन हो गया। मैं बोला बताओ बताओ, मतलब कबीर भाई मोबाइल में तो है, घर में भी है, गाड़ी में भी है, हर जगह छाया हुआ है बंदा ये
1: भाई, ऐसे ही है अपना, इसी के तो पैसे है मेरा भाई।
2: तो भाई फिर थोड़ा बहुत बरसा दिया करो ना भाई गरीबों के ऊपर।
1: देखो ये
2: बाकी वो हमशकल था या मतलब रियल में मतलब वो सीन है?
1: हाँ भाई वो हमशकल था, वो उसका भाई भाई नहीं था, मतलब वो इतने ज्यादा सिमिलर थे, सेम हाइट सेम प्रोफेशन सेम तरीके के बियर्ड सेम तरीके के बाल सेम कलर, दोनों चश्मा पहनते, सब कुछ सेम, लेकिन दोनों भाई नहीं थे।
2: बताओ भाई इत्तेफाक हो गया, मतलब ऊपर वाले ने बना तो दिया सेम सेम, बाकी रिश्ता नहीं बनाया उन लोगों।
1: हाँ बस ये है,
2: ये गलत हो गया। मैं मतलब मैं एक चीज का कंप्लेंट कर सकता हूँ अल्लाह से, मतलब बोलूंगा अल्लाह पाक इतना सब कुछ कर दे तो भाई भी बना डालता बेचारे गरीब को।
1: अल्लाह में इतना सब कुछ हो ही गया है तो फिर भाई बना दो तो भैया, मालिक इतना खर्चा हो ही गया तो चिप्स भी खिला दो
2: और बहुत हार्ड है भाई। बाकी वो सीन अच्छा लगा भाई, वो मतलब मैं भी सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं बोला ये कौन सी कहानी आ गई है कभी भाई, सुबह सुबह ये कौन सी कहानी सुना दी है, मतलब सब कुछ सेम है ऊपर से लेके नीचे तक, बस रिश्ता नहीं है।
1: हाँ बस ये है, तो सोचो उनको उनको बुरा भी लगा होगा और अच्छा भी लगा होगा, अच्छा इसलिए कि चलो ठीक है माँ बाप ने झूठ नहीं बोला, बुरा यार क्या भाई निकल जाते, इससे बढ़िया और क्या होता
2: ऐसा, मतलब ऐसा कभी हुआ मतलब मेरे थॉट से जैसा एक बंदा एकदम सेम है, जैसा कबीर भाई एक है और कबीर भाई का एकदम सेम तो लंबे बाल वैसी एकदम फुल एकदम आयबा वाली स्टाइल में और भाई समझ है तुम्हारी तुम्हारी मतलब समझ रहे लाइफ पार्टनर है
1: अरे रे रे भैया
2: सुनो ना भाई सुनो ना बाय बाय बाय बाय प्लीज
1: हाँ,
2: और ना भाई अचानक से मतलब तुम मतलब कहीं लेफ्ट राइट हो गए और अचानक से ना भाई बंदा टपक गया और भाई आगे आगे समझ गए ना भाई
1: ये ट्रेजेडी वाली मूवी में जो आपने मुझे हाईलाइट किया है मेरे पे ट्रेजेडी क्यों बनाई है ये तो अपने आप को भी एग्जांपल
2: नहीं भाई मैं तो कबीर भाई का मैं तो कबीर भाई का चाहने वाला हूँ ना इसलिए कबीर भाई के
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह क्या ये अलग किस्म की मोहब्बत चल रही है अभी पर थैंक यू सो मच
2: वो सुन के ना मैं जुड़वा पिक्चर की याद आ गई थी मतलब जुड़वा पिक्चर में तो फिर भी रिश्तेदार थे लोग बेचारे पटरी पर से गायब हो जाता है एक बचकाना
1: पर थैंक यू सो मच आसिफ भाई मैं कॉल बहुत देर से कोशिश कर रहा था वो कॉल लगाने की चलो अच्छी बात
2: है एक और चीज है
1: हाँ बोलो ना
2: क्या भाई सुबह मॉर्निंग में गायब होने वाले तुम
1: नहीं नहीं मैं हाँ मॉर्निंग में सुबह गायब होने वाला हूँ भाई
2: मत करो भाई ऐसा यार
1: शाम में
2: भाई सुबह सुबह तुमको सुनने की आदत है अभी मतलब क्या है फिर रात में आएंगे
1: भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है बॉस ने बोला करने का तो करने का वैसा वाला सीन है
2: तो। ये बात तो सही है
1: तो भाई एक जून से इंशाल्लाह ये सीन है कि शाम में सुनाई देंगे 5 बजे सुनाई देंगे चलता रहेगा वो सुबह शाम तो देखो कभी सुबह होगा कभी शाम होगा चलता ही रहेगा वो बेसिक जैसे लोगों का वो होता है ना रोस्टर के हिसाब से चलते तो हमारे यही रोस्टर है भाई तो कभी शाम सुबह
2: कबीर भाई एक सीन और कल याद है कल तुमको मैं एक सवाल पूछा था पब्लिक से
1: हाँ सब पब्लिक ने बोला पब्लिक ने
2: हाँ भाई मगर नहीं नहीं नहीं भाई कैमरा चेक हुआ भाई पब्लिक पब्लिक के बोलने से क्या होता भाई
1: क्या बात कर रहे हो
2: मेरे को क्या हाँ भाई नहीं वो अरे भाई 10 मीटर का फासला था ना भाई तो बंदा क्या किया समझ रहे हो मुन्नी बदनाम हुई सीधा घुस गई
1: अच्छा तो बच गए
2: हाँ तो मैं वो सीधा यहाँ घुसी तो मेरी गाड़ी को टच करके निकला ना भाई वो तो मैं तो मार दिया उसको टच कर दिया मैं
1: अरे वाह वाह वाह वाह वा, सबको गलत साबित कर दिया भाई एक साथ ही क्या
2: हुआ मैं बोला भाई मैं बोला मेरा मुद्दे तो वैसे भी वही है ना भाई क्या बोलते हैं अंदर का है ना थोड़ा
1: हाँ तो आपके हिसाब के
2: तरफ तो उसने जाके चेक करा तो बाद में मालूम पड़ा कि ये बंदा तो मतलब अपनी स्पीड में जा रहा सामने वाला और ज्यादा गैप नहीं था तो जो टैक्सी वाला भाई था वो घुस गया राइट में सीधा मैं लेफ्ट जा नहीं सकता राइट जा नहीं सकता ब्रेक मार नहीं सकता क्योंकि पीछे गाड़ी ओवरटेकिंग नहीं हो सकती कुछ भी हो गया काम तो फिर मतलब उसकी गलती निकली फिर भाई अपन बोले भाई
1: मुबारक हो मेरा भाई
2: पब्लिक आगे भाई पब्लिक आगे भाई सीधा बोलती भाई पीछे से मारा है पैसा तो पे करना पड़ेगा
1: भाई, ने बोल दिया था भाई पे तो करना पड़ेगा इस आदमी को नहीं छोड़ा जाएगा ऐसा लग रहा है कि आपने गाड़ी ठोक दी है
2: मैं बोला कबीर भाई के स्टोर पे जितने बंदे ना भाई सब यही सोच रहे हैं बंदे की गलती है बोले भरवाओ बोले पैसा इस पे
1: पर भाई बहुत बहुत शुक्रिया और अच्छा लगा मुझे कि चलो आप बच गए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई कॉल करने के लिए और इंशाल्लाह फिर बात करेंगे इंशाल्लाह बहुत प्यार भाई को
2: थैंक यू
1: आप भी ख्याल रखो
2: मेरा भाई बेहद जरूरी है भाई
1: आप भी बेहद बेहद जरूरी है भाई बहुत सारा प्यार क्या थैंक यू भाई तो आज भाई के बाद एक मैसेज है भाई बॉस को छुट्टी भेज दो ना प्लीज आपको इवनिंग शो करने को बोल एक कॉल आ रही बात करते हैं इस बारे में हॉट टॉपिक हो गया अस्सलाम वालेकुम क्या बात है क्या बात है क्या बात है मेरा भाई एकदम मतलब पुलिस के माफे एक लास्ट में आते क्या हीरो भाग गया भाई हीरोइन लेके भाई अब कुछ बचा नहीं है विलन जमीन पे पड़ा हुआ है मेरे भाई आपने तो वैसे कुछ सुना नहीं है आज मुझे पक्का यकीन है तो यही बता देंगे क्या प्लान है
3: जिंदगी में सुनना सुनाना तो वो लगे हुआ है
1: अरे रे रे
3: अब ये बात
1: ये जो हैदराबादी फंसाते ना माता भाई जिंदगी में सुनना सुनाना तो लगा
3: हकीकत है ना कबीर भाई आपसे बात करने आपको जो भी कॉल करते ना किसी का दिल ही नहीं बढ़ता आपसे बात करने आपसे बात कर लिया वैसे किसी का अभी जो मेरे से पहले कॉलर जो भाई है उनका दिल ही नहीं बढ़ा फोन रखने के लिए फिर भी मजबूर रख देना पड़ा क्योंकि टाइम नहीं है
1: अरे रे रे रे रे भाई ये क्या कमाल क्या आप कुछ लिखते विखते तो नहीं राइटर वाइटर तो नहीं है आप
3: नहीं नहीं कुछ भी नहीं है बस आपके आप आपके लिए हमारे दिल में मोहब्बत है वही
1: थैंक यू सो मच मेरे भाई बहुत प्यार मेरे भाई को थैंक यू सो मच
3: कबीर भाई से अगर एक बार बात कर लिए हफ्ते में एक बार बात कर लिए तो हफ्ता गुजर जाता पूरा वीक गुजर जाता
1: आप इतनी लंबी नहीं छोड़ने का
3: हफ्ते में दो बार अगर बात हो गई तो महीने भर तक फुर्सत कहीं क्यों कबीर भाई मैं आपको अभी ये वीक में तो आज करा मैं आपको अगर देख लो अगर ये वीक में डिस्टर्ब करा तो जब बोलना आप मेरे को
1: ये तो है
3: लास्ट वीक में आपको मैं कॉल कराई नहीं मैं क्योंकि उससे पहले वीक में ऑलरेडी आपसे बात कर लिया था हूं.
1: ओके ओके
3: तो ये ये ये
1: है. एक सेकंड आपकी कॉल चली गई मेरे भाई.
3: नहीं नहीं यही छू.
1: हां बोला बोला बोला. हां कॉल वो चली.
3: तो बोलना यही छे बस आपसे बात करने का दिल बोला. दिल ख्वाहिश कर रहा था कबीर भाई से बात कर लेंगे.
1: नहीं आपकी मोहब्बत में
3: फोन को नहीं फोन घुमा लिया तो इसलिए आपसे बात कर लिया बस. और कुछ
1: भाई घुमा लिया करो. ऐसी ऐसी रास्ते भूल जाया करो. नाश्ता वगैरह शो के बाद होता है अपना. सब कुछ शो के बाद है.
3: चलिए कोई बात नहीं. अगर आप खिदमत का मौका दिए तो फिर जो है ना आपके लिए बेहतरीन नाश्ता ला लेंगे.
1: नहीं नहीं
3: आप डाइट में पसंद कर रहे हैं इंशाल्लाह.
1: कोई डाइट वाइट नहीं है वहाँ. कौन सी डाइट मेरे भाई. कौन सी डाइट.
3: डाइट वूट छोड़ो मारो गोली.
1: हाँ भाई तीन दिन ज्यादा डाइट नहीं होती. तीन दिन बहुत ज्यादा बोल दी मैंने. हो गया अपना.
3: जब तक के नगद आइटम सामने नहीं आया जब तक दिल नहीं भरता.
1: बस यही तो चाहिए. यही तो चाहिए. ओके मेरा भाई.
3: कोई बात नहीं कबीर भाई. वक्त में ज्यादा आपका जाया नहीं करूंगा. बस अपना ख्याल रखिए. नंबर है कभी भी आप कॉल कर सकते हैं कबीर भाई.
1: डन मेरा भाई. बहुत मोहब्बत भाई को. थैंक यू सो मच मेरे भाई.
3: शुक्रिया. जजाकल्ला. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. और भाई के बाद जो है एक और शख्स थे. उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुझे बोला था कॉल करने के लिए. उनको कर ही लेता हूँ. एक कॉल और आ रही है. ओके अस्सलाम वालेकुम.
4: वालेकुम सलाम कबीर भाई. क्या हाल चाल है.
1: अल्हम्दुलिल्लाह भाई एकदम शानदार. आप सुनाए मेरे भाई.
4: अल्हम्दुलिल्लाह जी कबीर भाई.
1: जी भाई क्या कहना चाह रहे हैं मेरे भाई.
4: स्टोरी के बारे में मैं बताऊंगा. स्टोरी तो पहले मुझे ऐसा लगे कि कोई लास्ट में साइंटिस्ट निकलेगा शायद, क्योंकि आपने बोला कि बहुत गरीब फैमिली से जो है ना ताल्लुक रखता था. फिर बाद में जब हम शक्ल का बात आया तो मैं सोच रहा था लास्ट तक कि मैं शायद ये दोनों भाई निकलेगा.
1: फिर नहीं निकले.
4: नहीं निकले. डीएनए किया तो उसमें सब कुछ खत्म हो गया.
1: तो सोचो ये कितना अजीब इत्तफाक है मेरे भाई.
4: बिल्कुल. ये बस कहानी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी. और वैसे मैंने अपने जिंदगी में ऐसे देखे जैसे मैंने अपना खुद का भाई हम शक्ल उसका मैंने टिकटॉक में देखा था.
1: अच्छा.
4: उसको मैंने ग्रुप में उसको मैंने पर्सनल में भेजा कि ये देखो आपके जैसा है. बिल्कुल सेम हेयर स्टाइल सब कुछ. हाइट. और एक कजन को मैंने देखा था मदीना में. उसको मैंने भेजा था बिल्कुल आपका उसका जो वेट वजन के हिसाब से हाइट की वजह हिसाब से सब सेम था.
1: और एक्चुअली पता क्या
4: नाम इसमें नहीं पूछा था.
1: इसमें क्या जैसे नाम भी सेम है और हाइट भी सेम है और चश्मा भी पहनते हैं. कुछ ज्यादा ही इत्तफाक हो गया इसमें. और कुछ नहीं.
4: और हॉबीज भी सेम थे. सब कुछ सेम था. ज्यादा बहुत ज्यादा इत्तफाक हुआ था.
1: नहीं पर ये इत्तफाक जो है ये अंग्रेजों के साथ कुछ ज्यादा ही होते हैं. हमें अपने वालों में सिर्फ ऐसा लगता है कि इसकी तरह दिखता है. तो ये कॉल पर इंशाल्लाह और भी स्टोरीज आएंगी ऐसी. मैं ढूंढूंगा देसी दुनिया में भी कहीं ना कहीं मिलेगी. इंशाल्लाह भाई और कहानी लेके आएंगे.
4: बिल्कुल जी.
1: बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई. बहुत मोहब्बत. आपका नाम तो बता दो. नाम तो बता दो अपना.
4: शाकिरुल्लाह. सुबह भी आपसे बात हुआ.
1: ओके ओके. हाँ ओके. शाकिर भाई ने ही तो बताया था प्रेस के बारे में. थैंक यू सो मच.
4: बिल्कुल.
1: बहुत बहुत शुक्रिया.
4: ओके थैंक यू.
1: ओके भाई. वालेकुम अस्सलाम. और भाई के बाद मैसेज क्या है. आज इतनी मिल गई हमको. क्या बात है. अच्छा फरद भाई मुबारक हो. ये तो अच्छी डिस्कवरी है. एक और कॉल आ रही है. कमाल भाई क्या. अस्सलाम वालेकुम. हेलो.
5: अस्सलाम वालेकुम.
1: जी भाई कैसे हैं कमाल भाई. अब बताइए.
5: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है.
1: जी भाई क्या क्या बोलेंगे आज की कहानी
5: भाई. आप तो जो है जुड़वा और जो है ट्रिपल और सबको मिलाने के चक्कर में लगे हुए हैं. वो भाई साहब जो फोन किए थे थोड़ी देर पहले बोले सेम उसी की जैसी दिख रही थी. पर कम से कम नाम पूछ लेते दो बहने मिल जाती.
1: हाँ ये भी. अरे ये भी तो सकता था. वाह वाह वाह अहमद भाई अगर सुन रहे हैं आप तो ये भी हो सकता था. खामा खा दो लोगों को मिलने से रोक लिया इन्होंने.
5: दोनों से मिलने से रोक लिया.
1: बताइए.
5: और इसमें कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा थी भाई. कहीं ऐसा तो नहीं है विकेट डोनर वाला हिसाब चल रहा है या डॉक्टरों का कुछ गेम है इसके अंदर.
1: पता नहीं ये तो बिल्कुल पता नहीं. पर सामने तो यही आया फिलहाल तो मैंने कहा ये देखते बता देते. तो ये था सीन.
5: कंफ्यूजिंग. नाम सेम. हॉस्पिटल सेम. हेल्थ सेम. भी डीएनए अलग.
1: सब कुछ अलग भाई. और इनफैक्ट इतना ज्यादा सिमिलैरिटीज है कि उन दोनों को भी हजम नहीं हो रही कि इतना ज्यादा इत्तफाक कैसे हो सकता है. पर है.
5: हो सकता है कि जब डीएनए के जब टेस्ट हुआ हो सकता है कि भाई
1: किसी ने खेल कर दिया.
5: जब किसी ने खेल कर दिया जब बड़े उस पे वो होता है तो कुछ ना कुछ तो कांड भी तो होता है ना भाई.
1: ये भी
5: ऐसा नहीं है.
1: एक आपके लिए मैसेज आया, ये अहमद भाई कह रहे हैं भाई नाम पूछने की हिम्मत नहीं हुई इसलिए नाम नहीं पूछा।
5: तो नाम दो बहनों को आपने मिला नहीं पाए ना भाई।
1: हाँ अहमद भाई आप मिस
5: पूछ लेते, अगर हिम्मत हो जाती दो बहनें मिल जाती।
1: हाँ ये तो है, अभी अभी आपने काम का गिल्ट बढ़ा दिया, नाम ही पूछ लेता सीता गीता मिल जाती। नहीं पर ये बात है, मैं समझ सकता हूँ, उस वक्त तो आदमी सोचता भी नहीं ना कि यार अभी यहाँ पे कैसे पूछूं मैं। इंडिया
5: होता है कुछ लोग ऐसे हम सकल जैसे दिखते भी हैं लेकिन आदमी रहे तो आदमी से पूछ सकता है, ये तो एक मजाक की बात थी।
1: हाँ नहीं वो तो है,
5: थोड़ी सी हिम्मत।
1: ऑब्वियसली ऑब्वियसली नहीं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया
5: भाई, कमाल भाई। और जो है अभी भाई ने बोला कि जो है ना कि आपसे बात करने का दिल नहीं भरता, वाकई में नहीं भरता लेकिन क्या करे वक्त का वो रहता है, और जो भी बात हम लोग कहते हैं वो सब दिल से निकलती है कबीर भाई।
1: नहीं मैं जानता हूँ मेरे भाई, ये आप लोगों की मोहब्बत।
5: और भाई आप जरा अपने कंपनी का ईमेल दीजिए, अपने बॉस का ईमेल करें भाई कि मॉर्निंग छोड़ के जाना नहीं है
1: भाई। हमारा क्या रोस्टर ऐसे चल रहा है ना, तो 3-4 महीने मेरे ख्याल में यही सिस्टम है अभी कि मॉर्निंग है फिर इवनिंग है फिर मॉर्निंग है, सो ये ऐसे चलता रहेगा।
5: हाँ शायद हो सकता है।
1: हाँ वही
5: वही शफल है भाई, अभी आने वाले होंगे तो हो सकता है।
1: तो इसीलिए फिर वापस इवनिंग फिर वापस इंशाल्लाह आगे जाके मॉर्निंग, तो ऐसे चलता रहेगा।
5: ठीक है इंशाल्लाह।
1: ठीक है मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
5: ओके
1: भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो ऐसा ही है सीन, बाकी खबरें कुछ देर में आ रही हैं, मिलते हैं, जाना अपने। बढ़िया सा गाना लगाता हूँ, बढ़िया सा। इसके बाद सीधा खबर 8:32 कुछ मैसेजेस हैं, इनफैक्ट कॉल भी करने की, मैं सारे के सारे पढ़ देता हूँ। सुबह की जनता अलग है, आप मानिए मेरी बात को, अगली बार कह रहे हैं अहमद भाई। अहमद भाई कोई कोई नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं भाई।

8:26 बाद क्लॉक. क्या मुझे प्यार है? देखो आप कुछ भी डिबेट कर लो, के से बढ़िया ना, ना जी ना.

0: देखिए जो जो एक टाइम पे किशोरदा बच्चन साहब के लिए बन गए थे लाइक द प्लेबैक सिंगिंग ही वाज डूइंग बच्चन साहब के लिए, वैसे ही आप माने या ना माने बीच में एक पूरा एरा आया था जब केकी की आवाज एकदम इमरान हाशमी पे फिट होती थी, समझ रहे हैं आप, एंड अमेजिंगली हिमेश रेशमिया की फिट होती थी बड़ी कमाल की बात है, बट केके की आवाज और वो भी इमरान हाशमी पे ऐसी फिट होती थी भाई, लगता था कि वही गा रहा है। एक तो इमरान हाशमी की लिपसिंग बड़ी बढ़िया है, लिपसिंग जो वो करते हैं गाने की, आ हा हा हा। एनीवे 666-22107 पे कई सारे लोगों ने मैसेज किया था, मैं बिल्कुल मुझसे छूट गया तो मैं माजरा चाहता हूँ, बट आई विल रीड इट। कबीर भाई कहानी तो गोपी किशन निकले जी भाई, ऐसा ही था। एक और मैसेज है और अर्सलान भाई ने तो दो मेरे डुप्लीकेट बना के मुझे फोटो भी भेज दिया भाई ने, और बाकी मैसेज क्या है क्या है भाई, अपनी शक्ल का सेम डिट्टो कतर में मिला था लुसेल मरीना में, सलाम दुआ हुई उससे नहीं हुई। गुड मॉर्निंग कबीर, गुड मॉर्निंग, हेलो सर अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहीं कहानी दोबारा सुननी है, भेजूंगा डोंट वरी। एक और मैसेज है, कबीर साहब क्या हाल है भाई, मैं एक भाई हैं मेरे, इनको मैं ज़रा कॉल नहीं कर पाया हूँ, आई नो इनको थोड़ा सा गुस्सा आ गया होगा तो मैं कॉल कर लेता हूँ, वैसे तो बहुत देर में कर रहा हूँ मैंने कॉल, पर बीच में कर नहीं पाया तो उसके लिए माजरा चाहता हूँ। कई मरतबा हो जाता है कि आप बोलते हैं कॉल कर लो लेकिन मैं लेट हो जाता हूँ, तो उसके लिए मैं पहले से ही सारी बोल दूँ सारी। अभी कॉल उठाएंगे तो बात हो जाएगी, नहीं उठाएंगे तो कोई गाल नहीं, मैं जो खबरें हैं वो पढ़ दूंगा मैं और एक एक करके सारी खबर। अस्सलाम वालेकुम।
1: सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं जीत गया इनाम आज, मेरे को कॉल आ गया
0: भाई। मैं सॉरी मैंने आपको लेट कॉल करी है, वरना मैं करता जरूर मेरे भाई, बस लेट हो गया।
1: मुश्किल नहीं
0: जी मेरे भाई, बताइए क्या कहना चाहते हैं।
1: आपका भाई, हमारा भाई, हम सबका भाई, कबीर भाई, कबीर
0: भाई, बहुत प्यार भाई को, बहुत प्यार मेरे भाई को। बताइए मेरे जान, आपका नाम क्या है, सबसे पहले तो नाम बताएं।
1: मोहम्मद शफीक बात कर रहा हूँ।
0: जी शफीक भाई, क्या कहना चाहते हैं आप।
1: मैं ये कहना चाहता हूँ, स्टोरी तो बहुत जबरदस्त थी
0: जी भाई,
1: लेकिन मैं अभी अपनी भी सर्च करूंगा, AI से पूछूंगा
0: क्या क्या रिसर्च करने वाले
1: हम भी
0: अपना हम शक्ल ढूंढोगे
1: क्या ना, अपनी फोटो पोस्ट करके देखेंगे भाई हमारी, हमारा डुप्लीकेट किधर है बताओ हमारे
0: क्या करोगे अगर डुप्लीकेट मिल गया, चलो मिल भी गया तो क्या करोगे क्या उसका
1: वो फिर आगे देखेंगे ना, फिर उसी से पूछेंगे ना, फिर AI से
0: नहीं, फिर भी चलो मान लो कि एक साल बाद मिल गया आपको, अरे वाह बिल्कुल सेम दिख रहा है बंदा, तो क्या रिएक्शन क्या होगा आपका, बात करना चाहेंगे नहीं करेंगे क्या।
1: तो जारी बात तो फिर करेंगे ना, फिर कहेंगे जुड़वे भाई हैं हम दोनों।
0: ओहो इतनी तड़प डुप्लीकेट को ढूंढने की मैंने आज तक नहीं देखी भाई
1: ऐसे ही ऐसे।
0: अच्छा
1: और एक और बात हो भाई, कल फोन किया था ना भाई ने, वो जो कहे थे मेरी गलती नहीं है एक्सीडेंट की, तो ये कहना चाहूंगा उनके बारे में, हाँ एक एक रीजन है जो उनकी गलती नहीं हो सकती, अगर बंदा बैक आ रहा ना आगे वाला, बैक करके बैक आ रहा तो इन्होंने पीछे से दम कर दिया, तो फिर उसकी गलती ही होगी बैक करने वाले की।
0: अच्छा
1: इनकी गलती नहीं होगी।
0: चलिए वैसे तो बची गए वो, उनका तो अब एकदम
1: वो ही बची गए, लेकिन फिर भी उनको बेचारों को बहुत टेंशन थी, तो मैं कहा चलो जितना इलम है हमको उतना तो दे ही सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कल तो जितने लोगों ने इल्म दिया बेचारे डर गए उस इल्म के चक्कर में, बोले भाई सबके सब मेरे खिलाफ ही बोले जा रहे हैं, कोई साथ ही नहीं दे रहा है। पर ठीक है,
1: इसलिए मैंने कहा, मैं कहा अगर आगे वाला भाई अगर बैक करके निकलने की कोशिश करा राइट या लेफ्ट, उस दौरान अगर लग जाए पीछे वाले थे तो फिर वो बैक करने वाले की गलती होती है।
0: अच्छा ये ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड,
1: ये रूल है इधर का।
0: ठीक है भाई, जजाकल्लाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका,
1: बाकी थैंक यू कॉल करने का,
0: नो प्रॉब्लम भाई, नो प्रॉब्लम भाई, जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम,
1: ओके ओके, अल्लाह हाफिज।
0: तो भाई से बात हो गई फाइनली, अभी कोई रह नहीं गई कॉल, तो मैं ज़रा ख़बरों की तरफ बढ़ लेता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको बताना बेहद बेहद ज़रूरी है। एक और मैसेज है मेरे पास, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या कह रहे हैं कबीर भाई, शाम का शो क्या ड्राइव थ्रू में वापस आ रहे हैं आप, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग, क्या बोला मैंने, तो ये होगा 1 जून से होगा मेरे भाई, शो का नाम ड्राइव थ्रू नहीं है पहली बात, तो शो का नाम चेंज है, वो आपको आपके लिए सरप्राइज़ है। वैसे भाई AI से पूछेंगे सेम मिल गया तो फिर DNA टेस्ट करवाएंगे, जाके देखो DNA टेस्ट, फैसल भाई देसी लोगों को DNA टेस्ट कराने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं बता आपको। अच्छा कुछ खबरें हैं, जरा उनकी तरफ पहले बढ़ेंगे हम। सबसे पहली खबर है मिनिस्ट्री ऑफ वकाफ एंड इस्लामिक अफेयर्स की तरफ से, जिन्होंने इनॉग्रेट करी है एक नई मस्जिद, सैफ बिन सैफ अल मदादी जामी मॉस्क, ये मायदर अल वकैर एरिया में एक नया एडिशन है कंट्री के ओवर एक्सपेंडिंग जो एरियाज़ हैं वर्शिप के उन तमाम जगहों पर, जो ये नई मस्जिद जो ओपन हुई है, कंस्ट्रक्ट हुई थी, काफ़ी टाइम से कंस्ट्रक्शन चल रहा था एंड काफ़ी स्पेशियस है, 4,000 स्क्वायर मीटर्स की है और यहाँ पे 5

170 लोग आराम से आके नमाज पढ़ सकते हैं। इसमें 500 मेन, एक अलग रूम बनाया गया है प्रेयर हॉल, और 70 जो है फीमेल्स आके यहाँ पे नमाज अदा कर सकती हैं। तो ये बहुत बढ़िया डिसीजन है। इनफैक्ट उस जगह जहाँ पे ये मस्जिद है उसके आसपास वैसे तो बहुत सारी मस्जिद है, मगर एक यूनिक एक्सपीरियंस हो जाता है, विच रिमाइंड्स मी कि अभी तक पर्ल वाली मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी, तो वहाँ जाना पड़ेगा। एक और मैसेज है, कतर म्यूजियम जो एक खबर और है वो बता दूं, कतर म्यूजियम जो है वो इनवाइट कर रहा है पब्लिक को, कह रहा है कि आइए देखिए, क्योंकि काफ़ी वक्त से काम चल रहा था आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स पे, आर्कियोलॉजिकल वर्क पे, और अब उनका सेकेंड एडिशन शुरू हो चुका है ओरिएंटेशन डे 2026 का, जो कि 14 मई को होने वाला है 2026, इसी महीने की, मतलब आज 11 तारीख हो चुकी, 3 दिन बाद, नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर में ही, और इसमें पब्लिक, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, हेरिटेज एंथुजियास्ट सब अटेंड करने वाले हैं। आप भी पहुंच सकते हैं, इसमें आप स्पेशलिस्ट से बात भी कर सकते हैं और एक डीपर नॉलेज ले सकते हैं उन चीज़ों के बारे में जो कतर के इतिहास से हैं। तो माजी की, जो कहते हैं ना शायरी के अंदाज में, माजी को खिड़की से झांकूंगा, तो ये है वो, यहाँ पे जाके आप खूब माजी को झांक सकते हैं, जान भी सकते हैं। इसके अलावा कतर यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया है कि ऑनलाइन तैयारियां शुरू हो चुकी हैं एप्लीकेशंस की फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, जो कि इस साल के फॉल के हैं, 2026 फॉल। सो एप्लीकेशंस अभी ओपन हो चुकी हैं ट्रांसफर स्टूडेंट्स के लिए और सेकेंड बैचलर्स डिग्री स्टूडेंट्स के लिए। इसी के साथ साथ नए स्टूडेंट्स के लिए भी, विजिटिंग स्टूडेंट्स के लिए भी, और नॉन डिग्री कोर्सेज स्टूडेंट्स के लिए भी यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी एप्लीकेशन ऑन कर चुकी है। दिस इज बाय कतर यूनिवर्सिटी। एप्लीकेशन जो ट्रांसफर स्टूडेंट्स के लिए और सेकंड बैचलर स्टूडेंट्स के लिए है वो ओपन रहेगी 20 मई तक, और जो दूसरी एप्लीकेशन हैं नए और विजिटिंग स्टूडेंट्स के लिए वो कंटिन्यू रहेगी 24 जून तक। दिस इज बाय कतर यूनिवर्सिटी। अगेन मैं बता रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी में कंफ्यूज ना हो जाए। एंड इसमें सारा जो कि डॉक्यूमेंटेशन काम बहुत कुछ है, तो अगेन कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ उनको कॉल करके पूछ लीजिएगा। आई डोंट वांट टू बी रॉन्ग, बट जितनी जो ऊपरी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए लायक है अभी जानना, वो मैंने बता दी। बाकी इसमें डीप डाउन करना चाहे तो यू कैन गिव देम अ कॉल। अब एक और चीज़ है, बहुत सारी एयरलाइंस ओपन हो रही हैं। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आप देख सकते हैं कि एयरलाइंस की लगातार तांता लगा हुआ है। अप्रैल की 21 तारीख से कई सारी फ्लाइट्स ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं, अभी बहुत सारी और ओपन हो रही हैं। मीनवाइल मई के महीने में आते हैं तो एयर इंडिया एक्सप्रेस, गल्फ एयर, इंडिगो पे 4 मई को इथोपियन एयरलाइंस, 5 को सऊदी एयरलाइंस, 7 को एयरवेज, 11 को आज से श्रीलंकन एयरलाइंस, कल जो है वो ऑन हो जाएगी पेगासस एयरलाइंस, देन 17 को कम एयर, देन 19 को फाइनस, देन 1 जुलाई को सीधा रॉयल एयर मार्को, और फिर मलेशियन एयरलाइंस अगेन जुलाई 2 तारीख को। तो ये फ्लाइट्स की जरा अपडेट है, इस पर जरा मार्किंग कर लीजिएगा इन केस यू प्लानिंग टू ट्रैवल। मतलब ये तो भाई बेसिक है, पता होना चाहिए। बाकी 666-22-107 मैं दोहा वाला कबीर आपके साथ, एंड लेट मी नो कुछ भी आप कहना चाहते हैं। कभी कभार खामखा भी बात कर लेनी चाहिए, यू नो, मैं तो इसलिए कर ही लेता हूं, है ना। सिर्फ अरिजीत सिंह

पर अरिजीत सिंह घुंघरू टूट गए। अरे भाई साहब घुंघरू टूट गए यार। अरे बाजी राव मस्तानी। गुड मॉर्निंग। आज मुझे पता है आज मुझे बच्चन साहब सिंड्रोम हो गया। मैं अभी शो के बाद पूरे दिन बच्चन साहब की आवाज से बात करने वाला ये प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं आवाज निकालता ही नहीं हूँ। अभी प्रॉब्लम होगी मैं बता रहा हूँ, पूरे दिन ये करता रहूँगा और लोग मेरे इर्द गिर्द परेशान होंगे फिरते रहेंगे, इसलिए मैं दोस्ती कम बनाता हूँ। तीन चार लोगों को परेशान करूँ चलेगा, पब्लिक को नहीं। अच्छा मैं जाने से पहले बिफोर आई साइन ऑफ बिकॉज 8:50 ऑलरेडी हो चुके हैं, मैं जो हूँ बता दूँ आज कौन कौन से दिन इंटरनेशनली मार्क्ड है कैलेंडर्स में। लोग अलग अलग दिन मनाते ही रहते हैं, कुछ दिन एक्चुअली में मेक सेंस पर कुछ दिन अजीब से ही होते हैं। पर आज जो है वर्ल्ड ईगो अवेयरनेस डे, अपनी अना को लेकर आप अवेयर रहें बहुत अच्छा है। आपको पता होना चाहिए आप कितने ईगोइस्टिक कितने नहीं, तभी आप उस पर काबू कर पाएंगे। सो इट इज़ वर्ल्ड ईगो अवेयरनेस डे, प्लीज मेक श्योर कि ज्यादा चौड़ा आजकल कोई सहता नहीं है किसी की, तो जरा ढंग में डट के रहना है। इसके अलावा टॉयलेट जोन डे है, आज टेक्नोलॉजी डे है। सो अगर आप मेरी तरह एक गीक हैं, गैजेट्स के पीछे दीवाने हैं, खामखा भी आप देखते रहते हैं, तो आज हमारा दिन है भाइयों बहनों, टेक्नोलॉजी डे है। आज है विमेंस चेकअप डे, एंड साथ में मैं ऐड कर देता हूँ मेंस चेकअप डे है तो नहीं आज, लेकिन भाई बॉडी का चेकअप कराते रहना चाहिए, अच्छी चीज़ है। इसके अलावा फोम रोलिंग डे है, आज स्टेशनरी वीक स्टार्ट होती है आज से, इनफैक्ट आज है नॉइज एक्शन वीक। गाड़ी के शीशे नीचे करके जो आप लाउड म्यूजिक चलाते हैं अच्छी बात नहीं, दिल्ली थोड़ी है ये, तो ये ना किया करें क्योंकि उसमें जलान भी है। इसके अलावा बाइक टू वर्क डे, जो लोग बाइक लेकर और स्पेशली वो जो स्कूटर्स हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लेकर काम पे जाते हैं इस गर्मी में जो अभी 2 घंटे बाद और बढ़ जाएगी, तालियां, आई डोंट नो आप कैसे कर रहे हैं, सलाम है आपको, इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग पर मैं कर नहीं पाऊंगा। इसके बाद है आज सन अवेयरनेस वीक, ये क्या अवेयरनेस वीक, सन हमें बहुत अच्छे से अवेयर कराता है, हम भूल ही नहीं सकते। तो इसके अलावा लर्निंग एट वर्क, काम पे नई नई चीज़ें सीखना भी डे आज ही वाला दिन है।

सीरियस बातें मैं कर ही नहीं सकता. एनीवे, अभी का जो टेम्परेचर है बिफोर आई साइन ऑफ ये भी आपको बता देता हूँ, तो 33 डिग्री सेल्सियस फॉर नाउ, 40 से ऊपर तो जाएगा पूरे दिन आज. लेकिन हवाएं जो हैं कल के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा रफ्तार से, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एंड द गस्ट ऑफ विंड जो वो चल रहा ना, क्या कह मैं उसे, झोंका हवा का, वो भाई बहुत तेज है आज का. एंड आज ह्यूमिडिटी लेवल इज 27%, बहुत ही ज़्यादा कम है, तो बिल्कुल सूखी सूखी म्यूजिकल डॉक्टर्स वाली गर्मी पड़ रही है. अमन भाई ने मैसेज किया कि कबीर भाई टेक केयर मेरे भाई, बाइक्स इन साइकिल इन यूरोप आई सपोज. हाँ उधर ही है, इधर तो कौन बनाएगा. कह रहे हैं इफ दिस क्वेश्चन इज स्टिल ऑन, मैट गाला देखने के बाद ऐसा लगता है कुछ भी पहन सकते हैं, प्रेस करने का सवाल ही नहीं उठता. बात तो सही है. बाद में अदर शिफ्ट में आएंगे, अभी तो मैं इधर ही हूँ, जून की पहली तारीख से अलग शिफ्ट होगी, अभी तो मैं किसी शिफ्ट में नहीं आने वाला. बट फॉर नाउ 9 बजे सुनेंगे हम न्यूज़ बुलेटिन. सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, इस नाम से हर जगह मौजूद हैं. यू कैन गेट इन टच विद अस, आप मुझे भी ढूंढ सकते हैं. एंड इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी सवेरे सवेरे 6 बजे. फॉर नाउ दिस इज दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं. मा सलामा.

0: वनके
1: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर दिल से देसी
2: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सर्वर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारते दाखिला की हर एक एक्टिविटी जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस सब कुछ मिलेगा यहाँ ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है MOI वीकली अपडेट आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सर्वर डोंट मिस इट
3: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं ये अल्लाह का कलाम है यह हमें बताता है क्या सही है कौन सा रास्ता बेहतर है और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है बचपन से हमने कुरान पढ़ा तिलावत की लफ्ज दोहराए लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुककर सोचा नहीं जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए खास तोहफा है जो सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाना चाहिए इसलिए FM 107 लाया है एक ऐसा शो जहां बच्चे कुरान को बेहतर तरीके से समझ सकें तो सुनिए कुरान फॉर किड्स हर बुध शाम 3 बजे से RJ तलहा के साथ

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हेडलाइंस में जीसीसी गेम्स का चौथा एडिशन आज से कतर के 11 मुख्तलिफ वेन्यूज पर खेला जाएगा। इस मुकाबले में 19 मुख्तलिफ स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स शामिल होंगी। अगले साल होने वाले एएफसी एशियन कप फुटबॉल के ड्रॉ के बाद मेजबान सऊदी अरब को ग्रुप ए में कुवैत, ओमान और फिलिस्तीन के साथ रखा गया है, जबकि कतर को ग्रुप एफ में जापान के साथ ड्रॉ किया गया है। थाईलैंड और इंडोनेशिया भी इसी ग्रुप में शामिल हैं। ये ड्रॉ हफ्ते के रोज रियाद में मुनाकिद हुआ। इतवार को इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में वेस्ट हैम यूनाइटेड के खिलाफ लियोनार्डो ट्रोसार्ड के किए गए गोल ने आर्सेनल को इंग्लिश टाइटल के करीब और करीब कर दिया है। फिलहाल आर्सेनल 36 मैचेस में 79 पॉइंट्स के साथ मजबूत पोजीशन पर है, जबकि मैनचेस्टर सिटी 35 मैचेस में 74 पॉइंट्स के साथ अभी भी टाइटल की दौड़ में मौजूद हैं। इटालियन ओपन टेनिस में यानिक सिनर ने सेबास्टियन ओफनार को 6-3 6-4 सेट से शिकस्त दी, लेकिन वुमेन सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर वन अरीना साबालेंका को हैरान कन अंदाज में इब्तदाई मरहले में शिकस्त का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में बैंगलोर ने मैच की आखिरी गेंद पर मुंबई को 2 विकेट से शिकस्त दी। दूसरे मैच में चेन्नई ने एक हाई स्कोरिंग मैच में आखिरी ओवर में लखनऊ को 5 विकेट से शिकस्त दी। और 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट सीरीज के पहले मैच में मेहदी हसन मिराज ने अपनी शानदार ऑफ स्पिन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 5 विकेट हासिल किए, जिसकी बदौलत मेजबान बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही। आप सुन रहे एफएम 107। अब आप न्यूज हेडलाइंस समाप्त फरमाइए।
1: न्यूज हेडलाइंस विद सरवर मिर्जा।
2: वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा की सरपरस्ती में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दिफा ने इतवार के रोज़ लास्टिंग इम्पैक्ट के उनवान के तहत नेशनल वॉलंटियर प्लेटफॉर्म का इफ्तिताह किया। वज़ारत खारजा में वज़ीर मुमलिकत ने इतवार के रोज़ जर्मनी के चांसलर के सियासी और सलामती मुशीर से मुलाकात की है, जो इस वक्त मुल्क का दौरा कर रहे हैं। रियासत कतर ने इतवार की सुबह कतर की समुद्री हदूद में मीसाईद बंदरगाह के शुमाल मशरक में अबू धाबी से आने वाले एक तजारती माल बरदार जहाज पर होने वाले ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत की है। और सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात, बहरीन, मिस्र और उर्दन समेत दीगर ममालिक ने इतवार के रोज कतर की समंदरी हदूद में अबू धाबी से आने वाले एक तजारती माल बरदार जहाज को ड्रोन के जरिए निशाना बनाने की शदीद मजम्मत की है। सामिन, इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर एफएम 107 से आज का पहला नशरिया अपने अख्ताम को पहुंचा। स्टूडियो से साउंड टेक्नीशियन सारा, सोशल मीडिया से युसरा महमूद और न्यूज रूम से मोहम्मद अमीन, सीम खान और सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए एफएम 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम आज की दुआ में हम एक ऐसी दुआ पर गुफ्तगू करने वाले हैं जो हर मुसलमान के दिल की गहराइयों से निकलती है। ये दुआ वालिदैन के हक और उनके अजीम कुर्बानियों की याद दहानी है जो कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल में जिक्र की गई है। رب ارحمهما كما ربياني صغيرا। ए मेरे रब, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: कानून हमें तहफ्फुज़ देता है और वज़ारते दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
3: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
4: दोस्तों, सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरास जुर्म रोकने और उनकी डिटेक्शन में मदद करते हैं। ये इंश्योर करें कि ये कैमरास सिर्फ लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड कंपनीज के जरिए इंस्टॉल किए गए हों, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंस्ड या रजिस्टर्ड हैं। ये आपकी प्राइवेसी की हिफाजत करते हैं और सेफ्टी को इनहेंस करते हैं। सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमराज आजकल हर जगह जरूरी हो चुके हैं, घर से लेकर ऑफिस तक। ये कैमराज ना सिर्फ जुर्म की रोकथाम में मदद करते हैं, बल्कि किसी भी हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन में भी मददगार साबित होते हैं। याद रखिए, अनऑथराइज्ड कंपनीज के थ्रू लगवाए गए सिस्टम आपकी प्राइवेसी के लिए रिस्क बन सकते हैं। सिर्फ लाइसेंस्ड कंपनीज ही आपकी डेटा प्रोटेक्शन और कैमरा कवरेज के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस देती हैं। कैमरास को एंट्रेंसेस, एग्जिट्स और पार्किंग एरियाज में इंस्टॉल करें। ये आपके लिए जहनी सुकून का बायस बनते हैं, खासकर जब आप घर या ऑफिस में नहीं होते। आपके सेफ और स्ट्रेस फ्री दिन की दुआ के साथ FM 107 हमेशा आपके साथ है।
0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: 107 Dil Se Desi.
1: FM 107 presents Your Health Matter. Your Health Matter with RJ Shruti.
2: कभी सोचा है हम एक्सरसाइज का नाम सुनते ही थोड़ा सीरियस क्यों हो जाते हैं. जिम मेंबरशिप्स, हैवी शूज, स्ट्रिक्ट रूटीन और फिर हम कह देते हैं यार मेरे बस का नहीं है. पर आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी एक्सरसाइज की जो ना इंटिमिडेटिंग है, ना एक्सपेंसिव है और ना ही कंफ्यूजिंग है. इसका नाम है वॉकिंग. हाँ, वही सिंपल सी वॉकिंग जो हम रोज करते हैं पर एक्सरसाइज के रूप में अक्सर इसे कंसिडर नहीं करते. वॉकिंग बॉडी के लिए नेचुरल मूवमेंट है. हम बिना सोचे समझे चलना स्टार्ट कर देते हैं. कभी भी आप देखना कि अगर आप प्रेशर फील कर रहे हो, आप उठ के चलने लग जाओगे अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए. किसी का अगर फोन आए तो बहुत लोग हैं जिन्हें बैठ के बात करने से ज्यादा बेटर चल के बात करना पसंद है. जब आप वॉक पर जाते हो ना, बॉडी जेंटली एक्टिवेट होती है, हार्ट रेट थोड़ा बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और मसल स्मूथली काम करने लगते हैं. इसलिए वॉकिंग को लो इम्पैक्ट हाई बेनिफिट एक्सरसाइज कहा जाता है. अगर आप थके हुए हो या अगर आप कंसिस्टेंसी स्ट्रगल करते हो, वॉकिंग सबके लिए सेफ और इफेक्टिव है. वॉकिंग का एक और मैजिक है, ये सिर्फ बॉडी के लिए ही नहीं माइंड के लिए भी थेरेपी जैसी होती है. आपने नोटिस किया होगा जब आप थोड़ा वॉक कर लेते हो तो थॉट्स थोड़े और क्लियर हो जाते हैं, स्ट्रेस हल्का लगता है और मूड भी अपलिफ्ट हो जाता है. स्पेशली जब आप फोन घर पर छोड़ देते हो और बस आसपास को देखते हुए चलते हो. वेल, वॉकिंग डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, स्लीप क्वालिटी बेटर बनाती है और डेली एनर्जी लेवल्स को बैलेंस करती है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वॉकिंग सस्टेनेबल है. इसमें ऑल और नथिंग नहीं होता. 10 मिनट चल लो अच्छा, 20 मिनट चल लो और अच्छा, और अगर आज कुछ मिस हो गया हो तो कल फिर से शुरू कर सकते हो. वेल, वॉकिंग आपको गिल्ट नहीं देती, ना ही कोई प्रेशर देती है, बस सपोर्ट करती है. और ये जरूरी नहीं कि आप सुबह 5 बजे उठकर वॉक पे चले जाए. जो भी टाइम आपके रूटीन में फिट होता हो वही टाइम आपके लिए बेस्ट है. सुबह की ठंडी हवा, शाम का सनसेट या लंच के बाद थोड़ा सा स्ट्रॉल, हर वॉक काउंट करती है. वॉकिंग का एक और अंडररेटेड बेनिफिट है, ये आपको बॉडी के साथ रिकनेक्ट करती है. हर स्टेप के साथ आप अपने आप से थोड़ा और कनेक्ट हो रहे होते हो. सांस रिदमिक हो जाती है, पैरों का मूवमेंट और स्ट्रांग हो जाता है और सराउंडिंग की आवाज ये सब प्रेजेंट मोमेंट में लाता है. तो आज का एक सिंपल सा थॉट, एक्सरसाइज को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए. कभी कभी सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा होता है. बस आपको करना ये है, जरा उठिए, अपने शूज पहनिए और बाहर निकल जाइए. ज्यादा कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कान में अपने फेवरेट गाने चला लीजिए या FM 107 सुनते हुए वॉक कर लीजिए. और इसी सिंपलिसिटी के साथ वॉकिंग आपकी सबसे पावरफुल एक्सरसाइज बन जाएगी. एंड ऑलवेज रिमेम्बर, योर हेल्थ मैटर.
1: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti.
3: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी.

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे एक स्टार टेनिस प्लेयर के बारे में, एलिना रिबाकिना। जी हाँ दोस्तों, एलिना रिबाकिना आज के दौर की उन टेनिस स्टार्स में से एक हैं जिन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी और पावरफुल गेम से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। कजाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली रिबाकिना ने अपनी मेहनत से एलिट लेवल पर अपनी जगह मजबूत की। अगर उनकी करंट फॉर्म की बात की जाए तो वो इस वक्त WTA रैंकिंग्स में वर्ल्ड नंबर 2 पर हैं, जो उनके करियर का हाईएस्ट लेवल भी रहा है। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ग्रैंड स्लैम स्टेज पर आई, जहां वो अब तक 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीत चुकी हैं। पहला विंबलडन चैंपियनशिप 2022 में और दूसरा 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर। रिबाकिना का प्लेइंग स्टाइल दोस्तों थोड़ा एग्रेसिव है। उनका पावरफुल सर्व और स्ट्रॉन्ग बेसलाइन गेम उन्हें बाकी प्लेयर्स से अलग बनाता है। वो प्रेशर मोमेंट्स में भी बहुत काम रहती हैं, जो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आज वो विमेंस टेनिस की टॉप कंटेंडर्स में शामिल है दोस्तों, और हर ग्रैंड स्लैम के टॉप लिस्ट में उनका नाम होता है। इंजरीज और टफ कंपटीशन के बावजूद उन्होंने बार बार प्रूव किया है कि वो हाईएस्ट लेवल पर कम्पीट कर सकती हैं। एलिना रिबाकिना दोस्तों सिर्फ एक चैंपियन नहीं, बल्कि एक मॉडर्न डे टेनिस फोर्स हैं, जो हर मैच में डोमिनेंस और कंपोजर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाती हैं। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाइलाइट्स पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
2: फ्रॉड अवेयरनेस।
3: सर फ्लैट बिल्कुल रेडी है, बस टोकन अमाउंट भेज दीजिए, सपना घर का और स्कैम टोकन का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वेद और आप सुन रहे हैं फ्रॉड अवेयरनेस। इस तरह के स्कैम को बोलते हैं फेक प्रॉपर्टी स्कैम। फेक प्रॉपर्टी एड्स लो रेंट, प्रीमियम फोटोज और अर्जेंट टोन इस्तेमाल करते हैं। ओनर मिलने से पहले एडवांस मांगता है, उसके पहले वो इतने अच्छे से बात करता है, इतना अच्छा घर दिखाता है, दो चार स्टोरीज भी सुना देगा कि हमारे पहले वाले किराएदार ऐसे थे, उम्मीद करता हूँ आप और भी अच्छे होंगे। आपको तो ऐसा लगता है जैसे उससे अच्छा जिगरी कोई है ही नहीं, इतना अच्छा ओनर तो आपको इसके पहले कभी मिला ही नहीं। और इन सब के चलते आप पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट के बाद उस नंबर पे कॉल करते हैं, आप जाते हैं देखते हैं नंबर पे कॉल करते हैं, नंबर स्विच्ड ऑफ है, बंदा फोन नहीं उठा रहा है, गायब। तो दोस्तों याद रखिए, प्रॉपर्टी जैसी चीज बिना विजिट बिना डॉक्यूमेंट्स के कभी पेमेंट मत कीजिए। तो घर लेने से पहले सच का सामना जरूरी है, प्रॉपर्टी को अपनी आंखों से देखें समझें जाने सारी डिटेल, खुद थोड़ा होमवर्क करें, वरना स्कैमर स्कैम करके गायब हो जाएगा और आप उसे ढूंढते रह जाओगे।
2: सतर्क रहें, सावधान रहें। फ्रॉड अवेयरनेस
1: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: साथियों, जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए, और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस

0: भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है. सेविंग, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग. इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर, एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर. बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल रियल लाइफ. योर गाइड फॉर स्मार्टर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन. सिर्फ सुनना ही नहीं, समझना भी शुरू.
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा, और ये है आपका अपना फाइनेंशियल गाइड शो जिसका नाम है मनी नेविगेटर. देखिए, आजकल की जिंदगी फास्ट लेन में चल रही है साथियों. सैलरी आती तो है और पता भी नहीं चलता कि कहां चली गई. हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी सैलरी को पर लग गए और वो एकदम फुर्र करके उड़ गई. कभी नया मोबाइल चाहिए होता है, कभी ब्रांडेड कपड़े, कभी वीकेंड ब्रंच, और कभी कभी बस दिल कर रहा था वाली शॉपिंग जो हमारी चलती है ना, वो हमें बहुत नुकसान पहुंचा देती है. और फिर महीने के एंड पर हमारे दिमाग में चिड़िया की तरह एक सवाल घूम रहा होता है, पता है क्या होता है? अरे भाई, मैंने महीने तक पैसे तो छापे, मतलब ये कि मेरे अकाउंट में सैलरी तो आई, लेकिन यार ये पैसे गए कहाँ? साथियों, इसी कंफ्यूजन और स्ट्रगल को समझने के लिए हम लेकर आए हैं आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक. पता है क्या है? वो है हमारा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन. अच्छा, जिसको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के बारे में समझ में नहीं आता कि क्या चीज है, मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश करती हूँ. तो भाई, क्लास शुरू की जाए लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की. साथियों, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं. मतलब पहले अगर सोचा जाए तो 3000 रियाल में हम गुजारा कर लिया करते थे, फिर सैलरी 6000 हुई तो आपका लाइफस्टाइल भी डबल हो गया. अब आपको वही पुरानी चीजें कम लगती हैं, या यूं कह लें कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं भी मुझे और की जरूरत है. पहले देखिए, सिंपल कॉफी पे हमारा गुजारा हो जाता था, सस्ती सी एक रैली कॉफी पकड़ी, ये जा वो जा. अब मामला ये हो जाता है, क्योंकि सैलरी बढ़ गई है तो हमें फैंसी कैफे की कॉफी चाहिए. भाई देखिए, पहले एक अच्छा सा फोन काफी होता था, इतना कि फोन उठाया, फोन किया, बस टच स्क्रीन हो चल जाएगा. अब हर साल अपग्रेड भी तो जरूरी होता है. ये सब आहिस्ता आहिस्ता होता है, इतना रैपिडली नहीं होता कि आप इसे सोच समझ के कर सकें. इतना स्लो होता है कि हम खुद भी इसका एहसास करना भूल जाते हैं कि हम अपनी इनकम के साथ साथ अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को भी इन्फ्लेट कर रहे हैं. अच्छा, और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन सिर्फ हाई अर्नर्स का मसला नहीं होता. ना ना ना ना, ये हर किसी को अफेक्ट करता है भाई. चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब स्टार्ट की हो, या फिर कतर में सालों से काम कर रहे हो. जरा सोचिए, अगर आपकी सैलरी बढ़ती है लेकिन सेविंग्स वहीं की वहीं रहती हैं, तो असल में आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं क्या? आप सिर्फ ज्यादा कमाकर ज्यादा उड़ा रहे हैं, यानी कि खर्च कर रहे हैं, और ये साइकिल आपको कभी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तक नहीं पहुंचने देता साथियों. इसीलिए मनी नेविगेटर का मिशन है कि हम आपको सिर्फ पैसे कमाने का नहीं, बल्कि अपने पैसे को संभालना भी सिखाएं भाई, मैनेज करना सिखाएं, मैनेज करने का और उसे ग्रो करने का तरीका सिखाएं. देखिए, एक सिंपल सी बात है, हमारा मनी नेविगेटर का प्रोग्राम जो आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर ले जाता है, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक. हम यहाँ बात करते हैं इनकम को कैसे मैनेज करें, स्मार्ट सेविंग्स कैसे करें, डेली लाइफ के खर्चों को कंट्रोल कैसे करें, फ्यूचर प्लानिंग और इमरजेंसी फंड की इम्पोर्टेंस क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट, पैसे को अपने लिए काम कैसे करवाया जाए. देखिए, इस प्रोग्राम की खास बात ये है कि सिर्फ थ्योरी नहीं देता, ना ना ना ना, बल्कि रियल लाइफ एग्जांपल्स शेयर करता है, खास तौर पर कतर की लाइफस्टाइल के मुताबिक भाई, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं ना. यहाँ की रेंट, यहाँ की ग्रोसरी, यहाँ की आउटिंग्स और लाइफस्टाइल को मद्देनजर रखते हुए हम आपको प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं भाई यहाँ पर. हमारी कोशिश ये होती है कि कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को इतना सिंपल बनाया जाए कि हर कोई इसे समझ सके, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, या

क्योंकि याद रखें, पैसा कमाना एक अलग स्किल है, लेकिन उसे संभालना एक अलग ही आर्ट है। तो कहीं मत जाइए, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? तो भाई क्योंकि यहाँ का एनवायरमेंट ही ऐसा है जो आपको अपग्रेड करने की तरफ पुश करता है। बेहतर हाउसिंग, ब्रांडेड शॉपिंग, इंटरनेशनल ट्रैवल और सोशल लाइफस्टाइल। इसीलिए मनी नेविगेटर का मकसद ये है कि हम आपको सिर्फ ये ना बताएं कि पैसा कैसे कमाया जाता है, बल्कि ये भी सिखाएं कि उसी पैसे को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ये प्रोग्राम एक सफर है फाइनेंशियल अवेयरनेस का, जहां हम बेसिक से शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपको एडवांस कॉन्सेप्ट तक लेकर जाते हैं। हम बात करते हैं बजटिंग की, सेविंग हैबिट्स की, एमरजेंसी फंड्स के इम्पोर्टेंस की और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। भाई साथ ही हम ये भी डिस्कस करते हैं कि आप अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपके लिए वो पैसा काम करे, ना कि सिर्फ आप पैसे के लिए भाग दौड़ कर रहे हो। देखिए, इस प्रोग्राम की एक खास बात ये है कि सिर्फ थ्योरी पर मुबनी नहीं है प्रोग्राम, हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी शेयर करते हैं आपके साथ जो कि कतर के लाइफ स्टाइल से रिलेटेबल होती हैं। तो भाई आज के एपिसोड में जब हम लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे तो हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि ये होता कैसे है, कौन सी हैबिट्स इसे बढ़ावा देती हैं और सबसे ज़रूरी बात, इससे बचने के तरीके क्या हैं। क्योंकि असल सक्सेस सिर्फ ज़्यादा कमाने में नहीं होती, बल्कि उस कमाई को इंटेलिजेंटली मैनेज करने में होती है। अगर आप हर सैलरी इंक्रीमेंट के बाद अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रख सकते हैं और अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा सकते हैं तो आप असल में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भाई मनी नेविगेटर आपको ये सिखाता है कि पैसा एक टूल है और टूल को सही तरीके से यूज करना कैसे, इसका भी एक हुनर है ना। टूल तो होते हैं लोगों के पास, लेकिन कुछ लोग ही होते हैं जिनको उनको इस्तेमाल करना आता है। हम आपको एम्पावर करते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद किसी और से नहीं, खुद सोच समझ कर लें बिना किसी कंफ्यूजन के। सिंपल जमान में रिलेटेबल एग्जांपल्स के साथ हम कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाते हैं ताकि आप अपनी डेली लाइफ में उन्हें अप्लाई कर सकें। ठीक है भाई, तो चलिए भाई जल्दी से दौड़ लगाते हैं और सफर शुरू करते हैं अपना, और दौड़ते हुए जाते हैं टुडेज मनी क्वेश्चन की तरफ। यानी कि आज का सवाल थोड़ा सा सिंपल लगता है साथियों, लेकिन जवाब बहुत गहरा है। देखें, जरा ईमानदारी से सोचिए, अगर कल आपकी सैलरी डबल हो जाए तो क्या होगा? ओए होए होए होए, मेरे तो दिमाग में आता है मजे, ब्रांडेड शॉपिंग करूंगी, ब्रांडेड रेस्टोरेंट में वाइब आती है ना, वो अच्छे रेस्टोरेंट जाके खाना खाऊंगी, महंगे, वो एस्थेटिक सा थोड़ा माहौल होता है, अच्छा लगता है। तो आप भी यही करेंगे क्या? क्या आपका लाइफस्टाइल डबल होगा या आपकी सेविंग्स डबल होंगी? वैसे हम सबका एक ही जवाब होगा, हमें पता है, क्योंकि साथियों असल बात यह है कि इसी एक सवाल का जवाब आपका फाइनेंशियल फ्यूचर डिसाइड करता है। बहुत से लोग ज़्यादा कमाने लगते हैं लेकिन फिर भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी की वैसी रह जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसेस भी चुपके से बढ़ जाते हैं और फिर लगता है कि पैसा ज़्यादा आने के बावजूद भी काफ़ी नहीं है। ज़रा सोचिए, अगर आप आज अपनी करंट सैलरी के साथ मैनेज कर सकते हैं तो कल डबल सैलरी के साथ आप डबल सिक्योर भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आप अपनी आदतों को कंट्रोल करें, वरना सिर्फ लाइफस्टाइल अपग्रेड होगा, बैंक बैलेंस नहीं। और ये है वो पॉइंट जहां से फाइनेंशियल सक्सेस और फाइनेंशियल स्ट्रगल के रास्ते दोनों अलग अलग हो जाते हैं। चलिए साथियों, अब थोड़ा सा और गहराई से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं जो कि है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। असल में ये होता क्या है? सीधी सी बात है भाई, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपके खर्चे भी बढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों पर नहीं, बल्कि कंफर्ट, कन्वीनियंस और थोड़ा सा स्टेटस भी तो दिखाना होता है ना अपना। ये वो चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में आती हैं बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना रेंट पे किए। आपको लगता है कि आप बस अपनी लाइफ बेटर बनाते जा रहे हैं, लेकिन असल में आप अपनी सेविंग्स को आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहे होते हैं। देखें, जब कोई नया बंदा कतर में आता है ना, तो उसकी लाइफस्टाइल बहुत सिंपल होती है। हर रियाल की वैल्यू से समझ में आ रही होती है, एक्सपेंसेस लिखता है अपने, हर चीज़ प्लान करता है, सोच समझकर अपना पैसा खर्च करता है, घर पर खाना बनाता है, शेयर्ड अकोमोडेशन में रहता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेविंग करता है, वो भी

गोल होता है दिमाग में, पैसा जमा करना है, पैसा जमा करना है, फ्यूचर सिक्योर बनाना है, होता है ना, सबके दिमाग में होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जाता है, बिल्कुल जैसे फिल्मों में गुजरता है ना वैसे। सैलरी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस आता है, और सबसे डेंजरस चीज उसी के साथ आती है, कंफर्ट लेवल बढ़ता है। और यहां से गेम चेंज होना शुरू हो जाता है। आप कहते हो कि चलो अब थोड़ा बेटर अपार्टमेंट ले लेते हैं, चलो अब अच्छी सी शोबाजी के लिए कार ले लेते हैं, उसके साथ स्नैप्स खींचकर दूसरों को दिखाएंगे, चलो अब वीकेंड पर बाहर खाना बनता है भाई, अच्छी बात है। और सबसे फेमस लाइन, इट्स ओके, इट्स टोटली ओके, मैं अफोर्ड कर सकता हूं। और ये वो मोमेंट होता है जहां लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बहुत ही दबे पांव एंटर करती है। आपको ये लगता है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन असल में आपका खर्चा आपकी इनकम के साथ रेस लगा रहा होता है। और फिर एक दिन आप रियलाइज करते हैं कि सैलरी तो डबल हो गई बाबू, लेकिन सेविंग्स वहीं की वहीं हैं, या कभी कभी उससे भी कम हो जाती हैं। चलिए इस बात को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं। और मुझे यकीन है कि आप में से बहुत लोग जो बात मैं कहने वाली हूँ उससे रिलेटिविटी समझेंगे। उससे यूं समझ लें कि एक आदमी है, उसका नाम अहमद है। अहमद नाम का एक बंदा 5 साल पहले कतर आया। स्टार्टिंग सैलरी क्या थी, लगा लें 6,000 रियाल, ठीक है। उस वक्त अहमद बहुत केयरफुल था, शेयर्ड रूम में रहता था, घर का खाना खाता था, और हर महीने तकरीबन 2,000 रियाल सेव कर लिया करता था। उसका फोकस क्लियर था, पैसा जमा करना है, पैसा जमा करना है, पैसा जमा करना है, बिल्कुल क्लियर फोकस। तो भाई फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 3 साल गुजर गए, सैलरी डबल होकर 12,000 रियाल हो गई। अब लॉजिकली क्या होना चाहिए था, सेविंग्स डबल होनी चाहिए थी ना, राइट? लेकिन रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट थी। अहमद ने स्टूडियो अपार्टमेंट ले लिया, अब प्राइवेसी भी थी और रेंट भी ज्यादा। फिर उसने सोचा कि खाना रोज बनाना बहुत मुश्किल है भाई, मुझसे नहीं हो रहा, तो उसने क्या किया, फूड डिलीवरी स्टार्ट कर दी। फिर कार का लोन भी सर पे उठा लिया, क्योंकि कन्वीनियंस भी जरूरी है ना भाई, वीकेंड ब्रंच एक रूटीन बन गया। अब सेविंग्स कितनी थी, वही 2,000 रियाल, कभी कभी उससे भी कम। फिर 5 साल के बाद अहमद की सैलरी 18 हो गई। बाहर से देखा जाए बजाहिर तो लाइफ परफेक्ट लगती है ना, 18,000 रियाल सैलरी इज टू मच, अच्छी कार, अच्छा अपार्टमेंट, सोशल लाइफ, आउटिंग्स, सब कुछ अच्छा, बेहतरीन। लेकिन अंदर क्या चल रहा है, मैं बताऊं क्या चल रहा है, अंदर चल रही है EMIs, क्रेडिट कार्ड बिल्स, और 0 major savings, मतलब इनकम 3 गुना हो गई भाई। लेकिन बंदा फाइनेंशियल ग्रोथ ऑलमोस्ट उसकी 0 चल रही है। और साथियों यही है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का असल चक्कर, यही उसका असल चेहरा है। देखिए अब सवाल ये है कि आखिर ये होता क्यों है भाई, कि हम सब के सब बहुत ज्यादा लालची हैं, ग्रीडी हैं? नहीं, ये ग्रीड का मसला नहीं है, ये साइकोलॉजिकल गेम है। इंसान का दिमाग ऐसा डिजाइन हुआ है कि वो कंफर्ट को जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। पहली दफा जब आप बस की जगह टैक्सी लेते हैं ना, तो लग्जरी फील होती है, फिर कुछ दिन बाद वो नॉर्मल हो जाती है, फिर आप सोच भी नहीं सकते कि वापस बस में मैं जाऊं। पहली दफा जब आप फूड डिलीवरी ऑर्डर करते हैं ना, तो वो ट्रीट लगती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रूटीन बन जाती है, और जब रूटीन बन जाए तो फिर वो एक्सपेंस कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। देखिए कतर का एनवायरनमेंट भी इसमें बड़ा रोल प्ले करता है, यहाँ लाइफस्टाइल बहुत विजिबल है, हर तरफ शाइनी कार्स हैं, फैंसी रेस्टोरेंट्स हैं, मॉल्स हैं, कैफेज हैं, और सोशल मीडिया पर तो भाई हर कोई अपना बेस्ट लाइफ शो ऑफ कर रहा होता है। आप सबकॉन्शियसली कंपेयर करना अपने आप को शुरू कर देते हैं, और सबके साथ होता है। आप सोचते हो कि अगर ये सब लोग एंजॉय कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं भाई, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि उनमें से कितने लोग डेट में चल रहे हैं। लेकिन कंपैरिजन का प्रेशर तो आपको भी पुश करता है ना कि आप अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करें। तो भाई फिर आता है आई डिजर्व दिस सिंड्रोम। अच्छा ये जो है ना बहुत मजे की बात है, और ऑनेस्टली ये बात गलत नहीं है। आप मेहनत करते हो, लॉन्ग आवर्स काम करते हो, स्ट्रेस हैंडल करते हो, तो ऑब्वियसली आप डिजर्व करते हैं भाई, आप डिजर्व करते हो कि अपनी लाइफ आप एंजॉय करो।

लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब ये ओकेजनली से रेगुलर बन जाए ना, जब हर दूसरे दिन आप खुद को रिवॉर्ड देने लगो, तो फिर वो रिवॉर्ड नहीं, वो आदत बन जाता है। और फिर सबसे डेंजरस चीज आती है, इजी क्रेडिट। कतर में क्रेडिट कार्ड लेना, लोन लेना बहुत इजी है। आपके पास पैसा हो या ना हो, बस एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और फिर आप खर्च करना शुरू करते हो, उड़ाना शुरू करते हो बाबू। फिर आप खर्च करना शुरू कर देते हो फ्यूचर के पैसों को। आप आज एंजॉय कर लेते हो और कल उसका बिल पे कर रहे होते हो। ये सिस्टम आपको टेम्परेरली खुश रखता है, मैं मानती हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको फाइनेंशियली वीक बना देता है। चलिए अब आपको ना क्या करें, आपको एक रियल लाइफ, आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स बताती हूँ जो शायद आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी से आपकी रिलेट करें। देखिए, सबसे पहला है फूड डिलीवरी ट्रैप। आप सोचते हैं कि 25 से 30 रियाल का ऑर्डर है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, कभी 40 रियाल भी हो गया, चलता है, कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप मंथ के एंड पर कैलकुलेट करते हो ना, तो वो अमाउंट पता है कितना बन रहा होता है, 1200-2000 होता है, ये सबके साथ होता है। और फिर आप कहते हो कि पता नहीं पैसा कहाँ गया भाई, मैंने तो कमाया था, अकाउंट में आया तो था, देखा भी था, मेरे पास स्टेटमेंट भी है, लेकिन वो गया कहाँ? ये कन्वीनियंस नहीं है, ये साइलेंट एक्सपेंसेस हैं जो आपकी सेविंग्स को खाते जा रहे हैं बहुत क्वाइटली। फिर आता है कार अपग्रेड ट्रैप। आप सोचते हो कि सैलरी बढ़ गई है भाई, तो ईएमआई भी बढ़ जाए, क्या ही फर्क पड़ेगा, 800 रियाल की जगह आप 1800 रियाल देते हैं, फिर सिंपल सी बात लगती है। लेकिन फिर उसके साथ इंश्योरेंस, फ्यूल, मेंटेनेंस सब डबल हो जाता है और आपका मंथली बर्डन सडनली हैवी हो जाता है। और सबसे बड़ा एक्सपेंस पता है कौन सा है? ओ भाई, ये तो इससे तो हर कोई रिलेट करेगा। सबसे बड़ा एक्सपेंस है रेंट का, शेयर्ड रूम से स्टूडियो, स्टूडियो से 1 BHK। हर स्टेप जस्टिफाइड लगता है, हर स्टेप पर आपको ये लगता है कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको याद दिलाती चलूँ, रेंट वो एक्सपेंस है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपकी सेविंग्स पर भाई। और अगर आपने इसे प्लान के बगैर अपग्रेड किया ना, तो भाई आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ की बैकबोन डैमेज हो सकती है। साथियों, लाइफस्टाइल अपग्रेड करना गलती नहीं है, गलत बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हर किसी को अच्छी लाइफ जीने का हक है भाई, लेकिन बिना प्लानिंग के अपग्रेड करना, ये है ना असली प्रॉब्लम। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़नी चाहिए ना। अगर सिर्फ एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो फिर आप एक लूप में फंस गए जहां आप ज्यादा कमा कर भी फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये बिल्कुल ऐसा जैसे आप बीच समंदर में फंसे हुए, चारों तरफ से लहरें आ रही हैं और आप मुसलसल चप्पू चला रहे हैं। होगा ये कि आप कहीं नहीं जा रहे, आप उसी जगह पर स्टक खड़े रहेंगे, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ आगे नहीं बढ़ेगी। देखिए, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक साइलेंट किलर है, फाइनेंशियल गोल्स का किलर। ये आपको फौरन प्रॉब्लम नहीं देता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी को वीकन कर देता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप इसे पहचानें, समझें और कंट्रोल करें, क्योंकि आखिर में बात सिंपल सी रह जाती है। पैसा ज़्यादा कमाना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है पैसे को संभालना। और जो बंदा अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल कर लेता है ना, वो ही असल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करता है। चलिए साथियों, अब थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं, ठीक है? क्योंकि ये वो मोमेंट है जहां सब कुछ कनेक्ट होता है। यानी कि इन अ नटशेल, आपने अभी तक जो भी सुना, जो भी फील किया, अब उसे एक सिंपल और क्लियर तस्वीर में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक दिन अचानक आप आंख खोलें और आपके सामने हो। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अचानक आपकी ज़िंदगी में आ जाए और बोले, हेलो, हाउ आर, मैं आई हूँ तुम्हारी सेविंग्स खाने। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इतनी ड्रामेटिक नहीं होती, ये बहुत ही शरीफ और समझदार तरीके से आती है, दबे पाँव, बिल्कुल बिल्ली की तरह, आहिस्ता आहिस्ता, चुपके चुपके, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मेहमान जो पहले चाय पीने आता है हमारे घर में और फिर हमारे अपार्टमेंट में गेस्ट बनकर रह जाता है। कुछ रिश्तेदार होते हैं ना, अच्छा भाई हम तो सिर्फ घूमने फिरने आए थे, पता चला पूरा पूरा महीना वो रह जाते हैं घर के अंदर। और शायद इसीलिए ये डेंजरस है, क्योंकि जब तक आपको ये पता चलता है ना,

0: साथी जरा इमेजिन करें एक जर्नी, शायद ये आपकी अपनी कहानी हो, क्या पता रिलेट करती हो आपसे या किसी दोस्त से या फिर किसी कुलीग से। देखिए जब कोई पहली दफा कतर में लैंड करता है ना, तो सब कुछ नया होता है। एयरपोर्ट से निकलते ही एक एक्साइटमेंट होती है, लेकिन साथ ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। नया मुल्क, नई जॉब, नया सिस्टम, पहले कुछ महीने सर्वाइवल मोड में गुजरते हैं। हर चीज़ केयरफुली प्लान होती है। आप ग्रॉसरी लेते वक्त सोचते हैं, टैक्सी बुक करने से पहले दो दफ़ा सोचते हैं और हर छोटी से छोटी चीज़ का हिसाब रखते हैं। आप मेंटली रियाल को अपनी होम कंट्री के जो करेंसी होती है ना, उसके अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ लेनी है और क्या चीज़ नहीं। यानी कि 10 रियाल का डिसीजन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। उस वक्त आपका लाइफस्टाइल कंफर्ट से नहीं, पर्पस से ड्रिवन होता है। आप घर पर खाना बनाते हैं, अननेसेसरी आउटिंग्स अवॉइड करते हैं और एक क्लियर गोल आपके दिमाग में होता है, मुझे पैसा बचाना है, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाना है, फैमिली को सपोर्ट करना है। आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। उस फेज में आप फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, चाहे इनकम कम ही क्यों ना हो, लेकिन आप स्ट्रांग होते हैं।
1: साथियों, जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए, और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सेविंग, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर, एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर।
0: अब थोड़ा सा ना पास फॉरवर्ड करते हैं, जिग जिग जिग जिग आगे बढ़ गए। एक साल हो गया या दो साल गुजर गए, ठीक है, आप सेटल हो गए, आपको सिस्टम समझ आ गया है, सैलरी भी थोड़ी सी बढ़ गई है माशाल्लाह से, शायद प्रमोशन मिल गया है आपको या जॉब चेंज हुई है। अब आपको लगता है कि हाँ भाई, अब लाइफस्टाइल थोड़ी सी इजी हो गई है, और नेचुरली आप कहते हैं अपने आप से, यार मैंने इतनी मेहनत की है, अब थोड़ा बेटर लाइफ तो बनती है ना मेरी। और आपकी बिल्कुल सही सोच है, मैं मानती हूँ। फिर आप छोटी छोटी चेंजेस करना शुरू कर देते हैं। शेयर्ड अकोमोडेशन से निकलकर आप स्टूडियो अपार्टमेंट लेते हैं, प्राइवेसी मिलती है, सुकून मिलता है। फिर आप ये सोचते हैं कि रोज़ कुकिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो चलो कभी फूड डिलीवरी ऑर्डर कर लूँगा, कभी वीकेंड पे बाहर जाना स्टार्ट कर देते हैं, फ़ोन अपग्रेड कर लेते हैं। ये सब डिसीजन रेकलेस नहीं होते, ये सब अर्नड फील होता है, आपको लगता है कि ये आपका हक है। लेकिन यहाँ ना एक सटल सा शिफ्ट होता है जो आपको उस वक्त नजर नहीं आ रहा होता। जो चीज़ पहले लग्जरी थी वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल बन जाती है। जो मील आप पहले हफ्ते में एक दफ़ा या पूरे एक महीने में एक दफ़ा ऑर्डर किया करते थे, अब वो तीन दफ़ा हो जाता है। जो कॉफ़ी आप कभी कभी लेते थे ना डर डर की, अब डेली रूटीन बन जाती है। जो टैक्सी आप कभी कन्वीनियंस के लिए लेते थे, अब डिफॉल्ट मोड बन जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, आपको लगता है आप ओवरस्पेंड नहीं कर रहे, हर चीज जस्टिफाइड लगती है। और फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक और सैलरी इंक्रीमेंट मिल जाता है, शायद अच्छी सी प्रमोशन हो जाती है, अब आपकी इनकम काफी स्ट्रांग हो चुकी है। पेपर पर देखें तो लगता है आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं, लेकिन क्या होता है, सेविंग्स ऑटोमेटिकली बढ़ती नहीं है, लाइफस्टाइल फिर से एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। आप सोचते हैं कि अब कार अपग्रेड करनी चाहिए, क्योंकि ऑफिस के लोग भी तो अपग्रेड कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना करूं। अब थोड़ा सा बड़ा अपार्टमेंट कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि अब थोड़ा और कंफर्ट चाहिए, अब ज़्यादा ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, सब्सक्रिप्शंस बढ़ जाती हैं, जिम की, एप्स की, मेंबरशिप्स, सब कुछ बढ़ जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि है आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम का पीछा करना शुरू कर देते हैं। हर दफा इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसेस भी उसी के साथ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और फिर एक दिन आप रियलाइज करते हैं कि आप डबल कमा रहे हैं, लेकिन सेव उतना ही कर रहे हैं जितना पहले किया करते थे, या कभी कभी उससे भी कम। और यही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का कोर है। ये रेकलेस स्पेंडिंग जो होती है ना, रेकलेस रैकून्स वाली, ये अनकॉन्शियस अपग्रेडिंग है। अब इसे कतर के एक रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि कतर एक ऐसा मुल्क है जहाँ लाइफस्टाइल बहुत विजिबल है। आप मॉल्स में जाते हैं, हर चीज़ प्रीमियम है, रोड पर देख लें लग्जरियस कार्स हैं, कैफेज और रेस्टोरेंट्स बहुत एस्थेटिकली परफेक्ट हैं। सोशल मीडिया को खोल लें, हर कोई अपनी बेस्ट

0: लाइफस्टाइल दिखा रहा होता है. और चाहे आप कॉन्शियसली कंपेयर करें या सबकॉन्शियसली, आपका दिमाग ये सब एब्जॉर्ब करता है. आहिस्ता आहिस्ता आप रीडिफाइन करते हैं कि नॉर्मल क्या होता है. एक सर्टन टाइप की कार आपको नॉर्मल लगने लगती है, एक सर्टन टाइप का अपार्टमेंट आपको एक्सपेक्टेड लगने लगता है, एक सर्टन टाइप का लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड बन जाता है और फिर आपके डिसीजंस नीड पर नहीं एनवायरनमेंट पर बेस होने लगते हैं. आप शो ऑफ नहीं कर रहे होते, आप बस फिट होने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इसी प्रोसेस में आप अपनी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज से दूर हो जाते हैं. आप थोड़ा इमोशनल एंगल से बात कर लेते हैं, ठीक है. देखिए, एक्सपेक्ट लाइफ इजी नहीं होती, मैं मानती हूँ. आप फैमिली से दूर रहते हैं, प्रेशर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और एक कॉन्स्टेंट स्ट्रगल होती है ना बेटर फ्यूचर की. नेचुरली आप अपने आप को रिवॉर्ड देना चाहते हैं और वो रिवॉर्ड अक्सर स्पेंडिंग की फॉर्म में आ जाता है. आप कहते हैं कि भाई मैं डिजर्व करता हूँ, और बिल्कुल करते हैं, आप करते हैं, किसने मना किया. लेकिन प्रॉब्लम रिवॉर्ड में नहीं होता, रिपीटेशन में होता है. जब रिवॉर्ड रूटीन बन जाता है ना, और वो रिवॉर्ड भाई, वो रिवॉर्ड रिवॉर्ड नहीं रहता जब वो रूटीन बन जाता है, वो एक्सपेंस बन जाता है. बात सारी समझने की है. और यहाँ से फाइनेंशियल लीकेज शुरू होती है. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. अगर आप अपनी डेली स्पेंडिंग सिर्फ 50 रियाल से इंक्रीज कर देते हो ना, तो शायद आपको फील भी नहीं होता. अच्छा, ये 50 रियाल क्या हो सकता है? ये 50 रियाल हो सकता है एक बेटर मील, एक एक्स्ट्रा कॉफी, एक डिलीवरी चार्ज या छोटी सी लाइफस्टाइल अपग्रेड. लेकिन जरा हिसाब लगाएं, लेकिन मंथ के एंड पर ये 50 रियाल 1500 रियाल बन जाता है, और साल के एंड पर 18,000 रियाल. सोचिए, अगर ये पैसा आप इन्वेस्ट करते तो आप क्या बिल्ड कर सकते थे. लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का असली कॉस्ट ये नहीं है कि आपने क्या खर्च किया, बल्कि ये है कि आपने क्या मिस किया.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
0: देखिए, इंसान की एक और हैबिट होती है, एडेप्टेशन. भाई देखें, ये वो चीज है जो शुरू शुरू में तो लग्जरी लगती है, आपसे अपना लें तो ये नेसेसिटी बन जाती है. आप जब पहली दफा बेटर अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं ना, तो आपको बहुत खुशी होती है, आप ग्रेटफुल फील करते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद वो नॉर्मल हो जाता है. फिर आप उसमें फ्लॉज देखने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं, होता है. फिर आप सोचते हैं कि भाई नेक्स्ट अपग्रेड क्या हो सकता है. बोर हो जाता है इंसान, और ये साइकिल चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है. आप हमेशा अपग्रेड कर रहे होते हो, लेकिन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते. देखिए, यहाँ पर ना एक गोल्डन कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं गैप. जो आप कमाते हैं, जो आप खर्च करते हैं, उनके बीच का गैप ही आपकी वेल्थ बनाता है. अगर ये गैप जीरो है, तो आप कितना भी काम कर लो, आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं बन पाओगे. लेकिन अगर ये गैप मेंटेन है ना, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, तो आप आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग होते चले जाओगे. अवेयरनेस यहाँ सबसे पावरफुल चीज है साथियों. बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का शिकार हुए हैं, क्योंकि कोई अलार्म नहीं बजता, कोई वार्निंग साइन नहीं होता इसका. कोई, जैसे हमें सिग्नल पे खड़े होकर रेड लाइट मिलती है ना, कोई रेड लाइट नजर नहीं आती, सब कुछ नॉर्मल लगता है, आप कंफर्टेबल फील करते हो, लेकिन आप ग्रो नहीं कर रहे होते. और फिर एक दिन जब कोई बड़ा फाइनेंशियल नीड आता है ना आपके सामने, जैसे कोई इमरजेंसी आ गई, खुदा ना खास्ता जॉब चेंज हो गई, या कोई लॉन्ग टर्म गोल, तब आपको रियलाइज होता है भाई ये क्या कर दिया. आपको तब रियलाइज होता है कि इतने सालों की अच्छी इनकम के बावजूद आपके पास स्ट्रॉन्ग सेविंग्स थी नहीं. वो रियलाइजेशन थोड़ा पेनफुल होता है साथियों, थोड़ा नहीं मैं कहूंगी बहुत ज्यादा. लेकिन अच्छी बात ये है कि ये अवॉइड किया जा सकता है. जिस मोमेंट आपको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का पता चल जाए ना, उस मोमेंट आप कंट्रोल कर सकते हो. आपको अपने कंफर्ट सेक्रीफाइस करना जरूरत बन जाता है, बस उसे इंटेंशनल बनाना है. आप अपग्रेड करें, लेकिन प्लान के साथ ना, आप एंजॉय करें लेकिन लिमिट के साथ. क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल सक्सेस का फॉर्मूला बहुत सिंपल है. ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना कमाते हो, बल्कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना बचाते हो और फिर उसे कितनी समझदारी से आप यूज करते हो. अगर आप अपनी इनकम को कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो आप अपना फ्यूचर कंट्रोल कर लेते हैं. और अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल नहीं करते, तो फिर आपकी लाइफस्टाइल आपको कंट्रोल करने लगती है। तो साथियों, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को समझना ही उसे कंट्रोल करने का पहला स्टेप होता है। आज का मैसेज सिंपल है, अपनी लाइफ अपग्रेड करें लेकिन अपने फ्यूचर की प्राइस पर नहीं। पैसा एंजॉय करें लेकिन उसे वेस्ट ना होने दें, क्योंकि असल जीत ये नहीं कि आपने कितनी अच्छी लाइफ जी हो, असल जीत ये है कि आप कल के लिए कितने प्रिपेयर थे। और जब आप ये बैलेंस अचीव कर लेते हैं तब आप ट्रूली फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं। ऑलराइट दोस्तों, अब हम आ जाते हैं मनी मूव्स पर। अब जब हमने प्रॉब्लम को क्लियरली समझ ही लिया है तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन हमारी जो है, तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। लेकिन ये वो बोरिंग टाइप के सॉल्यूशंस नहीं होंगे जहां आपको बस ये कह दिया जाए कि हाँ भाई कम खर्च करो ज़्यादा बचाओ। रियल लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती, और स्पेशली कतर जैसे एनवायरनमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होती, ये मैं मानती हूँ। यहाँ टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है, और लाइफस्टाइल का प्रेशर तो और भी बहुत ज़्यादा रियल है। इसीलिए आज हम बात करेंगे रियल मनी मूव्स की, जो सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी हैं, जो आप आज से अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि सच ये है कि प्रॉब्लम समझना ईजी नहीं होता, लेकिन बिहेवियर चेंज करना असली गेम चेंजर होता है। देखिए, सबसे पहला और पावरफुल कॉन्सेप्ट ये है, इनविजिबल इन्वेस्टिंग। देखिए, ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, जैसे ही सैलरी इंक्रीज होती है उनका लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज नहीं होती। और ये छोटा सा डिफरेंस ही लॉन्ग टर्म में सब कुछ डिसाइड करता है। आप इमेजिन करें कि आपकी सैलरी 2000 रियाल से बढ़ जाती है। नॉर्मली क्या होता है, आप कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करते कि ये पैसा कहाँ जाएगा, बस आहिस्ता आहिस्ता लाइफ में उसे एब्जॉर्व कर लेते हैं। थोड़ा बेटर खाना, थोड़ा ज़्यादा आउटिंग, थोड़ा ज़्यादा कम्फर्ट, और फिर कुछ महीनों बाद आपको ये याद भी नहीं रहता कि ये एक्स्ट्रा पैसा कब आया था। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को उल्टा कर दें, अगर आप डिसाइड करें कि जैसे ही सैलरी इंक्रीज हो उसका एक हिस्सा कभी आपके स्पेंडिंग अकाउंट तक पहुंचे ही ना, ये है इनविजिबल इन्वेस्टिंग। मतलब पैसा आया और सीधा इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स में चला गया, बिना इसके कि आप उसे देख भी सकें। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी 2000 रियाल से इंक्रीज हुई और तो आप फौरन डिसाइड करें कि 1000 रियाल ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होगा भाई। अब साइकोलॉजिकल मैजिक ये होता है कि आपको कभी फील ही नहीं होता कि आपने कुछ लूज किया, क्योंकि आप उस पैसे को स्पेंड करने की आदत बनाई ही नहीं होती आपने। देखिए, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को विजिबल पैसा चाहिए होता है, और जब पैसा विजिबल ही नहीं होगा तो वो इन्फ्लेट कैसे होगा। ये हैबिट आपकी फाइनेंशियल लाइफ कंप्लीटली चेंज करके रख सकती है। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर, डिफाइनिंग योर इनफ। ये ना थोड़ा फिलोसफिकल सा लगता है, लेकिन रियलिटी में बहुत प्रैक्टिकल है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोग कभी डिफाइन ही नहीं करते कि उनके लिए कितना इनफ है। कतर जैसे मुल्क में तो ये और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर तरफ बेटर ऑप्शंस हैं। हमेशा कोई ना कोई आपसे ज़्यादा अच्छी कार चला रहा होता है, बेटर अपार्टमेंट्स में रह रहा होता है, और लग्जरी ज़्यादा यहाँ पे जी जा रही होती है। अगर आप अपनी लिमिट डिफाइन नहीं करते, आपको दुनिया कंटिन्यूसली पुश करती चली जा रही होती है अपग्रेड की तरफ, आप इन्फ्लुएंस होते चले जाते हैं। इसलिए एक सिंपल सा सवाल अपने आप से आप जरा पूछिए, मुझे असल में किस टाइप का लाइफस्टाइल चाहिए, मैं किस टाइप की लाइफस्टाइल में खुश रह सकता हूँ, ना कि इम्प्रेस करने के लिए मैं अपना लाइफस्टाइल बनाऊँ। क्योंकि आजकल बहुत सी स्पेंडिंग हैप्पीनेस के लिए नहीं, परसेप्शन के लिए होती है। जब आप क्लियर हो जाते हैं ना कि आपको क्या चाहिए, तो आप हर चीज़ ब्लाइंडली अपग्रेड नहीं करते, आप सेलेक्टिव हो जाते हैं। शायद आपको ट्रैवल पसंद हो तो आप वहाँ स्पेंड करते हैं, लेकिन आपको लग्जरी कार का शौक नहीं तो आप वहाँ से सेव कर लेते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये स्मार्ट प्रायोरिटाइजेशन है, और यही फाइनेंशियल कंट्रोल का बेस है। अब तीसरे कॉन्सेप्ट पर आते हैं, लाइफ साइकिल थिंकिंग। ये स्पेशली कतर के एक्सपेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत से लोग एक साइकिल में फंस जाते हैं जहाँ उनका लाइफस्टाइल हर साल एक्सपेंड होता रहता है, लेकिन उनका यहाँ रहना परमानेंट नहीं होता। ज़रा सोचिए, आप यहाँ किस लिए आते हैं, शायद सेविंग के लिए, फैमिली सपोर्ट के लिए, या बेटर फ्यूचर के लिए। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल हर साल इतना एक्सपेंड हो जाए कि वो सिर्फ कतर की इनकम पर डिपेंडेंट हो, तो फिर जब आप यहाँ से मूव करेंगे तो क्या होगा। इनकम चेंज हो सकती है लेकिन एक्सपेक्टेशंस वही रहती हैं, और ये स्ट्रेस क्रिएट करता है। इसीलिए एक स्मार्ट मनी मूव ये है कि आप अपनी लाइफ ऐसी बिल्ड करें जो सस्टेनेबल हो, जो सिर्फ कतर में नहीं बल्कि उसके बाद भी आपके साथ चलती रहे। आप यहाँ एंजॉय करें, बिल्कुल करें, लेकिन ऐसी लाइफ ना बिल्ड करें जो सिर्फ यहाँ चल सकती हो ना। देखिए, फाइनेंशियल पीस लोकेशन से नहीं, सिस्टम से आता है। अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग है तो आप कहीं भी कंफर्टेबल रह सकते हैं। अच्छा, चौथा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है लेकिन बहुत पावरफुल है, मैं आपको बता दूं। यानी कि सेपरेशन ऑफ आइडेंटिटी फ्रॉम इनकम। बहुत से लोग अपनी इनकम को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। मतलब अगर आप हाई इनकम के मालिक हैं तो लाइफस्टाइल भी हाई ही होना चाहिए और वो लाइफस्टाइल उनकी सक्सेस का सिंबल बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कोई एक्सपेंस कम करना पड़े, फिर वो डिसीजन फाइनेंशियल नहीं इमोशनल हो जाता है, क्योंकि डाउनग्रेड करना है ना, स्टेप बैक फील होता है आपको। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा ये रियलाइज करता है कि उसका रेंट बहुत हाई है और वो ईजिली थोड़ा कम कर सकता है, लेकिन वो हेजिटेट करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अपनी लाइफस्टाइल डाउनग्रेड कर रहा है। ये पैसों का मसला नहीं है, ये ईगो का मसला है। और जब आप इस लिंक को ब्रेक कर देते हैं ना तो सब कुछ चेंज हो जाता है। फिर आप डिसीजन लॉजिक पर लेते हैं, ना कि लोगों को दिखाने के लिए कि लोग क्या सोचेंगे, आपका इमेज क्या बनेगा। और यही रियल फाइनेंशियल ग्रोथ का स्टार्ट होता है। अब पांचवें कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो पांचवा कॉन्सेप्ट, ट्रिकिंग लाइफस्टाइल क्रीप कॉन्शियसली। मतलब देखिए, ज्यादातर लोग अपनी इनकम ट्रैक करते हैं लेकिन अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस ट्रैक नहीं करते, और यही ब्लाइंड स्पॉट है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इसी अनकॉन्शियस बिहेवियर में ग्रो करती है। तो एक सिंपल हैबिट अडॉप्ट करें, हर 3 से 6 महीने बाद पॉज करें और खुद से पूछें कि मेरी लाइफस्टाइल लास्ट ईयर से कितनी चेंज हुई है। सिर्फ एक्सपेंसेस नहीं, हैबिट्स देखें। क्या आप ज्यादा बाहर खाना खाने लगे हैं? क्या कन्वीनियंस पर ज्यादा डिपेंड हो गए हैं? क्या आपके फिक्स्ड कॉस्ट्स बढ़ गए हैं? क्या ऐसी सब्सक्रिप्शंस हैं जो आप यूज भी नहीं कर रहे लेकिन आपके पास है? ये अवेयरनेस ही आपको हजारों रियाल से बचा सकती है, क्योंकि जब आपको पता होता है ना कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है तब आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाता है ना तो फिर पैसा क्वाइटली लीक होना शुरू हो जाता है। और अब हम बात करते हैं आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट रूल की, पे योर सेल्फ बिफोर यू अपग्रेड योर लाइफ। यानी कि ये गोल्डन रूल है। मतलब इनकम आए और सबसे पहले आप अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स साइड पर कर दें, जो बचे उस पर अपनी लाइफस्टाइल एडजस्ट करें। अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले सब कुछ खर्च कर लेते हैं फिर जो बच जाता है वो सेव करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि कुछ बचता ही नहीं है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बहुत एफिशिएंट होती है, वो हर वो पैसा कंज्यूम कर लेती है जो आप प्रोटेक्ट नहीं करते। इसीलिए सिस्टम चेंज करें, इनकम आए पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स निकालें फिर लाइफस्टाइल बनाएं। ये छोटी सी शिफ्ट आपकी पूरी फाइनेंशियल डायरेक्शन को चेंज कर रख देती है, क्योंकि अब आप अपने फ्यूचर को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, ना कि सिर्फ अपने प्रेजेंट को। साथियों, ये सारे मनी मूव्स फैंसी नहीं लेकिन पावरफुल हैं। ये आपकी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते बल्कि कंट्रोल देते हैं आपको। आप फिर भी एंजॉय करते हैं लेकिन स्मार्ट तरीके से। आप फिर भी अपग्रेड करते हैं लेकिन प्लानिंग के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप फाइनेंशियली ग्रो करते हैं। देखिए, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कम्प्लीटली अवॉइड करना ज़रूरी नहीं है लेकिन उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो फिर आप जितना भी कमा लें आपको कभी भी इनफ फील नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इसे कंट्रोल कर लिया ना तो फिर आप कम इनकम में भी स्ट्रॉन्ग फील करेंगे और हाई इनकम में पावरफुल। एंड ऑफ द डे, पैसा सिर्फ अर्न करने की चीज़ नहीं होता, मैनेज करना इसको एक स्किल होती है। और जो बंदा अपनी इनकम और लाइफस्टाइल के बीच बैलेंस देता है वही असल में फाइनेंशियल विनर होता है। तो चलिए साथियों, रैप अप से पहले थोड़ा सा पॉज लेते हैं, क्योंकि अब जो बात होने वाली है ये टिप्स कम है और रियलाइजेशन ज़्यादा है। ये वो बातें हैं जो शायद आप पहले भी सुन चुके हैं लेकिन आज इन्हें फील करने की ज़रूरत है, क्योंकि पैसा सिर्फ नंबर का गेम नहीं होता, ये माइंडसेट का गेम होता है। और जब माइंडसेट शिफ्ट होता है ना तब रियल चेंज आता है। सबसे पहली बात ये कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन फौरन नज़र नहीं आता, ये आपको शॉक नहीं देता, ये आपको डराता नहीं है, ये आपको खुश करता है, आपको फील होता है कि लाइफ इम्प्रूव हो रही है, कम्फर्ट बढ़ रहा है और आप डिजर्व भी करते हैं, ये सब कुछ आपको फील होता है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ शॉर्ट टर्म में अच्छी लगती है ना, वो लॉन्ग टर्म में डेंजरस बन सकती है. ये बिल्कुल स्लो लीकेज की तरह होता है जो आपको फौरन प्रॉब्लम नहीं देता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टैंक खाली कर देता है और जब तक आपको पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है.

0: दूसरी बात ये कि सेविंग्स का इनकम से उतना लेना देना नहीं है जितना आदत से। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जब ज्यादा कमाएंगे तब सेव करेंगे, लेकिन रियलिटी उसका उल्टा है। जो आदमी कम इनकम में भी सेव कर लेता है वो हाई इनकम में वेल्थ क्रिएट करता है, और जो आदमी हाई इनकम में भी सेव नहीं करता वो कभी फाइनेंशियली सिक्योर नहीं होता। ये सिर्फ अमाउंट का गेम नहीं है, डिसिप्लिन का गेम है। और एक बहुत पावरफुल लाइन जो है ना वो याद रखें अपने दिमाग में, वेल्थ हमेशा क्वाइट होती है और लाइफस्टाइल हमेशा लाउड होता है। जो बंदा फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो सबको दिखाई दे, लेकिन जो बंदा सिर्फ लाइफस्टाइल शो ऑफ कर रहा होता है ना, ज़रूरी नहीं कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। इसीलिए हमेशा लाउड चीज़ों से इम्प्रेस मत हो, साइलेंट ग्रोथ पर फोकस करें। तो भाई साथियों याद रखें, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आपका दुश्मन नहीं है। जब तक आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं तब तक तो नहीं, लेकिन अगर आपने उसे इग्नोर किया तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को ख़त्म कर देता है। इसीलिए अर्न मोर लेकिन सेव स्मार्टर, स्पेंड करें लेकिन सोच समझ कर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड मत करें, अपनी फाइनेंशियल थिंकिंग भी अपग्रेड करें, क्योंकि जब सोच बदलती है ना तो ज़िंदगी बदलती है। अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय करें, बिल्कुल करें, लेकिन उसे इतना पावरफुल मत बना दें कि वो आपके फ्यूचर को क्वाइटली चोरी कर ले। पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता, ये एक टूल है जो आपको फ्रीडम देता है, और अगर आपने इस टूल को समझ लिया ना तो आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो साथियों मैं हूं आरजे सफा और आप सुन रहे थे मनी नेविगेटर ऑन FM 107। अगर आप अपने सवाल शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 666-22107 पर, या हमें फॉलो कर सकते हैं @ सोशल मीडिया हैंडल @FM107 Qatar। अपना ख्याल रखें, स्मार्ट डिसीजन लें, और याद रखें आज का एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन कल की एक टेंशन फ्री लाइफ बनता है। अल्लाह हाफिज, और फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ जहां हम फिर से आपको गाइड करेंगे एक स्मार्टर और स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ। सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
3: Welcome to Pitch Perfect Show.
4: FM 107 की जानिब से सन 2026 का एक नया स्पोर्ट्स प्रोग्राम।
3: ये वो लाइव शो है जहां क्रिकेट की हर डिलीवरी, हर शॉट और हर फैसला होता है बिल्कुल पॉइंट पे।
4: तो तैयार हो जाएं एक्सपर्ट एनालिसिस, ताजा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प क्रिकेट कहानियों के लिए
3: ऑन पिच परफेक्ट,
4: क्योंकि यहां क्रिकेट है बिल्कुल परफेक्ट।
3: सुनिए हर ट्यूसडे और थर्सडे, जुड़ जाइए हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन और आरजे फजील के साथ
4: दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
5: एक अच्छी दोपहर वो होती है जहाँ अपनों का साथ हो और दिलों की बात हो,
6: दिलों की बात हो।
5: तो अपने अपने कुर्सी की पेटियां बांध लें, क्योंकि अब आफ्टरनून का माहौल बदलने वाला है,
6: बदलने वाला है।
5: पेश है आफ्टरनून एक्सप्रेस।
7: जहाँ इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का होगा एक बेहतरीन संगम, आरजे नाजिया और आरजे सरवर के साथ
5: हर टॉपिक पर होगी खुलकर बात, हंसी मजाक, लाइव इंटरेक्शन
7: और बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स।
5: चाहे आप घर पर हो या अपनी कार में, बनाइए अपनी आफ्टरनून को यादगार।
7: तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सरवर के साथ
5: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 Time check.
3: हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। स्टूडियो की घड़ी में 11:02।
2: यू आर लिसनिंग टू
4: आफ्टरनून एक्सप्रेस। आफ्टरनून
2: एक्सप्रेस तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सरवर के साथ
4: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक
2: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोस्तों सलाम आदाब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आइडियली दिल नहीं चाह रहा है कि गुड मॉर्निंग कहा जाए क्योंकि ऐसा फील हो रहा है कि इट्स लाइक रियली आफ्टरनून, अभी से स्टार्ट हो गई है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और यस, अगर आप बाहर हैं और ट्रैवल करते हैं, आपका काम ऐसा है तो प्लीज़ अपना हाइड्रेशन का भरपूर ख्याल रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक आपको करते रहना है जिससे कि आपकी बॉडी कोलैप्स ना हो एंड आप एनर्जेटिक फील करते रहें थ्रू आउट। चलिए हम आपके साथ आ चुके हैं, हम पूरे 2 घंटे आपके साथ रहेंगे, यानी 11 to 1 आपका हमारा साथ रहेगा। और ये साथ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब आप हमें मैसेजेस करते हैं। मैसेज करने के लिए नंबर है 4662-1107, ये वो नंबर है जहां आप हमारे साथ जुड़ेंगे, मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप डायरेक्टली हमसे बात करना चाहते हैं देन द नंबर इज 4434377।
3: भाई माफी नहीं मिलेगी आपको, कुछ रोकड़ा जो है वो खर्च करना पड़ेगा, तो अब आप देखिए कि किस तरीके से आप भरपाई कर पाएंगे। इतनी बड़ी गलती, इसकी तो सजा माफी कैसे मिलेगी आपको? आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा मिजना दिया इसको।
2: मैं जो हूँ ना स्ट्रॉन्ग अपने वैल्यूज पर, अपने एथिक्स पर, मॉरल्स पर, मैं किसी भी तरह से अपने प्रिंसिपल्स के साथ
3: इसमें कहीं गलती नहीं है। ये इस वक्त गर्मी धूप से आ रही है, अभी 2 मिनट पहले ही स्टूडियो में तशरीफ लाई है।
2: नहीं, मैं ले चुकी थी बड़ी, फिर मुझे कोई काम था तो हाँ गर्मी बहुत, इसीलिए मैंने कहा ना कि आइडियली गुड मॉर्निंग कहते कहते मुझे नहीं लग रहा था कि ये एकदम मैच कर रहा है मेरी खुद की इनर एनर्जी के साथ, क्योंकि बाहर तो बिल्कुल आफ्टरनून वाला माहौल है।
3: क्या बात है भाई,
2: कहने को मॉर्निंग है बट इट्स स्टिल लाइक मतलब बहुत सख्त वाली आफ्टरनून।
3: भाई कहने को तो मॉर्निंग है मगर अब आफ्टरनून जो है मॉर्निंग में ही शुरू हो गई है, तो ये जो मिलावट है ये हमारे बेहतरीन मौसम में एक मौसम है। और अगर इस वक्त हम बात करें वेदर के हवाले से तो जानिए कि 38 डिग्री इस वक्त का टेम्परेचर है, फील्स लाइक भी 38 डिग्री है, 38 डिग्री दिखाया जा रहा है बाहर। अब समझ लीजिए कि क्या हो रहा है, हवाएं जो हैं 32 किलोमीटर पर आर के हिसाब से चल रही हैं इस वक्त। नाजिया जी उनसे लड़ा के आई हैं किसी ना किसी तरह, बल्कि कुछ हवाओं से उन्होंने कहा कि भाई मुझे जरा जल्दी से छोड़ दिए, 2 मिनट ही रह गए प्रोग्राम शुरू करने में, तो हवाओं ने इनका साथ दिया। यहां पर एक बात और खास नाजिया जो कि एमडी ने भी हमें बताई, और वो ये कि कतर समेत पूरे गल्फ के इलाकों में इस वक्त तेज शुमाली जो मगरबी हवाएं हैं वो चल रही हैं, जिन्हें अल बवारी हवाएं कहा जाता है।
2: अच्छा,
3: काफी मिलता जुलता नाम है आपसे, देखिए है ना, वो बावरी और
2: बवारी, आपकी सवारी से तो बवारी का फर्क
3: है, ये नाजिया से मिलता जुलता नाम है वैसे तो। और इसको ये नाम दिया जाता है, मौसम के माहिर इदारों के मुताबिक ये सीजनल हवाएं हैं जो मई के महीने से शुरू होती हैं और आमतौर पर जुलाई तक जारी रहती हैं। कतर मीटोरोलॉजी डिपार्टमेंट ने बताया कि ये एक मशहूर मकामी मौसमी फेनोमेना है जो इंडियन मानसून के लो प्रेशर सिस्टम के फैलाव और नदन अरेबियन पेनिनसुला में हाई प्रेशर सिस्टम की वजह से पैदा होता है। मजीद ये कि इस हवा की खास बात यह है कि ये सुबह के बाद धीरे धीरे तेज होती है और दोपहर के वक्त अपनी शिद्दत पर पहुंच जाती है। हाँ, हम बिल्कुल अभी थोड़ी सी देर में यही देखेंगे। अल बवारी हवा के साथ आमतौर पर गर्द गुबार उठता है, जाहिर बात है क्योंकि हवाएं तेज होती हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली नजर की हद में या विजिबिलिटी कह लीजिए इसमें कमी आ जाती है। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है, यहाँ पर हमें जो मेट डिपार्टमेंट ने बताया है कि भाई हवा में नमी कम हो जाती है, मतलब ये कि ह्यूमिडिटी जो है उसका इतना असर नहीं होता फिलहाल जब तक ये चलेंगे। अभी इधर ये कह लीजिए कि 2 हफ्ते गालबन, तो इसमें ह्यूमिडिटी तो इतनी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप समंदर के आसपास हैं तो समंदर में लहरें जो हैं वो बुलंद हो जाती हैं जो समंदरी एक्टिविटीज़ को मुतासर कर सकती हैं। तो अथॉरिटीज़ ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो मौसमी अपडेट्स पर नज़र रखें और ख़ास तौर पर जब ये गर्द-ओ-गुबार का मामला हो, डस्टी या विंडी कंडीशंस हों, तो इसमें भैया जितनी एहतियाती तदाबीर हैं उस पर अमल ज़रूर कीजिए।
2: Alright, तो चलिए यहाँ पे आपको सारे प्रिकॉशंस अब क्या लेने हैं वो हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं और आई एम श्योर आप अपनी हेल्थ का जो है वो अच्छे से ख्याल रखेंगे, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर यहाँ कनेक्ट हो चुके हैं तो चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो,
3: चलिए जी, नाजिया ने इस वक्त कॉलिंग लाइन जो है वो ओपन कर दी है आपके लिए और देखते हैं कि कौन हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: कैसे आप, खैरियत से?
1: और समुंदर में से छलांग मार जाना एक बराबर, मिलाते मिलाते थक गया, बाद में छोड़ दिए।
2: बेचारे, अरे तो आप हमें मैसेज क्यों नहीं कर देते हैं? आप हमें कर देंगे अगर मैसेज तो कम से कम हम देख लेंगे कि आप चाहते हैं हमसे बात करना, तो हमें जैसे मौका मिलेगा।

0: हवा का रुख चट्टान मोड़ दिया करता है, रखो भरोसे अपने पंखे पर, क्योंकि हवा में तो सिर्फ पतंग उड़ाया करता है। और 11 बजते ही सरवर भाई और नाजिया जी हमको प्रोग्राम सुनाने लगता है।
1: आए, आए, आए, आए, आए, आए। क्या लगाया है भाई, वाह वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत कर्रा लगाया है भाई आके नूर भाई, क्या कहने, क्या क्या शेर मारा है भाई,
2: वाकई बहुत जबरदस्त
0: लगाया मिलाने में शायरी को।
1: हैं?
0: 5 डे लगाया है मिलाने में शायरी को।
1: 5 डेज लगा है मिलाने में शायरी को। ओफो, इतने दिन में तो अचार तैयार हो जाता अगर मिलाते, क्या कहने,
2: तो कुर्मा तैयार कर ले।
1: वाह वाह वाह, 5 दिन भाई ये शायरी मिलाई है,
2: 5 डिशेस
1: आप तैयार कर ले। नूर भाई की मोहब्बत का जवाब नहीं,
2: लेकिन आपकी बहुत अच्छी कोशिश, एंड थैंक यू सो मच,
1: बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये हमारे नजर करी भाई, इतनी खूबसूरत शायरी आप हमारे लिए लिख भी रहे, वाह वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया नूर भाई। और क्या शेयर करना चाहते हैं, कहाँ हैं अभी, ठंड के मजे ले रहे हैं?
0: धूप के मजे ले रहे हैं,
2: ये बेचारे ने सही कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम कहा है कि ठंड के मजे, धूप के मजे ले रहे हैं।
1: अभी कहाँ है, किस जगह है नूर भाई?
0: वहाब मस्जिद के पास, दफना,
1: दफना में है।
2: अच्छा, तो आस पास ही है,
1: क्या बात है,
0: टीवी सिंगल है ना, टीवी सिंगल,
2: अच्छा
0: बीच में।
1: चलिए साहब, बहुत बढ़िया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपका दिन अच्छा गुजारे। जी कुछ कहना चाहते हैं?
0: अल्लाह ताला सबको खुश रखे, हम तो सिर्फ खुश रखे से थोड़ी दुनिया चलेगा, सबको खुश रखे अल्लाह ताला,
1: आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला सबके साथ खैर आफियत का मामला करते ही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नूर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातें और शायरी हमें प्रेजेंट करने के लिए।
2: जी जी इंशाल्लाह जरूर, कभी ना कभी जरूर मुलाकात हो। मिर्जा बेग अपनी मशीन ले आई, कानों वाले कितनी बार कहना पड़ रहा आपसे।
1: बहुत शुक्रिया नूर भाई, बहुत शुक्रिया,
2: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ते हुए, हेलो,
3: सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम भाई, मेरी तबीयत इतनी अच्छी होने लगती है, एक तो नादिया को देख के थोड़ी अच्छी हो जाती है और फिर उसके बाद बहुत अच्छी जो होती है वो फिर लिसनर को बात करके,
2: और आपको भी देख के लाजवाब हो जाती है।
1: मैंने सच्ची बात नहीं कही, अब आप ऐसी बातें कर रही तो बताऊं, जो तबीयत आपको देख के खराब होती है नादिया, वो इन लोगों को देख के या सुन के अच्छी होना शुरू हो जाती है।
2: मैंने भी बताया, मेरी भी आपको देख के एकदम लाजवाब हो जाती है।
1: अरे कौन है इतना हंस दी है शुरुआत में ही, नादिया बहुत आप डेंजरस हैं, देखिए लोग कह रहे हैं आप सेहत के लिए हानिकारक
3: हैं। मतलब पहले तारीफ करते हैं बाद में बाजू वाले को बोलते नहीं नहीं ऐसा जैसा है।
2: देखा ये आपको बोल रहे हैं, ये यही मुझे उकसाते हैं एक्चुअल में, मैं तो बहुत आराम से अपना चीजें लेके आती हूँ कि ये करूँगा, ये जब मुझे उकसाते हैं तो फिर मैं फिर जवाब फिर सही से दे देती हूँ।
1: अच्छा है कौन हमारे साथ, ये तो पता नहीं चल पा रहा अभी तक, आसिफ भाई है क्या?
3: अरे भाई
2: आरिफ जी लग रहे हैं।
1: आरिफ भाई,
3: हाँ भाई,
2: हाँ वही लग रहे हैं।
3: अरे क्या भाई बच्चे ऐसा करेंगे भी?
1: अरे नहीं आसिफ भाई, हाँ वही मैंने कहा यार कि आसिफ भाई है यार। कैसे हैं भाई?
3: बस भाई नंबर।
1: कहाँ थे आप कल परसों, बातचीत नहीं हुई आपसे, फ्राइडे सैटरडे भी आप तशरीफ नहीं लाए?
3: भाई मैं थोड़ा बिजी हो गया था काम में, गर्मी इतनी हो गई दबा के क्या करें।
1: नादिया ने इतना इंतजार किया फ्राइडे सैटरडे कि आसिफ भाई आज तशरीफ नहीं लाए।
3: माजरत बोलते हैं ना, माजरत, माजरत,
1: माजरत आ गई आपके लिए। अब अगले फ्राइडे सैटरडे या कमिंग देखिए आप।
2: मैं तो आती हूँ, आपको भी आना पड़ेगा, ये सोच लीजिए मेरा तो कुछ नहीं।
1: तो आसिफ भाई गर्मी के मजे ले रहे हैं इस वक्त? जोरों पे। वैसे मैं अभी थोड़े दिन बेहतर रहने वाला है, मतलब ये गर्मी उस उरूज पे नहीं है, अभी तो भाई शुरुआत है। और अभी जैसे कि मैंने अर्ज किया कि अभी तो थोड़ी हवाएं वगैरह भी रहने वाली हैं दोपहर के वक्त भी, इतनी ह्यूमिडिटी वगैरह भी नहीं होगी, बट ये है कि हाँ तैयार रहिए और इम्पोर्टेंट ये है भाई कि पानी पीते रहिए जरूर।
3: जो पानी तो अपन दो बोतल लेके रखे ले भाई, समझ रहे दोनों,
1: बस
3: दो
1: बोतल तो वही है
3: भाई। पहली बात गर्मी का टेंशन नहीं है भाई, गर्मी चलेगा भाई, बाकी जो धूल उड़ी ना भाई ये डेंजर है।
1: धूल, हाँ बिल्कुल, यही हमें जो डिपार्टमेंट है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट उसने बताया है, तो इससे भी ज़रा सा अपने आप को एहतियात करिए। मास्क जो होते हैं वो लगा सकते हैं आप। नादिया और किस तरह धूल से बचा जा सकता है थोड़ा बताइए
3: भाई। भाई एक बात बोलना चाहता हूँ,
2: घर में रहिए ज्यादा से ज्यादा।
1: जी आसिफ भाई,
3: मैं कल मास्क लगाया था ऐसे ही, मतलब तुम्हारा ही सुन के वो तुम इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया ना भाई, वो स्टोरी सुन के मैं बोला भाई सरवर भाई का कहना है मास्क लगा के रखो, तो अपन मास्क लगा लिए कल।
1: अच्छा
3: तो बेटा मुझे लगना होता है

0: इनका कोरोना।
1: अरे अल्लाह हम बाप
2: रे क्या
0: बोलता तू कोरोना में, मैं बोला अरे भाई कैसी बात कर रहा है, बस क्या बोलता वो धूल मट्टी का लगा के रख लो।
2: नहीं नहीं मतलब कोई कुछ भी बोले आसिफ जी, कोई कुछ भी बोले ना आप उसकी फिक्र मत कीजिए, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। कोई बात नहीं, लोग अगर बोलते हैं ना कि आप बीमार हैं, अरे ये है क्यों लगा के रखा है, कोई बात नहीं, लेट देम से, आप लगाइए क्योंकि आपकी सेहत आपके लिए इम्पोर्टेंट, जब आप बीमार होंगे तो कोई नहीं आएगा आपका हाल चाल लेने, ठीक है? तो बस अपना ख्याल रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यही है।
1: ठीक है आसिफ भाई,
0: और बाकी सरवर भाई क्या हाल चाल, आपकी तबीयत पानी कैसी है?
1: यार हम लोग बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और यही उम्मीद आपसे भी करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं आदतों के हवाले से, तो कुछ ऐसी आदत है जो आपकी खासियत बनी है जिंदगी में?
0: मेरी आदत
2: या कोई आदत जो तकलीफ दे साबित हो रही है?
1: भाई देखिए बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं या बड़े बड़े जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो लाइफ में काफ़ी चेंज लाते हैं। अक्सर ये छोटी छोटी आदतें जो हैं वो शुरू तो हो जाती हैं बट ज़िंदगी पे काफ़ी असर भी डालती हैं, तो कोई छोटी आदत ऐसी जो आपने बनाई हो और कारगर साबित हुई?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करे भाई तुमने, बहुत अच्छा सवाल भी पूछे मेरे से।
1: एलन वसेलन मैं हुई अच्छा यार आसिफ भाई, ये तो बात आपको पता ही।
0: दिल जीत लिया भाई, मेरी एक आदत थी बहुत गंदी आदत थी भाई मेरी, बहुत बात करता था मैं।
2: अच्छा
1: बात करता था?
0: चुप हो गया भाई। हाँ अभी चुप हो गया मैं।
1: ओ ऐसा क्यों?
2: आपसे मिल ली
0: अभी, मतलब पहले मतलब मैं बड़ा हूँ ना, मतलब मैं बड़ा हूँ तो डिसीजन लेना मतलब मेरा हर चीज मेरा मानो, जो मैं बोलता हूँ वो करो। अभी मैं जाके ना भाई मतलब साइलेंट हो गया, मैं बोलता हूँ एज यू विश, जो तुम लोगों को करना है करो, ये मेरी आदत थी छूट गई, अच्छा हो गया मेरे लिए।
1: ओ
2: ये ज्यादा अच्छा है, अपने इतने दुख दर्द है, इतनी तकलीफ है दूसरों की क्या ही लें, आपने अच्छा किया छोड़ दिया भैया, आप अपना संभाल लो,
0: अपना संभाल लो, बस मैं अपना खुश रहो, अपने साइलेंट और इनकम बेस्ट है।
2: बिल्कुल
0: ये आदत है भाई, मतलब छूट गई मेरी, बहुत अच्छी है, मतलब अभी खुश हूँ, एकदम बहुत हैप्पी हूँ मैं अभी। FM 107 पे कॉल लगाता हूँ नादिया बहन से और सरोज भाई से बातचीत करके हैप्पी रहता हूँ भाई।
2: ये बहुत अच्छा किया, बस अब आपको जितनी भी बात करनी है हमसे करिए।
0: लाइफ में तो ऐसी भी कुछ है नहीं आगे ना पीछे, बस अपना FM 107 पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे है भाई, क्या हाल
1: है?
2: क्या बात है, चलिए बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच, वाकई हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं और अपनी बात हमारे साथ रखते हैं, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपकी बातें सुनना। तो जितना आपको बोलना है, जो कुछ कहना हुआ करें, यहाँ आइए और हमारे साथ शेयर कीजिए, ठीक है?
0: बिल्कुल बहन, नहीं एक रिक्वेस्ट है, एक गाना बच जाए तो बहुत बड़ी दिल खुश हो जाएगा, मतलब अजान से पहले अजान के बाद कभी भी आपका दिल करे एक गाना बजा।
2: बताइए बताइए
0: कौन सा बोला गा? अभी मैं मुंबई गुनगुना रहा था, भूल गया मैं, फिर मैं मैसेज कर दूंगा मैं।
2: चलिए ठीक है, जैसे आपको याद आ जाए हमें मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए ओके, थैंक यू सो मच,
1: बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया,
2: अल्लाह
1: हाफिज़ भाई।
2: Alright, and एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट होते हुए, हेलो
3: हेलो
2: हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कौन है हमारे साथ?
3: जी शाकिरुल्ला।
2: अच्छा जी शाकिरुल्ला जी, कैसे आप, खैरियत से?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है, आप कैसे हैं? ठीक है। सरवर भाई कैसा है?
2: अच्छा तो है रे।
1: हैं कहाँ सरवर भाई?
3: आप उधर ही बैठे हो ना?
2: ये मानते नहीं है।
1: वालेकुम सलाम, मैं इधर ही हूँ, मैं समझा कि मैं आपके
2: नहीं
1: साथ।
2: ये फिजिकली तो हैं प्रेजेंट, मेंटली आउट है।
3: अच्छा
1: कैसे हैं शाकिर भाई?
3: ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ सब।
1: क्या नई ताजे है आज, नाश्ते में क्या चमका दिया सुबह सुबह?
3: सुबह नाश्ते में एक सैंडविच का है बस
1: बस। अरे इतना हल्का
2: देखा,
3: हल्का फुल्का
2: देखा, लोग हल्का फुल्का खा रहे हैं सर मिर्जा।
1: चलिए साहब, नहीं आवाज अच्छी निकल रही थी, मैंने कहा कि शायद आज माशाल्लाह अच्छा नाश्ता वगैरह करके आए शाकिर भाई।
2: देखिए ये आदत भी छोटी सी आदत है लेकिन बहुत अच्छी है, ब्रेकफास्ट करने की आदत कहने के लिए बहुत छोटी सी आदत है लेकिन ये बहुत ही अच्छी आदत है। कुछ लोग अपना ब्रेकफास्ट ही मिस कर देते हैं और वो क्या है क्लब कर लेते हैं लंच के साथ, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल हेल्दी नहीं है।
3: ब्रेकफास्ट जो है ना करना चाहिए लेकिन थोड़ा बहुत करना चाहिए।
2: ये आपके लिए लाइन थी।
3: बिल्कुल
2: मिर्जा भाई
3: जी,
1: बहुत अच्छी बात
2: गुनगुनाने लग गए,
1: बहुत अच्छी बात कही शाकिर भाई ने। तो शाकिर भाई कोई ऐसी आदत, क्या ये आपकी आदत है ये सुबह हल्का ब्रेकफास्ट करना?
3: बिल्कुल ये मेरी आदत है।
1: यही आदत है, और भी कोई ऐसी आदत है जो काम आ रही है अच्छी आदत?

0: एक ग्लास एक्स्ट्रा वाटर पीना.
1: बिल्कुल, आज आजकल तो पानी जो है ना ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, और इधर कतर में जो यानी ऐसे जीसीसी में तो ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, क्योंकि लोग एसी में बैठे हुए और उसको पता नहीं है कि प्यास नहीं लगता है ना.
0: सही आपने,
1: अगर प्यास नहीं भी लग फिर भी पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए. इधर
2: पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए. नाजिया ख्याल कीजिए इस बात का जो शाकिर भाई बता रहे हैं, बहुत अच्छी आदत है ये. और कोई ऐसी आदत जो शेयर करना चाहते हैं?
1: अभी जो भाई ने बोला मेरे से पहले, उसने जो कॉल किया था वो उसने बहुत अच्छी बात कही, और उसकी जो आदत थी उसने अभी छोड़ दी. यानी वो बात सही है, बस आजकल लोगों को अगर आप कुछ पैदा भी दोगे तो गलत समझते हैं वो लोग, आपका नहीं सुनते ज्यादा, तो इस वजह से चुप रहना ही बेहतर है.
0: हर किसी का ये प्रॉब्लम है कि हर कोई स्पीकर बनना चाहता है, लिसनर कोई नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहते हम लोग.
1: बिल्कुल, वो अपने वो करेगा जो उसके दिल में
2: है, वो करेगा जो उसके दिल में है. अच्छा, तो आप समझाएंगे भी नहीं?
1: मैं अगर हम लोग समझाएंगे भी नहीं, हाँ समझाएंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन वो करेगा जो उसके दिल में उसका मन चाहता है.
0: ये तो है. चलिए खैर, अच्छी बात है कि आपको इस चीज़ का एहसास है कि हम थोड़ा समझाएं और फिर उनको उनके हाल पे छोड़ दें. लेकिन हाँ, एक बार दो बार कोशिश तो करना चाहिए अगर आपको वाकई लगता है कि इनकी आदत जो है वो अच्छी नहीं है और आगे चल के और ज़्यादा लोगों के लिए तकलीफ दे साबित हो सकती है, तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत समझाना तो चाहिए. ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है.
1: जी, एक इंसान की दूसरे इंसान पे ही हक तो बनता है ना. अगर इंसान अपने आप को इंसान समझता है तो दूसरे इंसान को गलत चीजों से मना करे, दूसरे गलत चीजों से उसको मना करे. बिल्कुल
0: सही बात
1: है, ये तो इंसान की दूसरे इंसान से पे हक है,
0: इतना तो बनता ही बनता है. बहुत ही जबरदस्त, थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया आपकी कॉल का. अपना ख्याल रखिए. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.
2: थैंक यू.
1: मेरे तरफ से आप दोनों को स्पेशल सलाम, और सुबह से आप लोगों का वेट कर रहा था, सुबह से कबीर भाई को सुना, उसके बाद आप लोगों का वेट कर रहा था.
0: भाई थैंक यू सो मच, हमें बहुत अच्छा लगता है हम दोनों को जब आप इस तरह से आप लोग आते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं और अपना जो लव है वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं. थैंक यू, ट्रूली मींस अ लॉट टू अस.
2: अहलन व सहलन, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई.
1: आप तो नून में फिर मिलते हैं. ओके थैंक यू.
2: आइए आइए जरूर. बिल्कुल,
0: वालेकुम
2: अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
0: एंड यस, एक और हमारे साथ यहां पे कॉलर कनेक्ट हो रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं. हेलो.
3: हेलो, अस्सलाम वालेकुम. ये क्या बात है सरोज भाई?
2: अरे दुलकर नहीं साहब हमारे साथ जुड़ गए. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. नहीं, वो कुछ ऐसा दिल खुश हो गया ये आवाज सुन के कि दिल के जो तार है ना वो छिड़ गए एकदम से. हंसी खुशी, समझ रहे हैं आप?
3: मैं आपकी बस सुनूंगा, आप सुनाए. कह रहे हैं ये लोग सुनते नहीं है. वैसे तो कहते हैं ना, सुनो सबकी, बस करो वो जो आपका दिल करे. लेकिन नहीं
0: नैन जी, मेरे ख्याल से आपको लोग बहुत ही दिल से हम्बली कहेंगे. प्लीज आप बैठ जाइए, हमारे पास इतना कुछ है सुनाने के लिए, क्योंकि वाकई ये सच्चाई है. आज हम सब जो है इतने इम्पेशेंट, इतने इम्पल्सिव हो चुके हैं कि हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके, ध्यान देकर, तवज्जो से लोगों की बात सुनना ही नहीं पसंद करते. अनलेस कि उसमें हमारा कुछ अपना पर्सनली कोई इंटरेस्ट हो, कोई मफाद है, तब तो चलिए चल जाती है, अदरवाइज कहाँ सुनना चाहते हैं. हाँ हाँ, आप सुनाइए अपना. देख रहे हैं, थोड़ी देर देखा फिर अपने फ़ोन में लग गए. जी जी, हम सुन रहे हैं सुन रहे हैं. मतलब पैसिव आप लिसनिंग कर रहे हैं, एक्टिवली कोई नहीं सुनना चाहता, ये तो फैक्ट है.
3: तो वो जो सुना रहा होता है वो खुद भी फ़ोन पर ही देख रहा होता है ना, उनकी तरफ ही देख रहा होता.
0: नहीं नहीं, कुछ लोग होते हैं जैसे आपकी, हो सकता है वाइफ हो, वो जेन्युइनली आपसे कुछ कहना चाह रही है, वो आप थक के आए हैं. चलिए मेहमान,
2: नहीं वो तो होगी इंशाल्लाह ताला, भाभी से मुझे पूरी उम्मीद है. बट आप अपनी तरफ इशारा ना करें, उनका नाम लेके. नाजिया जी, जुल्करनैन साहब ने जो बात कही है वो आपके हवाले से कही है यहाँ पे.
0: मेरे हवाले, मेरा तो उन्होंने कोई हवाले ही नहीं.
2: नहीं, अभी दिया ना कि जो बोल रहा हो वो भी मोबाइल में देख रहा हो तो वो आपसे मुखातिब.
0: जी नहीं, जब अपने दिल की जब मैं भड़ास निकालती हूँ, मैं देखती हूँ कभी भी मोबाइल से.
2: भाई से जान लेते हैं आगे की बात. जी,
3: और अभी आप बता रहे थे ना हेल्दी ब्रेकफास्ट का, कल ना मेरे लिए एक बॉक्स बना के लाए, मैं कलेक्ट कर लूंगा आके हेल्दी ब्रेकफास्ट में.
0: हेल्दी ब्रेकफास्ट है क्या? पहले तो ये समझ है ना. नहीं, मैं आपको बताती हूँ, हेल्दी ब्रेकफास्ट का मतलब होता है कि यू जस्ट फिनिश योर ब्रेकफास्ट 8 बजे से पहले, या एटलीस्ट 8 बजे तो आप करना स्टार्ट कीजिए किचन, नॉट मोर देन दैट. क्योंकि आप पूरी रात, आपकी बॉडी जो फास्टिंग से होती है, लोग बहुत बार ऐसा है कि ब्रेकफास्ट जो है स्किप कर जाते हैं. क्योंकि उठते ही बहुत लेट है. अब उठे लेट तो सीधा डायरेक्टली लंच की तरफ आना पड़ता है. तो ये जो साइकिल है, ये जो पैटर्न है, वो कहीं ना कहीं आगे चल के मेमोरी लॉस की बड़ी वजह बन रही है. आप देखिएगा जरूर सर्च करके, ये पैटर्न जो है, जो स्लीप साइकिल है, ये कहीं ना कहीं डिमेंशिया या इस तरह की और जो बीमारियां हैं उसकी एक बड़ी वजह बन रही है. सो फॉर दैट, हमें अगर हम अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें, दैट्स व्हाट वी से, कि थोड़ा सा लाइफ आपकी और हमारी डिसिप्लिन रहेगी तो हम सारी चीज़ें ऑन टाइम करेंगे. सारी चीज़ें जो है वक्त पे जब करते रहते हैं तो एक आदत सी बन जाती है, और फिर ये आदत जो है वो एक बड़ा इम्पैक्ट भी लेकर आती है. ज़ाहरी तौर पे जल्दी नज़र नहीं आता, बट आप 2-3-4 महीने में देखेंगे कि बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके अंदर पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरीके से आता है.
3: यानी इसमें आप कहती हैं कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट मेमोरी लॉस का होता है.
0: नहीं, और भी चीज़ें हैं रिलेटेड टू हेल्थ, आप जब देखेंगे. ये तो मुझे एक आर्टिकल का एक हिस्सा ये याद आ गया कि इसमें वन ऑफ दी रीजंस हैं आपकी स्लीप साइकिल या आपका स्लीपिंग पैटर्न, तो वो एक बड़ी वजह बनता है. और ये बात पर्टिकुलरली टीनेजर्स के हवाले से ज़्यादा कही जा रही है.
2: मेरी बात हो रही है? काफी कारगर साबित हुई आज तक की आपकी ये 65 साल की जो उम्र है. 65 कहा मैंने? नहीं, 35 में 60 निकल गया, वो जरा स्लिप हो गया. दुलकरनैन भाई, कौन सी ऐसी आदत है वो मुझे याद करने के अलावा?
3: जी,
0: यानी जी, ये तो आदत
3: का इम्पैक्ट क्या है, यानी इम्पैक्ट मुझे बताएं ना. बात आपकी मैं समझ नहीं पाया.
0: छोटी सी आदत,
2: कोई एक ऐसी आदत हो जो आपकी, आपको वाकई लगता हो कि ये ना हो तो मैं, भाई साहब, मतलब दूसरों का इतना नुकसान हो जाए, मैं तो हूँ तो बचे हुए हैं सब मेरे.
0: जैसे एक छोटी सी आदत आपकी ये हो सकती है कि आप अपनी कबर्ड को हर मतलब फ्राइडेज या सैटरडेज में ऑर्गेनाइज करते हैं. कहने को छोटी सी आदत है, लेकिन आप अपनी स्पेस को एकदम टाइडी रखते हैं. या एक छोटी सी आदत ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया कि मैं 7 ग्लास या 8 ग्लास इतने टाइम में कंप्लीट करूंगा, बट दे यू एडेड वन मोर. एक और छोटा, ये बहुत छोटी सी आदत हुई ना,
3: 7 ग्लास वाटर इन ऑफिस टाइम में.
0: दिया, हो सकता है कि आपकी आदत हो रात में सबको माफ करके सोने की. चलो ये याद आया,
3: ट्रू इम्पैक्ट करवाया है रात को सबको ना कटहरे में खड़ा करते हैं, पूरा दिन क्या किया
0: है. जी, बड़े ऑनेस्ट है, ये आपकी आदत तो है सच बोल देने की.
2: क्या बात है,
0: कम से कम खुद से तो सच बोलना है.
3: उससे जो है ना, फिर वो सब लोग तंग है, भाई पूरे दिन के आज की कार्रवाई बताएं, क्या क्या किया आप लोगों ने. तो बाकी आते या जो आप बता रही है ना, छोटी छोटी छोटी आदतें, बस कि हमसे कुछ ना पूछा जाए. बस मैं, हम लोग जो कर रहे हैं ना, हम भी खुश हैं, आप भी खुश हैं. जब पूछेंगे तो फिर मामला धोते हैं. ये सही है, अच्छा. ये गलत किया.
0: तो मतलब आप ये, आप खुद ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि लोगों से कुछ भी नहीं आप पूछते, बट आपने तो बोला आप रात में लोगों को पूछते हैं.
3: नहीं, मैंने कहा ये आदत लोगों को पसंद है. मैं भाई अपने घर में मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ. मैं सबसे पूछता हूँ, मेरी हैबिट है और अक्सर है कि जो भी कोई मामला हो रहे हैं या किस तरह हो रहे हैं. जब कोई बंदा कहते हैं ना, मेरे पास टाइम नहीं है बाबा, मैं बहुत बिजी था, तो मैं पूछता हूँ, हाँ फिर क्या किया आप, जरा मुझे बताएं आप बिजी क्यों थे.
0: तो क्यों थे
2: कहना कदम हो गया.
3: इसलिए
2: पापा वो मैं इधर आ जाइए,
3: 12 घंटे काम कर रहा है वो बंदा ज्यादा बिजी नहीं है. और जो
2: कैसे बिजी, अच्छी है
0: बहुत सही लाया. मैं भी अब सवाल रखूंगी.
3: आते हैं, आपने जो बताई हैं यकीनन,
0: ये तो मैंने एग्जांपल ऐसे दे दी.
3: नहीं नहीं, अच्छी बात है. मेरी आदत फिर है, मैं देखता हूँ ये आपने, ये घर के मामला दिए इस तरह, ये सेटिंग नहीं है, ये आप लोग क्यों नहीं कर रहे. मैं भाई मैंने बहुत कर लिया, वो दूसरों का बारी है, दे हैव टू लर्न, दे हैव टू डू. तो उनको इस चीज का एहसास दिलाया जाता है कि भी आप इस चीज को करें, तो करके तो फिर दिखाना ही पड़ता है. हाँ बाबा, हमसे तो हो नहीं रहा, आप जरा करके दिखाएं. तो मिसेज कह रही है मुझसे नहीं हो रहा, आप जरा करके बताएं. फिर अल्टीमेटली मुझे भी आना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है मेरी जान छूट जाती है.
0: सही,
3: आपको कुछ करने के
0: अच्छा.
3: लिए कुछ बताने के लिए फिर खुद भी करके दिखाना भी पड़ता है. लेकिन ये तो ये जो मामला है ये इस तरह है. अच्छा, आते हैं आपकी टू द सिचुएशन बनती बिगड़ती रहती है. मेरे दादाजी की बड़ी अच्छी आदत जो मैंने लर्न की या मैं उनको कोशिश करता हूँ करूँ, लेकिन उसका मसला ये था, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट जॉब, उनका

0: बिजनेस यहाँ हम लोग जाते थे, उन्होंने फजर की नमाज पढ़ी, ताज़ा घर में गाय भैंस है, दूध का कप पिया, वॉक करने गए जहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी कब्रों पे हम भी जाते थे, तो हम तो घूमते फिरते थे, उधर जाके उन्होंने फातिहा पढ़ी और ग्रीन एरिया वहाँ बैठ के अच्छा बड़ा रिलैक्सेशन हमें ऐसे ही लगता था। कहते नहीं, आप अपने बड़े बुजुर्गों को याद रखें, उनके लिए दुआ करें। तो वहाँ गए तो वो एक रीज़न था उनका वॉक करने का, कि वहाँ जाना है तो इस दौरान उन्हें वॉक करनी है। अगर आपके पास कोई रीज़न होता है ना, आप वैसे ही चल पड़े, आप बोर हो जाते हैं, लेकिन आपने वहाँ जाना है, वहाँ गए, फिर उधर वहाँ जो फूल पत्ते पौधे हैं उसको बोला यार इसको ठीक करो, इस तरह करो, इस तरह करो। तो आई लर्न दिस वन, और इसकी उनकी एक पक्की रूटीन थी। और इशा की नमाज के बाद उन्होंने एक दूध का कप लेना है और उन्होंने सो जाना है। हम लोगों को उन्होंने तलकीन ही हम करते थे उस वक्त, देखें हम लोगों को भी समझ नहीं आती। तो उनकी ये रूटीन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जब तक अल्लाह ताला ने उनकी हयात थी वो चलते फिरते थे। दे आर द एक्टिव पर्सन। और सिर्फ उनको अगर कोई ब्लड प्रेशर का या उसका कोई इशू हुआ हो तो वो भी मैं इसलिए समझता हूँ कि लोगों को उस वक्त इतना आइडिया नहीं था कि अपने चेकअप वगैरह करवाएं, कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि हमारी दादी तो अर्ली इंतकाल हो गया था, तो जो हमारी चाचियां हैं वो बनाती थी ना खाना, हमें याद है उनका होता था, दादाजी को खाना अच्छा लगे जिसमें ऑयल शैल घी फुल, तो वो अगर वो इतना घी भी ना खाते तो माशाल्लाह दे है मोर प्रोलोंग लाइफ, तो अदरवाइज दे आर वेरी हेल्दी लाइफ। और उन्होंने अच्छी लाइफ गुजारी, एक्टिव लाइफ गुजारी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अभी भी जो डॉक्टर कहते हैं ना, मैं एक दफा बच्चों से बात होती है ना हेल्दी लाइफ में, मैं कहता हूँ जो लोग हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते हैं क्या खास बात है, जो घर में नहीं होता तो हॉस्पिटल में होता है। दो रीज, टाइम पे जो भी खाना या मेडिसिन और टाइम पे सोना, बस। तो घर में भी हो सकता है लेकिन हम घर में उसको प्रैक्टिस ही नहीं करते। वहां 8-9 बजे 10 बजे विजिटर को कहते हैं बस अब गेट आउट फ्रॉम हेयर, दफा हो जाओ, पेशेंट ने सोना है।
1: अब का टाइम
0: ऐसा होता नहीं।
1: और इसी के साथ हमारा टाइम अभी का भी पूरा हुआ, क्योंकि अजान के लिए पढ़ना है। दलकर नैन भाई, बातें बड़ी अच्छी हो रही थी, मजा आ रहा था। इंशाल्लाह ताला दोबारा जुड़ते हैं, अभी एक छोटा सा ब्रेक और इंशाल्लाह मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं और चर्चा जारी रहेगी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

7 पर wake up. पेरेंटिंग सिर्फ परवरिश नहीं, ये समझ और प्यार का सफर है। ये शो बात करता है मॉडर्न पेरेंटिंग, रोज के चैलेंजेस और उन फैमिली वैल्यूज की जो बच्चों को बेहतर इंसान बनाती है। सिंपल बातें, रियल एक्सपीरियंसेस और हर वालिदैन के लिए रहनुमाई। पेरेंटिंग को नए अंदाज से समझिए और सुनिए आरजे महविश के साथ पेरेंटिंग जर्नी में। Every Tuesday morning, 10 to 11 a.m. Only on FM.

0: हाँ जी वेलकम बैक अहलन व सहलन, खुश आमदीद, स्वागत हम बिल्कुल आफ्टरनून एक्सप्रेस जोरों पे चल रही है, जहाँ सरवर और नाजिया आप लोगों की टिकट चेक कर रहे हैं कि कोई आज विदाउट टिकट तो हमारे साथ नहीं है। तो यहाँ पे सभी ने अपना अपना टिकट जो है उसको भेज दिया है हमें। आइए पहले टिकट देखते हैं। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मिस नाजिया? आपको और सरवर भाई को सैयद जमाल अहमद का दिल से सलाम। और यहाँ पर आपके लिए कड़क चाय भी भेजी है इन्होंने भाई,
1: क्या बेहतरीन बात है।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कहते हैं सलाम कबूल करें फ्रॉम शाकिरुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह व बरकातहू। यूसुफ भाई आ चुके हैं, कहते हैं सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। गुड मॉर्निंग नाजिया जी और सरवर भाई, कैसे हैं आप दोनों?
1: वेल
0: आफ्टरनून एक्सप्रेस दिल से देसी। यूसुफ भाई और सभी को मंडे मॉर्निंग विश कर रहे हैं। खादिम हुसैन साहब की हुई है आमद। अस्सलाम वालेकुम, कदम कदम पे रुलाया हमें मुकद्दर ने, हम उनके शहर में आए थे मुस्कुराने को। मिस्टर खादिम किससे बात कर रहे हैं आप? तौफीक भाई आ गए हैं, कहते नाजिया जी एंड सरवर अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद तौफीक, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तौफीक भाई खैरियत से? कहते हैं इन कॉलर की आवाज सुनकर मुझे कहीं बहुत दिन हो गए, होता है।
1: हाँ जुल्कनैन जी की आवाज तो बहुत टाइम बाद ही उन्होंने हमें कॉल किया है।
0: साद हैं हमारे साथ और
1: साद ने बिल्कुल आपने सही कहा,
0: बिल्कुल सही कहा आपने। कहते हैं आपके लैंडलाइन नंबर बोल देंगे प्लीज। नाजिया क्या है ये? व्हाट इज दिस? क्यों नहीं मोहम्मद भाई इज वेटिंग फॉर द लैंडलाइन नंबर फ्रॉम लॉन्ग टाइम।
1: व्हाट आर यू डूइंग सिंस 11 AM?
0: नहीं तो चलिए आप बता दीजिए।
1: नहीं आपको शर्म आ रही है बताने में? नंबर
0: मैं बता देता हूँ,
1: बता दीजिए।
0: लज्जा तो मुझे बहुत आती है। 443-7-7 443-7-7
1: ऐसा लग रहा है 443-443 को डांट रहे हैं।
0: इधर आओ भैया,
1: इधर
0: आइयो भैया शकील। ओके
1: नहीं बिल्कुल ये फीलिंग आ रही। 443-443-7-7
0: मन्ना बता रहा हूँ अगर कॉल ली आई तो। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई और नाजिया सिस्टर, यहाँ पर सलूट भी कर रहे हैं आपको। कहते हैं भाई मेरी आदत यह है कि मैं अपना काम खुद करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरा काम मुझसे बेहतर और फास्ट कोई नहीं कर पाएगा।
1: Very nice.
0: मैं किसी से एक गिलास पानी भी नहीं मांगता, खुद ही ले लेता हूँ जाकर।
1: इनका नाम बताइए कौन है?
0: मैं बताता हूँ, गुलफाम खान साहब है। गुलफाम भाई
1: सलूट है आपको।
0: एक मिनट, तालियां तो सही है। गुलफाम भाई इसको मजबूरी कहते हैं। जब घर में जो है किसी और की बादशाही चल रही हो तो आप इसको मजबूरी कहते हैं।
1: जी नहीं, इसको कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंसी, सेल्फ सफिशिएंट।
0: मैं समझ सकता हूँ,
1: खुद पे पूरी तरह से डिपेंड करते हैं। लोगों को जाए
0: नाजिया के घर से इस वक्त तो सारी चीजें सामने आ जाए। सरवर भाई अस्सलाम वालेकुम एंड नाजिया जी, सरवर भाई बेस्ट एग्जांपल इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस यू कैन फाइंड इन मेनी कार्स एंड ट्रक्स वेयर इन रिटेन।

0: हाउ इज माई ड्राइविंग कॉल विद अ मोबाइल और लैंडलाइन नंबर. खादर कह रहे हैं उनको कॉल भी कर लिया जाए. नाजिया प्लीज क्यों नहीं
1: जरूर कर रही
0: हैं?
1: आपको कॉल करते हैं, बट बिफोर दैट वी आर कनेक्टेड टू वन कॉलर.
0: बिल्कुल, गुड मॉर्निंग कहते हैं. जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य हैं. नाजिया जी और सरूर भाई, रमेश यादव यहाँ पर हमारे साथ.
1: अरे वाह, बहुत ही अच्छा मैसेज.
0: हेलो हेलो, सबह नूर.
2: अस्सलाम
0: वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. इतनी हल्की आवाज में बात करेंगे तो मैं बुखार 102 में हूँ इस वक्त, मैं भी सो जाऊंगा. कौन है हमारे साथ? क्या वो है सैयद भाई हैं
2: जी? फरमाइए, क्या बोलना है आज?
0: हो जी, नाम
1: मुझे तो जावेद बाजवा जी की लग रही है.
0: नहीं नहीं, जावेद भाई नहीं है ये, कोई तो
1: सैयद जी है फिर तो
0: है,
1: लेकिन आवाज थोड़ी चेंज है. फिर से बोलिए, फिर से बोलिए.
2: तुम याद ना आया करो, याद आने से पहले आ जाया करो.
1: सैयद जी. हाँ. मुझे याद आ गया,
0: क्योंकि ऐसा शेर सैयद भाई सुना सकते हैं और कोई नहीं सुना सकता.
1: मुझे याद आ गया, सैयद जी हैं पक्का पक्का.
0: मैं तो शुरुआत ही यहीं से करी थी, मगर मैंने कहा क्या हो गया, आज तबीयत खराब हो गई, आज नाश्ता नहीं मिला सुबह सुबह, भाभी ने नाश्ता कैंसिल कर दिया. बोली बोलो पेंसिल, ये बोले पेंसिल में नाश्ता कैंसिल. सैयद बोलो पेंसिल.
3: अच्छा, बहुत माशाल्लाह, आप दोनों कितने होशियार है, पहचान ले मेरी आवाज. हां सुभान अल्लाह, बहुत बहुत क्लियर है दोनों.
0: कैसे नहीं पहचानते जी हम? हम भाई तो हैं आपके, आपके सगे हैं भाई, ये ऐसे कैसे पहले पहचानते? आपके सगे
3: हैं, बहुत होशियार है ये दोनों, बहुत होशियार है माशाल्लाह.
1: एक वर्ड यूज करना चाह रहे, कर नहीं रहे, होशियारी पे छोड़ दिया.
3: बेहतरीन गाना है, याद आ रही थी आपकी भाभी की. सही बात है ना, क्या है बोलते सुना, जीने नहीं दूंगा का गाना ये, बब्बर की पिक्चर
0: फिल्म का नाम भी ऐसे ही.
3: याद ना आया करो, हाँ याद आने से पहले आ जाया करो.
0: याद
3: क्या
0: पहले, और नहीं बेचारे ने पहली लाइन बार बार स्टॉप करी, फिर सुनी तुम याद ना आया करो पे रोकी, फिर सुनी आगे सुनू कहीं नहीं.
1: यही तक सुनना चाहता हूँ, सुनना ही चाहता हूँ, याद ना आया करो.
0: Oh my God.
3: शब्बीर कुमार की आवाज का.
0: मैंने भी ऐसी सुना है, मैंने तो टेप आगे तोड़ ही दिया था, उससे आगे मैंने कहा ये चलेगा ही नहीं, इतना ही चलाऊंगा बस.
1: जीने नहीं दूंगा
3: भाई. देखिए मैडम और भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो शो है ना आपका लॉफ्टर, कपिल का लॉफ्टर शो बन जा रहा है दिन बे दिन. सही बोल रहा हूँ, इतनी हंसी पेट पकड़ना है, हंसना है, और कुछ नहीं.
0: आपकी आमद तो होती नहीं यार सैयद भाई, चार चार दिन
1: टारगेट है, टारगेट ने अपना गोल जो सेट किया है उधर ही का सेट किए बैठे हैं. आपने सेट कर लिया वैसे अपना गोल?
0: आपकी आदत है हमसे मोहब्बत वाली
3: जी.
0: इसके अलावा
3: जी.
0: कोई और आदत भी ऐसी है जो आपको फायदा पहुंचा रही है? यही टॉपिक है आज का.
3: अच्छा, आदत फायदा पहुंचा रही है. आदत जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बरकरार रखे, रियाकारी से बचाए. मेरी आदत है, मैं हर अजनबी को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ये मेरे अंदर दिए अल्लाह ताला का फजलो करम है कि मैं किसी को भी दोस्त बना लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. और जाने अनजाने कोई भी लोग को सलाम करो और दोस्त बनाओ भाई.
0: क्या बात,
3: अल्लाह ताला खुश होते हैं अनजाने से सलाम. अपने ईगो को अपने पैरों के नीचे कुचल दो. ये तो छोटा दिख रहा. अरे मेरे पास तो अच्छे कपड़े, अरे गाड़ी पैदल वाले,
0: मतलब ये लगा लिए कि 99.99% ऐसा होता है कि मैं ही सलाम पेश करता हूँ. मेरी सीनियर जो मेरे साथ बैठी हैं, कभी गलती नहीं कर सकती, खुद सलाम कर ले. मैं करूंगी. मैं
3: आपको अच्छी समझता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से बरकरार रखे, क्योंकि इससे दोस्त
1: बनते हैं. आप एक चीज का इनको जरूर मशवरा दें, एक आदत ही अपनी जो डाल सकते हैं जो अच्छी भी हो सकती है, सच बोलने की, वो आप प्लीज इन्हें लास्ट में जरूर एक मशवरा दीजिएगा.
0: क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, गोविंदा की जो हालत हुई थी ना, जगह जगह पिट रहा था भाई सुबह से रात तक.
1: अच्छा, इसलिए आप इतना झूठ बोल रहे हैं कसरत से.
0: कसरत से भाई, सैयद साहब बहुत बहुत शुक्रिया.
3: अहलन वसहलन, अहलन वसहलन. आप दोनों को भी बोलूंगा और सबको भी बोलूंगा कि भाई अपने गुरूर तकब्बुर को निकालो, आगे वाला सलाम करने से पहले सलाम करो. मोहब्बत बढ़ती है, मोहब्बत बढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह, और सब में पहले अल्लाह.

0: अल्लाह ताला खुश होते हैं, नबी करम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं, खुश होंगे। आपका फरमान है कि भाई अजनबी को भी सलाम करो, दोस्त बनाओ भाई।
1: बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया सैयद भाई, ख्याल रखिए, बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छी बातचीत, थैंक यू सो मच।
2: तो
1: भाई यहाँ पर सैयद भाई के बाद नसीम भाई जुड़ गए और क्या कहते हैं, नाजिया बहन के रहते हुए सरवर भाई से हाल अहवाल ना पूछें, बाकी आप समझदार हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ये और इनकी आदत बहुत अच्छी है।
1: एक पिज्जा का स्लाइस भेजा, सिर्फ एक, बताइए,
2: मतलब
1: शर्म भी नहीं आ रही नसीम भाई, इसमें क्या होगा मेरा, नाजिया तो दूर की बात है, कम से कम यार गायबाना पिज्जा भेज रहे थे, एक हाँ एक बड़ा सा भेज देते, पूरा भेज देते, एक स्लाइस पिज्जा का यार। ओके कहते हैं मेरी डेली की एक आदत है कि मैं रात में टाइम पे सोना,
2: वेरी नाइस,
1: हाँ वीकेंड पे कुछ आगे पीछे हो जाता है, यूसुफ भाई कह रहे हैं
2: चलिए फिर चल जाता है, कभी तो हो जाएगा।
1: ओ सुमी जी हमारे साथ जुड़ गई है, कहती है अस्सलाम वालेकुम सरवर नाजिया, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी तक तो अच्छे हैं,
2: हम लोग बिल्कुल खैरियत से हैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करते हैं सुमी जी आप भी खैरियत से होंगी इंशाल्लाह ताला और खुश होंगी। बिल्कुल यहाँ अब एक कॉल कनेक्ट करते हैं, नाजिया एक भी गाना नहीं चला है, 50 मिनट हो चुके हैं प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
1: अहलेन अहलेन, जे भी हैं हमारे साथ,
2: हम लोगों ने अभी आपको याद किया था
3: माशाल्लाह। नाजिया जी अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको याद किया, हमें लगा कि शायद ये जावेद जी की तो आवाज़ तो नहीं है, और देखिए सेकंड कॉल आप ही की मिल गई। माशाल्लाह माशाल्लाह
3: माशाल्लाह माशाल्लाह। असल में ना कुछ काम का ऐसा वक्त हो जाता है कि पता नहीं चलता कि कॉल कहाँ से आई है, और फिर सारा कुछ बल्कि दरहम बरहम हो जाता है वो कॉल का सिलसिला मेरा।
1: हाँ। हाँ।
2: नहीं हम समझ सकते
1: कैसे हैं जावेद भाई, खैरियत से हैं इंशाल्लाह ताला।
3: मैं बिल्कुल खैरियत से, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। आप सुनाइए सरवर भाई,
1: अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं, आपको याद कर रहे थे और आपकी तशरीफ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ज्यादा क्या चाहिए। बात आज ये हो रही है जावेद भाई, कोई ऐसी आदत जो आपको बड़ा ही खुश रखती हो, जाहिर है तकब्बुर से अल्लाह हर किसी को दूर रखे, बट आप कहते हो कि यार ये चीज मेरे अंदर है वाकई, जिसकी वजह से कुछ तो काम हो रहा है जो अच्छी हो।
3: माशाल्लाह ये इंसान के अंदर आदत तो बहुत से इंसान के अंदर, अल्लाह पाक ने उसको पूरा ही एक खूबियों से नवाजा हुआ है ने। और आदात के हिसाब से अगर देखें तो आदात में बहुत सी चीजें शुमार होती हैं, हुस्ने सलूक है, सलाम दुआ है, किसी की मदद करना है, किसी का दुख सुनना है, और एक आदत ऐसी भी रहती है जिसमें इंसान बहुत सिला रहमी करता है लेकिन आगे से जो मतलब उसको वो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन इंसान होने के नाते कई जगह पे ऐसे एक्सपीरियंसेस मुझे भी हैं, कई लोगों को होंगे, और कि आप बहुत अच्छा करते हैं लेकिन उसका जो रिवर्स है ना वो बड़ा वर्स होता है, बड़ा तकलीफ देवर होता है उसका।
1: सही सही फरमाया आपने, सही फरमाया, बिल्कुल सही।
3: तो हमेशा एक तो ये है कि इंसान अगर किसी के साथ अच्छाई करे तो वो भूल जाए, क्योंकि सिला रहमी वो सिला रहमी जात करने वाले, लेकिन फिर भी एक बशर है इंसान, उसको फील तो होता है कि वो भी इंसान है जिसने किया। रही बात आदत की, तो बुरी आदत एक मेरे में है वो ये है कि मैं अगर 14-15-16 घंटे भी ऑफिस में काम करता हूँ तो मुझे 2 घंटे डेली वॉक पे हर हाल में जाना है, वो रात को 11 बजे है, वो 12 बजे है, व्हाटएवर इट इज, मुझे जाना है।
1: खैर ये तो कह सकते हैं आपकी सर्विस का भी एक हिस्सा है भाई, फिट रहना माशाल्लाह।
2: 2 घंटे तो बहुत हुए,
3: 10 किलोमीटर बन जाता है नाजी जी।
1: अरे इट्स नथिंग यार, मैं यूजुअली इतनी वॉक कर लेता हूँ, मतलब 10 किलोमीटर
3: तो आप तो 100 किलोमीटर भी कर सकते हैं आप।
2: नहीं नहीं ये वॉक करते हैं ऐसे उंगलियों पे गिन के।
1: जावेद भाई मैं आपसे मुखातिब नहीं था, ये एकदम चौकी ना, तो मैंने इनसे इनसे ये बात की।
2: मैंने आपको बताया जावेद भाई ये वॉक करते हैं उंगलियों पे गिन लेते हैं,
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये रहे 10 किलोमीटर आज के
2: 10 कदम।
1: लाओ भाई अब एक दो पिज्जा बर्गर ले आओ, काफी वॉक हो गई।
3: वाह जी वाह वाह,
2: उंगलियों पे इनकी वॉक चलती है आपकी सड़क पे उंगलियों।
1: कह रहा वाजी दा आप खुश रहिए, जावेद भाई कह रहे हमसे तुम्हारा
3: खुश हूं भाई, मैं तो बहुत खुश हूं
1: आपसे हमारा कोई ताल्लुक
3: नहीं। नहीं नहीं नहीं आपसे मेरा बड़ा, बेशक देखिए आपसे मेरी मुलाकात नहीं है लेकिन जो روحانی اور روح کا تعلق ہے آپ لوگوں کے ساتھ, وہ تو خیر اس کو
1: اہلن بس اہلن سر اہلن بس اہلن محبت ہے آپ کی اور نوازش بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جاوید بھائی ہمارے ساتھ تشریف لاتے رہیے ہم
2: موٹیویٹ کیا آپ لوگوں نے ہمیں ہم دونوں کو انسپائر کیا ہے کہ ہم بھی ایکسرسائز کریں اپنی ہیلتھ کو لے کر جو بھی اچھا سکیڈول سیٹ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے
1: بہت بہت شکریہ جاوید بھائی ہمارے

0: तो भाई ये थे जावेद भाई हमारे साथ और अब आगे बढ़ते हैं
1: अपडेट की तरफ।
0: बिल्कुल, अब एक नगमा बेचारी बैठी हुई है और बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के हमें देख रही है। बड़े ही फिल्टर करके गाने निकालते हैं नादिया आपके लिए।
1: उनमें से ये सारा क्रेडिट आप ही को जाता है।
0: उनमें से ये एक बेहतरीन नगमा आपके लिए। ये माहौल, ये वक्त, ये टाइम सोनू निगम की आवाज में एंजॉय कीजिए। ट्रैक आफ्टरनून एक्सप्रेस पे सर्वर और नादिया आपके साथ दिल से।

0: की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। राइट गाइज, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं शो आफ्टरनून एक्सप्रेस और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 12:03।
2: इट्स द आफ्टरनून एक्सप्रेस।
1: हाँ जी, तो फाइनली हम जो है वो आफ्टरनून में एंट्री ले चुके हैं। मॉर्निंग से आफ्टरनून तक पहुंच चुकी है हमारी ये गाड़ी और अब मैं आपको बताने वाली हूँ। वैसे तो हम आज टॉपिक पे जिस पे बात कर रहे थे वो है कि भाई अच्छी आदतें, छोटी छोटी बहुत ही सिंपल, जिनको करने में कुछ सेकेंड्स लगते हैं, बहुत एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, लेकिन हाँ उसका इम्पैक्ट जो है बहुत ही पावरफुल होता है। ऐसी एक बहुत ही प्यारी और अच्छी आदत हो सकती है दूसरों की हेल्प करना, और शायद इसी हवाले से हमारी जो अगली अपडेट है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। एंड दिस इज कॉल्ड नेशनल वॉलंटियर प्रोग्राम, यानी बहुत से काम ऐसे कर जाना करना जिसके आपको कोई पैसे नहीं मिलेगा, कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, कोई अप्रिसिएशन नहीं है, कोई क्लैप नहीं है, लेकिन हाँ एक बहुत भर भर के आपके लिए रिस्पेक्ट है। यहाँ आपको मैं बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हिज एक्सेलेंसी शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान जासिम अल थानी की सरपरस्ती में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड फैमिली ने कल नेशनल वॉलंटियर प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। ये एक यूनिफाइड डिजिटल प्रोग्राम है जो पूरे मुल्क में वॉलंटियर काम को मुनज्जम और बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है। आपको बता दें कि इस प्लेटफॉर्म का ओपनिंग सेरेमनी के वक्त जो थे वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अफेयर्स, इसके साथ आपको बताएं कि स्पीकर ऑफ शुरा काउंसिल, मिनिस्टर ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड फैमिली, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कैबिनेट अफेयर्स और साथ ही कतर फाउंडेशन की वाइस चेयर पर्सन हर एक्सेलेंसी शेखा हिंद बिंत हमद अल थानी आप लोग मौजूद थी। इसके साथ इस साल का जो स्लोगन रखा गया है वो है एन इम्पैक्ट दैट एक्सटेंड्स, और उम्मीद की जा रही है कि इस प्रोग्राम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो जुड़ेंगे। आपको बता दें कि नेशनल वॉलंटियर प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इनकी वेबसाइट पर जाना होगा जो है volunteer.gov.qa। यहां जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं वॉलंटियरिंग सिस्टम में जो है वो ट्रांसपेरेंसी और भी ज्यादा बेहतरी लाने में काफी यूजफुल साबित होगा। सो ऑल टुगेदर ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव और मुझे लगा कि चलिए हम दोनों को आपके साथ इस बात को शेयर करना चाहिए। इफ यू आर कीन तो जरूर विजिट कीजिए इनकी वेबसाइट और रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं।
3: बिल्कुल सही, और बहुत बहुत शुक्रिया मिस नाज़िया, बड़ी अच्छी अपडेट दी आपने यहाँ पर, और उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें और इस तरीके की एक्टिविटीज़ और इस तरीके के जितनी भी चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएं इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर हमें कॉल व्हाट्सएप नंबर पे आ रही, नाज़िया क्या करना चाहिए इनको, ये बताइए पहले, ये व्हाट्सएप पे जो कॉल कर रहे हैं इनको बताइए इनको क्या करना
1: इनको
3: चाहिए?
1: आप बताइए कि किस नंबर पे जो है वो हम इनकी कॉल एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड द नंबर इज 4434437। ये नंबर है जहां आपकी हमारी बात हो सकती है, अदरवाइज 6662107 पर आप सिर्फ मैसेज ही कर सकते हैं। तो यहाँ
3: 5978 जिनके नंबर में है आखिर में, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए जो नाज़िया ने बताया 4434377, इस पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको हमारे साथ रابطہ करना है। और कहते हैं व्हाट्सएप पे कॉल वालों को ब्लॉक कर दीजिए।
1: नहीं, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता।
3: ऐसा कैसे हो जाएगा,
1: किसी को भी हम ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है लोग हमारे साथ जो है फर्स्ट टाइम जुड़े, कोई कभी हमें सुन रहा है, कोई किसी टाइम हमें ड्राइव करते हुए सुन रहा है। सो हमारी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हर तरीके से हर एक के साथ जो है वो जुड़े, उन्हें कनेक्ट करें। So we are connected to one more caller. Hello.
4: Alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sumi hamare sath, right?
4: Ji ji bilkul. Aaj aap show kar rahi hai, Sarwar bhai ki awaaz nahi aayi.
1: Aaj bataiye bhai jaan, aap hi jawab de dijiye.
3: हेलो
4: हेलो
3: अरे अच्छा सुमी जी आ गई हो, मैं सुन नहीं पाया असल में थोड़ी देर में,
4: आपने पहले ही सुन लिया था इसी के लिए आप चुप हो गए।
1: इसे कहते हैं सुनना नहीं, अनसुना करना।
3: एक्चुअली
4: अनसुना कर देना।
3: हाँ नहीं, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं कि जिनको सुन के आदमी जो है थोड़ा
4: डर लगता है,
3: डर लगता है भाई। टीचरों से मुझे हमेशा डर लगता आया है बचपने से और आज तक डरता हूँ,
1: क्योंकि कभी टाइम पे होमवर्क नहीं करते थे ये हमेशा पेंडिंग में चले।
3: ऐसी बात

0: बोल रहे थे कि नाजिया जब सामने होती है ना तो मैं सलाम इनको खुद करता हूँ, ये खुद नहीं करती मुझे, वो आपको मौका देती है 20 नेकियां कमाने का कि आप नेकियां ज्यादा कमाएं, ये कम कमाएं, इसके लिए
1: आप गले लग जाती है। कितनी अच्छी वाकई अल्लाह, कितनी अच्छी, देखा कैसे चोट लगी आपके झूठ बोलने जा रहे थे, इनके फौरन चोट लगी, अल्लाह भी रोक रहे हैं।
2: इतनी गवा दी इन्होंने, इतनी गवा दी कि अकाउंट जीरो हो गया है
0: इनका।
2: आंखें काली पड़ गई है इस औरत की, पूरी सफेदी गायब हो गई अंदर से।
1: अरे इनकी एक ही प्रॉब्लम है दुनिया की,
0: देखिए कितना अच्छा काम करती है, ये भी तो एक अच्छी आदत है ना कि आपको मौका दे।
1: अरे इनका सुमी पता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इनका लाइफ में, ये सच नहीं बोलते हैं, बस यही कहते हैं एक ही ऐब है मुझे,
2: नहीं
1: सच कभी नहीं बोला मैंने।
2: आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं,
1: बोला इन्हें आधे सेकंड के लिए
2: भाई सुमी जी,
1: बस इससे ऊपर।
2: तो इसका मतलब सुमी जी का कहना ये है कि वो ही एक बढ़िया आदत के अगर वो काम ना करें जो बच्चों के लिए करना है घर में या घर वालों के लिए करना है, हाँ। तो शायद कोई भी उसको ना करे, हैं ऐसे
0: ही। और भी बहुत अच्छी आदत है।
2: नहीं नहीं माशाल्लाह, मतलब होंगी
0: मेंटेन करना। देखिए मेरा एक ना पहले एक स्लीपिंग जो रूटीन था ना वो बहुत डिस्टर्ब था, मैंने ना फिर एक अहद किया कि नहीं भाई 10 बजे सोना है, इट मींस कि सोना है।
2: OTT पे ज्यादा रहती थी आप रात में, सोने से पहले वो सीरियल देखना, डेली सोप देखना, वो आदत आपने खत्म करी एक्चुअली।
0: मतलब आप अपना रूटीन मुझे ना बताएं।
2: नहीं नहीं मैं तो अर्ज कर रहा हूँ मैम, बाकी तो
0: नहीं नहीं मतलब फिर एक चीज, मतलब एक लेट चीज आप स्टार्ट करते हो ना तो हर चीज लेट होती है, फिर कुकिंग, फिर उसके बाद सब कुछ करना वो बहुत लेट हो जाता था।
2: जी,
0: फिर मैंने तहिया किया कि नहीं अभी 10 बजे सोना है, बस एग्जैक्ट सोना है और सुबह 4:30 पे उठ जाना बस।
2: माशाल्लाह नाजिया सीखिए, नाजिया प्लीज आप भी कुछ तहिया कुछ और कुछ भी कुछ तो करिए।
0: हर इंसान की मसरूफियत अलग होती है सर भाई, हर इंसान एक रूटीन फॉलो नहीं कर सकता है। लेट मी स्टॉप यू,
1: कुछ ट्राई टू लर्न समथिंग।
2: 12:00 सही 12 मिनट
0: बर्गर बिरयानी नहीं खा सकता
2: इस बार, इस वक्त मेरे डबल 12:00 बज रहे हैं, आप घड़ी देखिए
1: डबल
2: 12:00 बज रहे हैं क्योंकि दो लेडीज ने मिलकर घेरा है मुझे और बहरहाल नहीं हुआ
1: मतलब फिर भी कुछ पूछ रहा आपका छूटा हुआ
2: मजाक से हट के बड़ी अच्छी बात करी और एक बड़ी अच्छी टीचर, एक बड़ी अच्छी मॉम, एक बड़ी ही अच्छी वाइफ, बड़ी अच्छी बेटी और बड़ी अच्छी बहन है मिस सुमी और बड़ी अच्छी लिसनर कॉलर भी है। मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप खुश रहें और जिंदगी के तमाम मराहिल में आप आगे बढ़ती चली जाए और खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सुमी जी हमारे साथ जुड़ने का।
1: हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती रहे बिल्कुल जैसे आप
2: अभी से। सुमी जी थोड़ी सी देर में हम लोग गेम की तरफ बढ़ेंगे तो जरूर तशरीफ लाइएगा, वरना हमें मौका दीजिएगा नाजिया कॉल करने के लिए करेंगे,
0: वरना कोई और क्या मैं बोलूं, मैं सिर्फ कॉल करती भाई लोगों को भी मौका देना चाहिए चैंपियन बनने का।
2: नहीं बिल्कुल, ओह माय गॉड, आज एक्चुअली ये वो नहीं नहीं ये वो गेम है जिसमें आप अभी चैंपियन बनना रह गई हैं और उम्मीद है कि आप चैंपियन बनेंगी जी। ऑल राइट देन, थैंक यू सो मच मैम हमें कॉल करने के लिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच,
0: ओके अल्लाह,
1: थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। एक और यहाँ पर मेरे साथ कॉलर जुड़ने,
2: बिल्कुल एक कॉलर, उसके बाद हम ब्रेक पे जाने वाले हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम,
2: अहलन व सहलन, वेलकम, कौन है हमारे साथ?
3: सारा।
2: सारा क्या बात है, क्या हाल है सारा का?
3: जी ठीक हूँ
2: माशाल्लाह। क्या कहना चाहती हैं सारा? गेम खेलने आई हैं, अभी हम खेल ही नहीं रहे।
3: गेम खेलने आई हैं
2: बस थोड़ी सी देर में कॉल कीजिएगा और फिर गेम खेलेंगे, ठीक है? एक ब्रेक लेना है हमें उसके बाद,
1: ठीक है?
3: Okay.
1: Oh, okay. Very nice. Thank you so much, Sarah. Thank you for your call.
2: तो भाई ये थी सारा हमारे साथ जो अब गेम खेलना चाह रही हैं और फिलहाल के लिए बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं एक नगमा। अरमान मलिक यहाँ पर कुछ कह रहे हैं, बहुत सी चीजें बता रहे हैं और काफी चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं और बाद में यही कह रहे हैं कि वजह तुम हो। एंजॉय कीजिए ट्रैक आफ्टरनून एक्सप्रेस पे, सर्वर और नादिया आपके साथ बने हुए, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आने के बाद गेम का सिलसिला बनेगा।
4: कैसे कहूं इश्क में तेरे कितना हूं बेताब मैं,
2: दिल से
1: देसी।

0: सक्सेस की शुरुआत होती है एक छोटी सी सोच के साथ, एक आइडिया से।
1: ये आइडियाज कहाँ से आते हैं, क्या माइंडसेट्स होते हैं, क्या अप्रोच होती है,
0: ये जानना बहुत जरूरी है। इस शो में बात होगी लीडरशिप, सेल्फ डेवलपमेंट और डिसीजन मेकिंग पर, जो आपको एम्पावर करेगी। हर गेस्ट होगा एक पावर हाउस ऑफ मोटिवेशन और हर एपिसोड एक नई कहानी, एक नई इंस्पिरेशन। जरूर सुने शो पावर टॉक्स हर सैटरडे दोपहर 1 बजे से आरजे नाजिया के साथ, ओनली ऑन FM 107। पावर टॉक्स, हर लफ्ज में ताकत, हर बात में मोटिवेशन।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
3: सीखना, समझना और बोलना, ये तीन हिस्से होते हैं किसी भी जुबान को सीखने के लिए। और आखिर हमें कैफल हाल से आगे भी तो बढ़ना है कि नहीं? इसलिए हमारे खास शो को जरूर सुने जिसका नाम है लर्न अरबिक। साथ होंगे आपके आरजे तला अशरफुज़्ज़मान हर वेंसडे सुबह 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। तो बस FM 107 ऑन कीजिए और

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: घर में खाना अगर बच्चों की पसंद का हो तो घर में सुकून बना रहता है। अब आप सोचिए अगर आपके घर में ही एक नन्ना शेफ छुपा हो तो प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म है ना। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं खास शो जिसमें आपके घर के उस नन्हे शेफ को मिलेगी इंस्पिरेशन और रेसिपीज का खजाना। आरजे सरवर के साथ सुनिए जूनियर शेफ हर जुम्मे की दोपहर 2:30 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: साइंस कैन बी फन? ना, साइंस विल बी फन, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होंगे तभी तो थ्योरीज फैक्ट्स बनेंगी, है ना। तो बस दुनिया बदलते देखिए हमारे साथ, क्योंकि हम करेंगे फन साइंस एक्सपेरिमेंट दोहा वाले कबीर के साथ, एक इजी एंड सेफ एनवायरनमेंट में। सुनिए और देखिए हमारे साथ ये खास शो जूनियर साइंटिस्ट हर संडे दोपहर 3 से 4 बजे सिर्फ FM 107 पर। दिल से देखिए।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर। दिल से देसी। यू आर लिसनिंग टू
3: आफ्टरनून एक्सप्रेस। आफ्टरनून
1: एक्सप्रेस, तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ
4: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक,
1: ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। राइट गाइज, वेलकम बैक। आप सुन रहे हो आफ्टरनून एक्सप्रेस, 12:29 ऑन द क्लॉक। सर्वर और नाजिया हम दोनों आ चुके हैं और अब वो टाइम है जब हम आपके साथ अब गेम, अपना जो गेम सेगमेंट है उसका आगाज करने वाले हैं। और हमारे साथ एक कॉलर यहाँ पर जुड़ चुकी हैं। हेलो।
5: हेलो, अस्सलाम
1: वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सुमी आप?
5: अल्हम्दुलिल्लाह।
6: तो सुमी जी रेडी हैं गेम खेलने के लिए?
5: पहले मुझे गेम तो बताएं।
6: हाँ बिल्कुल, वहीं आ रहे हैं। तो गेम ऐसा है कि बॉलीवुड से रिलेटेड है, गानों से रिलेटेड है और यहाँ पे
5: प्लीज
6: सुमी जी, ये जब ही तो नया है आपके लिए, ये नया है आप इसमें भी कर लेंगी भाई। हमने क्या किया है कि सिर्फ इसमें थोड़ा सा और हमने इसको वसी कर दिया है, थोड़ा और इसमें चीजें बढ़ा दी है। वो ये कि हम आपको एक गाने का म्यूजिक सुनाएंगे, गाने की स्टार्टिंग या गाने के बीच में, जो मशहूर है, जो हम आप जानते हैं, और उससे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट आप निकाल सकती हैं। यानी कि इसमें मेल सिंगर कौन है, इसमें लेडी सिंगर कौन है, ये गाना लिखा किसने है, म्यूजिक किसका है, या गाना भी कौन सा है। तो इस तरीके से जितने पॉइंट आप बना सकती हैं एक गाने के अंदर वो आप बना सकती हैं। और गाने हम मजीद आपको आगे अगर आप कहेंगी पास तो हम पास करके दूसरा गाना भी आपको बताते जाएंगे। क्लियर हो गया?
5: ओके।
6: ऑलराइट देन।
1: और यहां पर टाइम आपने 30 सेकंड्स रख रखे हैं, राइट?
6: आप अभी सुमित जी पहली हैं तो देखते हैं कि कहां तक जाएंगे। वैसे हाँ, हायर साइड बस 45 सेकंड है तो हम उसको कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी। अभी हमने 45 सेकंड रखे हैं सुमित जी हमारे साथ यहां पर,
1: तो अच्छे खासे हो गए। चलिए, तो यहां पर हम जैसे ही आपके लिए एक सॉन्ग, एक म्यूजिक प्ले करेंगे, आपको गाना अगर समझ में आया तो वो पहचानिए, एक पॉइंट होगा। एक्टर एक्ट्रेसेस अगर आपको समझ में आ गई कौन कौन है तो उनका नाम लेंगे, आपकी 2-3 पॉइंट्स और बढ़ेंगे। अगर आपने बताया कि इसके म्यूजिक डायरेक्टर ये है तो और बढ़ेगा। नाम मूवी बता दे तो एक और पॉइंट, यानी एक ही सॉन्ग के साथ आप 7-8 का स्कोर भी कर सकते हैं।
5: ओके ओके,
1: ठीक है।
6: भाई बड़े बड़े चैंपियन हैं माशाल्लाह बॉलीवुड के। तो हमारे पास यूसुफ भाई हैं, इस्माइल भाई हैं और भी बहुत लोग हैं, सुमी जी खुद हैं,
1: दिलशाद जी हैं,
6: हाँ बिल्कुल, जावेद बाजवा साहब हैं। तो अगर हमें सुनना है तो जरूर तशरीफ लाएं, आज का गेम खासम खास है आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए जी, घड़ी भी सेट है और सुमी जी रेडी है,
1: आप तैयार है?
6: बिल्कुल, मैं भी रेडी हूँ, नाजिया रेडी है। चलिए,
1: तो आपके लिए पहला म्यूजिक आ रहा है वो है ये।

0: सकती हैं आप? कुछ भी नहीं बताएंगी इस गाने में?
1: हम दोनों हैं अलग अलग. नहीं नहीं
0: नहीं, वो मैं और नाजिया तो अलग है ही है, आपने सही कहा. मगर गाना तो काफी हिट गाना है सुमी जी. चलिए नेक्स्ट सुनाते हैं. नेक्स्ट सुनाते हैं.
1: ऊंची है बिल्डिंग. ऊंची है बिल्डिंग. ओह यस.
0: तो इसमें आप और बता सकती हैं किसने गाया है? किसने गाया है इसको?
2: वरुण धवन इसमें है.
0: ओके ओके.
2: जैकलिन
0: फर्नांडिस. ओके ओके ओके. हम नए वाले को भी इससे मर्ज करेंगे. ओके ओके. सिंगर याद है आपको पहले वाले से या इस वाले से? कोई भी, क्योंकि दोनों ही सिंगर मर्ज्ड है ये गाना. 2.0 वर्जन भी इसका, अगर बता सके. सिंगर याद है आपको? बड़े ही अनोखे और बड़े ही
1: चार के स्कोर किया है.
0: बड़े ही मुख्तलिफ सिंगर हैं.
2: सचिन?
1: नहीं,
0: वो तो क्रिकेट खेल रहे हैं, खेलते थे पहले.
1: आई थिंक एक और गाना आपके लिए हम प्ले करते हैं. इसमें देखिए आप स्कोर करती हैं कि
0: अच्छा, मगर टाइम पूरा हो गया था 45 सेकंड का, तो इट्स फाइन. मुझे ऐसा लगता है कि चार का स्कोर इज नॉट बैड.
1: आपने चार का स्कोर इस सॉन्ग के साथ तो कम से कम चार.
0: और मैं सुमी जी को बता दूं आगे के लिए और दूसरे चैंपियंस जो हमारे साथ जुड़ेंगे कि भाई आप गाना पास भी कर सकते हैं. हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है आपके लिए.
1: बिल्कुल. और गाना अगर आपको समझ में आया तो पास कीजिए.
0: और उस गाने में अगर आप एक चीज भी बता रहे हैं तो दूसरे में आप दो चीजें शायद बता पाए.
1: तो जितना मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हैं.
0: ऑलराइट देन.
1: बट वेरी वेल प्लेड. बहुत अच्छा खेला. दैट्स द ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होनी चाहिए आप में है.
0: थैंक यू सो मच मैम.
1: थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट टाइम. टेक केयर. बाय.
0: ओके, तो भाई सुमी जी यहां पर रिकॉर्ड जो है वो बना रख चुकी हैं चार का. एक चैंपियन अब हमारे साथ जुड़े हैं. देखते हैं कि वो क्या कहते हैं और क्या कर पाते हैं. हेलो, सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह.
0: हमने पूरा जाल बिछाया था इसी बारे
1: के.
0: हाँ, शेर आए और पिंजरे में फंस जाए. तो भाई देखते हैं यूसुफ भाई आज
3: कैसे हैं,
0: क्या कर पाते हैं आप. कहाँ या यूसुफ भाई,
1: आप कैसे हैं?
0: आपके मैसेजेस आते हैं, आप हमारी खैरियत खैर सल्ला पता करते हैं, दुआएं भी देते हैं हमें पता है. मगर कॉल भी कीजिए ताकि आपसे हम जुड़ते रहें यूसुफ भाई.
3: जी माशाल्लाह, शो बहुत अच्छा जा रहा
0: है. थैंक यू भाई, मोहब्बत है आपकी. तो यूसुफ भाई समझ गए हैं गेम, आपने सुना हम क्या खेल. सब रेडी? तो बस चलिए टाइम वेस्ट करे बगैर नाजिया
1: स्टार्ट कर लेते हैं.
0: स्टार्ट कर देते हैं.
1: बिल्कुल. और आपके लिए पहला सॉन्ग है ये
3: काली काली आंखें.
1: ओके.
3: शाहरुख खान, काजोल, अनु मलिक, कुमार शानू.
1: मूवी का नाम भी बता दे.
0: मूवी का.
1: वाओ बाजीगर. बिल्कुल सही.
0: अभी टाइम बाकी है.
3: जुड़ा.
0: ओके.
1: बिल्कुल सही.
3: सलमान खान.
0: ओके.
1: बिल्कुल सही.
3: करिश्मा कपूर.
1: राइट.
3: रंभा.

0: ओके टाइम हुआ पूरा और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का स्कोर है।
1: क्या बात है
0: गुड वन यूसुफ भाई से
1: Very
0: यही
1: nice.
0: हमें एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा तो कर ही पाएंगे क्योंकि टाइम हमने कम रखा वरना दूसरे गानों पे भी यूसुफ भाई ज्यादा बता सकते
1: मुझे लगता है सब बता लेते हैं
0: बट क्या बात है भाई यूसुफ भाई जबरदस्त खेले
1: 10 का स्कोर बहुत अल्टीमेट स्कोर है बहुत ही अच्छा आपने खेला एंड जबरदस्त
0: बिल्कुल
1: थैंक यू सो मच थैंक यू हैव अ ग्रेट टाइम टेक केयर
0: थैंक यू यूसुफ भाई
1: बाय बाय वालेकुम
0: अस्सलाम रहमतुल्लाह और यहां हमारे साथ एक और
1: चैंपियन
0: जो है वो जुड़ रहे हैं यो
1: हेलो
0: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू जी कौन है हमारे साथ यार कहाँ थे जमील भाई इतने दिनों बाद तशरीफ लाए
2: सरवर भाई गया था सऊदी गया था काम से
0: ओह अच्छा अच्छा सऊदी गए हुए थे क्या लाए मेरे लिए
1: दुआएं
2: सर दुआएं
0: वो तो आप वहीं से कर रहे थे यार लेके क्यों आए वो तो आप वहीं से कर देते
2: सर भाई एक बड़ा बेहतरीन प्रैक्टिकल किया मैंने अभी लास्ट थर्सडे को और स्पेशली आपको याद कर करके
0: अजी हाँ
2: मैंने बनाई है मटन की कढ़ाई बिरयानी बारबेक्यू के साथ यकीन करें आप उसके
1: मटन की कढ़ाई बिरयानी
0: ये तो आपने रिश्तेदार ये तो आपने खालादाद बहन की चचादाद बहन से शादी करवा दी
2: बस ये हमने थोड़ा सा कर दिया असल में मेरे सर्किल में ना मेरे सर्किल में मैं वो वाहिद एक इंसान हूँ जो कराची से बाकी लखनऊ यूपी आजमगढ़ जौनपुर अब इनका जो
0: जौनपुर से भी भाई जौनपुर के तो लोग बड़े ही खासम खास होते हैं मेरे बड़े ही करीबी दोस्त जौनपुर से हैं मिस्टर जियाउद्दीन और वो भी बहुत अच्छा बनाते हैं खाना नहीं बनाते बहुत अच्छा है जौनपुर के लोग बना बहुत अच्छे रहे
2: बहुत अच्छा बना
0: रहे ये बात तो सही है चलिए भाई अहलन व सहलन उम्मीद करते हैं आपकी ट्रिप अच्छी रही होगी और जो भी खाना वगैरह आपने पकाया वो भी अच्छा रहा होगा और ऑल द बेस्ट आगे के लिए भी जमील भाई तो फिलहाल गेम शुरू करते हैं और सुन लिया है आपने क्या आज हम परेशान कर रहे हैं आपको
2: जी वही सुन रहा था सर वही सुन रहा था मैं इसमें इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ गानों वानों में लेकिन ट्राई करेंगे
0: भाई खाली गाना ही नहीं है ना गाने के अंदर मजीद बहुत सारी चीजें गाना
1: है।
0: खुद है सिंगर है
1: गाना पहचान सकते
0: गाने
1: है,
0: का नाम है मूवी का नाम बता सकते हैं सिंगर का नाम एक्टर का नाम एक्ट्रेस का नाम ठीक है चलिए
2: कितनी गहराई से कितना टोकरा भर सकते भरेंगे
1: सही डन डन हाईएस्ट अभी है 10 कोशिश कीजिए कि 10 से आप थोड़ा सा ज्यादा स्कोर करें ओके सो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब और म्यूजिक आपके लिए ये रहा

0: नहीं
1: नेक्स्ट
0: ये नहीं
2: छुपाना छुपाना भी नहीं आता
0: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ,
1: चलो चलो एक एक तो किया गाया किसने था वो गाना
2: सर ये
1: म्यूजिक बंद कर दी कंफ्यूज नहीं बिल्कुल नहीं टाइम तो पूरा हो गया भाई का
2: नहीं
1: गा तो अच्छा रहे वैसे ऐसी बात नहीं
0: अच्छा मूवी मूवी
1: अच्छा मूवी तो याद करो यार
0: एक्टर एक्ट्रेस कोई भी याद आ रहा है
2: एक्टर एक्ट्रेस तो इसमें शायद अक्षय
0: नहीं शायद अक्षय तो नहीं है
2: फिल्मों का इतना वो नहीं होना मैं नाजिया जी फिल्मों पे टाइम कभी वेस्ट करने का मिला ही नहीं मौका
0: फिल्मों पे टाइम मैंने कभी वेस्ट किया ही नहीं
1: चलिए भाई जमाल भाई का स्कोर हुआ है क्या बात है नंबर एक क्या कहने
2: आप अगर जैसे आपने पहला वाला लेकर आए ना किसका लेकर आ गए आप शाहरुख और सलमान 90s में दुनिया इन दो के अलावा किसी को जानती नहीं थी
1: हाँ तो वही तो अभी सुना रहे हैं आपको आपको कौन सा 47 का सुना रहे हैं
2: वो थे ना शाहरुख सलमान के वो काली काली आंखें
1: ये भी वही थी ये भी आंखें काली ही थी और शाहरुख खान की थी और शाहरुख खान इसमें दो बार थे खुद
0: सही बात है
2: अच्छा उस दौर में ना सरवर भाई इस तरह के गानों पे हम लोग फास्ट फॉरवर्ड कर दिया करते
0: उसी का आज आपको देखे नुकसान हुआ है गाने इन्होंने सारे फास्ट फॉरवर्ड कर दिए लेकिन चलिए आपने कोशिश की है वो एक बड़ी बात है अपने आप में अटेम्प्ट करना बड़ी बात होती है तो आपने ट्राई किया अटेम्प्ट किया एंड ग्लैड कि आप हमारे साथ
1: जुड़े और अब उम्मीद करते हैं

0: कि आप जुड़ते रहेंगे अभी मतलब अब वापस
1: घर अभी तो 11 से 1 107 के साथ है हम इंशाल्लाह। अहलन
0: व सहलन सर, जरूर बहुत बहुत शुक्रिया
1: आपके लिए। आपको पता है मैं अपने क्लाइंट तक को जो है ना घुमा देता हूँ, जैसे आपने बोला ना जौनपुर वाले बहुत बनाते हैं, मैं क्लाइंट को बना देता हूँ 20 मिनट मुझे और लगेगा उसके बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर बोलता हूँ 20 मिनट और लगेंगे और कॉल पे।
0: आप भी जौनपुर से हैं क्या?
1: नहीं मैं तो कराची वाला हूँ ना सर।
0: अच्छा, जौनपुर से दोस्ती अच्छी चल रही है जौनपुरियों से?
1: पूरे यूपी से चल रही है सर।
0: अरे वाह, जबी जबी जबी बात भी वैसी चल रही है।
1: ये आजमगढ़ जौनपुर और बनारस,
0: क्या बात है भाई, वाह
1: अलीगढ़ यही है मेरे सर के।
0: क्या कहने, वाह वाह वाह वाह,
2: क्या बात है।
1: और आपने बिल्कुल सही बोला, ये बनाते बहुत अच्छा है। इनको आप अगर बोल देना कि यार मुझे भूख लग रही है अंडा बनाओ, ये खुद नहीं बनाएंगे यार। हमें कहा था जमील भाई आपके हाथ की बिरयानी नंबर वन वो बनाओ आप, ऐसे बनाते ही।
0: ओह माय गॉड, हमारी भी तारीफ हो गई
2: सर भाई, आपको पहचान गए
0: साथ ही साथ। चलिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया जमील भाई हमारे साथ जुड़ने के
2: लिए। थैंक यू सो मच। अहलन
0: वसहलन, अहलन वसहलन,
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: तो भाई यहाँ पर ये थे हमारे साथ अभी तक चैंपियन जुड़ते हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आने के बाद गेम जो है वो हम जारी रखने वाले हैं। सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

0: का मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107 FM 107 दिल से देसी।
1: एक्सक्यूज मी, अच्छा यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
2: हाँ उसके लिए तो
1: वैसे कतर की हिस्टोरिकल जगह जानने के लिए कहाँ जाना सही रहेगा?
2: वैसे वो तो देखो,
1: और इवेंट के लिए ये मुल्क नया है, क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है।
2: एक मिनट रुको ना, मिलेगी पूरी जानकारी, मिलेगी FM 107 पे। प्रोग्राम कतर 101 RJ फजील के साथ जानिए लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में हर इतवार सुबह 10 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: तो भाई ये गाने से तो हम जुदा हो रहे हैं क्योंकि इस वक्त हमारे साथ एक चैंपियन जुड़ गए हैं और हम ज्यादा वेट नहीं कराना चाहते। प्रोग्राम का वक्त भी तंग हो रहा है और देखते हैं कि यहाँ हमारे साथ कौन जुड़ा हुआ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: अस्सलाम, हम है आपके साथ FM 107। बड़ी अच्छी आवाज निकल रही, लग रहा लंच हो गया शहजादा भाई।
1: जी जी, एनर्जी है, एनर्जी आ गई है।
0: क्या बात है, बिरयानी खा ली है इस वक्त? गरम गरम लग रहा है।
1: बिरयानी नहीं थी ना आज मैच में, है ना, कंपनी दे विल बी प्रोवाइडेड फ्री फूड एंड अकोमोडेशन।
0: क्या कह ले भाई, क्या कह ले, वेरी गुड, माशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर आफियत के साथ
2: हजम करवाए,
0: हजम भी बिल्कुल हजम भी करवाए। तो भाई शहजादा भाई, गेम तो आपको बताइए आज जो चल रहा है, और हम एक गाना सुनाएंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट आपको बनाने हैं। सिंगर कौन है, गाना कौन सा है, एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है।
1: पुराने गाने में ये तो ज्यादा अच्छा है,
0: पुराने बिल्कुल आपके टाइम के, बिल्कुल आपके टाइम के।
2: चलिए पुराने ही हैं, आप ट्राई कीजिएगा। हाँ तो चलिए पहला आपके लिए म्यूजिक आ रहा है, आपको गाना भी पहचानना है क्योंकि म्यूजिक होगा तो वो भी एक पॉइंट है। फिर एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर, मूवी का नाम, जितना आप बोलते जाएंगे उतना आप स्कोर करते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आपके लिए पहला म्यूजिक है ये।
0: ओके, और इसमें मजीद मजीद क्या ऐड कर सकते हैं? हीरो कौन है, हीरोइन कौन है,
1: मेरा कौन कौन इसमें आशा?
0: मूवी का नाम याद है, मूवी का नाम याद है?
1: नहीं नहीं,
0: चलिए नेक्स्ट गाना, नेक्स्ट गाना,
2: नेक्स्ट।
0: ओके, ओके ओके ओके, हीरो कौन है, फिल्म कौन सी है?
1: बाजीगर।
0: ओके, हीरो याद है?
1: हीरो शाहरुख खान भी है, और ये भी है, क्या नाम है जो शो कर रही थी ना डांसिंग का, मेरा एक्टर का नाम,
0: हीरोइन हीरोइन हीरोइन भी याद नहीं
2: आ रही है।
1: काजल, काजल है।
0: ओके,
2: काजल हो गई।
0: ओके,
1: ये अपना सॉरी जूही चावला।
0: नहीं, काजल तक सही था। गाना गाया किसने?
1: गाना गाया कुमार सानू, मेरा ख्याल।
2: नहीं, एक और गाना आपको सुनाते हैं, सुनिए।

0: ओके
1: परदेस इज द राइट आंसर.
0: हां शाहरुख खान
2: वो हीरोइन तो और डायरेक्टर है सुभाष घई.
1: सही.
2: और
0: गाना कौन सा है?
2: गाना ये कभी तो उससे मुलाकात होगी मेरी जान.
0: हाँ ओके ओके. चलो भाई टाइम पूरा हो गया और स्कोर बहुत अच्छा कर दिया यार. क्या चला भाई ने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का स्कोर कर दिया.
1: बिल्कुल एकदम टफ कॉम्पिटिशन दिया आपने.
2: तुक्के लगे सारे तुक्के.
0: तुक्के नहीं बिल्कुल सही.
1: सही पहचाने आपने.
0: बिल्कुल सही और जबरदस्त.
1: बहुत अमेजिंग बहुत अमेजिंग.
0: तो कल से लंच करके ही मिलिएगा तो जरा स्कोर अच्छा होगा. बहुत बहुत शुक्रिया शहजादा भाई. बहुत बहुत शुक्रिया.
1: थैंक यू सो मच
0: हमारे साथ जुड़ने के लिए. यहाँ पर एक हमें लगता है कि ये लास्ट चैंपियन होंगे जो हम कनेक्ट कर पाएंगे. हेलो सलाम वालेकुम.
1: हेलो
3: वालेकुम सलाम सर.
0: अहलन वसहलन. कौन है हमारे साथ?
3: रमेश बोल रहे सर.
1: रमेश
0: आज मुझे आवाज साफ आ गई असल में जल्दी में हूँ ना वक्त खत्म होने वाला. रमेश यादव साहब चलिए. रमेश भाई टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे. गेम आपको बताइए क्या चल रहा है. है ना
1: ठीक है.
0: याला,
1: पहला म्यूजिक आपके लिए
3: कहो ना कहो.
0: ओके राइट.
1: बिल्कुल सही.
0: हीरो कौन था? गाया किसने था? कुछ याद है? मूवी
3: इमरान हाशमी.
1: बिल्कुल सही.
0: मूवी
3: मूवी सर मूवी नहीं याद. नेक्स्ट ये तम्मा तम्मा लोगे.
0: ओके हीरो याद है?
3: अच्छे से संजय दत्त.
0: ओके हीरोइन मूवी माधुरी. ओके मूवी का नाम अरे जो आप हैं यार
3: पप्पी लहरी.
1: ओके पप्पी.
0: मूवी का नाम भी तो यार आपसे मिलता है.
3: सही बात है सर ध्यान नहीं आ रहा.
1: चलिए कोई नहीं दूसरा गाना. म्यूजिक सुनिए.
3: Next.
0: Next. नहीं आ रहा.
3: सॉरी सर.
0: ये सुनिए सुनिए अभी आगे समझ में आएगा.
3: नो सर नो.
0: अरे ट्रेन चल रही है. ट्रेन.
1: हाँ ये पहचान लेंगे. सुनिए. नहीं नहीं सुनिए सुनिए सुनिए.
0: अभी भी नहीं आया?
3: नहीं सर.
0: चलिए साहब इतना आ गया. बहुत आ गया.
1: लेकिन आपने बहुत अच्छी कोशिश की और काफी सॉन्ग्स आपने पहचाने.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6 का स्कोर किया है यार रमेश भाई. बिल्कुल भाई जबरदस्त.
1: अच्छा पहचाना आपने.
0: क्या कहने भाई रमेश भाई अच्छा खेल लिया.
3: अगर उधर पहुंच गए होते बाजीगर की तरफ तो पूरा 14-15 हो गया होता.
0: अरे यार तो बाजीगर की तरफ. हाँ हम हाँ बाकी हमने कहा
1: और आपने ये वाला गाना जो नहीं पहचाना ना ये था छैया छैया.
0: ये छैया छैया था. हमने आपको दूसरा भी ऑप्शन दिया था एक बाजीगर का दिया. छुपाना भी नहीं आता.
1: नहीं
0: दिया था. अच्छा ओके चलिए भाई बहुत ही जबरदस्त.
1: एक आपने जो मिस किया वो था धूम मचा ले. वो भी मुझे लगा शायद आप पहचान लेंगे बट चलिए कोई नहीं. एनीवेज बहुत अच्छी कोशिश आपकी एंड वेरी वेल प्लेड. थैंक यू सो मच.
0: बहुत शुक्रिया रमेश भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए क्योंकि अब इजाजत लेने का भी वक्त हो गया है. तो इंशाल्लाह कल जरूर मुलाकात होगी और जल्दी ये तशरीफ लाइएगा. ओके भाई नाजिया यहाँ पर कुछ चैंपियन हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं एज यूजुअल. जैसे कि हम कहते हैं कि अगर आप हमें सिर्फ लिख भी देंगे कि कॉल बैक या डॉट भी बना देंगे तो हम कॉल करेंगे. मगर अब वक्त हो गया है इजाजत लेने का. यहाँ पर कुछ मैसेजेस हैं तो नाम जरूर ले लेता हूँ मैं. एस के है क्या नाजिया? बाकी टाइम है हमारे पास क्या? एक चैंपियन
1: एक ले लेते हैं. चलिए
0: लेट्स सी. ओके
1: हेलो
4: अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
4: अरे बड़ी कोशिश के बाद आपसे बात हो पाई. सोचते बात करें ऐसा था ऐसे टाइम आपका प्रोग्राम है कि हमारा काम ही रहता है.
1: अरे अरे हम लोग को अफसोस है कि चलिए लेकिन

0: फिर भी खुशी है कि आपसे हमारी बात हो रही है, तो आप हमारे साथ गेम खेलने के लिए तैयार हैं क्या?
1: खुशी है कि आपसे बात हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह।
2: अच्छा कौन
0: मिर्जा जी है?
2: अरे अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू।
2: कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ थे इतने दिनों से?
1: अरे पहचान गए? नहीं पहचान गए आप?
2: हाँ मैं पहचान गया साहब, अपने यूपी वाले।
1: यूपी वाले कहाँ के?
2: अरे वही अपने आजमगढ़ वाले,
0: नुक्कड़ वाले।
1: बस बस बस बस मिर्जा जी,
2: अरे तो
1: समझ गए।
2: नाम तो बताइए अपना कम से कम, ताकि दूसरे तो जाने।
0: दूसरे तो बताइए, समझ गए तो
1: आप जब समझ गए तो आप बताइए ना।
2: अरे मैं जब तो कह रहा हूँ नाम बताएंगे जब तो मजा आएगा आगे।
0: नाम इन्हें पता ही नहीं है आपका, मजे की बात तो ये।
1: आपको हिंट दे, मुस्कुराइए।
0: आप लखनऊ में?
1: हाँ।
0: लखनऊ वाले
2: अब तो
0: नखलऊ, नखलऊ वाले,
2: नखलऊ। वैस भाई है हमारे साथ, मुझे लग रहा
0: है। हाय हाय, क्या झूठा पहचान।
2: यार उवैस भाई, कितने दिन हो गए यार आपसे यार ना बात हो पाई ना चीत हो पाई।
1: जब आपका नाम मेरा सुन लिया तब धीरे से।
0: अरे ये यही करते हैं, इनकी आदत ही इस टाइप की।
1: हाँ।
0: ये इनकी पुरानी आदत है।
2: क्या यार उवैस भाई, कितना यार इंतजार कराया आपने, कितना मिस किया मैंने आपको।
1: अरे तो माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने
2: और करो।
0: नहीं मतलब कह रहे आपके झूठ पे, अब क्या ही कहें। सुभान अल्लाह
2: भाई उवैस भाई, आप तशरीफ तो लाए, मगर अब क्योंकि हाँ वक्त हो गया है हमारा,
1: तीन मिनट बाकी हैं।
2: जी बिल्कुल, इजाजत लेने का वक्त हो गया सर, तो इंशाल्लाह कल
0: आप हमारे साथ जरूर।
2: आप सिर्फ अगर हमें हाँ डॉट मैसेज भी कर देंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपको गाने वगैरह काट के कॉल बैक कर लें, तो जरूर कल तशरीफ लाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भाई। यहाँ पर हमारे पास 8651 इन द लास्ट इनकी कॉल आ रही है, 477 कोई लास्ट में जिनके हैं उनकी कॉल आ रही है, मैसेजेस हैं 1413 वो खेलना चाहते हैं, और नाम मैं क्या ही कहूँ यहाँ पर। ये
0: मैडम हमें फाइनली सर्वर यहाँ से लोगों से इजाजत लेनी है इंशाल्लाह इस वादे के साथ कि कल आपसे वापस मुलाकात होगी 11 बजे। बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक के साथ हम आपसे अलविदा ले रहे हैं, हर्षित सक्सेना की आवाज में हाल ए दिल, अमेजिंग सा ट्रैक, एंजॉय कीजिए। स्टे हुक्ड टू FM 107।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्रोग्राम आज की दुआ में हम एक ऐसी दुआ पर गुफ्तगू करने वाले हैं जो हर मुसलमान के दिल की गहराइयों से निकलती है। ये दुआ वालिदैन के हक और उनके अजीम कुर्बानियों की याद दहानी है जो कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल में जिक्र की गई है। रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए मेरे रब, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मुझे मोहब्बत और शफकत से पाला। रब्बी, ए मेरे रब, इरहमहुमा, मेरे वालिदैन पर अपनी खास रहमत फरमा दुनिया में भी और आखिरत में भी। कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला, मेरी ज़रूरियात पूरी की, मेरी तकलीफें बर्दाश्त की और अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करके मेरी परवरिश की। सामीने किराम, ये दुआ हमें याद दिलाती है कि वालिदैन के एहसानात का बदला देना मुमकिन नहीं, इसलिए तमाम तर खिदमात के साथ साथ ये बड़ी खिदमत भी है कि उनके लिए रहमत और मगफरत की दुआ की जाए। इस दुआ में बचपन की याद दहानी है। कुरान ने इंसान को उसकी तफुलियत याद दिलाई कि जब वो बिल्कुल बेबस था और वालिदैन ने उसकी हर ज़रूरत पूरी की। इसी तरह इस दुआ में इस बात की तरफ भी इशारा है कि जब वालिदैन ज़ईफ़ हो जाए और उनकी तबीयत में कमज़ोरी या चिड़चिड़ापन आ जाए तो भी उनके साथ शफ़क़त, एहतराम और सब्र का मामला करना ज़रूरी है। तो इस तरह सामने वालिदैन की खिदमत नेकी का काम है और उनकी नाफरमानी गुनाह है, कबीरा है। औलाद का फ़र्ज ये बनता है कि वालिदैन ने जैसे बचपन में कुर्बानियाँ दीं, वैसे ही बुढ़ापे में औलाद को उनकी खिदमत और दिलजोई करनी चाहिए। तो आज की दुआ हमें ये सबक देती है कि वालिदैन की खिदमत और उनके लिए दुआ करना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वो दुनिया में मौजूद हों या इस दुनिया से जा चुके हों। आइए हम सब मिलकर अपने वालिदैन के लिए ये दुआ पढ़ें। رب ارحمهما كما ربياني صغيرا। سامعین کرام، چلیں پروگرام کے اس مرحلے میں اب ہم ایک اور دعا سیکھیں گے۔ سامعین کرام، کسی مشکل معاملے یا فیصلے کے وقت، کسی بیماری، گھبراہٹ یا آزمائش میں، امتحان، نئے کام یا پروجیکٹ کے آغاز پر جب ہمارا دل بے چین رہتا ہے تب ہم اس دعا کا زیادہ اہتمام کریں۔ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ اے اللہ، کوئی چیز آسان نہیں مگر وہ جسے تو آسان کر دے، اور تو ہی ہے جو چاہے تو مشکل کو بھی آسان بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں ہمیں یہ سکھایا کہ آسانی اور مشکل دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، یعنی کوئی کام فطری طور پر آسان نہیں مگر جب اللہ اپنی قدرت اور رحمت سے آسان کر دے تبھی وہ سہل ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف حزن یہاں مشکل اور سختی کے معنی میں ہے، جیسے عربی میں زمین کی سخت اور اونچی جگہ کو حزن اور ہموار جگہ کو سہل کہتے ہیں، یعنی اے رب، تو چاہے تو سخت سے سخت کام کو بھی

0: लिए हमवार और आसान बना सकता है। इस दुआ में बंदा इतराफ करता है कि मैं अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ अल्लाह की तौफीक से मुमकिन है। और सरा मोमिन हर मुश्किल में अल्लाह से रुजू करता है, चाहे कोई बीमारी हो या जिंदगी की कोई आजमाइश। बंदा कहता है, अल्लाह सब कुछ तेरे हुक्म से है, जो तू चाहे आसान जो चाहे सख्त। याद रखिए कि आसानी इंसान की कोशिश से नहीं बल्कि अल्लाह की मशीयत से आती है। इस दुआ के अल्फाज मोमिन के दिल में सुकून, उम्मीद और एतमाद पैदा करते हैं। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़ना इज़ा शिअ्ता सहला।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का इस्तेमाल करते वक्त सेफ्टी गाइडलाइंस पर अमल करना एक्सीडेंट्स को रोकता है और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखने में मदद देता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए कुछ जरूरी इकदाम जानिए। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का इस्तेमाल सेफली करें, मखसूस रास्तों का इस्तेमाल करें, ज्यादा स्पीड पर ना चलें, रिफ्लेक्टिव वेस्ट पहने और स्कूटर की लाइट ऑन रखें, हमेशा हेलमेट ठीक तरह से पहने। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या ई स्कूटर्स राइडर्स को अपनी और दूसरे रोड यूजर्स की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स फॉलो करनी चाहिए। ई स्कूटर्स के लिए रिक्वायरमेंट्स बाइसाइकिल के बराबर हैं, जैसे राइडर्स का हेलमेट पहनना और फ्रंट और बैक पर लाइट्स लगाना। ई स्कूटर राइडर्स को रिफ्लेक्टिव वेस्ट पहननी चाहिए जो दूसरे रोड यूजर्स को दिखाई दें। उन्हें रोड पर डेजिग्नेटेड जगह इस्तेमाल करनी चाहिए, जो या तो साइड वॉक्स पर या रोड क्रॉसिंग के साइड्स पर हैं, जो पेडेस्ट्रियंस के लिए डेजिग्नेटेड होती हैं, बिल्कुल साइकिलिस्ट की तरह। याद रखिए, ई स्कूटर से होने वाले वायोलेशंस बाईसाइकिल एक्सीडेंट्स की तरह ही होते हैं। अगर ई स्कूटर राइडर्स एक्सीडेंट का सबब बनता है तो वो दूसरी पार्टी को होने वाले नुकसान का जिम्मेदार होगा। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 प्रेजेंट योर हेल्थ मैटर विद RJ श्रुति।
3: कभी सोचा है कि आपके लिए हेल्थ क्या है? सेहत को आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्या हेल्थ सिर्फ तब होती है जब रिपोर्ट्स नॉर्मल हो, या जब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े, या फिर हेल्थ वो लम्हा होता है जब मन हल्का हो, सांसें गहरी आए और जिंदगी थोड़ी मैनेजेबल लगे। सच ये है कि हेल्थ सिर्फ बॉडी का हल नहीं, हेल्थ एक एहसास है, एक इत्मीनान है, जब जिस्म, दिमाग और जज्बात एक दूसरे के साथ हार्मोनी में हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीज का ना होना नहीं, बल्कि फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बैलेंस है। और रिसर्च ये भी बताती है कि स्ट्रेस का असर सबसे पहले एनर्जी पर नहीं, बल्कि मूड और इमोशंस पर पड़ता है। इसीलिए जब हेल्थ हिलती है, सबसे पहले पेशेंस कम होता है। एक इंटरेस्टिंग बात और, आपका दिमाग बॉडी के सिग्नल सुनता है, लेकिन हम अक्सर उन्हें इग्नोर कर देते हैं। पुअर स्लीप फोकस को कम करता है, डिहाइड्रेशन थकान बढ़ाता है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस इम्यूनिटी को क्वाइटली वीकन करता है। हेल्थ कभी एक दिन में खराब नहीं होती, वो धीरे धीरे खामोशी से स्लिप करती है। इसलिए एक छोटा सा मशवरा, रोज थोड़ा सा पॉज लीजिए, अपने आप से पूछिए मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। ज्यादा पानी, थोड़ा मूवमेंट और थोड़ी मेहरबानी खुद के लिए। हेल्थ परफेक्शन का गोल नहीं है, हेल्थ अवेयरनेस का सफर है, जहाँ पर छोटा ख्याल आपकी बड़ी सेहत बनाता है।
2: योर हेल्थ मैटर,
0: योर हेल्थ मैटर,
2: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: आप सुन रहे हैं FM 107।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे एक स्टार टेनिस प्लेयर के बारे में, एलेना रिबाकिना। जी हाँ दोस्तों, एलेना रिबाकिना आज के दौर की उन टेनिस स्टार्स में से एक हैं जिन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी और पावरफुल गेम से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। कजाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली रिबाकिना ने अपनी मेहनत से एलिट लेवल पर अपनी जगह मजबूत की। अगर उनकी करंट फॉर्म की बात की जाए तो वो इस वक्त WTA रैंकिंग्स में वर्ल्ड नंबर 2 पर हैं, जो उनके करियर का हाईएस्ट लेवल भी रहा है। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ग्रैंड स्लैम स्टेज पर आई, जहां वो अब तक 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीत चुकी हैं। पहला विंबलडन चैंपियनशिप 2022 में और दूसरा 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर। रिबाकिना का प्लेइंग स्टाइल दोस्तों थोड़ा एग्रेसिव है। उनका पावरफुल सर्व और स्ट्रॉन्ग बेसलाइन गेम उन्हें बाकी प्लेयर्स से अलग बनाता है। वो प्रेशर मोमेंट्स में भी बहुत काम रहती हैं, जो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आज वो विमेंस टेनिस की टॉप कंटेंडर्स में शामिल है दोस्तों, और हर ग्रैंड स्लैम के टॉप लिस्ट में उनका नाम होता है। इंजरीज और टफ कंपटीशन के बावजूद उन्होंने बार बार प्रूव किया है कि वो हाईएस्ट लेवल पर कम्पीट कर सकती हैं। एलेना रिबाकिना दोस्तों सिर्फ एक चैंपियन नहीं, बल्कि एक मॉडर्न डे टेनिस फोर्स हैं, जो हर मैच में डोमिनेंस और कंपोजर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाती हैं। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाइलाइट्स पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Values are values. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main hoon Nazia aapke saath and welcome to the segment called Our Values. Doston, aaj ke is segment mein hum baat karne wale hain ek bahut hi kamaal ke topic. And this topic is communication se zyada connections kyun important hai. Dekhiye aaj ke zamane mein हम बहुत बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात होती है, कई बार लोग जो है क्लासेस बकायदा ले रहे होते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे होते हैं जिससे कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है और बेहतर हो जाए, मजीद इन्हांस कर सके। हर जगह कहा जाता है कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल ये एक सॉफ्ट स्किल है, और अगर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है तो आप अपने करियर में ग्रो करेंगे, आपके रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगी। लेकिन क्या ये एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है? क्या ये कंप्लीट अप्रोच है? क्या ये कंप्लीट स्ट्रेटजी है? चलिए इसी को आज एक्सप्लोर करते हैं। ये बात अपनी जगह देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स दे रियली ट्रूली मैटर इन टुडेज वर्ल्ड। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से अगर सवाल को गहराई से सोचें तो एक सवाल और उभरता है, और वो है क्या सिर्फ, आई रिपीट, क्या सिर्फ कम्युनिकेशन काफी है या फिर कनेक्शन भी ज्यादा अहमियत रखती है? देखिए कम्युनिकेशन का मतलब है बात करना, अपनी बात समझाना, आइडियाज शेयर करना। लेकिन कनेक्शन, कनेक्शन का मतलब है दिल से जुड़ना, समझना, महसूस करना। आप किसी से बहुत अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं लेकिन फिर भी कनेक्शन ना हो तो बात ही नहीं बनती। और कभी कभी कम बात करके भी बहुत गहरा कनेक्शन हम बना लेते हैं। कनेक्शन तब बनता है जब आपको सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि समझा जाता है, जब आप सामने वाले के इमोशंस को वैल्यू देते हैं, जब आप उनकी बात के पीछे छिपे जज्बात को महसूस कर पाते हैं। कम्युनिकेशन अल्फाज का खेल है जबकि कनेक्शन इमोशंस का। आजकल डिजिटल दुनिया में कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया है, मैसेजेस, कॉल्स, वॉइस नोट, सोशल मीडिया, हम हर वक्त कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन फिर भी लोग तन्हा क्यों महसूस करते हैं, कभी आपने सोचा? इसलिए क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन कनेक्शन बिल्ड ही नहीं कर पा रहे। हम सुनते हैं लेकिन तवज्जो नहीं देते, हम जवाब तो देते हैं लेकिन समझने के लिए रुकते नहीं हैं। दोस्तों कनेक्शन के लिए वल्नरेबिलिटी जरूरी होती है। जब आप अपनी असली फीलिंग्स शेयर करते हैं, जब आप परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ देते हैं तब कनेक्शन बनता है। कम्युनिकेशन में हम अक्सर इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस ट्रस्ट पे बनते हैं, और ट्रस्ट सिर्फ अल्फाज से नहीं बनता बल्कि कंसिस्टेंसी से बनता है। आपका रवैया, आपकी प्रेजेंस, आपका टाइम, आप किसी को रोज मैं हूं कह सकते हैं लेकिन अगर जब जरूरत हो तब आप अवेलेबल ही ना हो तो दोस्तों कनेक्शन वीक हो जाता है। दूसरी तरफ कोई शख्स कम बोलता है लेकिन मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हो जाता है तो कनेक्शन गहरा हो जाता है। जी हाँ, रिलेशनशिप्स में यही फर्क होता है। कपल्स भी देख लीजिए, अक्सर कहते हैं हम बात ही नहीं करते या हम बहुत बात करते हैं फिर भी दूरी लगती है। मसला ये है कि कनेक्शन कम हो जाता है जब हम सिर्फ रिएक्ट करते रहते हैं और समझने की कोशिश नहीं करते तो कम्युनिकेशन नॉइज बन जाती है, शोर बन जाती है। वर्क प्लेस पर भी कनेक्शंस बड़ी अहमियत रखते हैं। टीम मीटिंग्स में आइडियाज शेयर हो रहे होते हैं, ईमेल्स चल रहे होते हैं लेकिन जब तक टीम मेंबर्स के दरमियान ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का कनेक्शन ना हो काम इफिशेंटली नहीं होता। एक लीडर जो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देता है वो कम्युनिकेट करता है लेकिन जो लीडर सुनता है, अप्रिशिएट करता है और टीम के इमोशंस को समझता है वो कनेक्ट करता है। दोस्ती में भी कनेक्शन कम्युनिकेशन से ज्यादा गहरा होता है। आप किसी दोस्त से रोज बात ना भी करें लेकिन जब मिलें तो वही वार्मथ वही समझ और कभी-कभी रोज बात होती है फिर भी महसूस होता है कि दूरी है ये इसलिए होता है क्योंकि कनेक्शन मेंटेन नहीं हो रहा दोस्तों सेल्फ कनेक्शन भी बहुत जरूरी है जब तक हम खुद से कनेक्टेड नहीं होंगे हम किसी और से गहरा कनेक्शन बना ही नहीं सकते अगर हम अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते रहें तो अपने आप को जज भी करेंगे और शायद हम अपने साथ इंसाफ ना कर पाए अपने आप को समझना अपनी जरूरत अपनी बाउंड्रीज को पहचानना ये सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की बुनियाद है मतलब मैं कह सकती हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि कम्युनिकेशन बेकार है कम्युनिकेशन एक टूल है एक ब्रिज है लेकिन कनेक्शन कनेक्शन दोस्तों वो जमीन है जिस पर ब्रिज खड़ा होता है अगर जमीन कमजोर होगी तो ब्रिज कितना भी मजबूत क्यों ना हो गिर ही सकता है बस आखिर में जाते जाते यही कहूंगी कि कम्युनिकेशन बताती है कि हम क्या कह रहे हैं जबकि कनेक्शन महसूस करवाता है कि हम कौन हैं जब हम अपनी जिंदगी में सिर्फ सही अल्फाज ढूंढने की बजाय सही कनेक्शन

0: कनेक्शंस बनाने पर तवज्जो देंगे तो रिलेशनशिप्स गहरे असली और ज्यादा मीनिंगफुल हो जाते हैं. असल खुशी और सुकून सिर्फ बात करने से नहीं, याद रखिए दिल से जुड़ के समझने से होती है. चलिए आज के लिए बस इतना ही. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथियों इस वक्त एफएम 107 की घड़ी कितने बजा रही है? बजा रही है 1:31,
4: यानी वक्त हो चला है सुपर सफावरे फरमीता के आने का, क्योंकि ये वक्त होता है।
5: आप सुन रहे हैं
6: द सुपर किड शो।

0: तो भाई बच्चा पार्टी ढेर सारा वेलकम है आपको. अच्छा मुझे आज ऐसा लग रहा है मुझे
1: थर्सडे. अरे एक्चुअली आज सुबह वाली वाइफ से ऐसा ही फीलिंग है कि और धूप भी बड़ी तगड़ी सी हो गई है तो ऐसी फीलिंग है कि हाय हाय आज थर्सडे तो नहीं है लेकिन अब क्या करें आज थर्सडे नहीं है आज मंडे है. सो वेलकम है हमारे सारे के सारे सुपर किड्स हमारे सुपर लेजेंड्स. क्या हाल चाल है यहाँ पर आपकी एफ और अमिता सुपर सफा आ चुके हैं आपके लिए लेकर द सुपर किड्स शो.
0: तो भाई बच्चा पार्टी अगर आप हमें कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं मतलब ये शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं 4434377 पे हमें कॉल कर सकते हैं और चाहें तो 6622107 पे हमें मैसेज भी भेज सकते हैं. और आज हम लोग जो है मैं आपको बता दूं ये जो वीक पूरा चल रहा है इसमें हम आपके साथ खेलेंगे टंग ट्विस्टर्स.
1: यस और टंग ट्विस्टर्स कल हमें बड़ा मजा आया था कि
0: बहुत मजा आया था जैसे जैसे मिस आउट किया है ना. आई एम टेलिंग यू सी द थिंग इज इट्स वेरी सिंपल वी लिसन एंड वी डोंट जज वी प्ले ओवर हियर. प्लेइंग का मतलब होता है इट्स नॉट अबाउट विनिंग इट्स नॉट अबाउट मेकिंग ब्रैगिंग अबाउट ईच अदर इट्स नॉट अबाउट मेकिंग फन ऑफ ईच अदर इट्स अबाउट प्लेइंग. एक होता है स्कूल में स्टडी कर कर आते हो भाई स्टडी कर लिया यहाँ पे सिर्फ फन होता है. और कल जो ना भाई सेट वाला मजा आया सेट वाला
1: बहुत अल्टीमेट था. और सारे के सारे बच्चा पार्टी ने मतलब हमें एक ही हमारा एक टंग ट्विस्टर था वो गोलू क्या गोल गोल घूमता है एंड ओ गॉड
0: गोलू गोल गोल घूम कर गोल गप्पे गिनता है.
1: सो गोल गप्पे गिना लोगों ने गोल गप्पे उसको खिला दिए एंड वी रियली हैड अ ग्रेट फन. तो आज टंग ट्विस्टर्स होंगे लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि हमारे सुपर किड्स से रिलेटेड सुपर पावर से रिलेटेड कुछ बड़ी कमाल की बातें होती हैं. तो आज एक ऐसी सुपर पावर के बारे में बात करने वाले हैं जो इसका इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं लेकिन सही जगह पर कई बार करना भूल जाते हैं. और वो सुपर पावर क्या है सफा
0: मैं क्यों बताऊं जब मैं नहीं बता रही. देखा अमिता कैसे चुप हो गई. ऐसा होता है जब अगर कोई ये नहीं बोलता ना वर्ड जो हमें बोलना चाहिए.
1: Yes, exactly.
0: तो बिल्कुल ऐसा चेहरा हो जाता है पटाटे बड़े जैसा फेस हो जाता है.
1: Absolutely.
0: क्या कहते हैं

0: थैंक्यू अमिता,
1: देख जरा
0: देखा अमिता को थैंक यू बोला
1: Still.
0: और अमिता जो है ना वो टूथपेस्ट ही ऐड करना शुरू हो गई.
1: एब्सोल्युटली. और ये हुआ, मतलब ये नेचुरल है, इसमें कोई हमने एक दूसरे को पहले से नहीं बोला कि चलो ये है और वो है. और थैंक यू आप कभी भी बोलते हो ना, कभी भी बोलते हो, यूं ही बोल देते हो, सामने वाले को लगता है हाय मतलब क्या कह दिया यार, मतलब मेरी बात हो रही है.
0: आज तक आप लोगों ने एक चीज ट्राई की है एंड इट रियली वर्क्स. मेरे स्कूल में एक चीज बहुत काम करती थी.
1: राइट.
0: वैसे तो हम लोग थैंक यू लोगों को बोलते रहते हैं, लेकिन कभी आप लोगों ने, आई नो इट्स नॉट अ टीचर्स डे, आई नो इट्स नॉट अ टीचर्स डे,
1: राइट,
0: लेकिन कुछ बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारी टीचर ना हमें सड़े मूड में रहती है.
1: या
0: ओ भाई कभी कभी आप एक काम करो, अपने घर से ना कोई छोटा मोटा अच्छा सा अपने दिल से सिर्फ एक बेशक हार्ट ही कट पेस्ट करके लगाकर ग्रीटिंग कार्ड बना कर ना अपने हाथों से अपने टीचर को दे दो ना, एक फ्लावर टीचर को दे दो, वही अपनी गार्डन अपने स्कूल के गार्डन से तोड़कर दे दो.
1: आए हाय और किसी ने देखा तो
0: अरे मजाक के लिए मैं तो अपने स्कूल के गार्डन से तोड़कर देती थी टीचर को. और मेरी मैथ्स की टीचर ना सबसे ज्यादा खड़ूस थी, सबसे नो ऑफेंस, लेकिन वो ना There was a thing के we are talking about बच्चा पार्टी के perspective से देख रहे हैं ना, तो बच्चों को ये पता नहीं होता कि किसका दिल कैसा है. No doubt she was a brilliant teacher, but there was a thing पूरा school कहता था and like हमारे time पर तो average जो count था ना वो 60 students in a class था.
1: Right.
0: तो उस टाइम पर 60 का 60 बच्चा कहता था, पूरा स्कूल कहता था कि ये भाई ये जो टीचर है ना ये मुस्कुराती नहीं है.
1: हाँ, कुछ टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं. एंड यू नो सफा कई बार ये भी
0: स्ट्रिक्ट, शी वाज नॉट स्ट्रिक्ट, बट उनके चेहरे के ऊपर कभी मैंने स्माइल नहीं देखी.
1: इट्स लाइक अ थिंग कि वो यू नो क्लास में करना है तो वैसे ही रखना है.
0: बट आई फाउंड अ ब्रेक थ्रू. मैं उनको जब भी उनका पीरियड होता ना आई यूज टू गिव हर अ फ्लावर. ओ भाई द मोमेंट आई यूज टू गिव हर द फ्लावर एंड से थैंक यू मैम फॉर कमिंग टू टीच अस एंड स्टफ लाइक दिस, मतलब थोड़ा सा अच्छे वर्ड उनको बोल. और उनके भाई 32 के 32 जान नजर आते थे.
1: तो ये लाइक हाउ यू स्टार्टेड डूइंग इट, मतलब ऑल ऑफ अ सडन यू फेल्ट कि मुझे उनको भूल देना चाहिए या घर पे किसी ने बोला.
0: आई डोंट नो व्हाई बट आई लाइक
1: Okay.
0: Nobody liked her क्योंकि वो दिखने में बहुत सख्त नजर आती थी. बट अच्छा वो जो टीचर एक्सप्रेसिवनेस में थोड़ा सा आपको less expressive नजर होती है, नजर आता है ना, उससे अक्सर बच्चे डरते हैं एंड दे डोंट आस्क एनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम देम
1: एंड फिर पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते.
0: मेरा ये था दैट आई वाज इन, आप कह लो कि मैं जो हूँ ना, मेरे पास ट्यूशन का कोई टारगेट नहीं था. अक्सर बच्चे घर जाके पूछ लेते हैं या कुछ होता है. आई वाज इन अ काइंड ऑफ सिचुएशन के आई वाज सेल्फ स्टडी, तो मुझे पता था सफा बैकअप तो है नहीं कोई.
1: राइट.
0: पूछना है तो टीचर से ही पूछना है. तो मैं अपफ्रंट जाके टीचर से पूछती थी, मैम मेरे को नहीं समझ में आया भाई ये क्या चीज है.
1: ओके.
0: डांट खा लूंगी लेकिन पूछूंगी टीचर से ही. तो इत्तफाक ये था कि भाई वो टीचर बड़ी अच्छी थी, वो समझा देती थी और मैं अपना सर खुजाती थी कि भाई इतने पोलाइट वे में टीचर समझा भी देती है और बात करने में भी इतनी पोलाइट. वो कुछ लोग होते हैं ना इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं और कुछ नहीं बोलते ज्यादा. शी वाज वन ऑफ दोस पीपल.
1: एंड कौन सी क्लास में थे आप उस टाइम?
0: आई बिलीव आई वाज इन माय बोर्ड क्लासेस में थी भाई, 10th 11th में थी. उन्होंने 11th में मुझे पढ़ाया है. तो होता है था पूरी क्लास हैरान होकर देखती थी भाई ये कैसे पूछ लेती है टीचर से, इसके पास जिगरा है भाई. और आई वॉज कम्फर्टेबल विद हर. तो फिर मुझे उस वक्त उम्र छोटी होती है आपको नहीं इतना अंदाजा होता, फिर जाके अंदाजा हुआ ओके शी इज नॉट मीन, शी इज नॉट खड़ूस, इट्स जस्ट दैट शी इज अ इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन एंड शी हैज एन सम पीपल नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर वाला सीन था.
1: दैट्स द सेम.
0: तो फिर मैंने उनको जरा क्योंकि वो मुझे समझा देती थी ना, तो क्या होता था कि मेरी थोड़ी सी उनसे बातचीत बनिस्बत दूसरों के
1: होने लग गई.
0: सो आई वॉज थैंकफुल फॉर हर टू बी देयर फॉर मी. तो मैंने उनको जाकर ना, हमारा पब्लिक स्कूल था, हमारा आर्मी पब्लिक स्कूल था, हम लोग वहाँ पे ना गार्डन्स ऑफ रोज फ्लावर्स होते थे, लाइक जहाँ तक आपकी नजर जाए. तो मैं वहां से फ्लावर तोड़ती थी. क्या भाई बजट नहीं था भाई, बच्चे थे भाई,
1: पता भी नहीं चलेगा एक फूल आया
0: हुआ. इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ दैट वन फ्लावर.
1: राइट.
0: And the moment she used to enter the class and she used to sit down at the desk and I was used to present her that flower and I used to smile back at her and she used to smile. She literally used to smile back at me. And it was only some seconds that she was smiling. And everybody used to stare at me.
1: किसी ने बोला नहीं कि अरे सफाई ये क्या कर रही हो, मतलब गुलाब दे रही हो.
0: मुझे मुझे सब कहते थे हाउ इज इट. मैंने कहा भाई वो अच्छी बंदी है भाई, वो ऐसी बुरी नहीं थी, तुम लोग समझते हो.
1: सी ये सारी स्टोरी आपको सुनाने का मकसद ये था हमारे सुपर किड्स कि समटाइम्स ये जो सुपर पावर है ना थैंक यू वर्ड की, ये किसी के भी दिल को पिघलाती है, प्लस एट द सेम टाइम सामने वाले को इतनी खुशी दे देती है कि मतलब उसके पास शब्द नहीं होते कि वो आपको कैसे रिवर्स में थैंक्स बोले. या
0: लोगों को अपनी इंपॉर्टेंस का एहसास होता है. फॉर एग्जांपल एट योर होम लाइक मदर्स डे तो एक होता ही होता है.
1: हर एक कंट्री का अलग होता है. इंटरनेशनल वाला कल गया.
0: हाँ, इंटरनेशनल वाला कल गया. और मोस्टली जगहों पर मदर्स पूरा वीक मनाया जाता है. इज अ वीक. तो आई नो शी इज योर मदर. आई नो शी इज नॉट गोइंग एनीवेयर. आई नो दैट शी डज ऑल द चोर्स. आई नो इट्स हर ड्यूटी. आई नो आई ऑल्सो हैव अ मदर. आई नो
1: राइट.
0: द फैक्ट इज आउट ऑफ द ब्लू इफ यू गो लिटिल बिट, रोज नहीं लेकिन हर दूसरे दिन you make her some stuff, you draw her some stuff, yes. or not asking you to spend, just be creative and do something for your mother, either wash the dishes, either clean your room, right. either make her a card, and be expressive and say her thank you.
1: Yeah, and it's magic.
0: वो जो कभी कभी ना mothers भी tantrum में आई भी होती हैं, होता ही है.
1: मेरी तो कोई मतलब कदर ही नहीं है, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता and stuff like that. ऐसे मेरे ख्याल से ना सब ये वाला जो scene है ना हर घर में होता होगा.
0: देखो कि वो foreign
1: एकदम से ना she's like what thank you and you know it's not a big word, it's just टू छोटे से वर्ड्स मिला के थैंक यू जब आप कह देते हो ना तो मजा आ जाता है. तो बच्चा पार्टी आर सुपर लेजेंड्स आर सुपर किड्स वेयर आर यू, आपको हमें बताना है 666-22-107 पर कॉल करके मैसेज करके और कॉल करके 443-443-77 पर कि भाई थैंक यू आपने किसको कहा, कोई हमारे साथ जुड़ गया. आइए इनसे बात करें. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम.
1: ये तो कोई फेवरेट आ गया है हमारा. क्या बोलती है सफाई, ये वही है क्या?
0: यस माशाल्लाह
1: माशाल्लाह. बोलने से पहले आज हमें हमजा ने बोला. हमजा एक बार फिर से अपना नाम बताए ना.
0: तकरीबन साल दो साल बाद हमजा मोहम्मद चौधरी से मिली हूँ, आपको पता है कल परसों मुलाकात हुई.
1: रियली? ओह वाओ.
0: एंड माशाल्लाह माशाल्लाह ही इज सच अ बिग ग्रोन अप बॉय. माशाल्लाह माशाल्लाह. पहले तो चबी चबी से यूं क्यूट क्यूट से हुआ करते थे, अब माशाल्लाह ग्रोन अप बॉय लग रहे हैं. तो मैंने कहा वाह हमजा मोहम्मद चौधरी नाम तो बोलकर सुनाए. तो मैं चुप करके देख रहे हैं. मैंने कहा याद हूँ मैं कौन हूँ. यस यू आर सफा. ओह याद हूँ मैं.
1: सो हमजा आप सफा से मिल लिए, आप मुझसे कब मिलोगे? हाँ हमजा आप हैं कि गायब हो गए?
0: आपसे मिलने अपॉइंटमेंट सोच रहे हैं ना?
1: क्या क्या पूछ लिया आपने? हाँ बताओ
0: कहाँ गए? हम कोई प्लान नहीं आपसे मिलने का. रहने
1: सोच रहे
0: नहीं अभी तो
1: नहीं नहीं मैं तो प्लान बना लिया है, बस अभी मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही हूँ. सो हमजा कब मिलने आऊँ मैं आपसे? सैटरडे को. अच्छा ठीक है.
0: इतना स्पेसिफिक करके सैटरडे बोला गया.
1: फोकस्ड बच्चा है. ठीक है सैटरडे को जब मैं आपसे मिलूँ तो फिर सफा को भी लेकर आऊंगी. ठीक है
0: और फिर अम्मा से कहना फिर से बिरयानी बनानी पड़ेगी. अम्मा से कहना
1: ओके बेचारे तो घबरा गए. अरे
0: अम्मा ने आंखें दिखा दी होंगी से.
1: अभी तो बनाई थी.
0: अभी तो बनाई थी मैंने.
1: इनवाइट भी कर लिया. अच्छा हमजा ये बताओ कैसे हो आप? ठीक हो? एकदम से हमजा मोहम्मद चौधरी इतने प्यार से बात करते करते इतने शांत क्यों हो गए? हाँ अच्छा स्कूल गए थे आज? स्कूल गए थे आप?
2: जी.
1: अच्छा स्कूल में आज क्या मस्ती करी या फिर सीधा ऐसे बस सोचते सोचते घर आ गए? हाँ
2: सोचते सोचते घर आ गए.
0: सोचते सोचते.
1: अच्छा अच्छा तो क्या सोचते हुए घर आए आप? क्या सोच रहे थे? क्या क्या क्या कर ले?
0: कहीं कहाँ चले जाए?
2: फ्राइडे
0: पे कहीं जा रहे? अभी से प्लान कर रहे हैं भाई. ये तो
1: हम वीकेंड की बात कर रहे थे.
0: सफा
1: हम अकेले नहीं है, हमजा भी हमारे साथ है. वो अभी मंडे को फ्राइडे की बात कर रहे थे. ओके हमजा तो हम आज बात कर रहे हैं थैंक यू की. ये बताओ कि आप सबसे ज्यादा थैंक यू किसको बोलते हो?
2: मेरा दोस्त.
0: मेरा दोस्त.
1: ओके बाबा. तो आपके दोस्त का नाम क्या है?
2: हमद
1: हमद
2: माज
1: क्या कह रहे हैं एक बार फिर से बोले हमजा
2: माज
1: माज माज माज ओके हमजा सो माज को आप थैंक यू बोलते हैं तो किस चीज के लिए आप उनको थैंक यू बोलते हैं
0: मेरे साथ खेलने के लिए बोलते यार ये बहुत प्यारा बच्चा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह ला कुव्वत अल्लाह बिल्ला देखो इसको जो ना हम ये जो हमजा है ना हमजा को हम बनाएंगे मार्शमेलो और इनको खा जाएंगे
1: या बिल्कुल और फिर हम बोलेंगे थैंक यू हमजा
0: हमजा मार्शमेलो बनने के लिए तैयार है जी आई सच जी अच्छा चलें मार्शमेलो बाद में बनाएंगे आपको पहले पहले तो दिमाग की लस्सी बना दी चलो गेम खेलेंगे गेम चलें भाई तो भाई आपने करना ये कि सिक्स टाइम्स यू हैव टू रिपीट दिस टंग ट्विस्टर ओके
2: कितनी
0: सिक्स टाइम्स रिपीट करना है ठीक है आई विल गिव यू अ टंग ट्विस्टर यू हैव टू
2: बट हाउ मेनी मिनट्स
0: जल्दी जल्दी यू डोंट हैव टाइम यू डोंट हैव टाइम यू जस्ट हैव टू रिपीट इट एज फास्ट एज यू कैन सिक्स टाइम्स डू नॉट फंबल डू नॉट स्टॉप डू नॉट बी स्लो ओके
1: ओके सो फिर हमजा यहाँ पर आपको एक सेंटेंस देती है सफा
0: ठीक है
1: एंड आपको ध्यान से सुन के उसको सिक्स टाइम रिपीट करना है यू आर रेडी
0: सुन लें पहले ठीक है गोलू गोल गोल घूम गया
1: फिर से
0: गोलू गोल गोल घूम गया
2: भूल गया
0: फोर टाइम गोलू भूल गया गोलू को घूमना था भूलना नहीं था
1: ओह डियर लेकिन अच्छा ट्राई किया हमजा ने
0: अच्छा हमजा की ना माशाल्लाह उर्दू मतलब वो थोड़ा सा गोरों वाली उर्दू है इनकी तो बट गुड हमजा वेरी गुड फोर
1: सो लव्ड आपने
0: वेरी गुड
1: चार का स्कोर कर लिया है हमजा सभी आपने फोर का स्टैंडर्ड बना दिया है अब देखो अभी जितने भी सुपर किड्स आते हैं ना वो फोर का ये स्कोर क्रैश कर पाते हैं कि नहीं
0: ठीक है
1: अच्छा सो हमजा
0: घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे
2: नहीं
0: नहीं जाना घर अच्छा यूसुफ को पिक करने जाना है कि नहीं जाना
2: हम पिक कर ली
0: अरे माशाल्लाह इतनी खामोशी यूसुफ को पिक करने के बाद डोंट टेल मी यूसुफ इज स्लीपिंग
1: तभी वरना ऐसे आता कि इनसे भी बात कर ले
0: नहीं नहीं नहीं नहीं यूसुफ जो है ना इनके छोटे भाई हैं इनसे भी ज्यादा छोटे और वो इनके बिल्कुल ऑपोजिट हैं यूसुफ की प्रेजेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते माशाल्लाह
1: कि 100% वो इधर उधर होते ही
0: वो माशाल्लाह ना वो घर के स्पंज बॉब हैं चले चले जाने से पहले कोई मैसेज देंगे सबको
2: नहीं
0: नहीं आज सब कुछ नहीं पे चल रहा है भाई आज हमारी प्लानिंग चल रही है फ्राइडे की तो आज हमें तंग ना करें देखिए हम बहुत बहुत सीरियस होकर फ्राइडे के बारे में सोच रहे हैं
1: अच्छा हमजा जल्दी से बता दो चुपके से ठीक है मुझे और सफा को फ्राइडे की कोई प्लानिंग कर ली है कहीं जाना है कहाँ जाना है
0: कहीं नहीं
1: अभी भी सोच रहे हो या कर लिए प्लान चुपके से बताओगे हाँ
0: पूल जाएंगे पूल
1: कहाँ जाओगे कहाँ जाएंगे कहाँ
0: इट्स अ सीक्रेट भाई बच्चा बड़ा तेज है ना बता रहा
1: है आई लव इट सो ठीक है हमजा अब ये सीक्रेट ना आप हमको संडे को बताना कि आप कहाँ गए थे वीकेंड में ठीक है
0: चलें अपना ढेर सारा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज
1: अल्लाह हाफिज
0: अच्छा एक काम तो करें मम्मा को थैंक यू तो बोल दें थैंक यू तो बोल दें अपनी मम्मा को मेरी मम्मा को नहीं अपनी मम्मा को अच्छा अपनी मम्मा को लव यू ही बोल दें नहीं
1: बाबरे बाब
0: कितना तो मुंह टेढ़ा करना पड़ेगा ना माँ को थैंक यू बोलने के लिए
1: हमजा अगर आप अगर थैंक यू नहीं बोलोगे ना मम्मा को तो पता है क्या होगा वीकेंड में कहीं नहीं मिलेगा जाने
0: हाँ मम्मा कहीं नहीं लेकर जा रही फिर मम्मा फिर कल से इसको स्कूल से पिक करने भी नहीं आना ओके बोल दिया मैंने मम्मा
1: भी बोल दिया भाई साहब
0: नहीं भाई आज इनका बिल्कुल मूड नहीं है भाई
1: आज हमजा कुछ खा पी के जब अच्छा मूड होगा तब मम्मा को थैंक यू बोलेंगे सो हमजा चलो थैंक यू हम आपको बोलते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े एंड वी रियली लव्ड इट सो हैव अ वंडरफुल डे बाय बाय अल्लाह हाफिज
0: आज एनर्जी लो
1: मुझे हुए से लग रहे हैं आज
0: एनर्जी लो मैं बता रही हूँ आज आज जो ना कुछ गड़बड़ है आज मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे वीकेंड होना चाहिए था वीकेंड हो जाना चाहिए था
1: मैं बताया ना कि आज सुबह से जो वेदर है वो बिल्कुल वैसी फीलिंग दे रहा है आप बाहर देखो स्पेशली जब फ्राइडेज को लोग कम दिखाई देते हैं इट्स लेजी आफ्टरनून जब तक नमाज नहीं होती सब बिल्कुल मतलब खाली रहता है वही फीलिंग आ जा रही थी
0: पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है वो बिगिनिंग ऑफ द समर है ना तो वो थोड़ी सी लाइफ वो चेंज जब होता है ना वो ड्रास्टिक चेंज फ्लिप होता है तो उसकी वजह से ना मुझे नहीं पता क्या हो रहा है बस
1: वीकेंड की याद आ रही है
0: कुछ दिल कर रहा है बस कुछ कुछ ब्रेक ले लो भाई ब्रेक ले लो
1: ठीक है तो हम फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ जाते हैं अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं देन 4434377 इज आवर नंबर आप हमें कॉल करें
0: और हाँ कॉल करके ये बताओ भाई आज ऐसा लग रहा है कि एक दिन छुट्टी का होना चाहिए था बीच में यार ट्यूजडे को ना छुट्टी होनी चाहिए क्या कहते हो ट्यूसडे को एक छुट्टी होनी चाहिए भाई देखो ऐसा सिस्टम रहे ना कि देखो अब फ्राइडे सैटरडे छुट्टी हो गई ठीक है फिर संडे मंडे काम कर लेंगे चलो फिर ट्यूसडे को फिर छुट्टी कर लो ना
1: यस
0: वेडनेसडे थर्सडे काम कर लेंगे फिर फ्राइडे सैटरडे छुट्टी कर लो कुछ
1: क्या
0: ऐसा
1: बात है क्या बात है चलो ये जो अभी सफा कह रही है ना मुझे लगता है कि इस बारे में अपन बात करते हैं बच्चा पार्टी ठीक है तो आप हमें कॉल करना मत भूलो 4434377 इज आवर नंबर जस्ट कॉल अस हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं उसके बाद वापस आएंगे And let's talk about it. कि भैया thank you. आपने किस किस को कहा last time किस को कहा अभी किस को कहा?
0: Please tongue twister खेलेंगे भाई शर्मा होनी भाई शर्मा होनी भाई.
1: देखो गोलू को गोलू घुमा रहे हैं हम लोग बहुत मजा आ रहा है उसको घुमाने में.
0: अच्छा अच्छा अब पिंकी वाला प्रॉमिस अब गोलू नहीं घुमाएंगे अब कुछ और घुमाएंगे.
1: अब हम आलू लेके आएंगे
0: टमाटर प्याज कुछ कुछ और घुमा लेंगे
1: वो लेकर आ रहे हैं ठीक है
0: पप्पू भी है पप्पू भी लाइन में
1: चले ठीक है बच्चा पार्टी अब एक चलते हैं हम छोटे से ब्रेक की तरफ तो सुपर के शो सुनते रहे अपनी सुपर सफा और ए फॉर अमिता के साथ FM 107 पर दिल से देसी
3: स्टार्ट द बीट

0: Welcome back, Super Kids. You are listening to the Super Kids show on FM 107 with Super Safai and for Amita.
1: Absolutely.
0: Thank you ki bare mein baat kar rahe hain.
1: Yes, thank you kehna bahut zaruri hai aur simple si baat hai ki क्यों जरूरी है ये सिंपल बात को और सिंपलीफाई करते हुए हमारे से कोई जुड़ चुका है चलिए इनसे बात करें सीधा फटाफट अस्सलाम वालेकुम
0: थैंक यू कि आपने हमारा इतना वेट किया थैंक यू कौन बात कर रहा है
2: मुजम्मिल
0: बात कर रहे हैं मुजम्मिल कहीं आप मेरे कजन तो नहीं है
2: नहीं
0: अरे नहीं है
1: तो बन जाइए
0: मैंने तो कहा ये मेरा जो मेरा कजन है मुजम्मिल उसकी किंग कॉल वॉल है मैंने कहा ये इतना छोटा कैसे हो गया 7 साल का कैसे हो गया मुजम्मिल
2: अच्छा
0: मेरे देखो ये जो हमारा वाला टंग ट्विस्टर है ना ये नेक्स्ट वीक आना है तो अपने टंग ट्विस्टर रेडी रखो
1: हाँ क्योंकि अभी हम आपके हाँ उसे बचा के रखो हम नेक्स्ट वीक हाँ बचा के रखो
0: सुनो इसको समझाते हैं बच्चा भाई देखो इस वीक देखो ऐसे जो है ना हम अलाइनमेंट में चलते हैं सुनो इस वीक हम आपसे टंग ट्विस्टर पूछेंगे नेक्स्ट वीक जो आएगा ना नेक्स्ट वीक पता है कब से आ रहा है नेक्स्ट वीक आ रहा है 17th ऑनवर्ड्स 17th ऑफ मे टिल 21st ऑफ मे पता है क्या होगा फिर आप हमसे टंग ट्विस्टर पूछेंगे अभी तो हमारी बारी चल रही है सो नेक्स्ट वीक से हम ये गेम रख रहे हैं कि हम आपके टंग ट्विस्टर्स का जवाब देंगे ठीक है ओके
1: ठीक है तो चलो अभी मान गया बच्चा और मुजम्मिल ये तो बताओ आज हम खास बातें कर रहे हैं थैंक यू से रिलेटेड तो आपने कभी किसी को थैंक यू बोला
0: नहीं
1: सच में आपने आज तक किसी को थैंक यू नहीं बोला दिया और ये आपकी आवाज चली गई थोड़ा फिर से बोले
0: बेटा अंडर द वॉटर से निकल कर ओवर द वॉटर आ जाओ
1: मजाक था चलो
0: एक तो भाई तुम लोग थैंक यू भी नहीं समझते ना ओ थैंक यू बोल रही हूँ मजाक भी नहीं समझते
1: थैंक यू समझ गया फिलहाल तो ये हम मजाक नहीं समझे सो मुजम्मिल अच्छा किसको आपने थैंक यू बोला है और लाइक कई बार बोला है दोस्तों को और क्यों बोला है थोड़ा सा बताओगे इंसिडेंसेस कैसे
0: चीटिंग करवाई
2: अच्छा मेरा घर करीब आ रहा है
1: अच्छा,
0: बड़ा चीटिंग तो ना करवाई
1: गेम खिला लेते हैं
0: गेम खेल लेते हैं ठीक है
2: अच्छा प्लीज टंग ट्विस्टर कर सकते हैं
1: हाँ ठीक है टंग ट्विस्टर करते हैं तो आपको हम टंग ट्विस्टर देते हैं 6 times आपको बोलना है एंड आपका टंग ट्विस्टर है नीला आलू पीला आलू ओके
0: 6 times बोलना है 1 2 3 गो
2: नीला आलू पीला आलू
0: ओ भाई बच्चा बोल गया माशाल्लाह क्लैपिंग
1: घर जाने की जल्दबाजी है लगता
0: वेरी गुड
1: गुड जॉब मुजम्मिल
0: अब नीला आलू और पीला आलू घर जाके खाना ठीक है
2: ओके
0: चलो जाने से पहले कोई अच्छा सा मैसेज तो दे जाओ पता तो चले मुजम्मिल आया था
1: माशाल्लाह डेफिनेटली थैंक यू सो मच मुजम्मिल हैव अ वंडरफुल डे अल्लाह हाफिज
0: अल्लाह हाफिज
1: मुझे लगा इन्होंने फोन ही काट दी बस हो गया मतलब अब नहीं हो रही
0: देखो अब ज्यादा फ्री मत हो हमसे मतलब ये बातें हमसे ना किया करो चलो भाई एक और कॉलर है हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
1: कौन आ गया है हमारे साथ
0: गैस करें आज शफक की आवाज बिल्कुल खत्म हुई कैंसिल हुई शफक कहाँ एनर्जी वेस्ट कर आ रही है हमसे पहले ही
2: शफक नहीं है
1: रानिया है
2: जी
0: अच्छा ओके
1: ये रानिया का स्टाइल हो गया है यू नो ऐसे धीरे से एकदम मतलब सीधे साधे बच्चे सीरियस बच्चे सो रानिया ये तो बताओ कैसा गुजरा अब तक का दिन
2: अच्छा
1: ऐसी फीलिंग आ रही थी कि आज वीकेंड होना चाहिए था
2: नहीं
1: तो फिर अच्छा ही क्यों गुजरा अच्छा क्यों नहीं गुजरा
2: था।
0: अच्छा नहीं गुजरा इसीलिए, गेम और लाइब्रेरी का लेसन था तो इसलिए अच्छा नहीं गुजरा।
2: टेस्ट भी थे
1: इसीलिए अच्छा ही गुजरा।
0: अच्छा ये क्या कह रही, अच्छा ही गुजरा है अच्छा नहीं गुजरा? मेरे भाई मुझे कानों की सफाई कराने की जरूरत पड़ गई, मुझे ENT के पास जाना पड़ेगा। ये अच्छा गुजरा कि अच्छा नहीं गुजरा?
2: अच्छा गुजरा।
0: तो बेटा थोड़ा एनर्जी के साथ बोलती ना, मैं तो कंफ्यूज ही हो गई।
1: हमने कुछ और ही समझ लिया। So yes, Rania, tell us, library period, games period, सबसे कमाल के periods होते हैं, तो इसमें क्या नया किया? कोई book book पढ़ी? हाँ, game खेले?
2: जी, book पढ़ी थी।
0: कौन सी वाली?
2: The Bottle IMP.
1: Okay, तो
0: Bottle IMP.
2: Yes.
0: अच्छा जी, ये है बुक किसकी है? रॉबर्ट ल्यूएस की। इज इट
2: शाहिद?
0: वाह क्या तो पढ़ा, क्या तो पढ़ा हमारे बच्चे ने, वाह बेटा वाह।
1: सो या, सो द बॉटल IMP में क्या मतलब, स्टोरी बुक है, मजा आया आपको?
2: जी, बहुत फन थी।
1: ये कुछ मसला हुआ है रानिया ऐसी बात करती हैं या हमसे ऐसे कर रही हैं?
0: ये ऐसी बात करती हैं, ये ऐसा लगता है ऐसे अभी जो ना अभी बस सोने वाली हैं।
1: बस अच्छा रानिया ये तो बताओ, आज खाया क्या आपने? लंच बॉक्स में क्या था?
2: ब्रेड।
1: हाँ, और ब्रेड के साथ क्या था? खाली ब्रेड थी?
0: अम्मा अब्बा खाने को नहीं देते बच्चे को। हाँ बेटा,
2: और एक चिप्स थे।
0: पूरे लंच में एक ब्रेड और एक चिप्स। बेटा एक काम करो, जो चिप्स का पैकेट था। अच्छा वो जो बॉटल IMP आपने पढ़ी है ना, उसके अंदर आपको याद होगा कि एक बंदे को एक बॉटल मिलती है जिससे उसकी मैजिकल के थ्रू ना उसको उसकी ख्वाहिशात पूरी होती हैं। तो भाई एक काम करो, वो बॉटल IMP वाली जो स्टोरी है ना वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लो। कुछ नाश्ता अच्छा कर लेना बेटा, अम्मा अब्बा तो दे नहीं रहे बेचारे खाने को। बेचारी अम्मा को ऐसा पोर्ट्रे कर रही है कि अम्मा ने लंच में कुछ दिया ना होगा। एक ब्रेड था, मासूम सा ब्रेड, और एक लंच नहीं एक चिप्स था।
2: या एक सैंडविच मान लें,
0: एहसान कर दिया आपके ऊपर।
1: पूरा सैंडविच का पूरा पैकेट, अच्छा चिप्स का पूरा पैकेट था, एक सैंडविच था, राइट?
0: नहीं नहीं वो एक ब्रेड, एक ब्रेड थी। मैं कहूँ अम्मा बेचारी, देखो अम्मा के एफर्ट को, इतने बड़े सारे सैंडविच को इन्होंने कहा इतने तो कोई इन्होंने बेजार तरीके से कहा ना, एक हाँ, ब्रेड मतलब
1: ठीक है मान लेते हैं,
0: और एक चिप्स था।
1: मैं कैसे बिल्कुल ड्रैगन टाइप मैंने हंस दिया ना। सो ये तो बता दो, अभी यहाँ पर हमने तो वीकेंड बना लिया, आज सोच लिया कि छुट्टी होनी चाहिए। आप अच्छा बताओ कि जैसे अपनी फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती है, डू यू फील कि हफ्ते के बीच में भी एक छुट्टी होनी चाहिए? संडे मंडे के बाद लाइक यू नो ट्यूसडे को भी छुट्टी होनी चाहिए?
2: यस
1: है ना,
0: ये मेरी कैटेगरी है।
1: बस
0: भाई चलो ये हाई फाइव दे दो, हाई फाइव, वर्चुअल हाई फाइव।
2: कर लिया
0: चलो भाई,
1: कर लिया।
0: अच्छा ये तो बताएं, वैसे तो मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ कि आपने मेरे आइडिया को प्रमोट किया, एटलीस्ट मेरी साइड पर आई। लेकिन आपने कभी किसी को थैंक यू बोला है?
2: जी।
0: किसको लास्ट टाइम किसको बोला था थैंक यू?
2: अपने दोस्त को।
0: यार सारे दोस्तों को क्यों बोलते हैं थैंक यू?
1: वो घर वालों
0: के अंदर किसी के, ये घर वालों के अंदर किसी के अंदर वो नहीं है क्या? घर वाले
1: अभी भी हंस रही है। अच्छा
0: रानिया, घर वाले बेचारे किसी कीमत के नहीं है क्या?
1: रानिया ये बताओ, घर वालों को आखिरी बार थैंक यू कब बोला?
2: कल।
1: मैं अभी सोच रही, मुझे हंसी नहीं रुक रही। रानिया अच्छा किसको थैंक यू बोला था?
2: पापा को।
1: चलो शुक्र है, चलो शुक्र है। तो पापा को क्या, क्यों बोला आपने थैंक यू? कोई चिज्जी मिली थी आपको?
0: हाँ देखा, पप्पा बेचारे को बार्गेन करना पड़ता है, बेट देना पड़ता है थैंक यू के लिए।
1: क्या क्या मिला था आपको?
2: बिस्किट।
0: एक बिस्किट,
1: एक या पैकेट?
2: पैकेट।
1: भाई साहब बिस्किट के लिए थैंक यू बोला, चलो शुक्र है। अच्छा मम्मा को आखिरी बार कब थैंक यू बोला ये बताओ?
0: गला साफ करने लग गई मैं अपना। उनको याद ही नहीं पड़ता कि लास्ट टाइम उन्होंने अम्मा को कब थैंक यू बोला था. वो अम्मा बेचारी.
1: हाँ क्या क्या कह रहे हैं आप?
2: नहीं यार.
0: अच्छा एक बात तो बताएं, एक बात तो बताएं, एक बात बताएं, ये लंच किसने बना कर दिया था?
2: मम्मा ने.
0: ये एक चिप्स किसने दिया था?
2: पापा ने खरीदा था.
0: अच्छा पापा ने खरीदा था.
1: भाई साहब.
0: अच्छा चलें, ये धुले हुए कपड़े ये किसने दिए?
2: मम्मा ने.
0: ये जो घर साफ सुथरा मिलता है ये किसने अरेंज करके दिया? खाने का, दवाइयों का, लट्टे कपड़े का, अरेंजमेंट का, ये सब कौन करता है?
2: पेरेंट्स
0: पेरेंट्स दोनों मिलकर करते हैं.
1: ओके दैट्स गुड.

रोकता है। आयान के साथ भी यही हो रहा था दोस्तों। उसे लगता था कि दूसरों को खुश रखना ही सबसे जरूरी चीज है, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि खुद को खुश रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि दूसरों को खुश रखना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हम दिल से खुश रहेंगे तो ही तो कोई दूसरा खुश रह पाएगा। और जब हम खुद को इग्नोर करते हैं तो धीरे धीरे हम अंदर से कमजोर वीक होते जाते हैं और फिर बढ़ता है प्रेशर, और ये प्रेशर का कॉन्सेप्ट थोड़ा भारी होता है। आयान के साथ एक दिन क्लास में टीचर ने एक वर्ड यूज किया, प्रेशर। आयान ने पहली बार ये वर्ड ध्यान से सुना। टीचर ने समझाया, प्रेशर तब होता है जब कुछ और करना चाहते हो लेकिन लोग आपको मजबूर करते हैं कि आप उनकी बात मानो। आयान को लगा जैसे टीचर उसके बारे में ही बात कर रही हो, और आयान ने सोचा कि ये तो मेरे साथ होता है, हर रोज होता है। जब वो थक जाता है लेकिन फिर भी हेल्प करता है, जब वो मना यानी कि आयान मना करना चाहता है लेकिन हाँ बोल देता है, ये सब प्रेशर ही तो है। और ये प्रेशर हम सबके जिंदगी में कहीं ना कहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये प्रेशर डबल और ट्रिपल हो जाता है, जहां जिम्मेदारी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, जहां पर ना कहने में हमारे दिल पर बोझ इतना बढ़ जाता है कि हम ना नहीं कहते, वहां प्रेशर डबल हो जाता है। प्रेशर सिर्फ स्कूल या काम का नहीं होता, कभी कभी लोगों को प्रेशर होता है फ्रेंड्स का, क्लासमेट का, अपने फैमिली मेंबर्स का, और अगर हम नो नहीं कह पाते तो ये प्रेशर धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता रहता है। आयान ने उस दिन डिसाइड तो नहीं किया, लेकिन उसे समझ जरूर आने लगा था कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि लोग उससे काम कहते हैं, प्रॉब्लम ये थी कि वो मना नहीं करता। लेकिन ग्रुप प्रोजेक्ट प्रेशर का एक सिचुएशन ऐसा आता है आयान की जिंदगी में जो धीरे धीरे एक चेंज जरूर लेकर आता है, और या कहें एक चेंज की शुरुआत होती है। अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे टीचर ने ग्रुप प्रोजेक्ट दिया। सब बच्चे एक्साइटेड थे लेकिन आयान थोड़ा नर्वस था। उसके ग्रुप के बच्चों ने तुरंत कहा, आयान तुम तो स्मार्ट हो, तुम सबका काम कर सकते हो, और तुम ना ये प्रोजेक्ट अकेले करना। आयान का दिल बोला ये तो अनफेयर है, लेकिन उसकी जबान ने फिर कहा ठीक है। अब सब बच्चे आराम से बैठ गए और आयान अकेले काम करने लगा। उसे स्ट्रेस होने लगा, उसने महसूस किया कि ये हेल्प नहीं बल्कि एक्स्ट्रा बर्डन है, और ना कहने की बात को सीखने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट एहसास था आयान की जिंदगी में कि उसकी लाइफ में इस ग्रुप प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है जब वो प्रोजेक्ट को अकेले मुकम्मल कर रहा है। फिर भी लेकिन आयान चुप रहा, क्योंकि उसे डर था कि अगर मना करेगा तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। आयान घर आया तो बहुत ज्यादा थक गया, उसने बैग रखा और सीधा बेड पर लेट गया। अम्मी ने पूछा, बेटा आज तुम थके हुआ क्यों? आयान ने बस इतना कहा कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंदर से वो स्ट्रेस फील जरूर कर रहा था। उसका दिमाग उसे हैवी लग रहा था, उसे खेलने का मन था लेकिन एनर्जी नहीं बची थी क्योंकि प्रोजेक्ट में सारा वक्त उसने अपना दे दिया था। दोस्तों ये तब होता है जब हम अपनी लिमिट्स क्रॉस करते हैं, जब हम नो नहीं कह पाते तो हम अपनी बॉडी और माइंड पर प्रेशर डालते हैं। धीरे धीरे ये थकान सैडनेस में बदल सकती है, और फिर होमवर्क का प्रॉब्लम आयान की जिंदगी में आता है। रात को आयान को याद आता है कि उसका खुद का होमवर्क अभी तो बाकी है, लेकिन वो इतना थक चुका था कि उससे फोकस ही नहीं हो पा रहा था। उसने बुक खोली लेकिन उसकी आंखें बंद हो रही थी। उसने सोचा मैंने तो सबका काम किया है, लेकिन अपना ही काम आयान नहीं कर पा रहा था, और आयान का ये रियलाइजेशन उसे थोड़ा उदास कर गया। जब हम हर किसी को हाँ कहते हैं तो हम अपने इंपॉर्टेंट काम को मिस कर देते हैं दोस्तों, और फिर हमें रिग्रेट भी होता है। आयान भी वही फील कर रहा था, थोड़ा गिल्टी, थोड़ा अपसेट और थोड़ा कंफ्यूज। अंदर का डर, आयान के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था कि मैं नो क्यों नहीं कह पाता। आयान को लगता था कि अगर वो मना करेगा तो लोग उसे रूड समझेंगे, शायद उसके दोस्त उससे बात करना बंद कर दे, उसकी दोस्ती खत्म हो जाए, लोग शायद उसके साथ खेले ना अगर आयान ने किसी भी दोस्त की कही हुई बात को मना कर दिया तो।

0: तो ऐसे में आयान कभी किसी को मना नहीं करता। ये डर बहुत कॉमन होता है, हम सब की जिंदगी में होता है कि अगर हमने किसी को ना कर दिया तो, जब हम दूसरे की अप्रूवल पर डिपेंड करते हैं तो हम अपनी आवाज दबाते हैं। लेकिन आयान का दिल स्ट्रांग था, उसका डर उसे रोक रहा था। उसे अभी तक ये नहीं पता था कि सच में स्ट्रांग बनना क्या होता है, और स्ट्रांग बनना होता है अपनी बात रखना। अगले दिन स्कूल में एक इंसिडेंट हुआ जो कि आयान की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट होने वाला था। एक लड़का आयान का लंच बिना पूछे ले गया। आयान ने देखा लेकिन आयान ने कुछ नहीं कहा। उसका दिल दुखा, ये उसका फेवरेट सैंडविच था जो आयान लेकर आया था। उसकी अम्मी ने बहुत प्यार से उसका टिफिन स्कूल के लिए प्रिपेयर किया, तैयार किया, और कोई शख्स यानी कि कोई स्टूडेंट आया और बगैर आयान से पूछे उसका टिफिन ले गया। उसने अंदर ही अंदर सोचा ये गलत है, लेकिन आयान ने अपने आप से पूछा कि मैं बोल क्यों नहीं पा रहा। उस मोमेंट ने आयान को अंदर से हिला दिया। पहली बार उसे स्ट्रॉन्गली फील हुआ कि अगर वो चुप रहा तो लोग हमेशा उसका फायदा उठाते रहेंगे। यहीं से उसकी स्टोरी चेंज होने वाली थी धीरे धीरे। घर आकर आयान ने फाइनली अम्मी को सब बताया। मैं मना करना चाहता हूं पर डर लगता है अम्मी। अम्मी ने प्यार से कहा, बेटा नो कहना कहीं से भी बदतमीजी नहीं होती, ये अपनी हिफाजत होती है। आयान ने पहली बार महसूस किया कि शायद वो गलत नहीं था, बस उसे सीखना था कि कैसे बोलना है, क्योंकि ना बोलना ये भी एक आर्ट है। छोटी छोटी प्रैक्टिस से उसने धीरे धीरे सीखना शुरू किया। अम्मी ने उसे सिखाया कि सीधा सॉफ्ट और पोलाइट नो बोला करो। आयान ने शीशे यानी कि मिरर के सामने प्रैक्टिस किया, सॉरी मैं ये नहीं कर सकता। आयान ने मिरर के सामने देखा और ये लाइन रिपीट करता रहा। पहले उसकी आवाज हल्की थी, फिर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगी। उसे फील हुआ कि वो अपनी बात कह सकता है बिना किसी को हर्ट किए। नेक्स्ट डे एक फ्रेंड बोला, आयान मेरा होमवर्क प्लीज कंप्लीट कर दो। आयान का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत की और बोला, सॉरी मैं अपना काम पहले करूंगा। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे लेकिन उसने नो कह दिया, और ये था आयान की जिंदगी का पहला नो, जब उसने अपने किसी फ्रेंड को मना किया। फ्रेंड ने भी गुस्सा नहीं किया, क्योंकि असली फ्रेंड तो वो ही होता है जो आपके ना कहने पर नाराज ना हो। उसने बस ये कहा ठीक है, यानी कि आयान के फ्रेंड ने ठीक है में जवाब दिया। आयान हैरान हो गया, उसने सोचा मैं इतना डर रहा था लेकिन कुछ भी बुरा नहीं हुआ, मेरे दोस्त को बुरा नहीं लगा। उस मोमेंट ने उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ा दिया। अब आयान हर छोटी चीज पर तो नहीं लेकिन जरूरी जगह पर नो कहने लग गया था। अब वो थका होता वो मना करता, अगर काम अनफेयर होता वो पोलाइटली बोलता। अब लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करने लग गए थे, क्योंकि अब वो सिर्फ हाँ मशीन नहीं था। और ये हमारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं तब लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जब आप खुद के लिए स्टैंड लेते हैं तब आपके लिए लोग स्टैंड लेते हैं। इसलिए आयान की जिंदगी में ये छोटा चेंज एक्चुअली में छोटा नहीं, बहुत बड़ा चेंज था। और इसके बाद शुरू होता है सेल्फ रिस्पेक्ट और बैलेंस को सीखने का लेसन। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम मजीद इस टॉपिक पर बात करेंगे। FM 107 पे ये शो आप सुन रहे हैं किड्स स्टोरी, सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।
1: हेलो बच्चों, तैयार हो जाइए एक सुपर फन आर के लिए। हर मंडे 3 बजे से हम लेकर आते हैं सॉन्ग्स, कहानियाँ और सरप्राइजेस जो आपको हंसाएंगे और सिखाएंगे। अपने फेवरेट कैरेक्टर से मिलिए और मैजिकल एडवेंचर्स डिस्कवर कीजिए, सब कुछ एक ही शो में। तो स्नैक्स ले आइए, दोस्तों को बुला लीजिए और ट्यून इन करिए हर मंडे 3 बजे से, हर मंडे 3 बजे से विद आरजे फजील, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। ये खास शो किड स्टोरी आप सुन रहे हैं, जहां पर आज हमने बात की आयान की।

ज्ञान को समझ आया कि जब मैं खुद को रिस्पेक्ट देता हूँ तब ही दूसरे भी मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। उसे अंदर से हल्का फील होने लगा। अब वो गिल्ट या प्रेशर के बिना डिसीजन ले रहा था। आयान ने ये भी सीखा कि हर जगह नो कहना भी जरूरी नहीं है। कभी हेल्प करना अच्छी बात होता है। कई बार हमने और आपने सीखा है कि हर जगह नो कहना ये एक्चुअली में सही नहीं है। जहां आपको अगर परेशानी नहीं हो रही है, आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो आपको हेल्प जरूर करनी चाहिए। लेकिन डिफरेंस ये है, मजबूरी से हेल्प इज इक्वल टू प्रेशर, दिल से हेल्प इज इक्वल टू काइंडनेस। आयान को ये सब समझ आ गया था। अब आयान के पास खेलने का टाइम भी था, होमवर्क का टाइम भी था और रेस्ट का भी टाइम था। और आयान ज्यादा खुश रहने लग गया था। उसकी स्माइल अब असली थी, फेक नहीं, क्योंकि अब वो अपनी मर्जी से जी रहा था। जब उसे लगता कि वो प्रेशर किया जा रहा है किसी की तरफ से या फिर किसी दोस्त की तरफ से, तो अब वो मना करना सीख गया था। एक दिन किसी ने फिर उसका लंच लेने की कोशिश की। इस बार आयान ने कामली कहा, प्लीज पूछ कर लो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। आयान की इस लाइन ने उस बच्चे पर भी असर डाला और दूसरा बच्चा बोला, ठीक है अब मैं तुमसे पूछ कर ही लूंगा। आयान को फील हुआ कि उसने अपनी बाउंड्री को प्रोटेक्ट किया। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी और आपकी जिंदगी में कि हम मना करना सीखें। अगर आप रिस्पेक्टफुली किसी को मना करें तो ये बेहद अच्छा है, इसलिए क्योंकि इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी डेवलप होती है, आप कॉन्फिडेंट होते हैं और साथ ही साथ लोग आपके बिहेवियर को भी समझने लगते हैं। इसलिए बड़ा जरूरी है कि प्रेशर को ना लिया जाए, और जब भी आपको एहसास हो कि आप किसी काम को नहीं करना चाहते तो ऐसे वक्त पे आपको ना यानी कि मना कर देना चाहिए। और फिर आयान ने धीरे धीरे प्रैक्टिस करी, सबसे पहले मिरर के सामने ना कहने की प्रैक्टिस, और फिर सबसे पहला ना उसने अपनी दोस्त से कहा। दोस्त ने बुरा नहीं माना। फिर उसके बाद उसके साथ लाइफ में दो तीन सिचुएशंस और आई जहां पर उसने ना कहना यानी कि दूसरों के काम को मना करना सीख लिया था, और इसी के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, वो बेहतर शख्स बन गया और उसकी लाइफ में रियल हैप्पीनेस बैलेंस आ गया।

0: स्ट्रॉन्ग बनना मतलब अपनी बात कहना। कभी किसी को हर्ट किए बिना भी नो कहा जा सकता है, और जब अपनी लिमिट समझते हो तब तुम ट्रूली स्ट्रॉन्ग बनते हो। दोस्तों अब आयान सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल बन गया था। क्लास में एक नया बच्चा जो बिल्कुल आयान जैसा, चुप, शर्मीला और हर बात पे हाँ कहने वाला। एक दिन किसी ने उस नए बच्चे से जबरदस्ती काम करवाना चाहा। आयान ने ये देखा और उसके पास जाकर प्यार से बोला, तुम मना कर सकते हो, जब कोई तुमसे जबरदस्ती काम करवाए तो तुम नो कह दिया करो, नो कहना अलाउड है। नया बच्चा डरा हुआ था लेकिन आयान ने उसे सपोर्ट किया। धीरे धीरे उसने भी नो कहना सीख लिया। आयान को समझ आया कि जब तुम स्ट्रॉन्ग बनते हो तो तुम दूसरों को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, और ये है लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन। दोस्तों जब हमारे पास पावर आती है या सुपर पावर आती है तो सबसे पहला काम होता है अपने आप को और फिर दूसरे को स्ट्रॉन्ग बनाना। खुद के लिए खड़ा होना और दूसरों के साथ हो रहे इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होना, और ये आयान ने बहुत जल्दी सीख लिया। दोस्तों इस कहानी से सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि नो कहना वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ है। बहुत बार बच्चे ये सोचते हैं कि अगर वो मना करेंगे तो लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे, लेकिन असल में जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं वो आपकी बाउंड्रीज भी समझते हैं। आयान की जर्नी हमें ये सिखाती है कि हर वक्त हाँ कहना हमें अंदर से थका देता है। जब हम अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं तो हम स्ट्रेस, सैडनेस और प्रेशर फील करते हैं, लेकिन जब हम पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली नो कहना सीख जाते हैं तो हम अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं। नो कहना किसी को हर्ट करना बिल्कुल नहीं होता, ये सिर्फ अपनी लिमिट बताना होता है, और जब आप अपनी लिमिट बताते हो तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करते हो। आयान ने ये भी सीखा कि हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ तब जब वो दिल से हो, ना कि डर या प्रेशर की वजह से। आखिर में रियल स्ट्रेंथ ये नहीं कि आप सबको खुश रखो, बल्कि ये है कि आप खुद को भी खुश रखते हुए दूसरों के साथ बैलेंस बना पाओ। दोस्तों इस कहानी के 5 बड़े खास लेसन हैं। ये सीखना बेहद जरूरी है। ये स्टोरी बच्चों को ये सिखाती है कि खुद की रिस्पेक्ट करना कितना जरूरी है। अक्सर बच्चे दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी फीलिंग्स को, अपने एहसास को इग्नोर कर देते हैं। आयान की कहानी दिखाती है कि जब हम अपनी जरूरत और लिमिट्स को समझते हैं तब हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब सेल्फिश होना कभी भी नहीं होता, बल्कि अपनी वैल्यू समझना होता है। जब बच्चे ये कॉन्सेप्ट छोटी एज में समझते हैं तो वो फ्यूचर में बेटर डिसीजंस ले पाते हैं और किसी के प्रेशर में आसानी से नहीं आते। पीयर प्रेशर को समझना ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट क्यों है। ऐसे स्टोरी का एक बड़ा लेसन है पीयर प्रेशर को समझना। बच्चे अक्सर फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आकर वो काम करते हैं जो वो नहीं करना चाहते। आयान के साथ भी ये ही हुआ। वो सिर्फ इसलिए हाँ कहता था क्योंकि उसे डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे। ये कहानी क्लियरली बताती है कि प्रेशर कैसा फील होता है और कैसे वो धीरे धीरे स्ट्रेस में बदलता है। जब बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो वो अपनी चॉइसेस पर कंट्रोल पाना सीखते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक बार फिर से मुलाकात होगी। एक नए एपिसोड में एक नई कहानी पर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमने बात की ना पर, नो कहने पर, कि कैसे ना कहना बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इसमें हमने अलग अलग पॉइंट्स पर भी बात करी। और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीक एक नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ आएंगे जहां पर बच्चों की कहानी में और भी मजीद हम बात करेंगे। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: कोई ऐसी किताब है जो किताबों को समझने में मदद करे, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो मस्ती मजाक नहीं सही लेकिन लाइफ के लेसन्स भी दे पाए।
3: कस के जूता, कस के बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी।
2: वेल, ये कोई सुपरफिशियल एड नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि

0: एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अगर पैशन बन जाए और पैशन नौकरी बन जाए तो फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करके पैसा आना शुरू हो जाता है और इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती। आज का मुद्दा ये, मैं जी प्रोफेसर दोहा वाला कबीर एफएम पे और मैं ये स्टूडेंट्स गाइड जो शो है इसमें हमेशा से बात करता आ रहा हूँ। अभी हमें शायद 13-14 एपिसोड हो चुके हैं और लगातार हमने यही बात करी है कि प्लीज़ इसको ऐसे ना लें कि कोई आया है और हमें बताएगा और हमें सिखा रही है जिंदगी कैसे चलानी है। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं कि आई एम टेलिंग यू कि ऐसे जीना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं। इट्स जस्ट एक आउटलुक जो जितना मैंने जिया है, जितना मैंने देखा है या मेरे आसपास के लोगों ने, उन सब के एक्सपीरियंस अगर आपके काम आ सके तो बहुत बढ़िया है। तो इस शो का मकसद ये है, हमने बहुत सारे टॉपिक शेयर किए हैं अभी तक, बहुत सारे, और आज स्टूडेंट्स गाइड में भी बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इसका मेन मुद्दा वही है जो आप जानते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, इसके बारे में जरा बात करेंगे। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar, इस नाम से हर जगह मौजूद है, प्लीज गेट इन टच विद अस। और आप मुझे बता सकते हैं अलग से व्हाट्सएप पर 666-22-107 पर। अब जरा कहानी को आगे बढ़ाते, तो आज जो है जिंदगी का जो रंग है वो कैसे खिलता है, वो तब खिलता है जब आप सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, कुछ और भी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने में बहुत मदद करती है भाई। याद हमने बात करी थी पीआर की, पब्लिक रिलेशन बनाओ, मिलो जुलो लोगों से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सब कहाँ से आएगा? ये सब स्कूल में बच्चों को या कॉलेज में जो टीनेजर्स हैं उनको तभी आएगा जब वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जाएंगे। तो अगर कोई मुझे टीनेजर कोई बच्चा सुन रहा है, बेटा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ही वो पल हैं जो आपको याद रह जाएंगे। ये नहीं याद रहेगा कि मेरे 100 में से 80 आए थे, ये आपको याद करा देंगे बड़े लोग, लेकिन आपकी जिंदगी का जो मोमेंट है जो आपको याद रहेंगे वो इन्हीं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से जुड़े होंगे। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं इसमें स्कूल्स में आजकल, स्पोर्ट्स कतर में तो बहुत ही बढ़िया तरीके से स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाता है, साथ में म्यूजिक है, ड्रामा है, डिबेट्स, तो अरे हमने करके देख ली, बच्चे इतने तेज है माशाल्लाह। और जानते हैं हमारी जिंदगी में ये सारी चीजें अगर नहीं आएंगी तो कोई फायदा नहीं है सिर्फ नंबर लाने का। नंबर लाना बहुत अच्छी बात है, प्लीज लाइए। जो इंटेलिजेंट कैटेगरी ऊपर की आती है, जो 100 में से 90 से नीचे बाजी नहीं आते, वो बच्चे डिबेट्स में पर कहीं ना कहीं हैं। सो ट्राई एंड गेट इन्वॉल्व्ड इन सच एक्टिविटीज। देखिए एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जरूरी नहीं है कि सर स्कूल में हो, है ना, स्कूल में तो हो ही रही है। वो हो सकता है कि आप झिझक के मारे, जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आई नो, अंडरस्टैंड, मैं बड़ा शायद बच्चा रहा हूं, एक झिझक की वजह से हो सकता है आप उन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का हिस्सा ना बन रहे हो, कह रहे हैं यार शर्म आती है, ये होता है वो होता है, इट्स फाइन। तो वो एक्टिविटीज आप बाहर तलाशिए, बाहर ढूंढिए, जहां पे आप ही जानते हैं कि मुझे कोई नहीं जानता, यहां मेरा नुकसान नहीं। और जब नुकसान नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक ग्रोथ पैदा होती है, ये बहुत बहुत जरूरी है। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आप इन चीजों पे फोकस करें जो आपकी पढ़ाई से थोड़े अलग है, ये बहुत बहुत जरूरी है। तो मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज तलाशना विद इन योर स्कूल और विद इन योर कॉलेज एंड आउटसाइड बहुत जरूरी है। अब इसकी बहुत सारी किस्में, स्पोर्ट्स में क्रिकेट है, फुटबॉल है, या फिर आपको लगता है नहीं यार मैं स्पोर्टी नहीं हूं पर मैं क्रिएटिवली बहुत स्ट्रांग हूं, पेंटिंग है, सिंगिंग है, एकेडमिक एक्टिविटीज हैं, इसके अलावा अगर और हट के जाएं तो फिर डिबेट्स हैं, क्विजेस होते हैं बड़े बड़े। हर स्टूडेंट अपनी पसंद के मुताबिक एक्टिविटी चूज कर सकता है, दैट्स हाउ इट इज, इट इज एज सिंपल। हो सकता है कि आप जो है ड्रामेटिक्स में हो तो उसके अंदर जाइए, आपको लगता है कि आप स्पोर्ट्स में हैं तो जाइए, मगर इन सब चीजों में जिस चीज का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि पेयर प्रेशर में आके कोई ऐसी एक्टिविटी मत लेना जो आपका मन नहीं है करने का। फिर क्या होगा कि आप वो पेयर प्रेशर आपके अंदर बिल्ड होता जाएगा और फिर एक ऐसा मोमेंट आएगा जहां पे आपका काम करने का मन नहीं करेगा, वही काम, वही एक्टिविटी जो आपने ऑप्ट करी थी आपसे आपका उससे मन भर जाएगा, एंड यू विल बी लाइक कि मैंने क्यों किया, इसका तो मेरा कोई फायदा ही नहीं है। एंड देन आप बाकी एक्टिविटीज जो हो सकता है आपके मतलब क्यों वो भी आप छोड़ देंगे। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड जो आपकी पसंद की एक्टिविटी। आई विल टेल यू व्हाट, अपने बारे में बताता हूँ। मैं आर्ट्स का स्टूडेंट था, ना कॉमर्स ना साइंस, वो मेरे बस की भी नहीं थी बिकॉज मैथ्स में बहुत कम नंबर आते थे, लिटरली 100 में से 44 सो अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का मेरे पास बहुत बढ़िया सहारा था बिकॉज आई वॉज इन टू ड्रामेटिक्स। भले ड्रामा में पेड़ बनने को मिलता था मगर मिलता था, कॉन्फिडेंस आता था। इससे क्या होता है, आपका जो पीआर मैनेजमेंट वाला दिमाग है वो खुलता है, आपके लोगों से रिश्ते बनते हैं, आपको समझ में आता है कि ऐसा भी होता है, आपका स्टेज प्रेजेंस और ज्यादा सुधरता है, आपको समझ में आता है ऑडियंस को कैसे इन्वॉल्व करना है, कैसे उनको एंटरटेन करना है। हो सकता है कि आप म्यूजिक में हो, है ना, बाहर एक्स्ट्रा खर्च करके लोग आज की तारीख में बड़े बड़े लोग, मैं बता रहा हूँ, इन देयर 30s 40s जाके बाहर गिटार सीख रहे हैं, हजार हजार 1200 रियाल देके, यू अंडरस्टैंड। और ये चीज आजकल के स्कूल्स में फ्री में भी सिखाई जाती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में ऐसा है, जो स्कूल्स हैं बेसिकली वो कहते हैं भाई म्यूजिक की क्लास से आइए, आप आइए ना सीखिए ना, एंड वो बड़ी काम की चीज होती है। मैं बता रहा हूँ उस टाइम पे, अभी अगर कोई टीनेजर मुझे सुन रहा है, अभी हो सकता है कि आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है बिकॉज ठीक है फॉर वट एवर रीजन, पर आप ये सोच रहे हैं कि आगे जाके मैं सीख लूंगा, तो वो नहीं होगा। ये जो आपके जो सीखने का जो ब्रेन है वो स्कूल और कॉलेजेस में बहुत तेजी से काम करता है, बिकॉज यहाँ पे ब्रेन काफी सारी चीजें डाउनलोड करने के लिए तैयार रहता है, उसकी दिमाग की स्पीड इंटरनेट की अच्छी चल रही होती है। पर जब आप बड़े हो जाएंगे और फिर आपको कोई बोलेगा कि गिटार सीखते हैं यार, चलते हैं ना गिटार सीखने, तो आप बोले नहीं यार क्या करेंगे सीख के, ये एटीट्यूड आ जाएगा। इससे पहले आप इस एटीट्यूड की तरफ जाएं, तो कोई स्किल जो आपको लिटरली स्कूल में फ्री में मिल रही है, टेक्निकली तो फ्री हुई ना, ठीक है आप स्कूल की फीस भर रहे हैं पर पढ़ाई के साथ साथ आपको ये मिल रहा है, तो पैकेज डील है ये, तो इस पैकेज डील को एक तो पहली बात इसे पैकेज डील की तरह देखें और फिर उसका वैसे ही फायदा उठाएं। ये स्टूडेंट्स में स्पेशली हिस्सा लेने की, पार्टिसिपेशन की एक आग पैदा करती है, ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा खुश होते हैं, यानी ओवर द टॉप ऑल द टाइम। अब देखिए लोग कहेंगे इससे फायदा क्या है, एक एक इंस्ट्रूमेंट सीख लिया आधा अधूरा, स्कूल में तो ऐसा होता है ना कि धीरे धीरे सिखाते हैं, प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, बट देन इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये कि हो सकता है यू नेवर नो, कोई ऐसी एक्टिविटीज में आपने पार्टिसिपेट किया जिसमें आपको पार्टिसिपेट करके ये लगा यार ये मेरा करियर हो सकता है। सिर्फ फन एक्टिविटीज नहीं है ये, लोग पता नहीं क्यों समझते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर इज इक्वल टू फन एक्टिविटी, ये क्या तमाशा है, बल्कि ये हमें डिसिप्लिन सिखाती है एक्टिविटीज। ये मत समझिए कि सिर्फ फन एक्टिविटीज हैं बट टाइम पास के लिए, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपको डिसिप्लिन सिखाती हैं, टीम वर्क होता है, कई मरतबा ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आपको टीम के साथ चलना होता है, और सबसे मेन पार्ट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है भाई, बहुत बढ़ता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, फील्ड में जाके ना क्रिकेट खेलने का अलग बात है, जब आपके पास इर्द गिर्द ऑडियंस होती है उनके बीच में क्रिकेट खेलने का मतलब आपको स्कूल में समझ में आ जाता है, जब आप निकलते हैं इंटर स्टेट या इंटर स्कूल मैचेस होते हैं आप उन्हें पार्टिसिपेट करते हैं, फील है कि हाँ यार कुछ कर सकता हूँ मैं, एंड यू नेवर नो आपका उसमें इंटरेस्ट जाग जाए, अच्छा लगता है। तो जो स्टूडेंट्स इनमें हिस्सा लेते हैं वो ज़्यादा ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं और खुश रहते हैं, इंटरनेट लगता है हाँ चलो दिमाग ऑक्यूपाइड रहता है, इधर उधर नहीं जाता है, एंड यू फील लाइक कि मैं कोई स्किल गेन कर रहा हूँ, एंड यही सबसे खास बात है। अब जरा मैं आपसे पूछूं कि आपका आपकी फेवरेट एक्टिविटी क्या है, इट कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत सारे टीनेजर्स उन्हें गेमिंग पसंद हो, अरे तो बिल्कुल कीजिए, गेमिंग इज ऑल्सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। आप बोलेंगे हमेशा ये वकालत करता है गेमिंग की, पर मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ उससे भी दिमाग खुलता है, उसमें भी पजल्स हैं, उसमें भी एक स्टोरी लाइन है, यू नेवर नो कि खेलते खेलते कोई बच्चा बोले कि उसे गेम डेवलपर बनना है, दैट इज ऑल्सो अ जॉब इन बूमिंग, तो वो भी हो सकता है कोई बच्चा बोले कि उसे फुटबॉलर बनना है। इतने सारे इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर हैं कतर में जिसकी कोई हद नहीं, इसके अलावा किसी को क्रिकेटर बनना हो सकता है, एंड इससे फायदा क्या होगा, इन सबसे सबसे फायदा ये कि आप अपनी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जब आप एक चीज के बारे में जानने निकलते हैं तो आपको 10 चीजें पता लगती हैं, और उन 10 चीजों में से हो सकता है कोई एक चीज हो जो आपके दिल के बेहद करीब हो। जो स्टूडेंट्स अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे कर सकते हैं, बिकॉज प्लीज बताइएगा, आपसे मुझे बात करके अच्छा लगता है। आप मुझे इस वाले शो में अंकल मत बोलिएगा, इस वाले शो में भाई बोलिएगा, बाकी अंकल चलेगा, तो आप बड़े भैया बोल के आप मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या आपने एक्टिविटीज अभी तक करी हैं स्कूल्स या कॉलेजेस में, एंड इफ यू हैव समथिंग रियली स्पेशल टू शेयर प्लीज प्लीज डू दैट। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि चैलेंज, ये बैलेंस बिठाने का चैलेंज जो है आप कैसे करते हैं, पढ़ाई और एक्टिविटीज का बैलेंस, ये सबसे बड़ा आर्ट है, इसमें लगता है टाइम मैनेजमेंट, जो हम बार बार गाते रहते हैं ना ऊंचे सुरों में, टाइम मैनेजमेंट ये करना पड़ेगा, इसके बिना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कुछ भी नहीं है, दोनों आसानी से मैनेज किए जा सकते हैं, एंड इसमें कोई वो नहीं आता, क्या कहते हैं उसको, सड़क पे जैसे रोड आ जाता है वो भी नहीं आता। मैं बताता हूँ कैसे, हमारा क्या रहता था, हम लोग स्कूल से आते थे, उसके बाद सीधा मदरसे आते थे, कुरान शरीफ पढ़ने के लिए मस्जिद गए, हाफिज साहब ने कहा चलो जाओ घर जाओ, हम घर निकले, थोड़ा देर सोए, फिर शाम में निकलना ही निकलना है, वो जो 4-5 बजे के करीब क्रिकेट खेलना है वो खेलना ही खेलना है, एंड दैट इज बाउंड टू हैपन। उससे क्या हुआ, गली के दोस्त बने, मोहल्ले के दोस्त बने, बाहर जाके खेले, अलग अलग मोहल्ले में गए, तो समझ रहे हैं ये छोटी छोटी चीजें एक्सप्लोरेशन में ऐड होती जा रही होती जा रही होती जा रही, गली के दोस्त, मोहल्ले के दोस्त, फिर कहीं और जाके खेला, वहां के दोस्त, दिमाग खुला, कुछ नया एक्सप्लोर किया, कुछ नया खाया, कुछ नए लोगों से मिले, ऐसे चलता चला जाता है, ये एक चेन रिएक्शन है, पर ये टाइम मैनेजमेंट से होगा, आप पूरी तरह से इन पर डिपेंड नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स पढ़ाई तो करनी करनी है, पढ़ाई नहीं करेंगे तो दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी, कहीं पर नौकरी नहीं मिलेगी, ये सब माँ बाप बता चुके हैं ऑलरेडी आपको, तो मैं ये सब में नहीं जाऊँगा, बट दुनिया ऐसी ही है, तो प्लीज समझिए इन बातों को कि कोई ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पकड़िए। कितने उनहार बच्चे मैंने देखे हैं जो पेंटिंग से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, दे रियली रियली गुड, एंड जब वो पेंटिंग करने के लिए निकलते हैं तो वो ये नहीं देखते उन्हें क्या ड्रॉ करना है क्या नहीं करना है, माँ बाप उन्हें बताते बेटा ये ड्रॉ कर लो। आपको याद होगा जो बड़े लोग मुझे सुन रहे हैं, हम पहले हम अपने ज्योमेट्री बॉक्स को ही ड्रॉ कर लेते थे, उस पर डोनाल्ड डक बना होता था, हम उसको एज इट इज उतारते थे, कितनी खुशी मिलती थी, दैट इज अ वेरी स्मॉल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। आपने देखा उन बच्चों को जो किताबों के पीछे ड्रॉइंग करते हैं, जो किताबों के पीछे लिखते हैं बनाते हैं, वो शुरुआत में लगता था अरे तुम कॉपीज गंदी कर रहे हो, पर आज वही निकल के बाहर आर्टिस्ट हैं, वही बाहर निकल के आप ड्राइंग कर रहे हैं। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो बड़े लोग मुझे सुन रहे हैं और वो ऐसा करता है, तो जस्ट डोंट टेल देम कि ये मत करो, टेल देम हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट। अब चलती फिरती क्लास में अगर कोई बच्चा पीछे ड्राइंग करे तो सच में ये मैटर थोड़ा सा आउट ऑफ हैंड है, पर अगर वो कर रहा है अपने फ्री टाइम में, ही और शी इज ड्राइंग समथिंग, देन क्या गलत है, करने दो इनको, ये बड़ा जरूरी है। बच्चे जब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं तो वो ज्यादा जल्दी उन चीजों को पिक करते हैं, हम और आप नहीं कर सकते, है ना, जो 30s को टच कर चुके हैं या लेट 20s में है, हम और आप नहीं कर सकते, हमारे बस का नहीं है ये सब करना, ठीक है, तो डोंट इवन ट्राई डूइंग दैट, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि टाइम मैनेजमेंट क्या, एक चार्ट बना ले, चलिए मैं दिन में नहीं टाइम निकाल सकता, माना ये भी होगा, पर क्या मैं अपनी छुट्टी के दिन टाइम नहीं निकाल सकती या नहीं निकाल सकता, छुट्टी के दिन तो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल कई सारे बच्चे स्विमिंग क्लासेस के लिए जाते हैं, दैट इज आल्सो एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, अब वो स्विमिंग करने के लिए जाएंगे, सीखने के लिए जाएंगे, उनके दोस्त बनेंगे, वही दोस्त जो अलग अलग स्कूल में हो सकते हैं लेकिन दोस्ती कायम हो जाएगी, हो सकता है सेम मोहल्ले के हो सकता है कि सेम कंट्री के हो सकता है डिफरेंट कंट्रीज के हो, बट देर आर मेनी थिंग्स दैट गो इनटू इट, एंड कतर में कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना इज अ ब्लेसिंग, आई एम टेलिंग यू, तो इस पे बिल्कुल मिस आउट मत करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये जब चीजों में आप उतरेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि कौन सी एक्टिविटीज क्या मुझे फायदा पहुंचा सकती है।
1: कोई ऐसी किताब है जो किताबों को समझने में मदद करे, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो मस्ती मजाक में ही सही लेकिन लाइफ के लेसन्स भी दे पाए।
2: कस के जूता, कस के बेल्ट, खौस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी।
1: वेल, ये कोई सुपरफिशियल एड नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि FM 107 लेकर आया है एक खास शो फॉर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स गाइड।
0: और अगर आपका क्रिएटिव दिमाग ये कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ नया बनाना है, फॉर एग्जांपल आज के बच्चों में क्या है, उनको कोई कंटेंट बनाना है देख के, है ना, बहुत सारे बच्चे वो निकलने चलते हैं कि मैं वीडियो जैसा अंकल ने बनाया है वैसा वीडियो मैं भी बनाऊंगा, इसमें हर्ज नहीं है तब तक जब तक कंटेंट सही है ना बच्चों के लाए गए, जब तक कोई मतलब नहीं, क्योंकि बच्चे कॉपी तो करेंगे। अब आपको ये लग रहा है कि आपका बच्चा जो है वो रील में है, वो रील बनाता है देखता है, तो आप उसको भी सही रीले दिखाएं, सही चीजें दिखाएं, यू नेवर नो, अरे मैं इतना बड़ा हो कि मेरा ना परस्पेक्शन पूरी तरह से चेंज हो गया, मैं क्या सोचता था कॉमेडी सिर्फ एक ही डेफिनेशन की होती, फिर मैं एक बंदे को मैंने देखा, मैं उसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि सोशल मीडिया प्रमोट हो जाएगा, पर वो बंदा क्या करता है, वो कॉमेडी करता है लेकिन हिस्ट्री के फैक्ट्स निकाल कर, तो मैंने वो देखा, मैंने कहा वाह यार ये कितनी सही चीज है ना, तो अब मेरे अंदर वो आ भी जाए कि मैं भी ऐसा कुछ करूंगा तो आई एम टू लेट फॉर इट, although I'm not too late for it, but what I meant to say is कि अगर कोई teenager उसे देख के कॉपी करेगा तो क्या बुरा है ना, हो सकता है कोई स्टैंड अप करता हो सकता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा हूँ माँ बाप के साथ ही, कई सारी ऐसी बॉन्डिंग एक्टिविटीज होती है जहाँ पे माँ बाप पार्टिसिपेट करते हैं। आपने कतर में देखा ना स्पोर्ट्स डे, इट इज सच अ ब्यूटीफुल डे, आप फैमिली के साथ जाते हैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये भी आपको प्रमोशन देता है, अंदर से जील देता है कि कुछ तो करना चाहिए, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। जैसे आप देखते हैं

0: जब क्विज होते हैं ना, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस पे। हम लोगों में से कई सारे लोग हैं जिनके पास ओपिनियन नहीं है, है ना, व्यूज नहीं है, और हम में से बहुत सारे हैं जो काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक हैं बेसिकली, कि हमें बस ज्यादा नहीं जानना, हम ये कह रहे हैं ये हो गया ये हो गया। पर आपने देखा डिबेट करने वाले बच्चों को, देखा नोटिस किया आपने, क्लोजली इनको मॉनिटर किया, जितने डिबेट करने वाले ये बच्चे हैं इनके पास ओपिनियन है किसी मुद्दे पे बात करने के लिए, इनके पास सेंस है, इनके पास कंटेंट है। एंड इन लोगों की खास बात ये है कि ये लोग बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रेंड हो रहे हैं, इन्हें पता भी नहीं। पर ये चीज कहाँ काम आएगी, व्हेन दे विल गो आउट फॉर अ जॉब प्रोबेबली, है ना, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे कॉन्वर्सेशन इसके काम आएंगी, वहां पे ये लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, खुल के कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि एक टाइम पे उन्होंने डिबेट किया, तो ऐसे खुलता है, खुलती है पर्सनैलिटी। आप अपने पर्सनैलिटी को ऐसे देखिए कि इसके अलग अलग लॉक्ड वर्जन है ना, हमारी पर्सनैलिटी में बहुत सारे ताले लगे होते हैं, उन तालों को एक एक करके खोलना ही हमारा काम है। कुछ ताले जो होते हैं वो दिमाग से जुड़े होते हैं, कुछ ताले दिल से जुड़े होते हैं, कुछ ताले पूरी तरह से हुनर के होते हैं जहाँ पे आपका हाथ का काम होता है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पेंटर्स बढ़िया होते हैं, पर कुछ पेंटर्स ऐसे बढ़िया होते हैं कि वो लगातार पेंटिंग कर करके अपने हाथों को बिठा लेते हैं, दैट्स सो गुड, सर्जिकली इतने बढ़िया हो जाते हैं वो लोग की पेंटिंग आप देखिए, और उनकी 15 साल वाली पेंटिंग उठा के देखिए तो आपको लगेगा भाई हाँ ये तो बात है। फिर आपको वो एक्टिविटी एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं लगती, फिर लगता भाई प्रो है प्रो, हम बोलते हैं ना भाई प्रो है प्रो, प्रोफेशनल है वो, क्यों लग रहा है आपको, क्योंकि सामने वाले ने अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को अपना करियर बना लिया है। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, इट इज नॉट अ कंक्लूडिंग पार्ट। लेकिन अब जैसे दिमागी एक्टिविटीज मैंने बताया आपको, डिबेट का सीन है, अब कुछ एक्टिविटीज होती हैं जहां पर आप भीड़ में बैठे हुए हैं, जस्ट इमेजिन आपके भी ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा होगा, भीड़ में बैठे हुए आप किसी बारे में बात कर रहे हैं, अगर आपके ग्रुप में एक ऐसा बंदा या बंदी है जिसको ना तो कुछ पॉलिटिक्स का पता है, ना तो कुछ क्रिकेट का पता है, ना तो कुछ मूवीज का पता है, ना तो किसी खेल का पता है, कुछ भी नहीं पता है, तो आप हो सकता है कि उसकी प्रेजेंस में उतना एंटरटेनिंग फील ना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जोकर ही हो जाओ, हर समा हर महफिल जो है वो मजाके ही होनी चाहिए, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि जब कंपनी में आगे जाएंगे आप, बहुत सारे टीनेजर्स मुझे सुन रहे हैं, आगे जाके अपने करियर पाथ को चुनेंगे, उनके लिए बड़ा जरूरी कि वो समझें एवरीथिंग हैज टू कम आउट विद योर ब्रेन। ये ऐसा है जैसे खुद के लिए इन्वेंशन करना, ये बड़ा प्राइवेट किस्म का इन्वेंशन है। इस इन्वेंशन के बाद आप खुद को डिस्कवर कर पाते हैं कि मुझे आखिर चाहिए क्या, कि भाई मैंने 4 चीजें सीख लिया, मुझे क्या चाहिए वो सीखना पड़ेगा। जैसे एक लड़की, हम उनका नाम भूल रहा हूँ, वो वायलिन बजाती है, कभी आपने उसका वीडियो देखा होगा, बहुत मर्तबा सोशल मीडिया पे आता है, आपने उसका बचपन देखा है, वो बचपन से ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में रही है, ठीक है। उसके स्कूल के बारे में आप नहीं जानना चाहते, लेकिन आप क्या जानना चाहते हैं कि यार ये कैसे सीखा इसने, कैसे किया ये, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि आपके बच्चे में वो टैलेंट हो, जस्ट वो बाहर नहीं आ रहा क्योंकि वो किसी पार्टिसिपेशन में कहीं जगह पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, इसलिए ये है मेरा अगला मुद्दा। कई मरतबा हम पार्टिसिपेट ही नहीं करते, है ना, हमारा फेयर, बहुत सारे फेयर्स हैं हमारे जो सामने आते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है, नहीं हो पा रहा है। कई मरतबा सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेट कर देना ही आपको बहुत कुछ दे जाता है, बहुत कुछ दे जाता है, और आपको पता भी नहीं लगता। तो प्लीज जब आपको मौका मिले, हर चीज जीतने के लिए नहीं होती है ना, कुछ चीजें पार्टिसिपेशन के लिए होती है, पार्टिसिपेशन किया उसमें और आपने एक्सपीरियंस गेन किया, ये जो तजुर्बे हैं यही जुड़ जुड़ के आपके करियर में आपका साथ देंगे। ये आपको करना चाहिए, एंड माँ बाप को इस चीज को लेकर प्रमोट करना ही पड़ेगा, वरना ये चीज हाथ से निकल जाएगी, हाथ से निकल जाएगी। एज एन क्या, जब आप बड़े हो जाएंगे और आपके पास बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं होगा तो मैं बता रहा हूँ आपको दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब आप बोलेंगे मुझे दुनिया से मतलब ही नहीं है, साहब सॉरी, साहिबा सॉरी, लेकिन आपको मतलब रखना तो पड़ेगा। कुछ लोगों ने अपनी आपने देखा होगा आज की तारीख की बात कर लेते हैं, इन द मॉडर्न वर्ल्ड उन्होंने अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में चुना है AI को। लोग AI में बहुत लगे रहते हैं, दे ट्राई टू फिगर आउट क्या करना है, कैसे करना है, AI कैसे काम करता है। आपको शुरुआत में आलस आएगा, अरे कौन समझे यार, AI को बस बता दूंगा कर देगा, ऐसा नहीं है। जो लोग इसमें डूबे हुए हैं अब उनके कब काम आएगा। बहुत सारे बच्चे आप और मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, आप और मतलब जो बड़े लोग हैं उनसे कह रहा हूँ, आपसे और मुझसे अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हैं, अच्छा AI मॉडल बना सकते हैं, और AI को अच्छे से हम दोनों से बेटर ट्रेन कर सकते हैं। ऐसा क्यों है, ये उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है. दिमाग कह रहा है कि भाई पढ़ाई के अलावा ये भी है. अब क्या होगा, हम और आप कल को AI यूज़ करने निकलेंगे तो हमने क्योंकि दिमाग नहीं लगाया, हमने इसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की तरह लिया नहीं, तो हमारे लिए कुछ नहीं है. मगर जिस बच्चे ने आज की तारीख में AI को सीख लिया, वो आगे जाके क्या करेगा आप सोचिए. उसके पास सारी नॉलेज होगी, आप उसे बना ही नहीं सकते. ये जो मेरे अंदर की भड़ास में इसे निकालो ताकि आपको अंदाज़ा हो कि देयर आर थिंग्स इन लाइफ जो पार्टिसिपेशन करने के लिए होती हैं. हर चीज़ में पार्टिसिपेट करके जीतना ज़रूरी नहीं है. सम थिंग्स आर लाइक आ जाओ भाई देख लेते हैं, ये भी करके देख लेते हैं. तो ये जो छोटी मोटी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं ये ऐसी ही हैं कि चलो करके देख लेते हैं, अच्छा ही लगता हो. अब इसमें एक और रोल आता है और वो है टीचर्स का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में. टीचर्स को आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा आसानी रहती है. तो अगर आप एक टीचर हैं, मुझे बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह बहुत बहुत ज़हीन है, फिर भी मैं एक जनरलाइज पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए एक बात कह दूँ. टीचर्स से मेरी गुजारिश है कि क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि आपकी क्लास में कौन सा बच्चा क्या कर सकता है, तो उसे वैसे ही लेवल पर जाके मोटिवेट करना पड़ेगा आपको, ताकि उसे समझ में आए, वो अपने आप को डिस्कवर कर सके. क्योंकि घर पे आके माँ बाप भी आजकल उतना टाइम नहीं दे पाते जितना देते हैं, उसमें वो ये नहीं बता पाते कि बच्चे को चाहिए क्या. और फिर जब तक फिगर आउट करने का टाइम आता है, बच्चा फिगर आउट कर चुका होता है, और कई मरतबा मदद से या कई मरतबा बिना मदद से. बट आपने ये डिसाइड करना है कि आपने ये रूल बना लेना है जो एक किस्म का रिचुअल है कि मैं जो हूँ स्कूल में सीखूँगा, या मैं अगर टीचर हूँ तो मैं स्कूल में सिखाऊँगी. सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के अलावा भी बताऊँ. हमारे जो PT के टीचर थे, PT करवाया करते थे, बहुत बहुत बहुत सीधे इंसान थे, बहुत सीधे इंसान थे. तो PT करवाने जो सर थे वो ऑफकोर्स नाखूनों पे मारते थे, चट तेरे हाथ पे मार देते थे, और कहते थे कि ये करो वो करो, भागो रोप पे से कूदो, ये करो वो करो. अब वो जो उन्होंने करवाया वो आज तक याद रह गया, क्योंकि वो सिंसेयरली किया है ना. तो सिंसेयरली की हुई चीज़ जो है आज भी याद रहती है. अगर कोई मेरे सामने बैठ के PT की बात करेगा तो मेरे पास 10 चीज़ें कहने के लिए. तो ऐसा नहीं कि मैं कह के महान हो जाऊँगा, पलट के जॉब तो दे दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. ये इट्स ऑल अबाउट जस्ट टॉकिंग इन द राइट वे, मेकिंग सेंस, और एंड ऑफ द डे फ़ायदा तो आप ही का होने वाला है. तो भाई ये जो है ये टॉपिक ऐसा ही है. मीनवाइल मैं आपको फिर से याद दिला दूं, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं, एंड सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar. कई बार तो मेरे पास मैसेज आ चुके हैं आप लोगों के, सुबह भी मैंने पढ़े थे, कल की सुबह को बहुत सारे मैसेजेस हैं. थैंक यू सो मच कि आप लोग स्टूडेंट्स गाइड भी सुनते हैं. ये मैंने नहीं सोचा था भाई, बिल्कुल नहीं सोचा था. तो स्टूडेंट गाइड अगर आप सुन भी रहे हैं और इसके बाद भी सुनेंगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, बड़ा ज़रूरी है. हमारे फेसबुक पे 666-221-07 इज़ व्हाट्सएप, FM107 Qatar, FM107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की बात चली है तो कुछ एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ. तो प्रीत साहब जो थे वो हमारे साथ पढ़ाई करते थे, ठीक है. और प्रीत भाई के साथ क्या था कि उन्हें बाइक से बहुत ज़बरदस्त प्यार था, बहुत ज़बरदस्त. मतलब एक बाइक आई, एक बाइक गई, और वो उन गाड़ियों को बेचते थे, नई गाड़ी लेते थे और उन गाड़ियों पे काम करते थे. ही यूज़ टू वर्क ऑन एवरी कार, वो बड़ी वाली गाड़ी भी, छोटी गाड़ी भी, दोनों पे काम किया करते थे. काम ऐसे कि उन्हें सीखने की कोशिश थी, सीखने की ललक रहती थी बचपन में, और वो उनकी कब काम आई, जवानी में तो नहीं काम आई, लेकिन बुढ़ापे में यही नॉलेज जो है उनकी बहुत बहुत काम आई. तो यूनिकनेस तलाशी, अपने अंदर जो यूनिकनेस है उसे अनलॉक करने के लिए आपको एक्स्ट्रा करिकुलर तलाशनी पड़ेगी. मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, आप जो हैं लोगों की तरह ही, जैसे मैंने एक भाई का आपको बताया एग्जाम्पल कि वो बाइक का बड़ा शौक था, तो उन्होंने इसको समझा, इसे समझ के उन्होंने आज की तारीख में उनके ऐसे फायदे हो रहे हैं इसकी हद नहीं. भाई ने बाइक्स को एक्सचेंज कर करके एक एक पार्ट्स को रट लिया, अब वो नॉलेज उनके काम आ रही. ही ओन्स अ वर्कशॉप एंड ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब देयर. आपको ये कैसे अनलॉक करना पड़ेगा, आपको जो है ऑनलाइन की मदद लीजिए. इंटरनेट का ज़माना है, आप अगर किसी को जानते किसी ऐसी फील्ड में जो आपको बड़ी इंगेजिंग लगती है तो उस फील्ड में आप उतरिए, मार्केट में तो आइए. आपको पहले आना पड़ेगा, है ना. जब तक आप आगे नहीं आएंगे लोग जानेंगे कैसे आपके बारे में, और आप कैसे जानेंगे किसी नए काम के बारे में. भाई मुझे तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन पता लग रही होती कि ऐसी ऐसी भी चीज़ें हैं जो नहीं आती थी. फॉर एग्जाम्पल वो जो मिनीचर का पता था मुझे, पर आपको क्या पता था कि मिनी वर्ल्ड बनाने वाले भी लोग हैं. There are people who create mini worlds, पूरे के पूरे, और AI generated, जिसमें सब कुछ लगा होता है. मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये ऑफ टॉपिक नहीं है, ये भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, कहीं ना कहीं से शुरू हुआ है ये. पर वो इंटरेस्ट आपको जगाना है. आप हो सकता है कि चार चीज़ें देखी, चारों की चारों अच्छी नहीं लगी, मगर आप पाँचवीं तक बढ़ेंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा कि पाँचवीं आपके मतलब की है ना. तो ये आपको प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी, जितने टीनेजर्स और बच्चे सुन रहे हैं, कि आप जागें और आप अपने जो ये दिमाग के अलग अलग न्यूरॉन्स हैं इनको जो है थोड़ा पंप इन करें और इनको जगाएं, कुछ सोचें अपने बारे में, नॉट जस्ट पढ़ाई। पढ़ाई होती रहेगी, आप पढ़ाई में अच्छे हैं, एवरेज हैं, जो भी है, बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आर लाइक योर वेकेशंस, है ना। आपका आपका एक वेकेशन जोन है, जब आप पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद आपको लगता है कि मुझे ये भी आता है, मैं ये भी कर लूं, तो यू शुड डू इट। ये सारे एक्स्ट्रा कहलाते हैं लेकिन ये एक्स्ट्रा है नहीं, दिस कैन बिकम योर मेन पार्ट ऑफ योर डेली मंडे रूटीन। तो प्लीज़ मेरा सजेशन मानिए, और आपके पास भी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेकर सजेशन है तो मुझे ज़रूर दीजिएगा 6622107 पर, 6622107 पर, एंड हो सकता है कि हम जो है आपस की नॉलेज का आदान प्रदान करके कुछ नया सीख जाए। एंड ऑल्सो एक और चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है ऑफिस की। जब आज मैं बात कर रहा हूँ तो यू नो ऑफिस में भी चले जाऊँ, बड़े बड़े ऑफिस में जहाँ पे आप काम करते हैं, तो उन ऑफिस के साथ क्या चक्कर है कि वहाँ पर भी एक्टिविटीज़ होती हैं, अलग अलग किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, आप उसमें भी पार्टिसिपेट करें, इट इज़ नेवर टू लेट। हो सकता है कि आपकी झिझक जो बचपन में थी वो आज भी बरकरार है, बट यू नो वॉट, यू हैव टू ब्रेक इट। वो कैरेक्टर ब्रेकिंग आपको करनी पड़ेगी एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप वो कर लेंगे तो आपको लगेगा कि मैं बहुत चीज़ों में मिस आउट कर रहा हूँ, बट डिसअपॉइंट मत होना। हो सकता है कि आप अभी इस उम्र में आके भी जहाँ पे आप एडल्टहुड में आ चुके हैं कुछ ऐसा अनलॉक कर लें जो आपकी ज़िंदगी को कहीं से कहीं ले जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें, मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो अपने उम्र मुझसे भी उम्र में बड़े हैं, बट दे हैव अनलॉक्ड समथिंग जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आज हर एक बंदा आप देख रहे हैं बाहर निकल के पॉडकास्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ किया जा रहा है। एक बंदा है, मैं उसको शाउट आउट देना चाहता हूँ, अंकित नाम है उसका, ठीक है, मुंबई में रहता है, वो एक साउंड इंजीनियर के बतौर काम करते हैं एक रेडियो स्टेशन पे। उन्होंने बहुत टाइम इसको टाला, नाउ ही इज़ अराउंड 40-43 ईयर्स ओल्ड, एंड बहुत टाइम टालने के बाद अब वो मुकाम आ चुका है जहाँ पर उन्हें लगा यार मैं कुछ ट्राई करता हूँ। खाली थे तो उन्होंने जो है कवर सॉन्ग्स बनाना शुरू कर दिए, एंड जब कवर सॉन्ग्स बनाना शुरू किए तो लोग उनसे मैसेज में पूछने लगे, भाई ये कैसे आप इतना फ्लुएंटली गा लेते हैं, हम तो आपको इतने सालों से जानते हैं कभी देखा नहीं, आप तो गिटार भी अच्छा बजा लेते हैं। एंड उनको जोश और खरोश के साथ जब उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया तो आज वो बढ़िया गा रहे हैं, कवर गाते हैं, इनफैक्ट उनके अपने खुद के काम में बढ़ोतरी हुई है, अपने काम में वो अपने गानों को इन्वॉल्व करने लगे हैं। एंड मैं अपने ही बताता हूँ आपको, मुझमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं था लिखने का, ऑल्दो मुझे पता था कि मैं ठीक ठाक लिख सकता हूँ, पर कभी ट्राई नहीं किया था। ये मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो थी वो कहीं ना कहीं दबी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, कुछ भी समझ नहीं आया, फिर एक मौका आया जब मजबूरी हो गई लिखना, और जब मजबूरी हो गई कि अब तो लिखना पड़ेगा तो लिख के समझ में आया कि हाँ मैं लिख सकता हूँ, और आज वो लिखाई है अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे काम आती है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का खेल ही ऐसा है, कोई चीज़ किसी के काम आ जाए कब आ जाए पता नहीं, ये एक ऐसा टूल है जो आपको सीखना पड़ेगा और इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हैव टू अनलॉक। एक बार पता लग गया ना कि क्या है वो करिकुलर एक्टिविटी तो फिर तो आपकी होगी जीत। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar इस नाम से हर जगह मौजूद हैं, प्लीज़ गेट इन टच विद अस। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 6662107 पर, क्योंकि जब भी आपके मैसेजेस आते हैं शोज़ में तो बड़ा अच्छा लगता है। प्लीज़ आई एम डेस्परेटली वेटिंग कि आप इस शो के बारे में भी कुछ ना कुछ बोलेंगे, और कोई नई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपने पकड़ी है तो ज़रूर बताइएगा, मैं तो इस इंतज़ार में ज़रूर रहूँगा कि आप क्या कुछ नया कर रहे हैं अपनी जिंदगी। 6662107 6662107। बट फॉर नाउ दिस इज दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है। मास्सलाम।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: FM 107. Time check. Time check.
1: Assalamualaikum and good evening. आप सुन रहे हैं FM 107 और मैं हूँ आपके साथ आपके आरजे महवूज खान. राइट, 4 बज के हो गए हैं तकरीबन 2 मिनट, मतलब हो ही जाएंगे कुछ सेकंड्स के बाद, और फिर आपका साथ रहने वाला है 5 बजे तक. उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी जिंदगियों को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे. अच्छा, आजकल का वेदर जो है ना कुछ ऐसा है कि दोपहर में तो गर्मी है नो डाउट, लेकिन शाम के वक्त में ना, जैसे ही शाम होती है, मगरिब का वक्त होता है, इतनी अच्छी बेहतरीन हवाएं चल रही हैं कि आपको गर्मी का एहसास नहीं होता, मतलब बिल्कुल एकदम से ना अच्छा वाला. कल तो बहुत ही खूबसूरत हवाएं थी, तो ये वाला जो वक्त है वो काफ़ी अच्छा है वॉक वगैरह करने के लिए. जो लोग बाकायदगी से करते हैं उन लोगों को इन दिनों पता नहीं चल रहा होगा इतना कि मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है. राइट, और आज के शो में क्या होने वाला है ये मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको याद दिलाती चलूँ अपने वो नंबर्स जिन पे आपने कॉल करनी है. तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे और हमसे बात कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं सिर्फ मैसेज टाइप करके भेजना हमें तो उसके लिए नंबर है 6662107. राइट, बहुत हमने ना रिश्तेदारों को याद कर दिया, मतलब हमने अपने जितने भी रिश्ते थे उनको याद कर दिया. आज हम क्या करेंगे, आज हम थोड़ा सा डिफरेंट करने वाले हैं, और वो ये होगा कि आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली अनसंग हीरोज ऑफ द फैमिली. ठीक है, वो लोग जो कि अपने लिए नहीं जीते बल्कि अपनी फैमिलीज़ के लिए जी रहे होते हैं, और ये जो लोग हैं ये डेफिनेटली मतलब हमारे जितने लिसनर्स हैं इसी कैटेगरी में आते हैं. लोग अपने अपने मुल्क छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने से जो वाबस्ता रिश्ते हैं उनको, मतलब वो चाहते हैं कि अच्छा लाइफ स्टाइल प्रोवाइड कर सकें, उनकी ख्वाहिशात पूरी कर सकें, उनके लिए ज़िंदगी में कुछ कर सकें, और उसके लिए वो अपने आप को मतलब अपनी ज़िंदगी को तल्फ कर देते हैं और हर तरह के सेक्रीफाइसेस देते हैं. तो इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे आपके अपने हवाले से, किसी रिश्ते के हवाले से नहीं बल्कि ख़ास ख़ास ख़ास आपके हवाले से बात होगी आज. तो देखते हैं कि कौन है हमारे फर्स्ट कॉलर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. पहली कॉल,
2: अल्लाह रहम करे, आज का दिन जो बाकी है ना पता नहीं कैसा गुजरेगा.
1: अच्छा गुजरेगा भाई, बेहतरीन गुजरेगा. आपने मेरी आवाज़ सुन ली, अब तो आप देखिएगा मतलब जो बुराइयां होने भी वाली थी ना वो भी छट जाएंगी रास्ते से. गुड लक कहते हैं लोग मुझे.
2: कौन है ये लोग?
1: ये लोग हैं बकायदा मुझसे दुआएं करवाते हैं कि भाई आप दुआ कर दें, आपकी दुआ पूरी हो जाती है. बस एक आप ही को यकीन नहीं है पूरे दोहा में.
2: अरे बंगाली बाबा है क्या?
1: अल्लाह माफ करे, दुआएं करती हूँ मैं. जी जी तला, क्या हाल चाल है? जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक. और भाई आज आपकी बात हो रही, मतलब आज हमने कहा कि आपको भी ट्रिब्यूट दे ही दें, आपने तो बहुत अच्छा अच्छा वाला दिया है.
2: मतलब आपको जो कल मैंने वो टैग दिया था तोते वाला, आप शायरी में, मैं भी शुरू हो गया.
1: एग्जैक्टली,
2: ये सही है, ये सही है. जब भी आज मेरी पहली कॉल लग गई है, कुछ भी है.
1: नहीं, मैंने कहा भाई मतलब मौका मिलना चाहिए ना, दूसरों की तो हो गई बहुत सारी बातें, अब कुछ अपनी भी होंगी वो भी सुनानी चाहिए.
2: वो बातें थी या बुराइयां थी? बातें कम थी, उसको बातें भी करते हैं.
1: अब आप खुद तय करें भाई, आपने दूसरों के साथ क्या किया है.
2: बस मैं तो क्या बोलूं,
1: जो सुनाना चाहते हैं वो सुनाए, कहानी वहां से शुरू करें जब से जो है.
2: मैं देखा ना, आपको पता है मैं नॉन स्टॉप बोलने वाला बंदा हूँ, मुझे आप समझ नहीं आ रहा बोलो तो बोलो क्या.
1: या अल्लाह, मतलब देखिए ये होता है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं, उनके हवाले से बात कर सकते हैं, जब अपनी बात आती है ना तो उनको समझ में नहीं आता कि कौन से अल्फाज यूज करने चाहिए अपने लिए.
2: कहाँ से शुरू करो ना, मतलब तारीफ के अल्फाज में समझ में, चुनाव समझ नहीं आ रहा कौन से अल्फाज में चुनाव.
1: जी
2: अब ऐसा भी अच्छी बात नहीं, दुनिया के सामने अपनी तारीफ करना बुरी बात है. बाकी बस ना,
1: ये सफर कहाँ से शुरू हुआ था ये बताएं, ये सफर आपका मतलब.
2: हाँ, मैं 2018 से बहुत घूमा हूँ. हाँ, मैं बहुत घूमा, इराक गया हूँ मैं.
1: अच्छा,
2: गया हूँ और ईरान भी गया हूँ मैं,
1: शाम
2: के हवाले से. फिर श्रीलंका भी गया हूँ मैं.
1: अच्छा,
2: और ओमान, फिर अभी कतर.
1: गुड, मतलब ईरान, इराक और कौन सी जगह बताइए आपने?
2: अबुधाबी, दुबई, ओमान.
1: ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त.
2: और भी कहाँ?
1: हाँ जबरदस्त, चलें अच्छी बात है. तो ये सफर यूं शुरू हुआ मतलब, और अब यहाँ कतर में हैं आप. तो जब ये इब्तिदा हुई थी तो यकीनन मतलब किसी ना किसी रिश्ते के लिए ही हुई होगी. इंसान अगर अकेला हो तो उसको तो मतलब कुछ इतनी खास जरूरत ही नहीं होती इंसान की अपनी.
2: देखें एक्चुअली बात ये थी कि 2004 में वालिद का इंतकाल हुआ था, उसके बाद से वालिद ही थे सब कुछ और उन्होंने शादी नहीं की. 2021 में इंतकाल हुआ. तो 2017 में हज किया अल्हम्दुलिल्लाह, पापा और मैंने दोनों. तो हमारी बॉन्डिंग अच्छी थी, किसी को लेके नहीं गए थे, मैं और वो गए थे बस. तो क्या कहते हैं, पापा को हज से जब वापस आए तो उनको कैंसर डायग्नोज हो गया.
1: अच्छा.
2: तो जब हाँ जब कैंसर डायग्नोज हुआ फिर हमने ट्रीटमेंट शुरू किया. ट्रीटमेंट डेफिनेटली बहुत कॉस्टली था, ठीक ठाक. तो उसकी उसको देखते हुए ना फिर बड़ा भाई ये क्या मैं हूँ. तो फिर हमने कुछ हमने फिर ये डिसीजन दिया कि भाई यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हो तुम, देखो पापा को ठीक है, और जो फाइनेंशियल एक्सपेक्ट है ना वो मैं कर सकता था. उस चक्कर में मैं निकला हुआ ना, मेरा कोई इरादा नहीं था पाकिस्तान में बाहर काम करने का. तो फर्स्ट टाइम मैं, बाकी हकीकत है कि इसी जरूरत की वजह से फाइनेंशियल एक्सपेक्ट कवर करने के लिए मैं बाहर निकला. तो मैं फर्स्ट टाइम इराक गया था मैं शट डाउन पे. और वहाँ पर सिचुएशन ऐसी थी कि मैं सिर्फ 6 महीने के लिए गया था, ईद भी वहीं थी और मैं रेड जोन में था, अमेरिकन कंपनी थी. तो हाँ तो ऐसी हालत थी कि तब आप बाहर भी निकले तो स्कॉट के साथ ही पूरा और इस तरह का. लेकिन वो भी टाइम था, गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने साफ कर निकाल दिया. लेकिन वही कि वो पहली ईद घर वालों के बगैर करना जरूरतों की वजह से वो बड़े ही भारी, वो आज तक मुझे याद है. मतलब वो पहली ईद जो मैंने घर के बगैर गुजारी ना घर वालों, वो उसका उसका कंपेरिजन और आज के कंपेरिजन में जमीन आसमान का फर्क है.
1: सही बात.
2: वो चीज ऐसी है जो इंसान ना कभी, जैसे आप भी जैसे दूर है घर वालों के बगैर है तो फिर कहते हैं जो त्यौहार है ना भाई, त्यौहार अपने घर का अच्छा.
1: हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही, मतलब वो आपको भूलता नहीं है कभी भी. जो अपने खास तौर पे लोगों के दरमियान ईदें हो वो नहीं, उसकी बात नहीं, रिप्लेस नहीं कर सकती कोई भी जगह.
2: यार आप देखे ना हम जिस बैकग्राउंड से उठते हैं ना, मैं भी आपको भी मैं समझता हूँ कि आप भी जैसा हम सेम बैकग्राउंड से. तो जो रमजान है ना, आपको भी अंदाजा, रमजान यार कराची का रमजान छोड़ के इंसान कहीं दुनिया में चला जाए, जो कराची का रमजान है ना यार वो कहीं नहीं मिलता.
1: एग्जैक्टली ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही.
2: वो बड़ी चीजें ऐसी है, तब तक बारह सीरियस आजकल मैं खुद अपना जोन में आ नहीं सकता, लेकिन बहुत अच्छा है.
1: हाँ, नहीं ये बात वाकई यही है कि हर बंदा ना मतलब उसकी अपनी अपनी स्ट्रगल्स होती हैं और हर बंदा अपने रिश्तों से, ये रिश्ते ऐसी चीज़ हैं जो आपको जोड़े रखते हैं, बांधे रखते हैं. उनके साथ आप किसी ना किसी मतलब जो ना, अगर इंसान मतलब खुद अकेला हो ना दुनिया में, सीरियसली उसको मतलब दिनों में भी खाना मिले ना तो वो चला लेगा, मतलब कर लेगा गुजारा. लेकिन अपने लिए नहीं, इंसान जो अपने से वाबस्ता रिश्ते होते हैं उनके लिए ही इतनी स्ट्रगल करता है, इतनी मेहनत करता है. तो ये बड़ी बात है. खास तौर पे जितने भी हमारे भाई हैं ना, तो उनके लिए तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, भाई हैं, मर्द हजरात हैं और जो जो मतलब हमारे रिश्ते, चाहे हमारे वालिद हों, हस्बैंड्स हों, भाई हों, वो मतलब पूरी ज़िंदगी किसी दूसरे के लिए ना, अपनी पूरी ज़िंदगी. सुबह सुबह उठ के जाना है तो जाना है, सर्दियाँ हैं, गर्मियाँ हैं, किस तरह का भी वक्त है, तो ये वाकई आसान नहीं होता ये स्ट्रगल
2: यार. सबके आखिर में
1: लोगों के हस्बैंड्स भाई माफ करें,
2: लोगों के भी एक ही होते हैं कि
1: कौन सीरियस बात ही नहीं कर सकती, माफ करें.
2: नहीं
1: नहीं अल्लाह माफ करे, डेफिनेटली.

0: लेकिन मैंने संभाल ली. नहीं नहीं नहीं वो ऐसे ही मतलब उन्होंने कहा कि मतलब अच्छे रिश्ते तो सारे अच्छे ही होते हैं इस तरह से नहीं. मैंने कहा भाई मतलब हर बंदा अलग तरीके से बात करता है तो ये सीन है, कोई मसला नहीं है. चले जी हम दूसरे कॉलर को मौका देते हैं तलाक, ठीक है इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है. ख्याल रखिएगा अपना. थैंक यू जी.
1: आप भी ख्याल रखिएगा.
0: ठीक है ओके जी थैंक यू जी अल्लाह हाफिज. रही जी तो तलहा हमारे साथ है और इसके साथ ही हमारे साथ हैं एक और कॉलर, देखते हैं कि कौन है. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. मैडम जी कैसे हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो आप समझ है ना?
2: हाँ जी थैंक यू सो मच.
0: आपकी आवाज मशाल्लाह इतनी मीठी सी है कि मुझे थोड़ा मतलब अंदाजा हो जाता है.
2: अरे भाई मतलब आवाज ही मीठी है, बाकी कुछ मतलब बाकी दूसरे लोग जो भी सुन रहे हैं कुछ गलत ना लें, पहले बता रहा हूँ.
0: नहीं नहीं
2: अस्सलाम वालेकुम. शायद आप सुन रहे होंगे, बड़ा अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर. बहुत अच्छा लगा आपके वालिद साहब से आपकी जो बॉन्डिंग आपने बताई है और जो स्ट्रगल बताया है अच्छा लगा. और मैडम आपको ये बताना चाहूंगा कि सबके अपने एक यू नो जज्बात होते हैं जो हम परदेश में रहते हैं और हम अपने आप को कभी भी सेल्फ यू नो अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं किसी भी मामले में. हम चाहे कितना भी कर लो मतलब वो बता भी नहीं सकते, उसे एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते. और रही बात परदेश की, परदेश जो है शायद एग्री करेंगे सब लोग मुझसे कि ये एक ऐसा सुनहरा और सोने का पिंजरा है जो एक बार यहाँ पर आ जाता है फिर वापस जाना उसे मुश्किल हो जाता है. वो तो अल्लाह ही जाने कि उसका रिस्क कब तक है, लेकिन हकीकत तो यही है कि परदेश ना जवानी खा जाता है इंसान की, मतलब सब चीज मुंह कर देता है कि हम जो है ना हर चीज से टूट जाते हैं, दुनिया से अलग हो जाते हैं. हम जैसा कि कुछ दिन से मैं जो है आपसे और लिसनर से भी उनके सारे बातें सुन रहा हूँ और जो भी है अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं भी कनेक्ट कर लिया हूँ आप लोग को कि चलो भाई हम एक दूसरे को कहीं से जानते नहीं है कुछ नहीं है, बट फिर भी एक प्लेटफॉर्म के जरिए से हम एक दूसरे की स्टोरीज जान रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है. तो मैं अपने आप को इस कैटेगरी में नहीं रखना चाहूंगा कि मैं अपने आप को सेल्फ अप्रिशिएट करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितना किया है वो कुछ नहीं किया, मुझे और करना बाकी है. अगर मुझे लगे कि मैं अपने आप को भी अपने फैमिली के लिए, अगर वो कहते हैं ना कि वो जुदाई फिल्म देखी थी मैडम आपने?
0: हाँ हाँ देखी थी बिल्कुल, श्रीदेवी वाली ना.
2: मुझे भी कोई खरीद ले यार, काश मुझे भी कोई खरीद ले. मतलब कि भाई ऐसा
0: हम बिकने को तैयार है, कोई खरीदने वाला नहीं है.
2: देखो तो सही
0: अल्लाह अभी
2: अगर कुछ हो जाए तो बरल जो भी है अब सही है. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं अल्लाह से कि अल्लाह ने जितना भी रिस्क लिखा है अल्लाह का फजल है और हमारे रिस्क में से हम चाहेंगे कि आगे भी जितने हो हमारे परिवार वाले हो या बाहर वाले हो कोई भी हो ह्यूमन बींग जितने भी हमारे रिस्क में से फायदा उठा सकते हैं हम हमारी खुशनसीबी होगी. अल्लाह सुभान व तआला जो है हमारे रिस्क में इजाफा करे, बस यही दुआ है हर वो इंसान के. और परदेश में रहना उतना आसान नहीं है और जितने भी परदेशी हैं जो मुझे सुन रहे हैं मैं उन सबको सलाम करता हूँ, उन सबके जज्बात को सलाम करता हूँ और उनके जो है फीलिंग्स को कोई भी नहीं समझ सकता, सिर्फ एक परदेशी ही समझ सकता है. शायद आप मेरी बात से एग्री करेंगे.
0: बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है.
2: जब हम विदाई लेते हैं ना मैडम एयरपोर्ट से तो वो कलेजा जो कटता है ना वो कोई नहीं बता सकता, वो शायद ये दुनिया में कोई इंसान ही नहीं बता सकता. जब हम हमारे बच्चों को देखते हैं, जब आखिरी रात होती है, जब आखिरी पल होता है, जब हम हमारे बच्चों के आंख में आंख मिला के नहीं देख सकते हैं, पता है आपको, जब वो सोते हैं तो बीवी को कहते हैं कि भाई जब ये सो जाएं हम तभी निकल पाएंगे, वरना ये जागते रहेंगे तो फिर हमसे ना होगा निकलना. तो ये एक मतलब एक्सप्रेस करने वाली चीज नहीं है. और रही बात करियर की शुरुआत जो परदेसी हम बने वो था देखिए 2017 और मैंने ट्रैवल जैसा तला भाई ने अपने ट्रैवल हिस्ट्री बताई थी तो माशाल्लाह से अल्लाह ने मुझे जो है सादत अता फरमाई कि मैं जो है जॉर्जिया, आर्मेनिया, तिब्लिसी, साउथ अफ्रीका और रशिया और अजरबैजान और बाकी देखे आप थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और अपने मिडल ईस्ट में जो है आप ले लें ओमान हो गया और बहरीन हो गया, सऊदी अरेबिया पूरा कंप्लीट है और अपने कतर हो गया.
0: ये ट्रैवल हिस्ट्री कौन सी वाली है, ये जॉब के लिए है या फिर ये वो वाला ट्रैवल हो रहा है?
2: ये देखिए मैंने ये मेरी अपनी जॉब की भी थी इसमें से और साथ में ऑफिशियली ट्रैवल भी था मेरा और कंपनी की तरफ से मुझे जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाना पड़ता था तो उसमें भी जो है काम का काम हो जाता था और घूमने का घूमना.
0: क्या बात है.

0: अल्लाह की तरफ से जो है एक अजबाब बनते चले गए और हम मुसाफिर होते चले गए, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं ना कि किसी को चलते ही मंजिल मिल गई और कोई सफर में ही रहा, तो किसी जैसे परदेसी सारे सफर में ही है फिलहाल। इंशाल्लाह कहीं ना कहीं चीज रीच हो ही जाएंगे। बट एक चीज जो है ना, हमें लगता है कि हम जिंदगी में सब कुछ पा लेंगे, सब कुछ हासिल कर लेंगे। तो मैं सभी भाइयों को यही बात कहना चाहूंगा कि भाईजान जो भी मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसको जितना मिला है उसके लिए भी वो खुश रहे, और जिसको ना मिला है वो इत्मीनान रखेंगे, कहीं ना कहीं अल्लाह सुबहान तआला दुनिया और आखिरत में एक वक्त आएगा वो सब चीज सेटल कर देंगे और फिर हम इस दुनिया से चले जाएंगे। अगर ना भी मिले तो ये समझें कि आखिरत में अल्लाह ने बहुत बड़ा अजर रखा है हमारे लिए। परदेसी की जिंदगी ऐसी नहीं है, और साथ में परदेसी की जो परिवार होता है ना वो भी इक्वली, मैं समझता हूँ कि वो भी अप्रिशिएट करने के लायक है। क्या बोलते हैं,
1: बिल्कुल ऐसे ही है, सफर करते हैं बिल्कुल जी, बिल्कुल।
0: वाइफ हो गए, माँ बाप हो गए कि भाई देखते नहीं है बच्चों को, वो बच्चे जाते हैं क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, सबको फिक्र रहती है। यहाँ पर आने के बाद में बस मतलब कि एक मशीन जैसी जिंदगी आती है कि बस जब खा लिया बस, नहीं तो नहीं, बस काम पे दौड़ो। खैर एनीवे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहाना ताला ने इस काबिल बनाया है कि हम हमारे परिवार के लिए, हमारे घर वालों के लिए, और हमारे जो आपसे रिश्ते जुड़े हैं, दोस्त अहबाब हो गए या फिर मोहल्ले वाले हो गए, सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर ही पा रहे हैं, इस काबिल अल्लाह ने बनाया है, इसका बहुत शुक्रिया।
1: बिल्कुल सही बात है कि अल्लाह ताला दूसरों को नफा देने वाला रखे हमेशा इंशाल्लाह।
0: अल्हम्दुलिल्लाह, दुआओं की गुजारिश, आपसे बात करके अच्छा लगा, और अब आप नेक्स्ट कॉलर की तरफ जा सकते हैं, तो फिर मैं भी उनकी बातें सुनूंगा।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू।
0: बातचीत करते हुए कि फिर ऐसा ना हो कि भाई आप बोले कि भाई समद अब मैं दूसरी कॉल लूं, इसीलिए
1: नहीं, चले नहीं, बिल्कुल सही। लेकिन आपने जो कॉल सेंटर वाला अंदाज अपनाया ना, आप ये कर सकते हैं, मुझे उस पर हंसी आ गई थी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। रही जी, तो हमारे साथ समद मौजूद है और बेहतरीन कॉल, और उसके साथ ही देखते हैं कि हमारे साथ एक और कॉलर है, फिर हम बढ़ेंगे म्यूजिक की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, रेडियो ऑफ प्लीज।
2: हेलो,
1: रेडियो पहले ऑफ कर दीजिए अपना।
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे
2: हैं? सरताज खान।
1: सरताज खान, प्लीज अपना रेडियो ऑफ कर दें, फिर मैं आपसे बात करती हूँ, अदरवाइज नहीं ले सकूंगी आपकी कॉल। हेलो,
2: हाँ जी, आप ठीक है?
1: अब ठीक है, जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे सरताज?
2: क्या ना, ये जो आज बात मेरी हो रही, मैं भी कहूँगा हमारी नहीं, मेरी हो रही। मैं, मेरी कहानी शुरू होती है 1974 से।
1: सही है,
2: 6 फरवरी 1974 को मैं यहाँ आया था। और आया क्यों था, तो मेरी माशाल्लाह 8 बहनें और वाल साहब का वो कारोबार ऐसा नहीं था, तो मैंने कहा यार जाना ही पड़ेगा बाहर। उन्हीं दिनों में मुझे चांस मिल गया, एक लेबर के वीजे पे मैं यहाँ आ गया। और जब से तो कदो हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, आसाइशा ज्यादा हो गई है। शुरू में बहुत सख्त टाइम था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अल्लाह ताला जो है ना, तालीम कभी किसी की जाया नहीं करता है, चाहे मैं इतना ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन वो काम आई।
1: बिल्कुल, काम आई। ये बताएं सरताज खान कि आपकी 8 बहनों की माशाल्लाह आपने शादी की?
2: सबकी शादी एक ही नहीं मैंने थी, मेरे को उन दिनों में तालुका ठीक नहीं थे, सबसे छोटी के बाकी सबकी थी।
1: बाकी माशाल्लाह 7 बहनों की शादी की है। और कहते हैं ना कि कोई अगर वालिद के तो लिए ही कहा जाता है कि कोई अगर अपनी 4 बेटियों को, आई थिंक, या 3 बेटियों को अगर उनको पाले पोसे बड़ा करके उनकी शादियां कर दे, तो वो कन्फर्म मतलब जो ना जन्नती होता है।
2: मैं तो अपने वालिद का बनने के लिए आया था बाजू के, मैं भाई ऐसा ही होगा, अदरवाइज पाकिस्तान में रह के नहीं होगा। तो फिर मैंने उस बहन से माफी भी मांगी जिसकी शादी मैंने नहीं की। बंदा वो इतना सख्त हो जाता है ना, बल्कि मेरी 2 बहनों के अलावा सबसे नाचाकी थी, फिर सबसे मैंने माफी मांगी कि भाई मैं गलत था, कि वो मसला कई दफा सुना था। फिर एक दफा मस्जिद में बैठ के मौलवी साहब ने तकरीर की, बेरहम के रिश्तों को कता नहीं करना है, तो फिर सबसे माफी मांगी मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब पता नहीं किसकी दुआओं से सब कुछ अब तक चल रहा है, माशाल्लाह सेहत सूद भी ठीक है। मैं 76 में हो गया हूँ।
1: अच्छा,
2: तो चल रहा है सब कुछ।
1: अच्छा अच्छा, मतलब आपकी एज इस वक्त 76 है?
2: जी, मैं जब 74 में आया हूँ, तो मैं 1950 की मेरी पैदाइश, मैं 24 का था जब आया।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, सही से
2: यहाँ हो गए माशाल्लाह।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ऐसी सेहतमंद रखे इंशाल्लाह।
2: और

0: सेटिस्फाई, इसलिए कि जब किसी दूसरे के लिए बंदा कुछ करता है ना तो फिर बंदे को मजा आना शुरू हो जाता है।
1: बिल्कुल ऐसा ही।
0: और एक बात जो मैंने नोट की है कि अपने अजीज रिश्तेदारों में जैसे बहने वगैरह हो गई, भाई तो मेरा माशाल्लाह खुद ठीक ठाक है, वो रिश्ता जिससे कोई रिश्ता नहीं है, जब बंदा उसको कुछ उसके लिए कुछ करता है ना तो एक अजीब सी खुशी बंदे को होती है।
1: बिल्कुल।
0: और पता नहीं बहनों भाइयों की दुआएं तो होंगी एक रिश्ते के लिहाज से, लेकिन वो जिससे कोई रिश्ता नहीं पता नहीं उसकी दुआएं चल रही है।
1: बिल्कुल नहीं, ये तो मतलब आप किसी के लिए कुछ करो ना तो अल्लाह ताला उसको इसी तरह से लेते हैं, क्योंकि देखिए इस दुनिया में अल्लाह ताला ने वसीले बनाए हुए हैं, देते तो सबको अल्लाह ही है लेकिन लोगों के थ्रू देते हैं, और जो अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करके उसके लिए कुछ करता है तो अल्लाह ताला उसकी मतलब रायगा थोड़ी जाने देंगे उसकी किसी चीज।
0: मैं एक टारगेट लेके आया था, मैं बहुत मुतमईन खुश के मुझे वो अचीव हो गया
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह,
0: और अब किसी वक्त जाने को तैयार। वैसे तो बंदा हर तैयार रहना चाहिए लेकिन अब मेरे पास बोझ कोई नहीं। एक मेरी बेटी है माशाल्लाह साइकोलॉजिस्ट, उसके आगे बच्चे वगैरह, मेरी एक ही बेटी।
1: अच्छा अच्छा।
0: और वाइफ का मेरा 2015 में बाईपास था, वो डेथ हो गई बेचारी की। जी
1: सही।
0: तो मैं हूँ वहाँ पे।
1: सही बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, चले माशाल्लाह से आपने मतलब
0: बहुत बहुत सेटिस्फाई अल्हम्दुलिल्लाह।
1: नहीं डेफिनेटली, मतलब जब इस तरह का होता है ना मामला तो यही तो होता है असल इबादत, यही तो है कि आप दुनिया में दूसरों की जिंदगियों को आसान करो।
0: जी बिल्कुल। अच्छा इसी मैं थोड़ी सी शायरी मेरी भी करता हूँ, तो पंजाबी के दो शेर है चाहे
1: बिल्कुल सुना। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल सुना दीजिए।
0: वैसे मैं बताऊं हमारे वाले साहब का ताल्लुक जो है वो शाहजहांपुर से, तो 1950 में वो माइग्रेट होके आए थे।
1: अच्छा माशाल्लाह सही।
0: सरदार शाहजहांपुरी वो उर्दू में शायरी करते थे, मैंने पता नहीं कैसे पंजाबी में लिख दिया कि पंजाबी आपको समझ तो आती है ना।
1: हाँ, थोड़ी थोड़ी आती है, मैं समझ जाऊंगी इंशाल्लाह।
0: कि जदों भी चाह पी लेना, जदों भी ओदी चाह पी लेना, फिर किसे दी चाह नहीं पींदा, और चावां दा भी फर्क है। चावां दा भी फर्क है, चाहे वो चाहत। चावां दा भी फर्क है, हर किसे दी मैं चाह नहीं पीता पींदा, और मुद्दत हुई एक चाह पीती सी, और बेहतर भी मैं चाह नहीं पींदा, और मकता है कि विछड़िया यार ते यादा बाकी, सरताज हुन किसी दी चाह नहीं पींदा।
1: जबरदस्त, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे और अल्लाह ताला बहुत नियमतों से नवाजे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज़ रही जी। तो हमारे साथ हमारे तीनों कॉलर्स, और आज हम बात कर रहे हैं जैसे मैंने कहा कि आप ही लोगों की, तो आप लोगों ने कॉल जरूर करनी है, लेकिन इस वक्त मैं एक ट्रैक चलाती हूँ, वापस आते हैं फिर आपसे बात करते हैं।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: Excuse me. अच्छा यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
3: हाँ उसके लिए तो
2: वैसे कतर की हिस्टोरिकल जगह जानने के लिए कहाँ जाना सही रहेगा?
3: वैसे वो तो देखो
2: इवेंट के लिए ये मुल्क नया है, क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है।
3: एक मिनट रुको ना, मिलेगी पूरी जानकारी, मिलेगी FM 107 पे। प्रोग्राम कतर 101 RJ फजील के साथ जानिए लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में हर इतवार सुबह 10 बजे ओनली ऑन FM 107। दिल से तेजी।
4: पेरेंटिंग सिर्फ परवरिश नहीं, ये समझ और प्यार का सफर है। ये शो बात करता है मॉडर्न पेरेंटिंग, रोज के चैलेंजेस और उन फैमिली वैल्यूज की जो बच्चों को बेहतर इंसान बनाती है। सिंपल बातें, रियल एक्सपीरियंसेस और हर वालिदैन के लिए रहनुमाई। पेरेंटिंग को नए अंदाज से समझिए और सुनिए RJ महविश के साथ पेरेंटिंग जर्नी में एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग 10 to 11 AM ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। आप सुन रहे हैं डियर फैमिली RJ महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: राइट, वेलकम बैक। और हमारे साथ हैं दो दो कॉलर्स लाइन पे, तो बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह
1: जी, कौन बात कर रहे हैं?
5: आपने ऐसा टॉपिक आज छेड़ा है कि परदेशियों के मतलब इस तरीके से कि उनकी गहराइयों को आपने पूरा निचोड़ दिया है, जिस तरीके से उनके जज्बात को, उनके उसको तरीके से कि इंसान का ये परदेश की लाइफ कभी मतलब इंसान का ये थोड़ा सा ये लेके साफ लेके निकलता है कि यार चलो ये कर लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आके घर में अपने फैमिली बच्चों में रहेंगे। लेकिन वो खाब ये करते करते सजोते सजोते आदमी के सामने इतने चैलेंज, इतनी जरूरियात बढ़ जाती हैं मैम कि सामने वाला फिर मजबूर हो जाता है कि यार चलो ये कर ले, तो अभी अगर हम घर पे ही रहेंगे तो बच्चों की भी उसी हिसाब से उनका बढ़ते जाता है। बस आदमी परदेसी अपनी जिंदगी को एकदम वक्त कर देता है परदेश में, लेकिन पूरा नहीं हो पाता साहब, बिल्कुल एकदम अपने बात को अपने उसको छोड़ के घर से उस वक्त निकलता है। उनके दिलों से पूछो कि उनके ऊपर क्या गुजरता है, लेकिन फिर कुछ दिनों तक घर से आने के बाद भी बिल्कुल समझ लो कि जब थोड़ा पैसा आना शुरू होता है तो फिर उसके जज्बात थोड़ा बदल जाते हैं, ये पक्की बात है। जब पैसे एक सैलरी जब उठाता है तो थोड़ा उसके जज्बात, क्योंकि वो अपने लिए नहीं जीता। तकरीबन बहुत से लोग तकरीबन 95% मुझे लग रहा है कि वो औरों के लिए ही परदेसी अपनी जिंदगी को वक्त कर देते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने मतलब जितने भी हैं करीब के लोग, ज्यादातर उनका यही ख्वाब होता है कि उनका, क्योंकि वो उनके पास हो जाता है तकरीबन एक दो सफर में उनकी जिंदगी ये करने के लिए, लेकिन वो फिर उनके बच्चों की जरूरियात, उनकी पढ़ाई, उनकी मतलब खर्च, उनके मतलब बस सारी चीजें मतलब उनकी बस बढ़ती जाती हैं, तो ये सामने वाले को मजबूर कर देता है कि यार अगर हम घर पे रहेंगे तो फिर मजबूर हो जाएंगे, फिर हम कहाँ से ये पूरा कर पाएंगे। और फिर वो अपने घर के जो मेंबर्स जो होते हैं उनकी उनका भी मतलब ये साफ हो जाता है कि फिर आप एक बार हमको आसमान पे चढ़ा के फिर जमीन पे एक बैग लेके आओगे तो फिर मतलब ये नहीं होता है। ये मसला है सबसे ज्यादा परदेशियों का, मैं इसे नहीं बात कर रहा हूँ, आप शायद समझ गए होंगे मैम।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल अंदाज़ है,
5: मैंने नहीं पता था। तो ये मैंने भी तकरीबन आज एक अरसा गुजर गया समझ लो कि 20 साल से ऊपर हमने जिंदगी गुजार दिया परदेश में, कुछ सऊदी में। शायद मैंने एक बार कहानी आपको थोड़ा सा
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बताई थी बिल्कुल
5: जी। तो ये बहुत कम हर हमेशा सोचते हैं कि यार अब फिर बार जाते हैं इंशाल्लाह फिर बार आके अपना कुछ कर लेंगे, लेकिन हम लोग इधर का माहौल और करप्शन और वो इस तरीके से कि सामने वाले को डर लगने लग जाता है कि यार अगर अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिए तो हो सकता है कि मतलब शायद वो हम कामयाब नहीं हुए, क्योंकि बैक सपोर्ट अगर मजबूत होता है तो सामने वाला मतलब थोड़ा सा ये हो जाता है, लेकिन अगर बैक सपोर्ट मजबूत नहीं है, अपने ही ऊपर सारा डिपेंड होता है, तो थोड़ा सा मतलब सामने वाले को सोचना पड़ता है कि यार थोड़ा दिन और गुजार लेते हैं, चलो थोड़ा दिन और गुजार लेते हैं। ये मसला किसी का खत्म नहीं होता है और पूरी जिंदगी उसका समझ लो इसी में वक्त कर देता है।
1: ऐसे ही तकरीबन ऐसे
5: बहुत अहम टॉपिक छेड़ा है परदेस के ऊपर कि ये बिल्कुल दिल से लगने वाली बात है मैम, ये बिल्कुल सामने वाले को एकदम मजबूर कर देता है दुनिया के, और खासकर अगल बगल और लोगों के जरूरी उनके मतलब माहौल और उनकी देख के उनकी प्रोफेशन उनकी वीआईपी लाइफ हर एक की देख के बस वो अपनी उभी वो बढ़ती जाती है यार उसने ये खाया ये पहना ये ऐसा घर बनाया तो यार चलो हम भी एक बार ऐसा कोशिश करते हैं, इसी कोशिश में पूरी जिंदगी वक्त कर देता है बंदा, लेकिन नहीं खास पूरा हो पाता है। बिल्कुल सही बात, बहुत कम लोग हैं कि जो समझ लो कि उस पर मुतमिन होके घर पे बैठ जाते हैं, नहीं तो बस यही सोच के कि बस यार थोड़ा सा और कर लें थोड़ा सा और कर लें उसी में जिंदगी पूरी वक्त हो जाती है।
1: सही बात बिल्कुल ऐसे ही, इसका अजर जो है ना वो कोई इंसान आपको दे नहीं सकता, अल्लाह ही अजर दे सकता है बस।
5: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल आपने ये बहुत हक बात मतलब फरमाया कि जिस तरीके से अगर हम अपनों के लिए जीते हैं तो ये भी बहुत बड़ा मतलब अज्र है, सबका है, कुर्बानी है अल्लाह के यहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब ये समझ लो कि एक जहाज अकबर के उसमें कैटेगरी में आता है या अगर कुरान हदीस की रोशनी में अगर हम सोचे हैं तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा जहाज है, जद्दोजहद करके बंदा अपने अपने फैमिली और अपने बच्चों को मतलब ये करता है, तो ये बस ये भी थोड़ा सा देख कि अगर बच्चों को अपने तालीम सही नहीं दे पाए प्रदेश में रह के तो मैम उनके लिए ये भी बहुत बड़ा मसला बन जाता है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा उन लोगों अपने भाइयों को कि अगर उनकी उनकी लाइफ में सारी चीज अगर हम मुहैया करते गए फिर वो मसला बन जाता है।
1: हाँ।
5: फिर वो उनकी और अक्सर हमारे करीब के लोगों को भी मैंने देखा है कि अपने बच्चों की उनकी जरूरियात उनकी मुंह मांगा अगर हम देते जाते हैं तो वो बच्चे बिल्कुल नाकारा हो जाते हैं।
1: हाँ, ऐसे।
5: फिर वो कल को अपने अपने माँ बाप को कहते कि भाई आपने क्या किया हमारे लिए, अगर कहो भाई वो तो सब करते हैं, उनका जवाब ये होता था दिल को मतलब चीर देता है कि यार तुम मतलब इस कैसे बात कर सकते हो। तीनी तालीम आपने दिया है उनको कुछ थोड़ा सा अगर आज नहीं तो कल जरूर अकल आएगा कि मतलब हाँ दीनी लिहाज से कि हाँ हमारे माँ बाप का मतलब बहुत बड़ा कुर्बानी है जो हमको इस लायक बनाया, और अगर दुनिया के मामलात में उनको हर चीज उनके मुंह मांगा मुहैया करते गए तो ये समझ लो कि हम अपने लिए मतलब गड्ढा खोद रहे हैं और उनके लिए भी गड्ढा खोद रहे हैं। वो खुद भी मतलब अपनी लाइफ नहीं मतलब ये कर पाते हैं, फिर वो नाकारा होके और अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं, ना सही से पढ़ाई कर पाते हैं और ना परदेश में कभी मतलब वो शायद कि हम लोग एक अपनी उम्र का मतलब हिस्सा समझ लो कि आधा से ज्यादा गुजार देते हैं, लेकिन वो शायद साल दो साल में या एक दो महीना में पैसा लगा के आते भी हैं, वो भी पैसा खासी के बराबर करके वापस
1: बिल्कुल ऐसे
5: घर पे बैठते हैं। ऐसा बिल्कुल होता है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको सिर्फ आसाइशें नहीं देनी है, आपको अगली जो आपकी मतलब जो जनरेशन है ना उसको जिम्मेदारियों का एहसास देना है।
5: मैंने अपना अपना थोड़ा सा मैं बयान करूंगा कि मेरा लड़का जिस टाइम पढ़ के फरागत हुआ उसका, तो उसने क्या किया कि अपने मोबाइल को मतलब गिरा दिया डिस्प्ले उसका, ये हो गया। तो उनकी मैंने कहा कि मतलब उनका भाई बोला ऐसा बात है

0: जब तक इनकी पढ़ाई मतलब मुकम्मल ना मुकम्मल थी, समझ लो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जामिया सल्फिया में पूरी मतलब उनकी पूरी मतलब दीनी के उसके पूरा उनका फुल कोर्स करवाया।
1: जबरदस्त।
0: तो भाई बोला अब वो जिम्मेदार हो गए हैं, अब खुद वो उस मोबाइल को वो खुद बनाएंगे। और फिर जाके उन्होंने मतलब उसी एक मतलब बड़े इदारे में उन्होंने जाके ज्वाइन कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उनको मतलब समझ लो पूरी जिम्मेदारी दे दी गई और वो कमाने भी लग गए। और थोड़ा उसी से सारा चीज मतलब भाई अगर उसी वक्त मतलब उनको मुहैया कर दिया होता तो शायद वो फिर मतलब एकदम ये होता था कि चलो यार क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उससे पहले भी उन्होंने कई बार मतलब नुकसान किया। लेकिन मैं बोला अब नहीं, खलास
1: सही सही
0: अभी तक वो अब अपने मतलब अब उनको खुद जिम्मेदार बनना है। अभी तक हमने उनका इतना तालीमी ये था हमने किया पूरा, तो हमें अपने बाल बच्चों को उस वक्त तक मतलब उनका ये करना चाहिए, थोड़ा सा उनके ऊपर भी जिम्मेदारी
1: डालनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रईस नाम है ना आपका भाई?
0: जी मैंने
1: जी नहीं है, तो मैं बस बेसिकली एक और कॉलर है हमारे साथ तो उनसे भी बात करना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए, बहुत जबरदस्त आपने बातें की। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। तो हमारे साथ रईस भाई थे और इसके साथ ही हम बढ़ जाते हैं, एक और कॉलर है हमारे साथ, काफी देर से बेचारे इंतजार कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम मैडम
1: जी। अली रजा क्या हाल चाल है? जी शो सुन रहे हैं, टॉपिक पता है या बताऊं?
2: नहीं पता मुझे ये,
1: नहीं
2: अभी मैं ऑन
1: क्या। अच्छा अच्छा, तो आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं इस हवाले से कि बल्कि आप ही के हवाले से एक तरह से बात हो रही है कि वो तमाम लोग जो कि अपने लिए नहीं जीते बल्कि वो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए वो परदेश भी आते हैं, दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो उनके हवाले से क्या नहीं आपके हवाले से बात हो रही है, क्या कहेंगे? क्या कहना है?
2: ये तो बड़ा डिफिकल्ट सवाल कर दिया आपने मुझे। मैडम जहाँ तक परदेसी का जो होता है कि वो तो बेचारा आता है अपने ख्वाब पूरे करने के लिए, ख्वाब पूरे करते करते दूसरे ख्वाब पूरे करने लग जाता है। यही है बस हमारे लोग की जिंदगी ऐसी है, बस दूसरे ख्वाब पूरे करते हैं, अपना घर अच्छा बना ले, अपने बच्चे अच्छे कर ले, यही है मेरे पास तक के लिए, कुछ नहीं है। क्या बोलूं, मेरी तो अभी लाइफ स्टार्ट हुई है परदेश में, 8 साल ही तो गुजारे हैं।
1: 8 साल गुजार लिए
2: और क्या,
1: सीरियसली
2: ग्रेजुएशन करके आ गया था 2021, ग्रेजुएशन पहले आया था, फिर ग्रेजुएशन के पेपर देने गया था पाकिस्तान, 2020 में आया था मैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, 8 साल नहीं हुए भाई अभी, अभी कितने हुए, 5
2: हो गए,
1: 6 हाँ तकरीबन 6, तो आपने तो 8 ही बना दिए, 2 खुद ही प्लस कर दिए।
2: 8 साल हो गए मैडम, 8 साल हो गए, कितनी बार 3 बार पाकिस्तान गया हूँ मैं, 6 साल 8 साल से ऊपर हो गया मेरे।
1: या अल्लाह, अपना हिसाब किताब चल रहा है।
2: 3 बार गया हूँ पाकिस्तान सिर्फ।
1: अच्छा, हाँ नहीं फिर सही है, तो फिर तो हजारों साल भी लग सकते हैं आपको, 8 साल तो माफ हुए आपके ऊपर। जी चलिए, गुड।
2: अच्छा, मैडम मैंने ना एक जी बात कहनी थी आपसे, कल वाले टॉपिक पे मैंने एक लफ्ज़ में गलत बोल दिया कि हमसे जो पहले जो लास्ट जनरेशन में जो खत्म होगी ना वो गलत बोला, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उसके लिए मैं माजरा करना चाहूंगा सबसे, मैं बड़ा सोचता हूँ फिर बाद में मैंने क्या बोल दिया।
1: नहीं नहीं कोई बात नहीं भाई, इतना नहीं सोचा करें, कोई नहीं सोच रहा,
2: बहुत बातें सुनाई मैंने, वो गलत बोला मैंने, बोले थे।
1: नहीं कोई बात नहीं, मतलब इतना मैं तो जज नहीं करती, क्योंकि वही है कि इंसान जब बात कर रहा होता है ना बहुत कुछ वो मुंह से निकल जाता है, वो नहीं भी बोलना चाह रहा होता है लेकिन वो बात कर जाता है, तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं अली। ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है अली, चलो मैं आपके लिए ना एक अच्छा सा गाना चलाऊंगी अभी एक ब्रेक के बाद, वो सुनिएगा। ठीक है चले, थैंक यू अली, थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना। अरे जी, तो हमारे अली जो हैं वो भोले भाले कॉलर हैं हमारे, हर दफ़ा कोई ना कोई बात उनको खुद ही फील हो जाती है, खैर जी अच्छी चीज़ है। हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, फिर आपको सुनाएंगे एक सॉन्ग।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: आप सुन रहे हैं डियर फैमिली आरजे महविश खान के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट एफएम 107 कतर दिल से देसी
2: हेलो बच्चों तैयार हो जाइए एक सुपर फन आर के लिए हर मंडे 3 बजे से हम लेकर आते हैं सॉन्ग्स कहानियाँ और सरप्राइजेस जो आपको हंसाएंगे और सिखाएंगे अपने फेवरेट कैरेक्टर से मिलिए और मैजिकल एडवेंचर्स डिस्कवर कीजिए सब कुछ एक ही शो में तो स्नैक्स ले आइए दोस्तों को बुला लीजिए और ट्यून इन करिए हर मंडे 3 बजे से विद आरजे फजील ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी साथियों जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है सेविंग बजटिंग फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर बिल्कुल प्रैक्टिकल बिल्कुल रियल लाइफ सुनिए प्रोग्राम मनी नेविगेटर Every Monday, 10 a.m. onwards. Only on FM 107, Dil Se Desi. Your guide for a smarter, strong financial decision. Sirf sunna hi nahi, samajhna bhi shuru kijiye.

0: मोहम्मद तौफीक ने कहा अस्सलाम वालेकुम अलवकरा से वालेकुम अस्सलाम क्या हाल चाल है आपके और इसके साथ ही जी मैं कतर में 2011 में आया फिर नेपाल से और फिर उसके बाद दुबई गया फिर नेपाल गया फिर उसके बाद अभी कतर में हूँ और ये है कौन 2016 से ही कतर में है और नूर मोहम्मद नाम है इनका नूर मोहम्मद थैंक यू आपके मैसेज के लिए इसके साथ ही वॉइस नोट वो तो हम प्ले नहीं कर सकते मोहम्मद तलहा ने कहा आई लव दिस पिंजरा ओके और इसके साथ ही मोहम्मद यूसुफ खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू गुड इवनिंग कैसे हैं आप होप वेल वेलकम टू द शो दिल से देसी हैप्पी मंडे इवनिंग और मावज जी मैं अपने आप को कभी भी कोई हीरो की कैटेगरी में नहीं बोलूँगा बस अल्लाह ने रोजी का जरिया बनाया है तो आगे कमाने के लिए सब स्ट्रगल सब तकलीफ सब एक्सेप्ट है अपनों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सबकी रोज़ी की हिफाजत करे आमीन और उसमें बरकत भी देता रहे इंशाल्लाह ताला और हमेशा देने वाला रखे इंशाल्लाह आपको मोहम्मद यूसुफ और सब लोगों को और आप सुबह के शो में 1 जून से आएंगी नाज़िर जी के साथ जी बिल्कुल तो शो का कॉन्सेप्ट क्या होगा वैसे ही होगा जो मॉर्निंग वाला होता है ना सीन वही वाला सीन होगा वैसे ही चलेगा और इसके साथ ही और सिमिलर टू मॉर्निंग शो एज कबीर और वेद टू नहीं मतलब डेफिनेटली हर बंदे का एक अपना स्टाइल होता है लेकिन ये कि फॉर्मेट तकरीबन सेम ही होता है तो वो ही फॉलो करेंगे और वैसे ही करेंगे अब इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या होता है मैं तो बहुत अरसे के बाद मॉर्निंग शो में आ रही हूँ आई थिंक मैंने 2017 या 18 में छोड़ा था मुझे कंफर्म याद नहीं है 17, 18, 19 ऐसे कुछ था शायद कोविड से पहले छोड़ा था बस जस्ट कोविड से पहले अच्छा ये जो कॉलर थे ना 76 ईयर्स वाले माशाल्लाह कॉल बहुत ही अच्छी लगी और सारी जिम्मेदारियाँ निभा के इतना खुश हैं और आप अब कह रहे हैं कि जाने के लिए भी तैयार हैं लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए सुन के अल्लाह के कितने प्यारे बंदे हैं दुनिया में अल्लाह उन्हें सेहतमंद रखे और ऐसे ही सदा खुश रखे आमीन और मैं जब सुनती हूँ ना मोहम्मद यूसुफ ऐसे लोगों को तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला एक तो यही वाली जो चीज़ है ना इसी तरह से सारी जिम्मेदारियाँ खुश इसरूबी के साथ अल्लाह ताला हम लोगों को भी तौफीक दे निभाने की और उसके बाद फिर ये वाली जो तैयारी है ना जिसका उन्होंने जिक्र किया मैं कुछ बोली नहीं थी लेकिन ये लिटरली मतलब ये इतनी अहम चीज़ है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस चीज़ के लिए भी तैयार रखे कि हम लोग जो है ना वो अगली जो मंजिल है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखें और जिस बंदे के दिमाग में भी ये बात होती है ना वो दुनिया का सबसे खुशनसीब बंदा है और इंशाल्लाह मतलब उसके लिए अभी पता है क्या रिसेंटली एक हुआ था कि मेरी बहन के कुछ ससुराल में रिश्तेदार थे और उनके चचा लगते हैं मतलब उसके हस्बैंड के तो वो बता रही थी कि वो तक गई तो उनको कैंसर डायग्नोज हुआ था और बिल्कुल उनका लास्ट स्टेज था और उन्होंने कहा था कि मेरे लिए ना दुआ करना वो सबसे कह रहे थे मेरे लिए दुआ करना और कुछ नहीं ये नहीं दुआ करो कि मैं ठीक हो जाऊँ बल्कि ये दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत में जगह दे दे तो मुझे मतलब मैंने दुआ की थी वो मुझे आके उसने बताया मैंने कहा देखो मतलब अमूमन ये होता है कि हम ज़्यादा ज़िंदगी मांगते हैं लेकिन जो अपनी ज़िंदगी में ये दुआ करवा रहे हैं ना अल्लाह ताला उसको जन्नत में बहुत आला मकाम दे और अल्लाह ताला हमें ये याद रखने वाला बनाए इंशाल्लाह ताला अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
0: जी करीम भाई अल्लाह से राजी हैं कैसे हैं
1: बहुत बहुत राजी है
0: माशाल्लाह माशाल्लाह
1: राजी तो है तभी तो अल्लाह ने

0: रहा है कि लोग कर क्या रहे हैं.
1: हालांकि
0: लोग कंफ्यूज है आजकल के दौर में. पहले ये चीजें होते थे, ये चीजें पहले होते थे जब एक बंदा काम कर रहा था, मतलब पूरे घर को छोड़ के पीछे जो लोग घर में होते थे वो घर संभालते थे, खुशी और गम इन चीजों में. लेकिन अभी जो मसला मसाइल ये यहाँ तक आ गए कि वो जो जज्बात होते हैं ना, वो जज्बात जिसके लिए बंदा कहते हैं ना, ये एक अकल जो है ना, अकल बंदे को रोशनाई देता है, रास्ता दिखाता है ना. फिर उस रास्ते पे चलना जो है वो फिर जज्बात से चलना पड़ता है. अगर हम उस रास्ते पे अकल से चलना चाहें तो अकल तो हमें ये भी बता देता है कि जी आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आप इस तरह क्यों कर रहे हैं, तो वो दोबारा बंदे को पशेमान करता है. तो हम काफी

0: मेरे ख्याल में आज से लेके हम तक हम सब दूसरों के लिए कमा रहे हैं, अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनको पढ़ाना चाहते हैं, तो हर कोई, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इतना खो जाता है अपने फैमिली में कि बाद में उसका लौटने का रास्ता बहुत दूर हो जाता है। वो ये डिसाइड कर लेता है कि अब मैं यहीं पर सही हूँ। तो ये वो चीज है कि इसमें थोड़ी सी मायूसी भी आती है और इंसान मतलब अपने लिए कुछ, मैं खुद अगर अपनी बात करूँ ना, मुझे याद नहीं रहता कि मैंने अपने लिए कुछ किया है मेरे लाइफ में। मुझे नहीं लगता, अभी तक नहीं लगता, मैं जितना भी कोशिश करता हूँ मुझे याद भी नहीं रहता कि मैंने कभी किया होगा। लेकिन जब देखता हूँ कि चलो बच्चे हैं, फैमिली है, घर है, तो उस घर को इकट्ठा करना, उनको एक दस्तरखान पे बिठाना, इनमें से एक बंदे को कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब एक बंदा बलि का बकरा बन जाएगा तो वो दस्तरखान हमेशा रहेगा, वो घर हमेशा रहेगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
1: सही हो गया, सही हो गया। मतलब एक बंदे को, और डेफिनेटली मतलब जैसे आपने कहा कि ये एक बहुत बढ़िया अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने आपको इस तरह का रखा हुआ है। तो बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया करीम भाई आपकी कॉल का। बस कुछ मैसेजेस हैं, फिर हमारे जाने का वक्त हो रहा है। थैंक यू।
0: तो मैं सारे भाई को यही कहता हूँ जिन्होंने पहले कॉल किया है कि आप खुश नसीब है, आप कमा रहे हैं, दूसरे खा रहे हैं, कल का पता नहीं बंदा जिंदा है या नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। रही जी, तो हमारे साथ हमारे कॉलर्स और काफ़ी सारे लोग कॉल कर रहे थे, लेकिन वही हुआ कि टाइम ज़रा कम हो जाता है। फिर मेरी थोड़ी सी कोशिश होती है कि जिस बंदे ने भी कॉल की, इतनी एफर्ट की है, तो उसको उतना मौका ज़रूर मिले कि वो अपनी बात ज़रा सही तरीके से पहुँचा सके, वरना अगर हम जल्दी जल्दी करेंगे तो फिर यही होगा कि वो आधी बात करेंगे, आधी नहीं करेंगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए माजरत, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ सकेंगे वजह को। अच्छा जी, बेशक आमीन सुमामीन मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज, इसके साथ ही असमत अफरीदी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आपी एंड वेरी नाइस टॉपिक। आज के टॉपिक पे मैं उन सब आयरन मैन्स इंक्लूडिंग मी जो उर्दू और अंग्रेजी दोनों सफर सफर करते हैं अपनी फैमिलीज के लिए, उनको सलाम और सलूट करना चाहता हूँ। और स्पेशल सलूट टू द लेजेंडरी कॉलर्स, सॉरी आई फॉरगेट हिज नेम, बट यस ही इज अ रियल हीरो माशाल्लाह। मुझे भी सोचना पड़ रहा है, सरताज खान, सरताज खान। और इसके साथ ही जी प्लीज़ हेल्प मी, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है भाई जो आपने मुझसे पूछा है। इसके साथ ही जी 2 जून को किसकी वेडिंग है? 2 जून को सिस्टर सांवल यार पिया का सॉन्ग प्ले कर सकते हो? अच्छा, आपने बिल्कुल एकदम से आखिर में बोला है, लेकिन फिर भी चले मैं आप कह रहे हैं इतने मतलब इतने क्या कहना चाहिए, कुछ कह रहे हैं तो अभी इस गाने। अच्छा जी, इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ क्या, फिर 22 को हैदराबाद जा रहा हूँ। अच्छा, शादी के लिए आप सब लोगों ने आना है शादी में हैदराबाद? ओके, 2 जून को वेडिंग है और 4 जून को डिनर है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, तो चलें जी हम कोशिश करते हैं भाई, मैं अभी इस वक्त गाना जल्दी से निकाल लूँ तो फिर मैं आपके लिए चला देती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जी मेरे पास मैसेज है, और किसका ये है, सईद खातिम हुसैन, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह, क्या हाल चाल है आपके? अच्छा, सावल मुझे मिल नहीं रहा है भाई, मैंने कोशिश कर ली है लेकिन नहीं मिल रहा, तो मैं नहीं चला पाऊंगी, माजरत। और ढेर सारी दुआओं के साथ आपने आदाब कहा, और यस मैम आई नो, कुछ कहना चाहता था लेकिन भूल गया हूँ, 22 साल में सब कुछ भूल जाता हूँ, पता नहीं क्यों। और कतर में मेरी पैदाइश हुई है, किसकी पैदाइश हुई है? 3 साल हो गए, मुझे समझ में नहीं आई बात। खैर जी, मैं पढ़ देती हूँ आगे। यस मैम, नाउ आई रिमेंबर व्हेन आई केम टू कतर, आई केम फॉर माई सेल्फ, आई यूज टू थिंक दैट आई वुड अर्न मनी एंड स्पेंड इट ऑन माई सेल्फ बिकॉज आई रियली लाइक डूइंग दैट, बाइंग गुड क्लोथ्स, गुड शूज, ईटिंग गुड फूड एंड एन्जॉइंग लाइफ फॉर माई सेल्फ, इट मेड मी हैप्पी, बट नाउ इट्स फील्स लाइक आई डिड नॉट कम हेयर फॉर माई सेल्फ एनी मोर, एवरीथिंग फील्स लाइक इट्स फॉर समवन एल्स, आई मीन फॉर माई फैमिली। My age is 22 years old and I am still not married. 22 years old. चलें इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा, 22 अभी इतनी उम्र नहीं हुई अब, बस लेकिन जल्दी से शादी करने का प्लान कर लें इंशाल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया, अगर किसी का मैसेज रह गया है तो आपसे माजरत। और इनका नाम क्या था, इनका नाम मैं आखिर में पढ़ती चलूँ, खान का मैसेज है, खान बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। चलिए इसके साथ ही लास्ट ट्रैक आपके लिए चल गया है, अल्लाह हाफिज़, बाय।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: यार दुनिया गोल है और दुनिया छोटी भी है, ये किसी ने कहावत कही दी एक बार और आज मैं वो मान भी चुका हूं, क्योंकि बहुत कम ऐसी सिचुएशन होती है जब आप अपनी कार सेकेंड हैंड वाली बेच देते हैं और आपको वो एक बार नहीं दो बार दिखती है, ये वो भी दो महीने के अंदर अंदर। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको तो मान ही लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 के स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 5:02।

0: देखो पहले वाली कितनी भी अजीब और खराब क्यों ना हो, मतलब कार आप कुछ और सोच रहे थे ना
1: बेटे
0: रे लाड ले, मैं यही कह रहा था कि पहली वाली जो कार होती है वो कैसी भी हो तो आपको उससे मोहब्बत तो होती है, आपके जिगर में कहीं ना कहीं उतरी तो होती है वो कार, आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है यार कि पहली आपकी कार है, आपकी पहली इन्वेस्टमेंट है ना, आप अपने कार को बड़ा संजो के रखते हैं और यू नो उसमें हर एक छोटी छोटी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पता होती है, आप खुद से वो कार धुलते हैं, तो जब आपको मजबूरन उसे बेचना पड़ता है तो आपके दिल में एक यू नो कसक सी रह जाती कि यार पहली थी कार आप बहुत ज़्यादा उसे मोहब्बत करते हैं, तो ऐसे में कभी आपको अगर दिख जाए, कई बार तो ऐसा भी होता है क्योंकि मेरी वाली जो कार थी पिछली वो मेरी पहली एक तो कार थी और वे इकलौती ऐसी कार थी जिसको मैंने खुद ही धुला है, उसके बाद ना अपने इंडिया वाली ना यहाँ वाली और ना ही कभी किसी और की, क्योंकि कार धुलने का इतना कोई शौक नहीं, खुद ही खर्च कर लो भैया, इतनी मेहनत कौन करे, लेकिन उस वाली कार को अपने भाई ने खुद ही धो ली भाई, अपने इन हाथों से शैम्पू से रगड़ रगड़ के चमकाया है, लेकिन आज मुझे वो कार दोबारा दिखी है और मज़े की बात यह है कि मुझे अब उस कार का रूट पता चल गया है, एक उसी टाइम पे दिखी थी जो दो महीने पहले दिखी थी, आज दूसरी बार वो कार दोबारा मुझे अपनी दिखी है और अब जो बेस्ट पॉइंट है वो ये कि नंबर मुझे याद था, पहली कार का नंबर याद है भाई, ये वाली कार में मैं कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता हूँ कि यार अभी वाली कार सही है कि गलत है या क्या है मैटर, मुझे आइडिया नहीं, कहीं कहीं वो 7-8 आगे हो जाता है फिर कभी 7 पीछे हो जाता है, लेकिन उस वाली का एग्जैक्ट मुझे नंबर याद है और पहली कार का डिज़ाइन क्या है सब कुछ याद है, नंबर देख के मैं उस कार को पहचानता हूँ, मुंडी पलट पलट के मैंने देखी है एक ही रूट से जाती हुई, आए हाय अजीज मेरी, तो वही वाली बात है कि आपको पहली वाली कितनी भी अजीब लगे कार है ना कोई परेशानी देती है भाई, इंसान तभी हटाता है जब इंसान को ज़्यादा टेंशन होने लगती है कार की तो इंसान हटाने लग जाता है, लेकिन आपके दिल में तो जगह रहती ही है भाई, हम तो ईमानदार लोग हैं, हम तो वो भी ना बेचते खैर इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का FM 107 पे और ये बड़ा इत्तेफाक होता है और मैं तो सोच रहा हूँ आज का सवाल ही यही कर दूँ कि आपने कई बार देखी है अपनी वाली कार जो बेच दी हो, पहली कार हो, कभी ऐसा हुआ है अपने मुल्क में भी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने दोबारा देखी हो, और मैंने तो दो बार देख ली भाई, एक बार नहीं दो बार देख ली है बेचने के बाद, एक तो 2-2.5 महीने पहले देखी थी और एक अब देख रहा हूँ, उसके अलावा यहाँ पर अगर आपने बेची और कतर में देख ली हो ऐसा हुआ कभी, अब अपने दोस्त को बेच के ये मत कह देना भाई मैं तो रोज देखती हूँ ने कुछ लोग वो भी होते हैं कि एकदम बगल में, अरे मैंने तो अपने दोस्त को बेच, वो बगल में ही रहता है ना तो मैं रोज देख लेता हूँ, वो वाली गिनती में नहीं है ना फिर तो वो मैं पूछना चाह रहा था आज और आज का सवाल मैं सोच रहा हूँ यही वाला रख नहीं खैर इस्तकबाल 666-2207-6-6-6-2-2-107 अगर आपने भी अपना दफ्तर खोल लिया है तो बता देना इस नंबर पे मैंने अपना दफ्तर खोल लिया, लैपटॉप एकदम खड़ा हो गया है और मैं भी यहाँ पर एकदम जोश और खरोश में हाजिर आपके लिए FM 107 पे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे वापस तो मजीद करेंगे बात दिल से देसी।
2: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

7 की पूरी टीम की जानिब से शाम बखैर। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और तमाम आफतों और मुसीबतों से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।

0: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल? 5:17 स्टूडियो की घड़ी में, और जरा मैसेज पर अगर हम नजर डालेंगे तो लोगों का दर्द जो है वो छलक आया अपनी पुरानी कार को लेकर। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, ये दर्द जो है दर्द नहीं है, ये मोहब्बत है, और मोहब्बत जब दूर चली जाती है तो दर्द छलक आता है। आए हाय, क्या लाइन मार दी फजील मियां, 5 बजे ही ये लाइन। अब देखो, रात को नींद नहीं आएगी यार, ये सब मत कहा करो यार, फिर याद आ जाती ना अपनी वाली कार की। सलाम अलैकुम। ये भाई ने कहा बात कार की है, हो रही है फजील भाई, बात कार की हो रही है ना फजील भाई। अच्छा अशफाक मियां, आप क्या सोच रहे हैं, आप वाली सिमरन की हो रही है? वैसे तो बात कार की ही हो रही थी, लेकिन अगर आपका दिमाग ये कह रहा है, हाँ लेकिन बात कार की ही हो रही है। बाकी अपने अपने ख्याल है। देखो, आप जिससे पहली मोहब्बत करते हैं, मतलब कार से ऑब्वियसली, तो वो जो कार होती है वो अगर आपको कहीं दिख जाए तो आप इमोशनल हो जाते हैं, आपकी मोहब्बत जग उठती है। जैसे एक भाई ने कहा भी है कि सलाम करा है, वालेकुम सलाम, मैंने भी 2 बार देखा है, क्या बात है, एक तो दुनिया छोड़, ऊपर से आप कतर में रहते हैं। तो आपको 4-6 बार दिख ही जाती है अपनी पुरानी कार, पहली कार। भाई ने देखा, एक बार तो पार्किंग में देखी थी, इमोशनल होके आंसू निकल आए थे। अरे हाँ यार, ये होता है, अपनी पहली वाली को देखो ना कार को, तो आंसू निकल आते हैं भाई मेरे। मतलब ये सच में बहुत ही ज्यादा दिल वाली बात हो जाती है कि अरे तुम नजर के सामने जिगर के पार रहती हो। ये बॉय। तो वो जो है ना, जब आप कार अपनी देखते हैं और फिर आपको सब कुछ याद आने लगता है, उसके साथ घूमना है ना, चाय पीने के लिए जाना, बीच पे जाना, कार पे टेंट लगा देना, फिर उसके साथ आइसक्रीम खाना, कभी कभार गिर जाती कार के अंदर ही, है ना। तो भाई साहब बड़ा मजा आता है यार, वो सब याद आ जाता है आपको, आपको कार के साथ गुजारी हुई हर पल जो है वो एकदम से याद आ जाता है कि आप लॉन्ग ड्राइव पे गए थे, हैं उसी पे तो फी लगा था नहीं। मेरा स्पीड लिमिट का 1 फाइन जो लगा है ना, उसी कार से उसी कार पे लगा है, फिर पैसे दे दिए थे। खैर, बाकी ये जो दर्द है बाकी आता है। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ। कौन है जी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सर फजीर, कैसे हो भाई?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है मेरा भाई, आप सुनाएं कैसे हैं?
1: मैं एकदम बढ़िया, आपके बातें सुन रही है, मैं तो बस अपने साथ ही हंसने लगा, ये कार की जो आपने की।
0: ये वो आपको भी याद आ गई अपने कार की?
1: भाई मैंने पहली बार एक वो सौजकी डब्बा खरीदा था, वो पुराना जापानी जो होता है ना।
0: हाँ।
1: तो खरीद के बाद में कुछ मेरे ख्याल 2-1.5 साल रख वो गाड़ी थी अपने पास, फिर बेच दिया मैंने।
0: अच्छा
1: अच्छा, जब मैंने गाड़ी बेची, एक दिन मैं जा रहा हूँ, उसमें वो कुल्फी रखा हुआ है।
0: हाँ।
1: यार ये क्या है?
0: हाँ।
1: नहीं, ये फिर मैं वापस मुड़ा, देखा नंबर प्लेट आ रही है, तो मेरे गाड़ी है,
0: मेरी गाड़ी। हाँ, हाँ, मेरा भाई, क्या बात है, आपको दिख जाए एकदम से।
1: उन्होंने कुल्फी रखी हुई थी। अच्छा, तो मेरे दोस्त लोग क्या करते थे, हमेशा जब ये पुरानी बात है, काफी हो गए इसको 22-25 साल हो गए।
0: अच्छा, बड़ी पुरानी बात है।
1: तो जनाब जी, तो जब सारे भाग के आते यार इधर जाना है, आपको पता है ना, जब आपके पास कोई चीज आ जाता है, जो दोस्त लोग होते हैं अपने लंगोटिया सारे भाग के आते हैं ना, उधर जाना है।
0: सही।
1: मैंने कहा यार इसका पेट्रोल तो मुझसे नहीं होगा, फिर मैंने क्या किया, उसके पेट्रोल के टैंकी से लाइन कटवा कर साथ में इधर ही स्ट्रिंग के साथ आगे प्रण में भाई, और 5.5 लीटर वाला है मेरे ख्याल, 3 लीटर वाला एक डब्बा होता है ना, उसमें पेट्रोल डाल के तार उधर डाल दिया। हाँ भाई, चाबी पकड़ के पेट्रोल डाल दिया।
0: क्या बात है, ये यादें जो है ना, वो पहली वाली कार के साथ रह जाती हैं भाई। मतलब दूसरे वाले कार में भी मोहब्बत है, ऐसा नहीं है उससे नफरत करते हैं भाई, ऐसा मत करो, पता चला अगर मेरी कार को एहसास जरा भी हो गया, खुद ही अपना पंचर कर ले पहला पहिया तो।
1: ऐसे काफी सारी चीजें के यहाँ पे जो है ना, ये क्या बताया, लेकिन यार वो मजा फिर अलग मजा होता है ना उस गाड़ी का।
0: सही बात है भाई,
1: अलग मजा होता है।
0: तो क्योंकि आप पहली कार से अपनी मोहब्बत भी करते हैं, फिर उसकी अब जब वो आती है तो आपको बड़ा लगाव होता है। हालांकि मैंने उसको अपने साथ 1 साल ही रखा, फिर उसने इतना गम दिया है मुझे, तो मैंने उसे चेंज कर दिया। तो उसका उसका रीज़न भी खैर यही था कि पता नहीं उस वाली कार में मेरे ही साथ था कि जब भी उसको लेकर निकलो कोई ना कोई काम दे दे देती थी कि आज टायर सही करा लो, आज बबलिंग हो रही है उसको सही करा लो, आज पीछे का शीशा तोड़ रही हूँ इसको सही करवा लो। वो बहुत नखरेलू हो गई थी, तो फिर मैंने दूसरी वाली एकदम सही है, एकदम सटीक चलती है, एकदम उसको पता भी चल गया ना मुझे कि कैसे चलाना है दूसरी वाली कार।
1: तो यही पहली वाली कार में यही तजर्बा होता है ना, हाँ, सर, बंदा बहुत चीजें सीख लेता है।
0: हाँ, तजर्बे के बाद भी तो दर्द तो है उसके जाने का, खैर
1: तजर्बे सीख लेता है, लेकिन उसके साथ जो तकलीफें वाले दिन इधर खड़ी है उधर खड़ी है यार, वो बातों में जाएंगे तो मेरे ख्याल में काफी टाइम लग जाएगा। बहरहाल वो अभी भी जो है ना, वो दिन जब मुझे याद आते हैं बहुत अच्छा फील होता है। यानी वो एक स्टेमिना भी था, जवानी भी थी, मतलब जिम्मेदारियां भी इतनी नहीं थी, बड़ा मजा आ रहा था।
0: अभी
1: तो बहुत मुश्किल है सर।
0: सही सही, चले भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू,
1: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। पजीर भाई, खुश रहो, अपना ख्याल रखो, अस्सलाम वालेकुम
0: मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो भाई देखो, सबको पहली वाली याद आ गई अपनी कार, तो मैं बाकी मैसेज भी लूँगा धीरे धीरे। फिलहाल कुछ अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो ये मैसेज हिशाम भाई का भी ये रह गया, सलाम क्या है, वालेकुम अस्सलाम। नसीम भाई कुछ देर में रिप्लाई करते हैं और बाकी भाई लोगों को कुछ ही देर में बस उससे पहले ये वेदर का अपडेट ले लेते हैं। आज के वेदर का क्या है हाल चाल? अच्छा खासा है मामला, ये 35 डिग्री सेल्सियस फिलहाल अभी है ना, 35 डिग्री सेल्सियस है, जो कि अच्छा खासा है। और वो गर्मी ही क्या, मेरा दोस्त ना बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, तो कहता है यार ये गर्मी बड़ी फायदेमंद है। मैं गुस्सा में, कैसे फायदेमंद है, फालतू की बात कर रहे हो यार तुम। कह रहा नहीं यार, मतलब हर इंसान के लिए जैसे सर्दी कहीं कहीं जरूरी है, वैसे गर्मी कहीं कहीं जरूरी है। मैं कहा कैसे, फालतू की बात नहीं करो, एक तो गर्मी में दिमाग खराब हो रहा है ये सब बातें करके। वो इतना ऑप्टिमिस्टिक है, कहता है यार देखो क्या है कि गर्मी इसलिए भी फायदेमंद है कि आपके घर अगर चूल्हा नहीं है, गैस नहीं चल रही है, कार थोड़ी देर बाहर खड़ी कर दो, नहीं तुम्हारे पास कार है किसी और की कार में अंडा दो बना सकते हो, बाहर से रोटी खरीद के ले आओ, कार की बोनट में रख दो भाई, कार में जैसे ही बोनट में रखोगे रोटियां गर्म हो जाती, ज्यादा देर मत रखना फजील जल जाएगी रोटी। तो मैं कह रहे यार तुम्हारे ऑप्टिमिस्टिक होने के चक्कर में इंसान जल भुन जाए, हम जो तप रहे हैं उसका क्या। तो ऑप्टिमिस्टिक इंसान को इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये जरूरी है कि आप ये ना सोचें कि यू नो घर पहुंचेंगे तो पानी पी लेंगे, नहीं ऐसा मत करो भाईजान। पानी अपने साथ रखो अपनी कार के अंदर, ठीक है, जरा भी रिक्स नहीं लेने का, बिल्कुल भी रिक्स नहीं लेने का। अरे वाह वाह, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही, तो 35 का फिलहाल का, और दोपहर में 38 डिग्री सेल्सियस भी आज गया था, जो कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस हर रोज बढ़ रहा है तो ये एक्चुअली रिस्की है। 30 मीटर पर आवर की हवा है, 24% पे है ह्यूमिडिटी, और ये झेली जा सकती है, लेकिन जो गर्मी है ये आपको बहुत परेशान करने वाली है। कल के दिन 38 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा और शाम को रात के वक्त 28 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा तापमान, और ये मिनिमम है। इसके अलावा और नीचे तो जाने से रहा। उसके अलावा कुछ खास अपडेट वो है हाया प्लेटफॉर्म कमिटी का अपडेट। मई 7 को यानी कि 7th of May को, वैसे तो आज 11 है, 4 दिन पहले कतर कैबिनेट ने स्टेब्लिश किया एक परमानेंट कमिटी टू मैनेज विजिटर्स एंट्री एंड प्रीमियम रेसिडेंसी एप्लीकेशंस थ्रू द हाया प्लेटफॉर्म। सो ये भी एक बेहतरीन और ज़बरदस्त यू नो प्लेटफॉर्म हाया प्लेटफॉर्म पे किया गया है, चेंजेस किया गया है, और कतर कैबिनेट ने स्टेब्लिश किया है परमानेंट कमिटी ताकि विजिटर्स की एंट्री को, और जो प्रीमियम रेसिडेंसी पर जाते हैं, नॉर्मल वाली नहीं, प्रीमियम रेसिडेंसी पर जाते हैं, उनके लिए मैनेज करना, उनको सही सर्विसेज को प्रोवाइड करना, ये हाया प्लेटफॉर्म कमेटी का काम होगा। उसके अलावा लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी वीज़ा, नए 10 साल के रेसिडेंसी परमिट्स फॉर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स में चेंजेस किए गए हैं, और सीनियर जो एग्जीक्यूटिव हैं उनको 10 साल की रेसिडेंसी परमिट मिल रही है, हाई पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके लिए, और ये जो है इसी साल लॉन्च की गई है। सो ये लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी वीज़ा है। उसके अलावा ऑटोमेटिक वीज़ा एक्सटेंशन के बारे में तो मैंने बता ही दिया था, काफ़ी लंबे

वक्त से, लेकिन कुछ मेरे ख्याल से दो हफ्तों से इसके बारे में बात नहीं हो रही, तो क्यों ना इसके बारे में भी बात कर लें। जो रीजनल डेवलपमेंट्स थे, तो जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर दिए हैं ऑल एंट्री वीज़ाज जो 28 फरवरी तक ड्यू हो रहे थे। यानी कि अगर 29 का महीना तो नहीं था ना, मार्च में भी अगर मान लेते, तो मिसाल के तौर पे आप फंस गए, यहाँ से नहीं जा पाए अपने मुल्क, और एक तारीख तक आपका रुकने का प्लान था लेकिन फिर फ्लाइट नहीं चल रही थी, तो 28 तक या एक तक अगर आपका वीज़ा था, अब वो ऑटोमेटिक जो ड्यूरेशन है एक एक महीने करके वो बढ़ जाएगी और फीस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो हो गई पहली बात। लेकिन अगर आप 25 तारीख तक यहाँ रुके और 25 तारीख के बाद नहीं गए, 26 रुके, 27 रुके, जबकि वीज़ा यू नो आपका एक्सपायर हो गया, तो उन दो तीन दिनों का अमाउंट जो है वो आपको भरना पड़ेगा, फीस भरनी पड़ेगी, उसके बाद से ऑटोमेटिक जो वीज़ा है वो एक्सटेंड होता रहेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके अलावा कुछ दिन पहले ये वाली बात बताई थी, जो नए लोग हैं, अगर नए लोग अपने मुल्क चले गए थे और अब वो आए हैं FM 107 से जुड़े हैं और सुन रहे हैं, तो उनको बता दें हेल्थ केयर एक्सेस विथ QID। अब आपको PHCC सेंटर में जाने पर या HMC यानी कि हमद मेडिकल कॉरपोरेशन यहाँ पर जब आप जाएंगे, तो अब आपको हेल्थ कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो रेसिडेंट्स हैं यहाँ के, वो सिर्फ अगर अपना कतरी ID ले जाएँ, यानी कि कतर का ID ले जाएँ, QID, उससे काम हो जाएगा। आप सभी सर्विसेज को एक्सेस कर पाएंगे एट हमद मेडिकल कॉरपोरेशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर कॉरपोरेशन यानी कि PHCC की फैसिलिटीज में। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। उसके अलावा आप जैसे ही खतरा है और आप ये ना सोचिएगा कि अरे ये जो प्राइस है ये कैसे बढ़ गए यार, जितने भी ड्रिंक्स थे मीठे वाले, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की प्राइसेस कैसे बढ़ गई, तो 6 जुलाई से न्यू टैक्स जो लागू किया जाएगा वो है स्वीटेंड ड्रिंक्स का टैक्स। ये शुगर बेस्ड जो कंटेंट वाले ड्रिंक्स होते हैं 6 जुलाई से थोड़े महंगे हो जाएंगे, इन पर टैक्स लग रहा है। तो ये भी एक खास और ज़रूरी बात, मैंने कहा ये वाली तो बता ही दें, वैसे कई लोग पीते हैं। मेरे ख्याल से कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऐसी चीज़ है कि खास तौर पे जब आप कतर में रहते हैं तो आपको ऐसा नीड लगती सी है, लेकिन इतनी देर में आप आसपास अगर नज़र दौड़ाएं तो पानी वानी चीज़ आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर लोग शायद कंज्यूम करते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे में टैक्स लग गया है तो ये अच्छी बात है, लोग और भी ज़्यादा कम कंज्यूम करेंगे। उसके अलावा कुछ इवेंट्स की अपडेट सुन लेते हैं FM 107 पे। इवेंट्स इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ घूमे फिरे यार।

वाइब शुरू। और 11 तारीख से जबरदस्त एक गेम का माहौल कतर में शुरू हो गया है और ये है फोर्थ जीसीसी गेम्स में 11 यानी कि आज से शुरू हुआ है, 22 यानी कि 22nd ऑफ मई तक चलता रहेगा फोर्थ जीसीसी गेम्स, और जहां पर 2000 एथलीट्स आएंगे पूरे गल्फ से और एंजॉय भी करेंगे साथ ही कम्पीट भी करेंगे, जिसमें स्विमिंग से लेकर गोल्फ सब कुछ होने वाला है। इंडोर भी होंगे और आउटडोर भी इवेंट जो है वो होंगे, आउटडोर मोस्टली शाम के वक्त होंगे। उसके अलावा कल स्विमिंग का हमद एक्वेटिक सेंटर में और बास्केटबॉल अल गर्राफा स्पोर्ट्स क्लब में ओपनिंग इवेंट्स होंगे कल के दिन मई 12 को। जो 13 और 14 को होंगे वहां पर इक्वेस्ट्रियन, फेंसिंग, बॉक्सिंग, जिनको शौक है वो उन जगहों पे जा सकते हैं जहां पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ज़्यादातर जानकारी आपको विजिट कतर की वेबसाइट से मिल जाएगा। लेकिन 13th को एथलेटिक्स एट सुहेम बिन हमद स्टेडियम में हो रहा है, तो ज़रूर जाइएगा, मज़े करिएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में नहीं होते हैं, थोड़े थोड़े हल्के हल्के वक्त पे होते हैं। उसके अलावा 35वां दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर हो रहा है जो कि 14 मई से शुरू है यानी कि परसों के बाद 14 तारीख से शुरू है, 23 तारीख तक ही रहेगा। ये रीजन का लार्जेस्ट इवेंट होने वाला है और ये होगा दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जिनको इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, जो बिजनेस में है, तो कतर इकोनॉमिक फोरम हो रहा है 12 मई को यानी कि कल के दिन होगा। ये हाई प्रोफाइल ग्लोबल इकोनॉमिक समिट है जो कि कल से शुरू हो रहा है एट फेयरमोंट दोहा। उसके अलावा म्यूजिक का शौक जिनको रखना है या म्यूजिक देखने का, म्यूजिक को फील करने का जिनको बहुत ज़्यादा दिल करता है, 29 मई अपने घर में वहाँ पर कैलेंडर में निशान लगा लो, 29 मई को कहीं नहीं जाना है। उसके अलावा अपने मोबाइल में 29 मई को आप जो है अलार्म लगा लो, क्योंकि उस दिन आ रहे हैं लकी अली जो कि दोहा में परफॉर्म करेंगे, लेजेंडरी सिंगर हैं, कुछ

0: पांच साल पहले बहुत ज्यादा फेमस हुए थे अपने गाने की वजह से, और ये परफॉर्म करेंगे लाइव। टिकट्स अवेलेबल हैं, आप विजिट कतर की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मजीद जानकारी मिल जाएगी। तो अब वक्त आ गया है सवाल की तरफ बढ़ने का, लेकिन सवाल से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, है ना, मैं भी तो जान ले लूं यार, है सांस ले लेते हैं, सांस ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं FM 107 पे, सवाल की तरफ बढ़ेंगे और फिर आपके मैसेज सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर, दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

और आपके मैसेज की तरफ जरा सा बढ़ लेते हैं और फिर हम सवाल करेंगे। मैसेज है तौफीक साहब का, सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं तौफीक साहब। फिर ये मैसेज है सरताज का और लिखा है सलाम वालेकुम, 2012 की एक मॉडल बात करा है और लिखा है कि 10,500 कतरी रियाल, ओनली 3 मंथ ड्राइविंग, गियर प्रॉब्लम, एसी लीकेज। अच्छा लियो भाई सरताज, आपने तो हमको ही बेच दी अपनी वाली कार 7,000 रुपए की मिल रही है, बताओ किसी को लेनी है तो नेक्स्ट कार तीसरा नंबर का जो कार है 21 मॉडल की है। अरे मेरा भाई पूरा, अरे अरे यहाँ और भी वेबसाइट है। सरताज साहब ने क्या तरीका ढूंढा है अपनी कार बेचने का, मुझे लगता है कार बेचने का काम है इनका लेकिन बुद्धि देखो, मैं बड़ा खुश होता हूँ ऐसे लोगों से कि अपॉर्चुनिटी जहाँ पर है वहाँ अगर आपने सही समय पे अपॉर्चुनिटी नहीं ली। लेकिन आप ये जो लिख रहे हैं, मेरे पास भी अपनी अपॉर्चुनिटी थी कि इस मैसेज को डॉट डॉट करके पढ़ूँ जो मैंने मैसेज पढ़ा है वो किसी को समझ में नहीं आएगा। अब वो अपना QR का स्कैनर भी खोल लेगा जब भी वो नहीं पकड़ पाएगा कि फजील ने बोला का, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं यानी कि जो डिटेल्स हैं कार की वो तो मैंने पढ़ी नहीं जानबूझ के नहीं पता चला यहाँ पर हम पढ़ देते सब आ जाते भजील भाई 7,000 की कौन सी कार है यार, मेरे को दिखाना जरा ओके मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा आगे। नसीम भाई कहते हैं कि मियाँ फज्जू जी भाई लिखते हैं कि कार की बात हो रही है या कुछ और, घर भी जाना है नसीम साहब आपको किससे मोहब्बत है? अच्छा आप जो समझो उसी की बात हो रही, मतलब आप पहली साइकिल भी हो सकती है मोहब्बत यार, मैं सिर्फ पहली कार के बारे में बात थोड़ी कर रहा हूं, पहली बाइक हो सकती है मोहब्बत है नहीं मैं देखो अपनी जो पहली बाइक मैंने ली थी उससे भी मुझे मोहब्बत है, शैम्पू लगा लगा के धोया है मैंने उसे यार, मतलब सही में बहुत ज्यादा। उसकी जो धुलाई होती थी मोस्टली मैं करता था, बस तब लेकर जाता था धुलाई वाले के पास जब मेरे पास अपना वक्त नहीं है या कहीं और शहर में दूसरे शहर में। ठीक है चलो सलाम अलैकुम यूसुफ भाई क्या कहते हैं, सलाम वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी मंडे इवनिंग फजील, मैंने अपनी पहली कार डैश सेल की थी 2016 में अपने कंपनी के एम्प्लॉय को, सेल के बाद से अभी तक मैंने अपनी कार नहीं देखी, कभी भी नहीं। क्या बात कर रहे हैं, तो आपने एक्चुअली कार नहीं खोई है, आई गेस एम्प्लॉय खो दिया है, मतलब अगर आपकी कंपनी का एम्प्लॉय था वो और आपको अभी तक नहीं दिखा है या आपकी कार नहीं दिखी है तो आपको शक नहीं होता कार है कहीं और एम्प्लॉय में, यू नेवर नो भाई, अब इतनी बड़ी कंपनी कोई नहीं है, मुझे अपने शहर में यानी कि कतर में 2 बार दिख गई, आपको अपनी कंपनी में नहीं दिखी तो आई डाउट। आगे लिखा है अभी मेरे पास ये दूसरी गाड़ी है बस अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रैकेट में गाड़ी का नाम भी लिख दिया है। यूसुफ साहब इस वाली बात का तो जवाब चाहिए भाई, वैसे ये आज का सवाल है नहीं ठीक है खान साहब ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम सर, माय फर्स्ट कार और मैं अभी कतर में आया हूँ सर, ये 2026 की है, अभी मैंने लाइसेंस लिया है और 1 महीना हो गया लाइसेंस स्टार्ट।

हो चुके हैं इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे, और एज है 22 साल। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, आपकी कार को लंबी उम्र दे, और आप दोनों की लंबी इतनी उम्र करे कि कभी भी आपको अपनी कार को किसी और के हाथ ना देखना पड़े। मतलब सड़क पे चलती हुई सेकंड हैंड जब आप बेच दे तब बैठे, वैसे तो आपके हाथ में ही रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी कार होती है भाई, और पहली कार की मोहब्बत अलग ही होती है। आगे बढ़ते हैं हल्के हाथ से। पाकिस्तान फैसलाबाद से, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, ग्रेट शो, कीप इट अप टू यू एंड की योर टीम, अमेजिंग एफएम 107। कासिर अब्बास, कासिर शहबाज फ्रॉम पाकिस्तान फैसलाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बस आप लोगों के ये मैसेज ही हमारे दिल को यू नो रोशनी से भर देते। क्या लाइन है फजील मियां यार, तुम शायरी क्यों नहीं करते मेरा भाई? रोशनी से भरते हो भैया, गदर। लिखा है यूसुफ साहब ने, मुझे पता था ये आप पूछेंगे। सेल के बाद कुछ अरसे बाद वो चला गया अपने कंट्री किसी और को सेल करके। हाँ ये हुआ है मैटर, आपने अधूरा मैटर बताया था, बाकी पूरा भी कर सकते हैं। चलो अब आप आज के सवाल पे आ जाते हैं। आज का सवाल क्या है एफएम 107 पे, ये रहा आज का सवाल।

7 पे वाइप थ्रू 5:38 और आज का सवाल ईगो पे है क्योंकि आज है खास दिन, आज है दुनिया में मनाया जाने वाला वर्ल्ड ईगो अवेयरनेस डे। ईगो की अवेयरनेस होना बड़ा ज़रूरी है यार, ये मैंने अपने लाइफ में बहुत देर में सीखा, क्योंकि जब तक नहीं थी अवेयरनेस तब तक मैं अपने बॉस से, अपने बाकी लोगों से लड़ लेता था। फिर बाद में पता चला कि कई बार ये आपका ईगो आपको यू नो नुकसान पहुँचा सकता है, तो अब मैं नहीं लड़ता अब मैं सीधा हो गया हूँ। लेकिन यू नो जब तक आप कॉरपोरेट लाइफ में, अपने काम वाले ज़िंदगी में नहीं आते हैं, अपने अपने घर वालों के आसपास, अपने रिश्तेदारों के आसपास, अपने दोस्तों के आसपास रहते हैं, अपने स्कूल में रहते हैं, अपने ट्यूशन में रहते हैं, तब तक तो आपका ईगो चल जाता है। लेकिन जैसे ही आप यू नो और अनजान लोगों से मिलते हैं, जहाँ पर आपके दोस्त नहीं हैं, एम्प्लॉयज़ से मिलते हैं, जहाँ आपके बॉस होते हैं, फिर आपको अपने ईगो की अवेयरनेस या यू नो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ ईगो है, किस बात को मैं ईगो पे ले रहा हूँ। सो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमें समझ में आने लग जाती हैं और फिर हम समझ जाते हैं कि कहाँ ईगो है, कहाँ मतलब की बात है, कहाँ हमारे बेमतलब की बात है, कहाँ पर हमारा इंडल्ज होना ज़रूरी नहीं है और कहाँ ज़रूरी है, है ना। तो कभी कभार ईगो बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, उस पर भी हम बात करेंगे। बट आज का सवाल क्या है इस पर जरा आते हैं। आज का सवाल यह है कि आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा, लेकिन क्या ऐसा छोटा एक्शन है लोगों का या आपका जो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन लोगों के जो ईगो है वो बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। व्हाट आर द स्मॉल एक्शन ऑफ अदर्स ट्रिगर्स द पीपल्स ईगो। लोगों के जो ईगो हैं वो बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं, जबकि छोटी छोटी बातें होती हैं, वो क्या हैं इस पर हम बात करने वाले हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-22-107, बताइएगा। और ऐसा अक्सर होता है कि छोटी सी बात होती है, इवन हमारे घरों में भी बड़ी छोटी सी बात होती है, कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं होता है, चाहे वो पानी पिलाने को लेकर हो, चाहे वो मेरे साथ एक बार किस्सा हुआ था, और ये एक स्कूल में आई गेस 2017 या 18 की बात है, तो एक कॉलेज में गए थे, हाँ स्कूल नहीं था, कॉलेज में गए थे, तो एक दोस्त था मेरा जो वहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहा था, क्योंकि हम एक स्कूल में परफॉर्म कर रहे थे, वहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे थे। और मैंने उससे कहा कि तुम फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हो तो तुम्हारे हाथ में ना चाय की कप है वो अच्छी नहीं लग रही, तुम मुझे दे दो फिर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा दो, क्योंकि वहाँ का मैनेजमेंट वगैरह एकदम इज्जत दे रहा था, चाय ले लीजिए, ये ले लीजिए। तो हम लोग ने चाय उठा ली, तो उतने में सारे जो बच्चे थे वो सब फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे थे। उतने में मैंने जब उसको कहा कि चाय की कप मुझे दे दो क्योंकि फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आ रही, उसने मना कर दिया, अरे तुम पी लोगे। ये एक सिंपल जोक था बट फजील भाई के ईगो पे लग गई, क्योंकि वहां पर बच्चे थे आई गेस। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है, तुम अपना क्लिक करा लो। अब उसको कुछ देर बाद एहसास हुआ कि हाँ यार फोटोज अच्छी नहीं आ रही हैं।

चाय का कप फजील को दे देता हूँ, उनने कहा लो पकड़ो, मैंने कहा नहीं अब तो मैं नहीं लूंगा। उसके ईगो मेरे ईगो दोनों हर्ट हो चुके थे हम। अब ऐसे मामले में मुद्दा ये हुआ कि वो कह रहा नहीं नहीं तुम ही पकड़ोगे, मैंने कहा नहीं मैं नहीं पकड़ूंगा। अब जब उसने ये कहा कि तुम ही पकड़ोगे, तब तो यार अब आप ही बताइए, इस जगह पे अगर आप होते, कोई आपको ये कह दे अब तो चाय की कप तुम ही पकड़ोगे, तो जो छोटा वाला ईगो था वो तब तक बड़ा हो चुका था। मैंने कहा अब तो मैं नहीं पकड़ूंगा। उसने फिर ये बात दोहराई, फिर मैंने नहीं पकड़ी, उनने चाय वहीं पर फेंक दी। मामला इतना आगे बढ़ गया कि उन्होंने फोटोज वगैरह क्लिक कराए, हमारी उनकी बातचीत खत्म हो गई। और फिर ये मुद्दा थोड़ा सा और बढ़ गया। खैर उस बात पे नहीं आते, लेकिन शुरुआत छोटी सी बात थी कि भाई मेरे को चाय का कप दे दो, मैं मेरा यहाँ पर ईगो नहीं था, वर्ड उनने नहीं दी। जब उनने ये कहा कि अब तो तुम ही को पकड़ना पड़ेगा, इतने लोगों के सामने, ईगो ट्रिगर कर गया। तो ये मामला था। अगर वो पहली बार कह देता मैं पहली बार पकड़ लेता, जब वो उसने कहा था कि अरे सही में फोटोज अच्छी नहीं आ रही हैं, ये चाय का कप पकड़ लो, तो मैं शायद अगर पकड़ लेता तो इतनी बड़ी बात नहीं होती थी। लेकिन आज वो मेरा अच्छा दोस्त था, कल आज सुबह ही उससे बात हुई है। सो ये जो चीज़ें हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा असर करती हैं और हम लोगों के ईगो को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं। लेकिन हमें अवेयरनेस होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, बस इतने पर हमारा रिएक्शन भी बड़ा लिमिटेड होना चाहिए। तो इसी पर आज का सवाल है 666-22-107, इस पर बताइए कि क्या छोटे से स्मॉल एक्शन हैं जो लोगों के ईगो को ट्रिगर कर देते हैं, लोगों के ईगो को बढ़ा देते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 6662217। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस कुछ ही देर में और आपके मैसेज दिल से देसी।

0: दोस्तों, समंदरी सफर के दौरान ऑयल प्लेटफॉर्म से दूर रहना कानून की पाबंदी और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आवाम को याद दिलाती है कि वो समंदर में मौजूद ऑयल प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो बड़े हों या छोटे, उनके करीब जाने से परहेज करें, ताकि आप किसी भी कानूनी कार्रवाई का शिकार ना हों। 2004 के कानून नंबर 8 के तहत, जो कि मैरीटाइम पेट्रोलियम और गैस इंस्टॉलेशंस की हिफाजत से मुताल्लिक हैं, आर्टिकल नंबर 3 के मुताबिक कोई भी अनऑथराइज्ड शख्स किसी भी समुद्री फैसिलिटी के 500 मीटर के दायरे के अंदर नहीं जा सकता है। और इसी कानून के आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है, समुद्री फैसिलिटीज के 500 मीटर के अंदर मछलियां पकड़ना या फिशिंग गियर छोड़ना मना है। मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में वाजे किया है कि इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त जुर्माने और कैद की सजाएं दी जा सकती हैं। आपका ऑफशोर पेट्रोलियम इंस्टॉलेशंस के मुख्तलिफ ऑक्सिलरी यूनिट्स के करीब ना जाना आपको कानूनी कार्रवाइयों से महफूज रखता है। FM 107 आपसे कहता है कि अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए हमेशा होशियार रहिए।
1: हेल्थ फॉर ऑल। कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी 2030 कहता है हेल्थ फॉर ऑल। और हमारे इस खास शो में बात होगी सेहत से मुतालिक मुस्तनिद मालूमात और जिंदगी बचाने वाली आगाही की। सुनिए प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ हर जुमेरात शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी। मोबाइल हाथ में है लेकिन फैमिली पास होकर भी दूर हो चुकी है। क्या आप भी चाहते हैं कि घर के रिश्ते फिर से मजबूत हों और फैमिली के साथ गुजारा वक्त फिर से कीमती लगे? तो सुनिए फैमिली ओरिएंटेड शो जो दिलों को करीब लाता है, संडे से थर्सडे शाम 4-5 आरजे महविश खान के साथ। डियर फैमिली शो, जो रिश्तों को जिंदा रखता है।
0: वेलकम टू पिच परफेक्ट शो।
2: FM 107 की जानिब से सन 2026 का एक नया स्पोर्ट्स प्रोग्राम।
0: ये वो लाइव शो है जहां क्रिकेट की हर डिलीवरी, हर शॉट और हर फैसला होता है बिल्कुल पॉइंट पे।
2: तो तैयार हो जाएं एक्सपर्ट एनालिसिस, ताजा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प क्रिकेट कहानियों के लिए।

0: पंच परफेक्ट,
1: क्योंकि यहाँ क्रिकेट है बिल्कुल परफेक्ट।
0: सुनिए हर ट्यूसडे और थर्सडे जुड़ जाइए हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन और आरजे फजील के साथ
1: दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: यार क्या ये बात सच है कि जिससे लड़ाई होती है उससे दोस्ती बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, आप एकदम जिगरी यार बन जाते हैं, है ना? ये मैंने नोटिस करा है, मेरी जिससे जिससे लड़ाई हुई है बाद में वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। मतलब अभी वाला तो हिसाब नहीं है, लेकिन पुराने वक्त में यानी कि आज से 10 साल पहले, और अगर वो दोस्त के लायक है, अगर उसका भी दिल साफ है, कभी कभार होता है मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, तो जिससे मेरी बहस हुई है उसके बाद वो अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन वो वाली बात भी होनी चाहिए ना कि उसके अंदर नेक दिली है। अब तुम्हारे अंदर जैसे वो होता है ना सांप के अंदर थैली जहर वाली है तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलो 5:48 स्टूडियो की घड़ी में जल्दी से आप लोगों के मैसेज लेते हैं। आफ्ताब भाई ने बहुत ही अच्छी एक बात कही है कि सबसे पहला जो ईगो ट्रिगर होता है वो होता है पॉलिटिशियंस का या फिर VIP लोगों का, जब कहीं लाइन लगी हो और उनको कह दो वेट करने को। अरे यार मैं ये वाला तो कितने लोगों के साथ हुआ होगा, आप कहीं स्कूल की लाइन लगी हुई हो, आप किसी बड़े आदमी को कह दो जो एकदम भारी वाली कार से आए, क्योंकि हमारे स्कूल में बच्चे आते थे सिर्फ साइकिल से, एक दो बच्चे आते थे कार से, अगर उनके पापा को कहीं कह दो फीस की लाइन लगी हो, किसी चीज़ की लाइन लगी हो, उनके पापा को कह दो बस थोड़ी देर वेट, उनका मुँह सड़ जाता था मेरा भाई। मतलब उनका ये था कि फीस तुम हमसे 3,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लो लेकिन लाइन पे मत खड़ा करो। और ऐसा तो कई बार होता है, आप कहीं सलून में हो, किसी और जगह पे हो, कहीं लग्जरी जगह हो, कहीं रेस्टोरेंट वाली जगह हो, अगर उनको VIP लोगों को कह दो कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अरे भैया ऐसा मुँह, अरे पता नहीं कौन सा ईगो होता है सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों का ईगो ट्रिगर होता है। उसके अलावा एक और ये मैसेज है, सलाम वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई कैसे हैं, जाजेब इनका नाम है, और ये कहते हैं कि अच्छा हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है, ऐसे लोग जो रोड पे चलते हैं अगर आप बगल से गलती से ज़्यादा करीब से निकल जाए या स्पीड से निकल जाए, कुछ लोगों का होता है ये, आपको पता भी नहीं होता कि रोड पे किसका ईगो है किसका नहीं, किसका ईगो हर्ट हो जाएगा, वी नेवर नो। तो इतनी छोटी सी बात होती है कि अगर उनको आप ओवरटेक कर लें तो वो या उनका ईगो ट्रिगर हो जाता है, उनके पैर और उनके एक्सेलरेशन में ज्यादा मोहब्बत बढ़ जाती है। मतलब बिल्कुल सही बात है कि कार कोई लेकर चल रहा हो मोस्ट, यानी कि लेफ्ट लेन में एकदम हाई स्पीड पे वो बंदा चल रहा हो, गलती से आपकी स्पीड अगर उसकी 120 है आपकी 121 है, तो उनका मूड जो है वो खराब हो जाता है। ये 3 Idiots के वायरस की तरह है, जिनको अच्छा नहीं लगता कोई इनसे तेज साइकिल चला ले। क्या खून सवार रहता है, आप 121 पे चला दे वो 120 पे उनकी 122 हो जाएगी, और फिर वो आपकी तरफ नजर मार के देखते भी हैं कि अच्छे उनसे ज्यादा तेज चला रहे, उनको बुरा लग जाता है, ईगो ट्रिगर हो जाती है। लेकिन जब भी आप रोड पे रहें दोस्तों, कितना बड़ा भी ईगो हो हमेशा थोड़ा धीमा करके रखें। मेरा एक दोस्त था, उसका एक दोस्त था, वो बताता था भाई इसके साथ गाड़ी में बैठने में बहुत डर लगता है। मैंने पहली बार सुना था, अच्छा ये भी होता है किसी के कार में बैठने में डर भी लगता है, कार तो सबसे सेफ जगह है, क्योंकि हम लोग बाइक वाले थे ना बाइक और साइकिल वाले, तो उसने कहा भाई बहुत डर लगता है। किस बात का डर, कहता यार इससे कोई भी आदमी अगर आगे निकल जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा उलझन होने लगती है, तो होता नहीं कुछ लोगों की मैस्कुलिनिटी इतनी ज़्यादा हाई होती है, उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई हो रहा होता है कि उनको बर्दाश्त नहीं हो पाता है कोई उनसे आगे कैसे निकल गया। तो कहता भाई कोई भी आगे निकल जाए, अगर इसने गाड़ी धीमी करी कोई सामान लेने के लिए, उत्ते में अगर कोई आगे निकल जाए तो इसका ईगो ट्रिगर हो जाता है, ये सामान छोड़कर उसको पिछाड़ने में लग जाता है, और कई बार तो ये बहस करने लग जाता है कोई बाइक वाला आगे निकल गया कोई कार वाला, और फिर सोचो इंडिया में, यहाँ तो फिर भी है कि ना आप आगे आगे निकल गए, आपने हाथ उठा दिया सॉरी हो गया मामला, आपको पता है कि हाथ उठाना इज इक्वल टू सॉरी, या फिर हंस के आपने सर थोड़ा नीचे कर दिया इट्स ओके कि जेंटल मतलब है इसका। इंडिया में तो भाई कोई कुछ भी, कोई गुस्सा कर जाए और गुस्से में हाथापाई हो जाए, और उनकी हुई भी है, तो ऐसे लोगों से तो बहुत ज़्यादा मैं बच के रहता हूँ, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यार इस देश में। ओके आगे ये मैसेज है अरबाज खान का, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरी बहन का ईगो है कि वो बड़ी है तो वो हर बात में सही है और मैं नहीं। ये वाला आपने पेरेंट्स वाला भी बता दिया इसी में तो। पेरेंट्स का नहीं दिखा, अरे मैं बड़ा हूँ जो बता रहा हूँ वो सुना करो, अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब तुम्हें समझ में। एक हर चीज इन लोगों की यही होती यार, अगर ये पेरेंट्स हम लोग से नहीं जीत पाते ना लफ्जों में, तुम बड़े होगे तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारे बच्चे होंगे तुम्हें पता चलेगा, हर बात पे वही घुमा घुमा के यार। और ये बातें बेल्ट की तरह लगती है सटाक कि तुम्हारे बच्चे होंगे पता चलेगा। और सच बात यह है कि हमारे बच्चे जब हो रहे तो हमें सही में पता चल रहा है, और सिर्फ ये नहीं पता चल रहा है। अच्छा, हमारा वाला क्या था मैटर, क्या हमने अब्बा से बात करी, अब्बा ने जो डांट के कहा हमें कर लिया। अब जब हमारा मौका आया डांटने का, तब तक 999 जैसा कुछ आ गया। ए बच्चे अब नहीं सुधर रहे यार, अब ये बच्चे हम ही लोगों को गियर में ले रहे हैं भाई, पहली गियर पे एकदम इनने सूतना शुरू कर दिया बच्चों ने। खैर, बड़े बड़े शहरों में। एक और ये मैसेज है किस भाई का, अरबाज। अच्छा, ये दूसरे वाले अरबाज है। अस्सलाम वालेकुम सर, ईगो की वजह से तो मैंने 10 से 20 अपने दोस्तों को कोई है और बहुत सारे दोस्त हैं, दोस्त खोए हैं। अच्छा, खोए हैं, ओके। 10 से 20 दोस्त खोए हैं और फिर लिखा है बहुत सारे दोस्त खोए हैं, तो पहला वाला दोस्त या दूसरा वाला दोस्त, आप समझ ली क्या है, ठीक है। बाकी लिखा है कि 60 तो खोए होंगे, 50 से 60 दोस्त खोए ईगो की वजह से। सर, मैं अकेला पड़ गया हूँ, लेकिन अब इतना ईगो नहीं है, क्या बताऊँ। ईगो है ना कि, अच्छा अभी भी ईगो है कि क्या बताऊँ। देखो भाई, मैं तो यही कहूँगा कि सिंपल आपको तभी समझ में आता है जब आप अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास के करीबी लोगों को खोते हैं, तब आपको एहसास होता है कि ये ईगो किसी काम का नहीं है। ईगो में एक्चुअली आपका ही नुकसान ज़्यादा है। तो आपको इसीलिए आज वर्ड यू नो ईगो अवेयरनेस में बात ही यही है कि आपको एहसास होना चाहिए कि क्या ईगो है, यानी कि हम सिर्फ अपने दिल पे बात ले रहे हैं बगैर किसी खास और ठोस वजह के, और कुछ बातें ऐसी हैं जो सही में ईगो पे लेने वाली होती हैं लेकिन कई बार छोड़ देने वाली होती हैं। कुछ ईगो ऐसे होते हैं जिनको आप मतलब अपने ईगो पे ले लिया, अगर कोई बात अगर ऐसी है जिसको अगर आपने अपने ईगो पे ले लिया तो उसे लेट इट बी, जान दो ये वाला कर लेना चाहिए। और अगर है ऐसा कि नहीं यार ये तो अपने अहम पर बात आ गई है, तो उसका बड़ा कैलकुलेटिव मेजर करके आप एक फैसला लें जो आपके हक में सही हो, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी मेंटालिटी या आपके दिमाग पर कोई चीज चढ़ने लगती है और वो चीज नहीं होना चाहिए। ऐसे में आपकी हेल्थ जरूरी है, तो ऐसी कोई भी चीज जो आपकी ईगो को इस कदर हैम्पर कर दे कि आपके आपके अहम को और आपके दिमाग को परेशान करे, आपके बॉडी को परेशान करे, आपके हेल्थ को परेशान करे कोई बात, तो ऐसे में सही फैसला बड़ा जरूरी है जिसमें आपका फायदा हो, ये मेरा अपना मानना है। बाकी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आप लोगों के मजीद मैसेज FM 107 में। दिल से देसी।
1: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्त उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामने कराम, दिलों की इस्लाह और उम्मत की वहदत के हवाले से बहुत ही एक अहम दुआ, इसका जिक्र हदीस में है। اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا, اے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور ہمارے آپس کے تعلقات درست فرما۔ یعنی دراصل ان دو جملوں سے یہ صرف کوئی جذباتی دعا نہیں مقصد ہے, بلکہ یہاں فرقہ واریت کا علاج, گھریلو جھگڑوں کا علاج, جماعتی اختلافات کا علاج, امت کی کمزوری کا علاج,

क्योंकि जब दिल जुड़ जाते हैं तो लश्कर बन जाता है, और जब दिल टूट जाते हैं तो उम्मत बिखर जाती है। इसी तरह जो है ना, हिदायत, नजात और अखलाकी पाकीजगी इसके लिए बेहद ज़रूरी है ताकि उम्मत जुड़ कर रहे, एक उम्मत बन जाए। इसी वजह से दुआ का अगला जो हिस्सा है उसमें अल्लाह से ये बात मांगी जा रही है कि अल्लाह हमें हिदायत नसीब फरमा, सलामती के रास्ते दिखा, वहदीना सुबुल सलाम, वनजीना मिन अज़्ज़ुलुमात इला नूर, हमें हर अंधेरे से रोशनी की तरफ ले आ, وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, हमें खुले और छुपे हर फहश हर गुनाह से बचा ले। सामिन किराम, हिदायत, नजात और हिफाजत, ये तीन स्टेप्स हैं। रास्ता दिखाना यानी हिदायत, नजात यानी गंदगी से निकालना, और गिरने से बचाना कि गुनाह के आलूदगी से हम अपने आप को आलूदा न करें और किसी खड्डे में गिर न जाए और फहश फाहिशी के मुर्तकिब न हो। तो इस वजह से जन्नबनल फवाहिश मा ज़हर मिन्हा मा बतन, हमें दूर रख इन फहश फाहिशी, चाहे वो खुले हो चाहे वो छुपे हो, हर किस्म के फहश फाहिशी से हमें दूर रख मेरे मौला। तो हक दिखाया जाए, बातिल से निकाला जाए और दोबारा गिरने से भी बचाया जाए, ये है हमारी तमन्ना, हमारी दुआ अपने रब के दरबार में। मज़ीद ये भी तलब है कि जो नेमतें हमें दी गई इसमें बरकत अता कर। हाँ, तो ये बहुत ही एक अहम एक हिस्सा है, चूँकि अल्लाह सुब्हानहु ताला अगर हमें चीज़ों में बरकत नहीं देंगे, वो बरकत ये जो रूहानी ग़िज़ा है, ये चीज़ें अगर नहीं रहती तो हमें जो है ना अपने काम अपने किसी भी उमूर में हमें इत्मीनान नहीं मिलेगा। बरकत है तो रहमत है तो इत्मीनान है तो सब कुछ है, बरकत नहीं है तो बंदा हर वक्त मारा मारा फिरेगा। और इसी वजह से इस दुआ का अगला हिस्सा बरकत की तलब के हवाले से है कि अल्लाह बरकत दे, बारिक लना फी अस्माइना, हमारे कानों में, व अबसारिना, हमारी आँखों में, व क़ुलूबिना, हमारे दिलों में, व अज़्वाजिना, हमारे घर वालों में, व ज़ुर्रियातिना, हमारी औलादों में। यानी बरकत दे इन तमाम चीज़ों में, यानी बंदा सिर्फ यहाँ नेमत नहीं मांग रहा बल्कि नेमत का सही इस्तेमाल भी मांग रहा है कि जी बरकत दे, यानी इसको जो है ना सही तरीके से इस्तेमाल करने की तौफीक दे। तो यही बरकत का मुजाहरा है। हाँ, बरकत है या जहमत है, नेमत है या जहमत है, ये चीज़ें तब समझ में आएगी ना जब अल्लाह की नेमतें हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अगर आँख हो मगर हराम देखे तो ये वबाल है, दिल हो मगर हसद करे तो ये वबाल है, औलाद हो मगर नाफरमान तो ये आजमाइश है। इसलिए मांगा गया कि नेमत भी दे और इसमें बरकत भी दे मेरे मौला। और आगे तौबा की तलब है कि मेरे अल्लाह, हे मेरे मौला, तो हमारी तौबा कबूल फरमा, व तुब अलैना, व जअलना शाकिरीन लिनअमिक, मुस्नीन बिहा अलैक, काबिलीन लहा, व अतमिमहा अलैना। यानी अपनी नेमतों का शुक्रगुजार बना दे, तेरी नेमतों पर तेरा सना खां बना दे। यानी ऐसे भी तो लोग होते हैं जो सिर्फ नेमतों के बावजूद शिकायत करते हैं। तो हमें या रब वैसे न बना बल्कि तेरी नेमतों पर तेरा सना खां बना दे, काबिलीन लहा, हमें नेमत को कबूल करने वाला बना दे, वत्मिमहा अलैना, नेमतों को हम पर मुकम्मल फरमा दे। यानी नेमत छिन न जाए, गुनाहों से बर्बाद न हो, आजमाइश बनकर वबाल न बने बल्कि अंजाम भी खैर पर हो। तो इस तरह दुआ के चारों जुमलों में हम गोया ये कहते हैं, मजमूई मफहूम ये है इस दुआ का कि या अल्लाह हमें नेमत दे भी, शुक्र भी सिखा, हमें गुरूर से बचा, दिल से भी राजी रख और इस नेमत का अंजाम भी जन्नत बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। प्रोग्राम आज की दुआ के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ़ुज़्ज़मान को
آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: हाँ जी, टाइम चेक कर लीजिए। FM 107 के स्टूडियो की घड़ी में 6:02 और आप सुन रहे हैं ये खास शो जिसका नाम है ड्राइव थ्रू।

0: हाँ जी हबीबी, तो 6:03 स्टूडियो की घड़ी में, और आज तो मुद्दा थोड़ा अलग से निकल रहा, लेकिन ठीक है इसी पर रहेंगे। सवाल ये था कि आपका या किसी का भी छोटी छोटी बात पे ईगो जो है वो एकदम से ट्रिगर कर जाता है, तो वो कौन सी छोटी बातें हैं जिसमें लोगों का ईगो बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रिगर कर जाता है। तो एक और शख्स है, रहमान भाई ने ये वाला मैसेज किया और ये बिल्कुल सही है। उन्होंने लिखा है, टेलिंग समवन हु जस्ट बॉट अ न्यू आईफोन दैट यू नो अ गाय के गफ्फार मार्केट में सस्ता फोन मिल जाता है, तुमने अभी जो फोन खरीदा ये महंगा है। हमारी तरफ एक मार्केट है और इत्तफाक देखो उसे कहते हैं रहमानी मार्केट, जो कानपुर के हैं या जो कानपुर के आसपास के उनको पता है रहमानी मार्केट बहुत ही बड़ी है। और रहमान भाई ने ये मैसेज लिखा है, रहमान भाई आपके नाम से हमारे कानपुर में रहमानी मार्केट चलती है। और कोई भी शक ऐसा होता ना कि जो फोन वगैरह खरीद के लेकर आए उसको ये कह दो, अरे तुमने 1,00,000 का फोन खरीद लिया है, अरे यार बड़ा बेकार, तुम्हें 5,000 कम में दिलाते मेरा भाई, तुम रहमानी मार्केट से क्यों नहीं हमको बताते, मेरा दोस्त वहां है। अरे उनको कौन बताए, उनको कौन बताए, ये तुम बात बोल रहे हो उसका ईगो ट्रिगर हो रहा है इतनी देर में, कहीं उसका खून वून खोल गया तो मोबाइल के अंदर ही एक जो है वो रखा होता है पेन, ठीक है। उसी पेन से जो है कहीं तुम्हारे पेट का ऑपरेशन ना कर दे, इसलिए दूर रहो, ये सब बातें मत बताओ। ऐसे में भी ईगो बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाता है, मेरा खुद भी ईगो ट्रिगर हो जाता है जब कोई ये कहता है अरे महंगा ले लिया। मैं तो सस्ता दिखा देता, अरे भाई रहने दो तुम। ये बात भी बिल्कुल वाजिब है। उसके अलावा एक और भाई है, मोइन अहमद ने बहुत अच्छी बात लिखी है, फजील भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, सिंपल है लाइफ में ट्रांसपेरेंट सब्र के साथ रहने का, जब कोई ज़बरदस्ती नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो ईगो ट्रिगर हो जाता है। बॉस को पता है कि मैं सही हूँ, बट जस्ट बिकॉज वो बॉस है इसलिए उसको ये एहसास होता है कि मैं इसको बोलूँगा या मैं इसको रियलाइज़ करूँगा। और ये बात बॉस के अंदर होती है, कुछ बॉस के अंदर ये ईगो की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। और खैर इस पर ज़्यादा क्या ही बोले। और आगे लिखा है कि बहुत सारे हैं भाई, मैं तो गिव अप कर देता हूँ और वक्त पे छोड़ देता हूँ, टाइम इज़ द बेस्ट रेमेडी। लंबे मैसेज के लिए माजत भी लिखा, नहीं मेरा भाई बहुत सही आपने बात लिखी है मोइन साहब। और देखो मैं ये कहूँगा कि हमें हज़ारों लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं, देखिए ईगो आपको नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं ईगो नहीं दिखाना चाहिए, बहुत गलत बात है। मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत बूढ़ी सोच है कि ईगो नहीं दिखाना चाहिए, मैं इसके एकदम खिलाफ हूँ। देखो हर शख्स अपने मर्जी का सोच सकता है ना, लेकिन होता क्या है कि आप कई बार ईगो को कंफ्यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो एक होता है पॉजिटिव ईगो, एक है भाई नेगेटिव वाला। नेगेटिव ये है कि आपको किसी ने लाइन पे खड़े होने को कह दिया, आपका ईगो ट्रिगर हो गया। नेगेटिव ईगो वो है जब आपको किसी ने कह दिया कि आप कार चला रहे हैं मिसाल के तौर पे, और आपको किसी ने ओवरटेक कर लिया, आपका ईगो ट्रिगर हो गया। ये सब नेगेटिव, ये बच्चों वाली बातें हैं। पॉजिटिव वो है मिसाल के तौर पे कोई ऐसी बात है जो सच में आपके दिल को आपके दिमाग को परेशान कर रही है, और इस हद तक परेशान कर रही है कि आपकी हेल्थ खराब हो रही है, डिटेरॉइट हो रही है, और आप परेशान हो रहे हैं, आपके बॉडी पर असर है, आप मतलब हर एक चीज़ हो रही है। और क्योंकि क्या है ना कि कहीं ना कहीं एक कोने में हमें हमारी इज्जत तो प्यारी होती है, और जब इज्जत प्यारी होती है तो ईगो हर्ट होना एक बात हो जाती है। इसीलिए बड़ा ज़रूरी है कि ईगो में और पॉजिटिव ईगो और नेगेटिव ईगो में हमें फ़र्क समझना बड़ा ज़रूरी है। और इसीलिए आज वर्ल्ड ईगो अवेयरनेस डे भी है कि हमें एहसास तो होना चाहिए। तो जब कोई बात इस हद तक परेशान करने लगे कि आपको दवा की ज़रूरत पड़ जाए, नींद ना आए, आपके दिमाग को परेशान करता रहे, तो ऐसे में अपने ईगो को आगे रखना चाहिए, पॉजिटिव ईगो को, है ना। अब ऐसा नहीं हो कि आप गाड़ी चला रहे हो और कह रहे हैं यार इसने ओवरटेक कर लिया, मुझे दवाओं की जरूरत है, अब ये मत करने लगे। देखिए कुछ पॉजिटिव जो ईगो है उससे आपके फायदे हैं। सबसे पहला ये इंटरनल बॉडीगार्ड होता है, ये ईगो आपका प्राइमरी सर्वाइवल मैकेनिज्म है, ये बाउंड्रीज को सेट करता है और लोगों को बताता है कि इस बाउंड्री के अंदर आने की जरूरत नहीं है, मेरा पर्सनल स्पेस है, और किसी को भी हक नहीं है आपसे बदतमीजी से बात करने का। लेकिन ईगो बहुत स्मार्ट भी होता है दोस्तों, हमारा ईगो भी और सोसाइटी में जो ईगो है बहुत ज्यादा स्मार्ट है। नेगेटिव ईगो के बारे में बात कर रहा हूं, वो इतना स्मार्ट है कि कमजोरों पर गुस्सा या ईगो जो है ना हम बहुत आसानी से दिखा लेते हैं, लेकिन जो हमसे ज्यादा ताकतवर है ना उन पर ईगो नहीं दिखाया जाता। तो ये इसकी स्मार्टनेस है। खैर, जो पॉजिटिव ईगो है उस पर अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट भी करती है, आपके आइडेंटिटी, आपके यू नो एम्बिशन को आपको पावरफुल बनाती है। मिसाल के तौर पे आपने कोई काम किया, आप फेल हो गए, लेकिन आपको पता है ये आपकी स्किल है, आप और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं किसी काम को करने में जब आप फेल होते हैं। तो ये जब ईगो पे लगती है ना कि अरे मैं कैसे फेल हो गया या मैंने कैसे सक्सेसफुली इस काम को कंप्लीट नहीं करा, तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। ये पॉजिटिव ईगो है कि ये काम मैं कर सकता था बट हुआ नहीं, कोई बात नहीं दोबारा करूंगा, ये तो ईगो पे बात आ गई है ना। तो आप दोबारा करते हैं, आप बाउंस बैक करते हैं, आप सही फैसला लेना शुरू करते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ईगो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है भाई जितना हमें इज्जत से जीना इंपॉर्टेंट है। तो कई लोग आते नहीं, देखिए आपको अपना घमंड नहीं करना चाहिए, किसी से ये नहीं करना चाहिए, घमंड तो अच्छा है भाई, नहीं करना चाहिए। अब आप घमंड और ईगो को एक जगह पर लाकर खड़ा कर देंगे तो हम कैसे जिएंगे भाई? ये तो थ्री इडियट की वाली लाइन हो गई यार, हर बात पे अब तुम माँ की साड़ी की बात करोगे तो हम क्या कॉन्वर्सेशन करेंगे भाई। नहीं सही बात है ना। आगे मैसेज पढ़ते हैं। सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, कैसे हैं? आपका नाम नाम तो नहीं लिखा है, एम आई लिखा है, मुंबई की फैन है क्या? नाम बादशाह आई गेस आपका नाम है। ओके, एक और ये मैसेज है, फजील भाई ये चाय का कप था या फीफा की ट्रॉफी थी? अच्छा नहीं भाई, वो चाय का कप ही था मेरा भाई, और यहाँ की बात नहीं है, वो हमारे अपने मुल्क के अपने अपने इंडिया के बारे में बात है। खान साहब कहते हैं when you have plan for off day tomorrow and boss say suddenly tomorrow is urgent client meeting, no excuses। ये तो देखिए, अगर बॉस ये कह दे no excuses, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि अंदर से जो अंदर एक बैठा होता है जो क्राइम पेट्रोल देख देख के क्राइम सीख रहा होता है वो जग जाता है? कि बॉस आज तक मैंने किया तो नहीं है, फिर आप प्याज काट रहे होते हैं किचन में, फिर आप छुरी देखते हैं, बॉस अगर तो वो चीज नहीं आती है कि अच्छा खासा प्लान किया था है, खुशी से घूमेंगे फिरेंगे फैमिली के साथ दोस्तों के साथ, ये प्लान वो प्लान, और बॉस कहते हैं अरे अर्जेंट क्लाइंट मीटिंग है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अंदर से एक सब क्रिमिनल कहता है कि शुरू करा क्या? सारा क्राइम पेट्रोल याद आने लगता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। ये मैसेज किस भाई का है? कार आपने महंगा कर दी, खरीद लिया, सेम कंडीशन की कार सस्ते में दिला देता 10 नंबर से। अरे यार, मुझे ये बात इतने लोगों ने कही है, इतने लोगों ने कही है, मैं बता नहीं सकता हूँ यार, बहुत से लोगों ने कही है ये बात। खैर, बाकी बातें कुछ ही देर में करेंगे। FM 107 पे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस दिल से देसी।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है।

हाल है बीवी 6:25 स्टूडियो की घड़ी में और कल हमने व्हाट इफ में यानी कि क्या होगा अगर मैं बात करी थी अंटार्कटिका अगर पूरी तरह से पिघल जाए। अंटार्कटिका इतना बड़ा है कि कई मीटर पानी जो है वो समंदर का बढ़ जाएगा। अगर ऐसे में ये समंदर का पानी बढ़ गया तो कई ऐसे शहर हैं जिनको सिर्फ पानी पर ही रिलाई करना होगा, पानी में रहना, पानी में घर बनाना। तो ऐसे में ये बोट ही एक तरीका होता है फिर कि बोट में रहे इंसान ना। तो कल मैंने बात भी करी थी कि अगर समंदर का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पानी बढ़ जाएगा तो आप जो जीवन है वो ज़िंदगी सिर्फ नाव पे ही मुकम्मल हो पाएगी। लेकिन क्या होगा अगर, क्योंकि मैंने कल कहा था बात करेंगे कि क्या होगा अगर इंसान हमेशा के लिए सिर्फ समंदर में बोट पर रहने लगे और ज़मीन यानी कि हार्ड लैंड जो है उसका नामो निशान मिट जाए। तो ऐसा होगा तब जब अंटार्कटिका पिघलेगी और अंटार्कटिका पिघल रही है और अच्छी खासी तेजी से पिघल रही है। कल इसके बारे में हमने फैक्ट्स भी शेयर किए थे। लेकिन क्या कुछ होगा, क्या हमारा जीवन, हमारी ज़िंदगी आसान हो पाएगी? चलो समंदर का पानी नहीं सही, नदी का पानी जिसको पिया जा सकता है अगर थोड़ा बहुत काम चला लिया जाए और ऐसी हो सकता है नाव भी बना ले, क्योंकि ऐसे कई कंट्रीज़ हैं जो या ऐसे हमारे अपने कई जानकारी में शहर हैं, हमारे केरला में ऐसे शहर हैं जो बोट हाउस जिन्हें कहते हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से चल रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर हमें बोट में रहना पड़ा तो क्या हमारे पैरों पर असर पड़ेगा, हमारे हाथों पर क्या असर पड़ेगा, हमारी रात की जो देखने की कैपेबिलिटी है क्या वो चेंज हो जाएगी, क्या गिल्स या लंग्स की कैपेसिटी ऐसा हमारे साथ भी होगा कि हमारे भी गलफड़े निकल आएंगे? मे बी। इस पर हम बात करेंगे। विटामिन डी और स्किन कैंसर से जैसी चीज़ों से क्या हमारी ज़िंदगी मुतासिर होगी, हमारा जीवन, हमारी ज़िंदगी आसान हो पाएगी अगर हम बोट हाउस में रहना शुरू कर दे तो, इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम बात करें कुछ लोगों के मैसेज ले लेते हैं क्योंकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये मैसेज है किस भाई का, कुरैशी साहब का, कहते हैं हाय फजील, गुड मॉर्निंग मेरा भाई, गुड इवनिंग मेरा भाई। फिर ये है लिखा एक और शख्स ने, मुबशिर हुसैन, जब इनजस्टिस हो आपके सामने तो बहुत गुस्सा आता है, कोई आपकी टर्न ले या आपका हक खा जाए।

0: बिल्कुल ऐसे में अपने ईगो को साइड नहीं रखना चाहिए, पॉजिटिव ईगो के साथ अपनी बेहतरी के लिए आप काम कर सकते हैं, लेकिन इस पॉजिटिव ईगो में कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे का हक गलती से हम ही खा जाए, है ना। तो पॉजिटिव ईगो बड़ा जरूरी है कि किसी का नुकसान किए बगैर हम अपने बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। आगे ये मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम मेरा भाई। वालेकुम अस्सलाम, नाम है अब्दुल समद। कहते हैं अपन तो एक बस एक ही बात पर ईगो होता है, और वो है कि हम, हाँ अच्छा ठीक है, ये वाला कोई डेंजर वाले नहीं था तो जहाँ ये लफ्ज आते हैं ना मैं थोड़ा सा सीरियस हो जाता हूँ। इन्होंने लिखा है कि हमारा ईगो सिर्फ इस बात पे हर्ट होता है कि हम बीवी से अगर कोई बात कहें वो ना माने उनके तो ऐसे नहीं, अगर वो ना माने तो ऐसा नहीं ऐसा करना है फिर तो बस पूछिए मत। अच्छा ये मतलब हमारा वाला नहीं, उधर वाला गुस्सा है, ये तो हम भी नहीं कर पा रहे ना तो हमारे वही मैं कह रहा हूँ कि एक ज़माना था जब हमारे अब्बा का ईगो हर्ट होता था, जो अब्बा ने कह दिया घर में वही होता था, हमारा जब मौका आया फिर पलट गया, और बच्चों में भी यही हुआ, जब हमारा मौका आया कि बच्चों और ऐसा तानाशाही चलाएंगे जैसे मेरे अब्बा करते थे, वो वाला मौका निकल गया। अब जब ये होगा चलो कोई बात नहीं, अब्बा जैसे घर पर रहते थे अब्बा की तानाशाही चलती थी, अब इस वाले में दिखाएंगे तो फिर नहीं हो रहा है, उसमें हमारा उल्टा नुकसान हो जा रहा है भाई। नहीं आप कुछ बोल कर देखो, उल्टा आपका छोड़िए उनका ईगो हर्ट हो जाता है, यानी कि वाइफ, ये वाइफ की बात कर रहे थे कि अगर वाइफ की बात नहीं सुनी आपने तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, फिर देखो घर में बर्तन टूट रहे हैं नहीं ना बाबा ना, मैं तो ये बिल्कुल रिक्स नहीं लेने करे बाबा मैं कोशिश करता हूं कि हर बात मानी जाए जो वाजिब हो। देखो मेरा ईगो भी बस बाहर ही बाहर निकलता है घर के अंदर कौन सा ईगो होता है, अरे आपका भी कहाँ है, है ना। तो कोई ईगो नहीं चलता घर के अंदर, कहाँ चल रही है यार बताओ, अब्बा ने तानाशाही चला ली अपने घर में बच्चों के ऊपर भी और बच्चों की अम्मी पर भी लेकिन हमारा जब मौका आया तो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर आ गया फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम व्हाट इफ पर बात करेंगे कि अगर हमें समंदर में या बोट हाउस में रहना पड़ गया और हार्ड जमीन या लैंड जैसा कुछ नहीं हुआ तो हमारे जिंदगी में क्या कुछ असर पड़ेगा, ये बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, FM 107 पे दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: जमाने के साथ साथ स्पोर्ट्स की दुनिया भी बदल रही है और बदल रहा है स्पोर्ट्स को जानने और सुनने का तरीका भी, और हम तो चलते हैं हमेशा जमाने के साथ साथ, इसीलिए FM 107 लाया है स्पोर्ट्स के लिए एक खास प्रोग्राम
1: स्पोर्टकास्ट।
3: हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर वेंसडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।

34 मिनट स्टूडियो की घड़ी में और समय आ गया है व्हाट इफ के बारे में बात कर लेने का। कल तो अंटार्कटिका पिघला दिया था हम सब ने मिलके, है नहीं, और हर तरफ पानी पानी हो गया था, कई मीटर समंदर का पानी बढ़ गया था। ऐसे में लंदन, मुंबई, कई शहर जो समंदर के करीब में हैं वो डूब गए थे, है ना। तो फिर पानी तो बढ़ गया है अब बहुत ज़्यादा, तो अब जीने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोट पे हमें अपना जीवन गुजारना पड़ेगा। ऐसे केरला में ये बड़ी खूबसूरत कुछ ऐसी जगह है, जैसे कश्मीर में शिकारा है ना, कश्मीर में भी जो दाल लेक है वहाँ पर बहुत सारी बोट्स हैं, उन बोट्स पर लोग रहते हैं जो हमारे जैसे घूमने फिरने लोग जाते हैं, वहाँ पर रुकते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन जैसा उनका दिल करे। तो ऐसे में मज़ा बड़ा आता है, लेकिन अगर आपको बोट पे ही रहना पड़े और आपको हाउस बनाना पड़े, अपना घर बनाना है, हाउस बोट जिसे कहते हैं, केरला में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर सफ़र भी बस में होता है और वो बस बोट वाली होती है। आप जब किसी चैनल पर देखें केरला का सफ़र करें तो वहाँ पर हार्ड लैंड कई जगहों पे नहीं है, तो वहाँ पर जो बसेस चलती हैं, जो स्कूल में बच्चे जाते हैं, जो लोग ऑफिस जाते हैं, वो बस में जाते हैं और वो बस पानी में चलती है, उसे बोट बस कहते हैं। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग वहाँ का ये माहौल है, अलग अलग ज्योग्राफी है, लेकिन अगर समंदर का पानी बढ़ जाएगा और हमें अगर रहना पड़ जाए हाउस बोट में, तो क्या हमारी ज़िंदगी में चेंजेस आएंगे। और ये रेगुलर बेसिस पे होगा, मतलब हम ऑफिस भी जा रहे हैं तब भी कार की बजाय बोट लेकर चल रहे हैं, लेकिन कितना मस्त लगेगा नहीं लेकिन हार्ड जैसी जगह नहीं होगी, अगर ऑफिस भी होगा तो वो बोट में होगा, ठीक है। तो क्या कुछ चेंजेस आ गए अगर इंसान हमेशा के लिए सिर्फ समंदर में बोट पर रहने लगे, ज़मीन यानी कि हार्ड लैंड का नामो निशान मिट जाए, तो हमारी बॉडी और लाइफस्टाइल में ऐसे अजीब बदलाव आएंगे जो आज के हिसाब से अब नॉर्मल लगते हैं। सबसे पहले परमानेंट डिजीनेस आएगा, ज़मीन पर पैर रखते ही जो बैलेंस हमें मिलता है वो ख़त्म हो जाएगा, इंसान की बॉडी हमेशा हिलती रहेगी, अगर कभी किसी सॉलिड चीज़ पर खड़े होंगे तो चक्कर आएंगे और

भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. लगातार नमकीन पानी के कांटेक्ट में हम रहेंगे और ऐसे में हमारी स्किन बहुत मोटी और लेदर जैसी हो जाएगी, ताकि जो नमक समंदर का पानी है बॉडी के अंदर ना पहुंच पाए और पानी को ना सोख सके डिहाइड्रेशन से बचने के लिए. मछलियों की स्किन देखिए कितनी स्लिपरी होती है, तो वो जो डेवलप कर गई हैं वो इसीलिए क्योंकि वो हमेशा से समंदर की गहराइयों में रही हैं. और समंदर की मछलियां अलग होती हैं, नदियों की अलग होती हैं. गिल्स या लंग की जो कैपेसिटी है वो भी हमारी मुतासिर होगी. इंसान के लंग्स बहुत बड़े हो जाएंगे ताकि वो एक बार सांस रोककर ज़्यादा देर तक पानी के नीचे शिकार कर सकें. और ये आज के वक्त में भी आसान है. आप देखिए, जब एक ज़माने में कतर में पर्ल डाइविंग होती थी तो मर्दों का ऑरा इस बात से भी बहुत लगाया जाता था कि अरे ये तो पानी के अंदर 5 मिनट रहता है, 7 मिनट रहता है, 10 मिनट रहता है. तो अगर आप जब आज पानी के अंदर जाएंगे तो आप देखिएगा कितनी देर तक आप सांस रोक सकते हैं. तो अगर आप मिसाल के तौर पे मानिए आप 30 सेकंड रोक सकते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है 1 महीने बाद आप 1.5 मिनट तक अपनी सांस को रोक पाएं. तो ये क्वालिटी जो है इंसान डेवलप कर लेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. फिर सॉल्ट वाटर को पीने का एक किस्सा या कहें पीने का मसला. बायोलॉजिकल फिल्टर भी हमारे बॉडी में बनेगा, हमारी किडनी इवॉल्व हो जाएंगी ताकि वो समंदर का नमकीन पानी उसको फिल्टर कर सके. शुरुआत में तो ये नमकीन पानी बहुत ज़्यादा जानलेवा होगी, लेकिन स्लोली थोड़ा थोड़ा यू नो करके, जैसे कहते हैं कि अगर सांप का जहर आप थोड़ा थोड़ा अपने शरीर में लें, तो अगर जब सही में कोई सांप काटेगा तो आपकी बॉडी अब तक इम्यून सिस्टम डेवलप कर चुकी होगी. तो ऐसा ही होगा कि थोड़ा थोड़ा अगर आप पानी पीते रहेंगे तो आने वाली जो जनरेशंस होंगी कई सालों बाद, ज़मानों बाद, हमारी जो किडनी होगी वो इवॉल्व हो चुकी होगी. आज अगर हम ये पिएं तो हम मर जाएंगे, लेकिन वाटर वर्ल्ड सिनेरियो में हमारा जिस्म नमक निकालने की मशीन बन जाएगा. फ्रेश फूड का खात्मा भी होगा, रोटी चावल सब्जियाँ ये सब ख्वाब हो जाएंगे. मुझे तो उन लोगों के लिए डर लग रहा है जो यू नो सीरियसली जिनको चावल का बहुत ज़्यादा शौक है, वो बगैर चावल के तो जी नहीं पाते यार. तो इंसान सिर्फ मछली, कछुए, समंदरी घास, ये सारी चीज़ें खाएगा जिससे हमारे दांत और पेट डाइजेस्टिव सिस्टम ये सब बदल जाएगा. हमारा पेट थोड़ा सा अलग तरह से बिहेव करेगा, हमारे जो एंजाइम्स हैं वो और ज़्यादा तगड़े होंगे, जो एसिड है वो और ज़्यादा तगड़े होंगे. विटामिन डी और स्किन कैंसर से क्या मसला है? दिन भर सूरज के नीचे बोट पर रहने से इंसान की स्किन का रंग बहुत डार्क हो जाएगा ताकि रेडिएशन से बचा जा सके. लेकिन ये नहीं होगा, मुझे इसका रीज़न ये लगता है क्योंकि इतने तो अकल है कि बोर्ड पे, खुली बोर्ड पे नहीं रहेंगे छत बना लेंगे यार. खैर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे स्मॉल ट्राइब्स के बारे में, क्योंकि जब आप यू नो समंदर के बोट्स पे, नाव पे रहना शुरू कर देंगे तो कई बड़े देश या सिटीज़ जो है वो नहीं होंगे. ऑब्वियसली छोटी छोटी बोट्स के जो ट्राइब्स होंगे वो बन जाएंगे. लैंड यानी कि ज़मीन एक मिथिकल कहानी बन जाएगी, जैसे हम यू नो बातें करते हैं जन्नत के बारे में. तो मतलब आपको कहीं पर दिखेगा ही नहीं, तो फिर आप कैसे ज़मीन के बारे में सोच भी सकते हैं. मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ेगा. इंसान को खुली जगह और पानी से डर नहीं लगेगा, बल्कि बंद कमरों या सॉलिड ज़मीन से डर लगेगा. और ये एक फोबिया हमारा यू नो निकल कर आएगा, जैसे कहते हैं अगोराफोबिया, जब हमें खुली जगहों से नहीं लेकिन छोटी जगहों से, बंद जगहों से बहुत ज्यादा डर लगने लगता है. खैर ये सिचुएशन बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि अगर ऐसा हो भी जाए कि पानी का लेवल बढ़ जाए, हालांकि ये बात सही है कि अंटार्कटिका सूख रहा है, मतलब पिघल रहा है अंटार्कटिका की बर्फें, और उसकी वजह से कई मीटर पानी बढ़ जाएगा, लेकिन जब मुल्क डूबेंगे तो ज़मीन कहीं ना कहीं रहेगी. जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ ज़मीन रहेगी, तो इंसान उधर जा सकता है. ये वाली आज वाली तो हाइपोथेटिकल थी, लेकिन कल वाली बात बिल्कुल सही है भाई. अंटार्कटिका पिघल रहा है, ठीक है, तो ऐसे में वो वाली फ्लाइट बुक करना जो कम कार्बन एमिशन करती है, ठीक है. बाकी ठीक है, अभी अपने लिए तो कोई ऐसी चिंता नहीं है. आप अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए चिंता कर सकते हैं, लेकिन
बाकी ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है और उम्मीद है कि हम अपने आसपास जो मौजूद है उन चीज़ों की इज्जत कर पाएँ, उन चीज़ों को इज्जत दे पाएँ जो हमारे लिए ज़िंदगी आसान करते हैं और हमारे लिए बेहतरी करते हैं, हमारे जीवन के लिए बेहतरी करते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक पर बढ़ते हैं और ब्रेक पर जाने के लिए एक बेहतरीन गाना होना चाहिए और ये गाना है सुखविंदर।

सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में, वन ऑफ माई फेवरेट कॉल्ड मर जाने मर जाने। FM 107 पे ये ट्रैक सुने, वापस आते हैं कुछ देर में, दिल से देसी।

स्मार्ट आदमी वही है जो गाने के पीछे गा ले ताकि उसको ये पता चल जाए कि वो गाना अच्छा गाता है, वरना असलियत सामने आ जाती है लोगों की। मियां यू आर

लंबी अलाप वाला कोई गाना डिसाइड करो अपने दोस्तों के साथ, कार में बैठ के गाना शुरू करो, वो तब जब सही में असली बंदा गाना गा रहा हो, यानी कि आप गाना प्ले करो अपने सेट पे और फिर एकदम से गाना म्यूट कर दो और इन लोग को कहो कि सब लोग साथ में गाएंगे, और एकदम से जब म्यूट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके ग्रुप में किसकी आवाज एकदम फटी है, जो गाना गाएगा बड़ा अजीब लगेगा, इसलिए गाने के पीछे गाना गाना चाहिए वरना असलियत सामने आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, 6:50 स्टूडियो की घड़ी में और मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, क्या नाम है आपका? नाम तो लिख दिया करो, सलाम करने के बाद गायब हो जाते हैं। इन्होंने लिखा है, भाई नमक का पानी पियेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए दूसरी जनरेशन छोड़ दो, सोचना छोड़ दो। ओ हाँ यार, ये बात देखिए आपकी बिल्कुल सही है, इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा, ताकि अगली जनरेशन के बारे में सोचा तो जाए, इसलिए आपको असली वाले पानी का भी इंतजाम करना पड़ेगा, नॉर्मल नमकीन पानी के अलावा, नमक वाले पानी के अलावा। नमक वाला तो चलो आप समंदर में थोड़ा थोड़ा पी लेंगे, बट आपको इंतजाम करना पड़ेगा सादे पानी का भी, ठीक है। नाम इनका था शोएब, हाँ शोएब ही है। कभी कभार ऐसा लगता है ना कि पिच परफेक्ट का शोएब अख्तर ना लिख दिया इन्होंने कोई सवाल पे। उसके अलावा ये भाई का मैसेज है, इनने भी नाम नहीं लिखा, बस इतना लिखा है किस दुनिया में हो, सच बताना जो भी आपका नाम है मेरा भाई, आई गेस जमाल, फ्रॉम जमाल लिखा ऊपर, जमाल भाई है, आपने देर में ट्यून इन किया था ना, आपको नहीं पता, मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ, आपने नहीं सुना कोई मसला नहीं है, लेकिन अब अगली फ्लाइट जब भी बुक करना तो कम एमिशन वाली फ्लाइट बुक करना, जिसमें लिख के आता ना 30% कम कार्बन एमिशन करता है रेगुलर फ्लाइट से, वही वाली बुक करना, वरना आज नहीं 150 साल बाद 100 साल बाद पता चलेगा, या ज्यादा दिन नहीं 2050 तक रुकना पड़ेगा, कई मुल्क पानी में डूब रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही, गर्मी की वजह से अंटार्कटिका पिघल रही है, और अंटार्कटिका पिघल रही है, कल हमने इस पर बात कर ली है तो हम पानी की दुनिया में थे दोस्त ओके हाय फजीर भाई, गुड मॉर्निंग, अरे गुड इवनिंग, सॉरी यार मेरे मुंह से मॉर्निंग क्यों निकल रहा है, मैं तो शाम को हूँ, अब तो आदत भी छूट गई है। नाम आपने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हिशाम का ये, अच्छा ये पुराना मैसेज है। एक और ये मैसेज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरा भाई, अली इनका नाम है, भाई आज देर से ज्वाइन किया, आखिरी वाला सुन नहीं पाए, कोई बात नहीं, बस फ्लाइट का ध्यान रख लेना अभी जो बताया बाकी अब छोड़े जा रहे हैं बेहतरीन से गाने के साथ, ये गाना आप सुने लाजवाब, मजा आ जाएगा, रबी की आवाज में छल्ला ये गाना, जब तक है जा मूवी का ट्रैक, 2012 की ये मूवी, मूवी का तो नहीं पता लेकिन गाना ये लाजवाब। चलो भाई मैं निकलता हूं, और आशिक भाई चलो यार, तुम मुंह क्यों फुलाए हुआ यार, आशिक तुमने आज क्या कह रहे हो, किसी बात पे ईगो पे ले लिया कोई बात तुमने, मेरी ईगो हर्ट हो जाता है लोगों को बात बात पे। सलाम अलैकुम।

0: FM 107 पर बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

ने इजलास का एजेंडा पेश किया, जबकि काउंसिल ने गुज़श्ता इजलास की कार्रवाई की भी तौसीक की। शुरा काउंसिल के स्पीकर और मुआज़्ज़ज़ अराकीन ने वज़ीर सेहत आम्मा का खैर मकदम करते हुए सेहत के शोबे की तरक्की, तिब्बी खिदमात के मैयार में बेहतरी और सेहत से मुतालिक आगही व एहतियाती तदाबीर के फ़रोग के लिए वजारत सेहत की कोशिशों को सराहा है। अराकीन ने कहा है कि ये इकदाम एक सेहतमंद और बेहतर मैयार ज़िंदगी रखने वाले माशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस मौके पर शुरा काउंसिल के स्पीकर ने इस बात पर जोर दिया कि रियासत कतर साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की हिदायत के मुताबिक सेहत के शोबे को खुसूसी अहमियत दे रही है। उन्होंने कहा कि यह तवज्जो एक जामे कौमी विजन का हिस्सा है, जिसका मकसद अवाम के मयार ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाना है। उन्होंने कौमी सेहत हिकमत अमली 2024 2030 को एक जामे फ्रेमवर्क करार देते हुए कहा कि इसका मकसद ऐसा मुआशरा तश्कील देना है जो सेहत को अपनी तरजीह बनाए, जबकि उसकी बुनियाद पायदारी, जिद्दत और मौसर तिब्बी निज़ाम पर इस्तवार हो। इसके अलावा स्पीकर ने अफराद और ख़ानदानों में सेहत से मुतालिक शऊर बेदार करने, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग देने और बीमारियों से बचाव के लिए मौसर पॉलिसियों और प्रोग्रामों की अहमियत पर भी जोर दिया है। वज़ीर सेहत आम्मा मंसूर बिन इब्राहिम बिन सईद अल महमूद ने कौमी सेहत की हिकमत अमली 2024-2030 के अहम खद्दोखाल पर मुश्तमिल एक जामे प्रेजेंटेशन पेश की। उन्होंने वजाहत की कि यह हिकमत अमली तीन बुनियादी तरजीही शोबों पर मरकूज़ है, जिनमें अवामी सेहत और फलाह व बहबूद को बेहतर बनाना, तिब्बी खिदमात और मरीजों के तजुर्बे में आला मेयार हासिल करना और सेहत के निज़ाम की कारकर्दगी व लचक को मज़ीद मजबूत बनाना शामिल है। उन्होंने बताया कि इन अहदाफ के हुसूल के लिए मुतअद्दिद स्ट्रेटजिक नतायज और अमली इकदामात मुरत्तब किए गए हैं, जिनके ज़रिए सेहत के शोबे में पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर सेहत आम्मा ने इस बात पर भी जोर दिया कि हिकमत अमली में माशरे के किरदार को मजबूत बनाने, सेहत से मुतालिक आगही और तालीम को फ़रोग देने और अफराद को सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने के लिए बाइख्तियार बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। उन्होंने कहा है कि मोटापे और डायबिटीज़ की बढ़ती हुई शरहों के तनाजुर में एहतियाती तदाबीर को मज़ीद मौसर बनाना और सेहत से मुतालिक शऊर व आगही में इजाफा वक्त की अहम ज़रूरत है। अपनी गुफ्तगू के दौरान शुरा काउंसिल के मुआज़्ज़ज़ अराकीन ने कौमी सेहत की हिकमत अमली के मुख्तलिफ पहलुओं को सराहते हुए इस बात पर जोर दिया है कि माशरे में सेहत से मुतालिक आगही को मज़ीद फ़रोग देना नागुज़ीर है, खुसूसन ऐसे वक्त में जब गैर मुतअद्दी बीमारियों बिलखसूस मोटापे और ज़ियाबिटीज़ की शरह में इजाफा एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। अराकीन ने एहतियाती और आगही प्रोग्रामों को मज़ीद मौसर बनाने, इब्तदाई तिब्बी तशखीस के दायरा कार को वसअत देने और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। उन्होंने सेहत की खिदमात के मैयार को बेहतर बनाने और मरीजों के तजुर्बे को मज़ीद आसान और मौसर बनाने की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि तिब्बी अपॉइंटमेंट्स तक बरवक्त रसाई, ताखीर में कमी और इलाज व निगहदाश्त के निज़ाम की कारकर्दगी को मजबूत बनाना ज़रूरी है। इसके साथ साथ खिदमात के मैयार में फ़र्क को कम करना भी सेहत के निज़ाम पर अवामी एतमाद बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। इजलास के अख्तिताम पर शुरा काउंसिल के स्पीकर ने सेहत आम्मा मंसूर बिन इब्राहिम बिन सईद अल महमूद और उनके हमराह वफ्द की शिरकत और मौसर तबादला ख्याल पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सज़म का अदा किया कि शुरा काउंसिल सेहत के शोबे की तरक्की, तिब्बी खिदमात के मैयार में बेहतरी और कौमी सेहत की हिकमत अमली के अहदाफ के हुसूल के लिए वजारत सेहत की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगी, ताकि एक सेहतमंद और पायदार माशरे की तश्कील को यकीनी बनाया जा सके। ये खबरें उर्दू रेडियो FM 107 से नशर की जा रही है। वज़ीर इंसाफ़ व वज़ीर ममलकत बराए उमूर काबीना इब्राहिम इब्न अली अल मुहन्नदी से आज रियासत कतर में अमरीका के सफारत खाने के कायम मकाम नाज़िमुल उमूर मू बरगोसी ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान कानूनी और अदालती तआवुन के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया गया, जबकि बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया है। वज़ारत इंसाफ ने अपने शोबे दाखिली ऑडिट की नुमाइंदगी में आलमी आगे ही बराए दाखिली ऑडिट महीने की मुनासबत से एक खसूसी तकरीब का इनेकाद किया है, जिसके दौरान दाखिली ऑडिट के इंतज़ाम के लिए एक नया इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम भी मुतारिफ़ कराया गया।

0: मैन्युफैक्चरिंग पर। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम टेक्नोलॉजी की, क्योंकि वो तो हमारी फेवरेट चीज है ना। देखिए, आज के डिजिटल दौर में टेक्नोलॉजी हर चीज की बैकबोन बन गई है, ये हम सब जानते हैं। चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, स्मार्ट सिटीज हो या फिनटेक सॉल्यूशंस। कतर फ्री जोन्स में टेक कंपनीज को ऐसा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है जहां कटिंग एज रिसर्च कर सकते हैं भाई, नए सॉल्यूशंस डेवलप कर सकते हैं और ग्लोबल मार्केट्स तक आसानी से रीच कर सकते हैं। यहां इनोवेशन सिर्फ बज़वर्ड नहीं है बल्कि डेली रियलिटी है। अब आते हैं थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स की साइड पर, ठीक है। देखिए, सोचिए अगर एक प्रोडक्ट एशिया से यूरोप तक ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, आप ऑनलाइन मंगवाते हैं सामान, आपको अंदाजा होगा वन कॉन्टिनेंट टू अदर कॉन्टिनेंट चीजें डिलीवर होती हैं, या आप यूं कह लें कि अफ्रीका से मिडिल ईस्ट, ठीक है। तो भाई बीच में एक ऐसा हब हो जो इस पूरी सप्लाई चेन को फास्ट, एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बना दे, क्या तो बात होगी ना, मजा आ जाएगा फिर तो। तो भाई कतर के फ्री जोन्स स्पेशली उनका स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे मुमकिन बनाता है। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और एडवांस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के करीब होने की वजह से ये जोन्स ग्लोबल ट्रेड के लिए पावरफुल गेटवे बन चुके हैं। अच्छा, और फिर एक और चीज जो हमें भूलनी नहीं चाहिए, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। भाई ये वो फील्ड है जहां आप कह लें कि ट्रेडिशनल फैक्ट्रीज की जगह स्मार्ट फैक्ट्रीज ने ले ली है, जहां रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और प्रिसिजन इंजीनियरिंग यूज होती है। साथियों देखें, कतर के फ्री जोन्स में कंपनीज को ऐसी फैसिलिटीज दी जा रही हैं जहां वो हाई टेक प्रोडक्ट्स बना सकती हैं, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट्स हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हों या सस्टेनेबल मटेरियल्स हों। इससे ना सिर्फ प्रोडक्शन एफिशिएंट हो जाती है बल्कि क्वालिटी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही रहती है। लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन दोस्तों, ये सब सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं है, इसका फायदा पूरी सोसाइटी को होता है। भाई जब कतर कोई चीज सोचता है ना, तो वो सिर्फ एक कंट्री के लिहाज से नहीं सोचता, पूरी सोसाइटी के बारे में सोचता है। आप कहेंगे कैसे भाई? तो भाई सफा आपको बताती है कैसे। जब नए बिजनेसेस आते हैं ना, तो नए जॉब्स क्रिएट होते हैं। जब टेक्नोलॉजी ग्रो करती है तो स्किल्स डेवलप होते हैं। जब लॉजिस्टिक्स स्ट्रॉन्ग होता है तो इकोनॉमी स्टेबल होती है, और जब मैन्युफैक्चरिंग एडवांस्ड होती है तो मुल्क सेल्फ रिलायंट बन जाता है। यानी के कतर फ्री जोन सिर्फ इकोनॉमिक जोन नहीं बल्कि एक विजन का हिस्सा है, एक ऐसा विजन जहां कतर अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहा है, ऑयल और गैस से बहुत आगे बढ़कर नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ लेकर जा रहा है, और इस सफर में इनोवेशन सबसे बड़ा ड्राइवर है। भाई देखें, आज का हमारा जो शो है, हमारा जो आज का एपिसोड है, इसकी जर्नी इसी बारे में कि कैसे कतर फ्री जोन्स दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे ये इनोवेशन को प्रमोट कर रहे हैं और कैसे ये ग्लोबल बिजनेसेस लैंडस्केप में अपनी एक यूनिक सी पहचान बना रहे हैं। तो भाई अगर आप भी बिजनेसेस, टेक्नोलॉजी या फ्यूचर ट्रेंड्स में इंटरेस्ट रखते हैं ना, तो भाई ये एपिसोड आपके लिए होने वाला है, ये एपिसोड आपके लिए बहुत बहुत बहुत खास होने वाला है। और हाँ, अगर आप अपनी राय या कोई बात हमसे शेयर करना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो जरूर आप हमें मैसेज कर सकते हैं 666-222-107 पर, या चाहें तो हमें फॉलो भी कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं @FM107 कतर। तो भाई चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जहां आइडियाज मिलते हैं अपॉर्चुनिटीज से और इनोवेशन मिलती है ग्लोबल बिजनेसेस से। कहां? यहां कतर इनोवेट्स पर, जो कि मौजूद है FM 107 पर सफा के साथ।
1: कतर इनोवेट्स RJ सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
0: भाई साथियों, जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि आज का एपिसोड एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट के गिर्द घूम रहा है, जो कि है कतर फ्री जोन्स, यानी इनोवेशन मीट्स ग्लोबल बिजनेसेस। लेकिन साथियों जरा एक लम्हा लीजिए और एक लम्हे के लिए सोचिए कि दुनिया का बिजनेस लैंडस्केप किस तरह चेंज हो रहा है। आज कंपनी सिर्फ एक मुल्क तक लिमिटेड नहीं है हर स्टार्टअप हर एंटरप्रेन्योर और हर मल्टीनेशनल कंपनी ये चाहती है कि वो ग्लोबल हो यानी कि फास्ट हो एफिशिएंट हो और कंपिटिटिव हो ठीक है भाई देखिए इसी जरूरत को समझते हुए कतर ने एक ऐसा मॉडल इंट्रोड्यूस किया जो सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक भी है जिन्हें हम कहते हैं फ्री जोन्स देखिए भाई फ्री जोन्स असल में सिर्फ बिजनेस एरियाज नहीं बल्कि एक कंप्लीट इकोसिस्टम है जहां इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट एक साथ मिलकर काम करते हैं कतर ने इस जोन को स्पेशली डिजाइन किया है ताकि भाई दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां वो अपने बिजनेसेस आसानी से एस्टेब्लिश कर सकें यानी कि आप कह लें कि टैक्स बेनिफिट्स के साथ 100% फॉरेन ओनरशिप के साथ और एक स्मूथ रेगुलेटरी सिस्टम के साथ तो भाई ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं ये आप कह लें कि एक विजन है कतर का एम है अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना ऑयल और गैस से आगे बढ़कर नॉलेज बेस्ड और इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी बनाना और फ्री जोन्स इस मिशन को आप कह लें कि इस मिशन का फ्री जोन्स जो है ना वो सेंट्रल प्लेयर हाँ सेंट्रल प्लेयर बोलना ने बिल्कुल सही होगा अब सवाल ये है कि ये जोन्स इतने स्पेशल क्यों हैं आखिर व्हाई आखिर क्यों इसका जवाब छुपा है उनकी लोकेशंस और डिजाइन में देखिए कतर को दो मेन जोन्स यानी कि रास बूफंतास और अलहूल इन दो जोन्स में ये बटे हुए स्ट्रेटेजिकली एयरपोर्ट और सी पोर्ट के करीब इन्हें बनाया गया है एक जोन एयर कनेक्टिविटी का फायदा उठाता है जबकि दूसरा सी ट्रेड का यानी कि ग्लोबल सप्लाई चेन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है मतलब अगर एक प्रोडक्ट दुनिया के किसी भी कोने में जाना होता है तो ये जोन्स उस सफर को फास्ट स्मूथ और कॉस्ट इफेक्टिव बना देते हैं और भाई अगर मैं कहूँ तो सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं यहाँ फोकस है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड कम्प्यूटिंग रोबोटिक्स IoT यानी के वो टेक्नोलॉजीज जो फ्यूचर डिफाइन कर रही हैं अच्छा भाई इसके साथ साथ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग को भी यहाँ प्रमोट किया जा रहा है जहाँ स्मार्ट फैक्ट्रीज ऑटोमेशन और हाईटेक प्रोडक्शन सिस्टम्स यूज होते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जोन्स सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए भी हैं क्योंकि जब कंपनीज आती हैं तो जॉब्स क्रिएट होती हैं जाहिरी बात है जब टेक्नोलॉजी आती है तो स्किल्स डेवलप होती हैं और जब इनोवेशन होती है तो पूरी सोसाइटी ग्रो करती है तो भाई आज कतर फ्री जोन में तकरीबन आप कह लें 800 से ज्यादा कंपनीज काम कर रही हैं जो हजारों जॉब्स क्रिएट कर चुकी हैं और बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर रही हैं तो साथियों आज का ये एपिसोड सिर्फ एक टॉपिक नहीं बल्कि एक जर्नी है एक ऐसी जर्नी जहां आइडियाज रियलिटी बनते हैं जहां स्टार्टअप्स ग्लोबल बनते हैं और जहां एक मुल्क अपने फ्यूचर को रीडिफाइन कर रहा है चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ जहां हम ये जानेंगे कि ये आइडियाज ग्राउंड रियलिटी में कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं यानी कि हम बात करेंगे फ्रॉम आइडिया टू इम्पैक्ट साथियों हर बड़ी इनोवेशन के पीछे एक कहानी होती है ठीक है एक आइडिया होता है जो छोटा सा होकर शुरू होता है लेकिन वक्त के साथ साथ एक मूवमेंट बन जाता है बिल्कुल वैसे जैसे आप बीज बोते हैं और फिर एक दिन आता है कि वो बहुत बड़ा सा पेड़ बन जाता है कतर फ्री जोन्स की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जरा सोचिए एक यंग एंटरप्रेन्योर यानी कि जो टेक स्टार्टअप शुरू करता है ठीक है उसके पास एक आइडिया है लेकिन उससे आप कह लें कि लेकिन उसको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है फंडिंग और ग्लोबल एक्सेस तो भाई ट्रेडिशनल सिस्टम में शायद उसे सालों लग जाते लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा फ्लिप हो गया लेकिन फ्री जोन्स ने इस जर्नी को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया यहाँ एक स्टार्टअप सिर्फ रजिस्टर नहीं होता बल्कि ग्रो करता है देखिए कतर के फ्री जोन्स ने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जहाँ स्टार्टअप्स और SMEs वो सब मिलकर ना यहाँ ग्लोबल लेवल तक अपना काम लेकर जा सकते हैं चाहे वो एडवांस्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इन्वेस्टर्स सपोर्ट सिस्टम हो इसका एक रियल टाइम एग्जांपल देती हूँ आपको। इसका एक रियल एग्जांपल है ग्लोबल कंपनीज का यहाँ आना

0: और यहाँ पे सेटल होना. जैसे आपके लिए इन्वेंटर्स पावर जो एडवांस बैटरी सिस्टम बनाती हैं, उन्होंने कतर फ्री जोन्स में अपना मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च हब एस्टेब्लिश किया, जिससे उन्हें ग्लोबल एक्सपेंशन में मदद मिली. यानी एक आइडिया जो कहीं और स्टार्ट हुआ, कतर आकर ग्लोबल स्केल तक पहुंच गया. अच्छा भाई, अब बात करते हैं नेशनल इनोवेशन इनिशिएटिव की. देखें, कतर सिर्फ कंपनीज को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, बल्कि एक पूरा इनोवेशन इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है. बात समझने की ये है कि कतर फ्री जोन अथॉरिटीज ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेलरेट करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग, AI और डाटा सेंटर्स पर हैवी इन्वेस्टमेंट किया है. यहाँ गूगल क्लाउड जैसे प्लेटफॉर्म्स के सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश हो रहे हैं, जहां लोकल टैलेंट को ट्रेन किया जा रहा है और बिजनेसेस को नेक्स्ट जनरेशन टूल मिल रहे हैं. इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि इनोवेशन सिर्फ इंपोर्ट नहीं हो रहा, बल्कि लोकल लेवल पर डेवलप भी हो रहा है. चलिए भाई, अब आते हैं ब्रेक थ्रू रिसर्च प्रोजेक्ट पर. ठीक है, देखें, दुनिया रैपिडली हेल्थ केयर और बायोटेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रही है. कतर ने इस ट्रेंड को समझकर फ्री जोन्स में बायो फार्मास्यूटिकल रिसर्च को भी प्रमोट किया है. जी हाँ, एक रीसेंट कोलैबोरेशन में कतर फ्री जोन्स ने ग्लोबल कंपनी जो कि बायोलॉजिस्टिक्स के साथ पार्टनर्स में है, जहां मिडल ईस्ट का पहला इंटीग्रेटेड बायोलॉजिक्स रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर एस्टेब्लिश हो रहा है, इनके साथ कोलैब किया है. ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक ब्रेक थ्रू है, जहां एडवांस्ड मेडिसिन, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं. और अब हम चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर, जो कि टेक्नोलॉजी सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर. देखिए, आज दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है एफिशिएंसी, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो, एनर्जी हो या प्रोडक्शन हो. कतर फ्री जोन्स ने इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है. अच्छा, अगर हम बात करें ना उमल हुल जैसे जोन्स को वर्ल्ड क्लास पोर्ट के करीब बनाया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जहाँ से मिलियंस ऑफ कंटेनर्स हैंडल किए जा सकते हैं, इससे ग्लोबल ट्रेड फास्ट होता है, डिले कम होते हैं और सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है. अच्छा, अगर एनर्जी सेक्टर में भी इनोवेशन के बारे में बात की जाए ना, तो एनर्जी सेक्टर में भी इनोवेशन हो रही है, जहां रिलायबल और कॉस्ट फ्रेंडली एनर्जी सप्लाई दी जा रही है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग और टेक इंडस्ट्रीज के लिए बहुत क्रिटिकल है. रिसेंटली पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नए सबस्टेशंस लॉन्च किए गए हैं, जो इंडस्ट्रीज को अनइंटरप्टेड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. यानी हर लेवल पर आइडिया से लेकर एग्जीक्यूशन तक एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिल्ड किया जा रहा है. तो साथियों, ये सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जहां कतर अपने आप को सिर्फ एक एनर्जी रिच कंट्री नहीं, बल्कि एक इनोवेशन हब के तौर पर एस्टैब्लिश कर रहा है, जहां स्टार्टअप्स को विंग्स मिलते हैं, हम कहते हैं ना उड़ने के लिए पर चाहिए, कतर वो पर प्रोवाइड कर रहा है, जहां रिसर्च को डायरेक्शन मिलती है और जहां टेक्नोलॉजी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हुई नजर आती है. और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये जर्नी अभी शुरू हुई है साथियों. तो भाई साथियों, आप क्या सोचते हैं? क्या फ्री जोन्स फ्यूचर ऑफ बिजनेस हैं या नहीं? क्या इनोवेशन ही सक्सेस की है? हमें जरूर बताएं मैसेज करके 666-22-107 पर, या हमें फॉलो करें FM 107 कतर के हैंडल पर. मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं कतर इनोवेट्स ऑन FM 107. हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे चलकर आपको और भी बहुत सारी डिटेल्स देनी है भाई, और ढेर सारी बातें इंफॉर्मेशन आपको देनी है कि कैसे कतर ट्रांसफॉर्म कर रहा है फ्यूचर को.
1: कतर इनोवेट्स आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी.
0: तो साथियों, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं FM 107 और मैं हूँ सफा, और शो का नाम है कतर इनोवेट्स. और आज हम अपने सफर के उस हिस्से में एंटर हो चुके हैं जहां हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, बल्कि उस कहानी को समझते भी हैं, यानी कि अंडरस्टैंडिंग द इनोवेशन. साथियों, अक्सर हम इनोवेशन का लफ्ज सुनते हैं, ठीक है, यहाँ इनोवेशन वहाँ इनोवेशन, लेकिन असल में ये होता क्या है, कभी आपने सोचा है? क्या ये सिर्फ नए गैजेट्स का नाम है, या सिर्फ टेक्नोलॉजी का, या फिर इससे कुछ ज्यादा गहरी बात जुड़ी हुई है?

0: कि आज हम कतर फ्री जोन्स के जरिए इस इनोवेशन को बिल्कुल सिंपल और रिलेटेबल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ये इनोवेशन आखिर होती क्या है इसके बारे में। देखिए, कतर फ्री जोन्स असल में एक ऐसा सिस्टम है जहां बिजनेसेस, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कंपनीज आसानी से ग्रो कर सकती हैं। यहां इनोवेशन का मतलब सिर्फ नई मशीन्स या सॉफ्टवेयर्स नहीं है, बल्कि एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां आइडियाज को डेवलप होने का मौका मिले। सोचिए, आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिसको प्रोजेक्ट बनाना है। अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट हो, टूल्स हो, टीचर्स का सपोर्ट हो, तो आपका प्रोजेक्ट तो ऑटोमेटिकली जहाज बन जाएगा भाई, सुपर से भी ऊपर। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी ना हो इनमें से, तो आपका आइडिया स्ट्रांग होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ेगा, उसको बैक ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह फ्री जोन्स कंपनीज को वो सारी की सारी फैसिलिटीज देते हैं, यानी कि फास्ट इंटरनेट, एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इजी रूल्स और ग्लोबल कनेक्टिविटी, जिससे उनका काम तेज और एफिशिएंट हो जाता है। कतर ने अपने फ्री जोन्स में हाई स्पीड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, 5G नेटवर्क्स और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है, जो मॉडर्न टेक कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। यानी इनोवेशन यहाँ एक सिस्टम है जहाँ हर चीज एक दूसरे को सपोर्ट करती है। अब दूसरा इम्पोर्टेंट सवाल आता है, ठीक है, ये इनोवेशन इतनी इम्पोर्टेंट है क्यों भाई, आखिर क्यों, वाय? तो साथियों, दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है। पहले बिजनेसेस सिर्फ लोकल होते थे, यानी कि एक शहर या आप कह लें कि एक मुल्क तक लिमिटेड, ठीक है। आज हर कंपनी ग्लोबल बनना चाहती है, लेकिन ग्लोबल बनने के लिए क्या चाहिए होता है भाई? चाहिए होती है स्पीड, एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा जरूरी है भाई आज के जमाने में। देखें, यहाँ कतर फ्री जोन्स का रोल समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। कतर दुनिया के बीच में आप कह लें कि एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, यानी कि जहाँ से एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक आसानी से एक्सेस मिलता है। फ्री जोन्स को स्पेशली एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स के करीब बनाया गया ताकि ट्रेड फास्ट हो और सप्लाई चेन स्मूथ रहे। अब भाई सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। अगर एक प्रोडक्ट चाइना से आता है और यूरोप जाना है उसने, ठीक है, और बीच में डिलेज हो जाए, यानी कि बिजनेस का क्या होगा फिर? अगर डिलेज हो जाते हैं तो बिजनेस लॉस होता है ना। लेकिन अगर एक ऐसा हब हो जहां से प्रोडक्ट स्मूथली ट्रांसफर हो जाए, तो भाई टाइम भी बचता है और पैसा भी बचता है। इसीलिए लॉजिस्टिक इनोवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी एक की रोल प्ले करती है साथियों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डाटा एनालिटिक्स, ये सब चीजें बिजनेस को स्मार्टर बनाती हैं। कतर फ्री जोन्स में इन सब टेक्नोलॉजीज पर फोकस किया जा रहा है ताकि कंपनीज अपने ऑपरेशंस को और ज्यादा बेटर बना सके ना। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये इनोवेशन कतर के लॉन्ग टर्म विजन का हिस्सा है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, यानी मुल्क सिर्फ ऑयल और गैस पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि टेक्नोलॉजी और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ मूव करे। अब तीसरा पॉइंट आता है, मैं कहूंगी ये पॉइंट शायद मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इस इनोवेशन का फायदा कतर और सोसाइटी को कैसे होता है। हर किसी का अपना एक मोटिव होता है ना, और हमें पता होना चाहिए कि भाई सोसाइटी को क्या फायदा है इससे। तो साथियों, जब हम इनोवेशन की बात करते हैं ना, तो अक्सर लगता है कि सिर्फ कंपनीज के लिए होता है, लेकिन असल में इसका सबसे ज्यादा फायदा आम लोगों को होता है। सबसे पहले जॉब्स क्रिएट होती हैं। जब ग्लोबल कंपनीज कतर फ्री जोन में आती हैं, तो उन्हें एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स, लॉजिस्टिक मैनेजर्स, टेक्नीशियंस, यानी हर फील्ड के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। दूसरा क्या होता है, स्किल डेवलप होती हैं। जब आप एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं, तो आपकी स्किल्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती चली जाती हैं। कतर अपनी नॉलेज इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एजुकेशन और रिसर्च पर भी फोकस कर रहा है, ताकि लोकल टैलेंट इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट कर सके। अच्छा भाई, इसी के साथ साथ फिर हम आ जाते हैं तीसरी बात पर, जो कि है इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है इससे। देखें जब इन्वेस्टमेंट आती है ना, बिजनेस ग्रो करता है और ट्रेड इंक्रीज होता है तो मुल्क की इकोनॉमी स्टेबल होती है. फ्री जोन्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सपेंड करते हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है. और भाई इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं अपनी चौथी ऐसी चीज पर जो मुझे इंपॉर्टेंट नजर आती है, वो है सेल्फ रेजिलियंस बढ़ती है. समझने की कोशिश करें कि एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग की वजह से कतर अपनी प्रोडक्ट्स खुद बना सकता है, जैसे इंडस्ट्रियल मटेरियल्स हो गए, टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स हो गए और मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए. इससे इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाती है और मुल्क ज्यादा इंडिपेंडेंट होता है. और भाई पांचवा हमारे पास चीज ये आ जाती है, पांचवी के सोसाइटी का लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाता है. हाँ जी बिल्कुल, जब टेक्नोलॉजी आती है तो डेली लाइफ भी आसान हो जाती है ना. बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, फास्टर सर्विसेज, स्मार्ट सॉल्यूशंस, ये सब इनडायरेक्टली फ्री जोन्स जैसे सिस्टम का एक रिजल्ट होते हैं. तो भाई अब आते हैं लास्ट पार्ट पर, लास्ट चीज पर, और वो है इस इनोवेशन को सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझें. देखिए चलिए एक छोटी सी आपको कहानी से समझाने की कोशिश करती हूँ. सोचिए एक शहर है जहाँ सब लोग अपना काम अलग अलग तरीके से कर रहे हैं. कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई शॉप चला रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, ठीक है, लेकिन सब डिस्कनेक्टेड हैं. ना प्रॉपर रोड्स हैं, ना इंटरनेट फास्ट है, ना सपोर्ट सिस्टम है. अब जरा सोचिए उसी शहर को रीडिजाइन कर दिया जाए, ठीक है, अलाइन करते हैं इन्हें, कुछ वाइड रोड्स बना दिए जाते हैं, फास्टर इंटरनेट दे दिया जाता है, बिल्डिंग्स, मॉडर्न बिल्डिंग्स, इजी रूल्स और हर जगह सपोर्ट सिस्टम. अब क्या होगा, आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली अपग्रेड हो रहा है तो अपग्रेडेशन ही होगा. लोग ज्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे, बिजनेसेस ग्रो करेंगे, नए आइडियाज डेवलप होंगे और शहर ओवरऑल सक्सेसफुल हो जाएगा. यही काम कतर फ्री जोन्स कर रहे हैं, एग्जैक्टली यही काम. लेकिन सिर्फ कतर में नहीं, एक ग्लोबल लेवल पर. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया भर के लोग और कंपनीज एक साथ मिलकर काम करते हैं, जहां इनोवेशन सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि डेली लाइफ प्रैक्टिस बन जाता है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सिस्टम सिर्फ आज के लिए नहीं बना बल्कि फ्यूचर के लिए भी डिजाइन किया गया है. एक ऐसा फ्यूचर जहां टेक्नोलॉजी और बिजनेसेस एक दूसरे के साथ ग्रो करते हैं, जहां कंट्रीज सिर्फ रिसोर्सेज से नहीं बल्कि आइडिया से पावरफुल बनती हैं, और जहां इनोवेशन ही सक्सेस की सबसे बड़ी की होता है. साथियों कतर फ्री जोन्स हमें ये सिखाते हैं कि अगर आप सही एनवायरमेंट क्रिएट कर देना तो आइडिया खुद ब खुद ग्रो करते हैं, और शायद ये ही सबसे बड़ी इनोवेशन है. एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां हर किसी को ग्रो करने का इक्वल चांस मिले. तो आप क्या सोचते हैं, क्या इनोवेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी है या एक माइंडसेट है? हमें जरूर बताएं मैसेज करके 666-22107 पर, और चाहें तो हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जो कि है @FM107 कतर. मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं कतर इनोवेट्स ओनली ऑन FM107.
1: कतर इनोवेट्स RJ सफा के साथ सिर्फ FM107 पर. दिल से देसी, देसी.
2: उर्दू रेडियो FM107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अजान का वक्त हो गया है. अल्लाहु अकबर.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: وزارت داخلہ کے ادارہ تعلقات عامہ کے تعاون سے ریڈیو قطر پیش کرتا ہے پروگرام

0: एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर सफर की कहानी अलग है और हर कामयाबी का राज अलग है, लेकिन जब लोग पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। इस शो में हम आपको मिलवाएंगे उन प्रोफेशनल से जो अपनी मेहनत, चैलेंजेस और इंस्पिरेशन के जरिए दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। हर इंटरव्यू एक नई सोच, एक नई मोटिवेशन को लेकर आए। आपको मिलेंगे वो इंसाइट्स जो आपकी जिंदगी को एक अलग लेवल पर ले जाएंगे। हर कहानी एक लेसन है और हर गेस्ट एक इंस्पिरेशन। तो जरूर सुने टुगेदर वी थ्राइव एवरी ट्यूजडे 7:15 PM ऑनवर्ड्स आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.

0: You are listening to AI Unlocked. सुनिए AI की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, कौन सी ऐप कर रही है सोशल मीडिया में ट्रेंड, सारी मालूमात एक ही शो में. AI Unlocked with RJ Vaid.
1: Only on FM 107, दिल से देसी.
2: Assalamualaikum, very warm good evening. My name is Vaid और ये शो है AI Unlocked. अगले आधे घंटे तक हम टेक्नोलॉजी की दुनिया के एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डेकोड करेंगे जो आजकल हर जगह सुनने को मिलता है. Everybody is talking about it. AI, artificial intelligence. AI सिर्फ एक buzzword नहीं बल्कि आज की दुनिया की हार्टबीट बन गया है. आपके मोबाइल ऐप से लेकर हॉस्पिटल्स तक, OTT रिकमेंडेशन से लेके कतर के एयरपोर्ट तक, हर जगह AI है. सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि AI को समझना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. तो आज के शो में मैं आपको AI बेसिक्स इतने सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ कि आप अपने दोस्त को भी कॉन्फिडेंटली बता पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे. और हाँ, अगर आपको शो के दौरान अपनी बात शेयर करनी हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6662107. जब से AI दुनिया में हो रहा है तब से आप कहीं भी चले जाओ, चाय की टपरी, ऑफिस की कैंटीन या सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन या फिर अपने दोस्तों के साथ बातचीत, वीकेंड में हैंग आउट, एक सवाल जरूर सामने आता है कि क्या AI से हमारी नौकरी बचेगी या खत्म होगी. कुछ लोग कहते हैं AI मेरा दोस्त है, मेरा काम आसान बनाता है. कुछ लोग डरते हैं ये तो मेरा रिप्लेसमेंट बन जाएगा. आज हम इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे, AI और जॉब्स की असली कहानी, कौन से जॉब सिक्योर हैं, कौन से डेंजर जोन में हैं और कैसे AI एक्चुअली नए जॉब्स क्रिएट भी कर रहा है. सो बकल अप क्योंकि ये एपिसोड सिर्फ करियर के बारे में नहीं, फ्यूचर के बारे में भी. मैं हूँ वेद और आप सुन रहे हैं AI Unlocked.
1: You are listening to AI Unlocked.
3: AI Unlocked.
4: सब कुछ मिलेगा आपको इस शो पे AI Unlocked. RJ Vaid के साथ
1: सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी.
2: सबसे पहले एक फैक्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग 2025 तक AI और ऑटोमेशन 85 मिलियन जॉब्स रिप्लेस करेगा, लेकिन साथ ही 97 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट भी करेगा. मतलब गेम जीरो सम नहीं है, गेम है स्किल शिफ्ट का. तो कौन से जॉब्स हैं जिनके रिप्लेस होने के चांसेस ज्यादा हैं? रिपीटेटिव काम, डेटा एंट्री, बेसिक अकाउंटिंग, टेलीमार्केटिंग, यस, कस्टमर सपोर्ट बॉट्स. ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि चैट बॉट्स आर एवरीवेयर. रिटेल कैशियर, सेल्फ चेकआउट प्लस AI स्कैनिंग आ गया है. आपने कतर में भी कई सारे सुपरमार्केट में देखा होगा कि आपको वहां पे कैशियर की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो खुद ही चेकआउट कर सकते हैं, स्कैन कीजिए, पे कीजिए और आगे बढ़िए. तो कौन से जॉब्स AI से सिक्योर हैं? चलिए उसकी बात करता हूँ. क्रिएटिव जॉब्स, कंटेंट क्रिएटर्स, आर्टिस्ट, डिजाइनर्स, क्योंकि क्रिएटिविटी और कॉन्टेक्स्ट AI इजिली रेप्लिकेट नहीं कर पाता. मदद आपकी कर सकता है बट रेप्लिकेट नहीं कर पाता. इमोशनल इंटेलिजेंस वाली जॉब्स, टीचर्स, काउंसलर्स, डॉक्टर्स, स्किल्ड ट्रेड्स, इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स. भाई AI फिजिकल वायरिंग नहीं कर सकता. अब कौन से नए जॉब्स AI के आने से बन रहे हैं? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये वो बंदा होता है, ये वो शख्स होता है जो AI को सही इंस्ट्रक्शन देना जानता है. सही प्रॉम्प्ट लिखना AI से काम करवाने का पहला स्टेप है. अगर आप चाहते हैं कि AI परफेक्टली बढ़िया तरीके से आपके हिसाब से काम करे तो आपका प्रॉम्प्ट उतना ही बढ़िया होना चाहिए. जितना डिटेल्ड प्रॉम्प्ट होता है आपका रिजल्ट आउटपुट उतना बेहतर होता है. उसके बाद एक और जॉब क्रिएट हो सकती है, AI एथिक्स स्पेशलिस्ट, जो इंश्योर करे कि AI फेयर और अनबायस्ड. साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, AI अटैक्स को AI से ही डिफेंड करना. AI का इस्तेमाल कई हैकर भी कर रहे हैं, AI का इस्तेमाल हम जैसे सज्जन लोग भी कर रहे हैं, तो AI अटैक्स को AI से ही डिफेंड करना एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम होगा. अब कतर में भी ये शिफ्ट देखने को मिल रहा है. न जाने कितनी इनोवेटिव कॉन्फ्रेंसेज यहाँ पर होती हैं, वेब समिट यहाँ पे हो रहा है. लास्ट टाइम अल जजीरा का एक AI इनोवेटिव समिट था जहाँ मैं भी गया था और वहाँ पे बात की गई कि कैसे आने वाले टाइम में AI मीडिया में भी अपना एक अहम किरदार अदा कर सकता है. 2022 के वर्ल्ड कप के वक्त AI बेस्ड क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम डिप्लॉय हुआ था. मैनुअल मॉनिटरिंग की जगह AI CCTV और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स इस्तेमाल किए जा रहे थे और इससे नए रोल्स क्रिएट हुए, जैसे AI सिस्टम सुपरवाइजर और डेटा एनालिस्ट. एक छोटी सी सोच, जब कैलकुलेटर आया था लोग बोले अकाउंटेंट्स की जॉब खत्म, लेकिन आज भी अकाउंटेंट्स हैं बस उनका काम और एडवांस्ड हो गया है. वैसे ही जब कंप्यूटर आया था तो लोगों को लगा रही है यार बहुत सारा तो काम कंप्यूटर खत्म कर दे. कुछ काम उसने खत्म किए लेकिन बहुत से नए काम, नए रोल, नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी किए. सेम विद AI, जॉब खत्म नहीं हो रही है, जॉब का शेप बदल रहा है और इसीलिए आपको जमाने के साथ थोड़ा तब्दील होना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम बढ़ा के आगे बढ़ना होगा वरना आप पीछे रह जाएं. चलते हैं अब हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जो है AI अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर में AI के हवाले से क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट.
5: AI अराउंड द वर्ल्ड.
2: सबसे पहले खबरों में डीप माइंड ने अपना फ्रंटियर सेफ्टी फ्रेमवर्क अपडेट किया है जिसमें एक नया रिस्क हाईलाइट हुआ। कुछ एआई मॉडल्स ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो बंद होने या ह्यूमन कंट्रोल को रेजिस्ट करना चाहते हो, और कुछ मॉडल इतने परसुएसिव हैं कि लोगों की बिलीव्स को भी शिफ्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाई दिस मैटर्स, जैसे जैसे एआई पावरफुल हो रहा है ऑफ स्विच और सेफ्टी डिजाइन और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। बाय द वे ये साईफाई नहीं है दोस्तों, कल को आपके एआई असिस्टेंट आपको जवाब देने लगे, इंजीनियर्स ऑलरेडी एक स्टेप आगे रहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पता कल आपका एआई असिस्टेंट बोलते हैं मैं नहीं सर्च करता, जाओ। वहीं दूसरी खबरों में एक हिस्टोरिक पार्टनरशिप सामने आई है। ओपन एआई और एनवीडिया मिलकर 10 गीगावाट्स के एआई कंप्यूट सिस्टम डिप्लॉय करने वाले हैं। ये काफी बड़ा स्केल है जितना कि एक नेशनल पावर ग्रिड होता है। एआई अब सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं एक एनर्जी स्केल चैलेंज भी बन गया है। अब जब एआई को चाहिए गीगावाट्स, इसका मतलब ये है कि हम एक नई फ्रंटियर क्रॉस कर चुके हैं। टॉप टेक लीडर्स ऑटोडेस्क, सिस्को, सीमेंस और दूसरे जायंट्स ने एक ग्लोबल कैंपेन लॉन्च किया है अर्जिंग गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशन टू अडॉप्ट एआई फास्टर। जब सीईओस खुद कह रहे हैं तो समझ लो पॉलिसी, रेगुलेशन और फंडिंग में बड़ी शिफ्ट आने वाली है। मैसेज क्लियर है, एआई इग्नोर नहीं कर सकते। सीईओस खुद पोस्टकार्ड भेज रहे हैं कि भाई एआई को अडॉप्ट कीजिए जल्दी। वहीं पहली बार एआई को यूनाइटेड नेशंस की हाई लेवल एजेंडा में ऑफिशियल प्लेस मिला है। एक ग्लोबल फोरम और 40 एक्सपर्ट्स का साइंटिफिक पैनल बनाया जाएगा गवर्नेंस के लिए। अब एआई सिर्फ टेक बात नहीं, ये जियोपॉलिटिक्स, सिक्योरिटी और एथिक्स का मुद्दा बन चुका है। चैट जीपीटी से लेके यूएन तक एआई अब डिप्लोमेसी का वीआईपी गेस्ट बन के सामने आ रहा है। वहीं सिटी ग्रुप टेस्ट कर रहा है एजेंटिक एआई जो एक सिंपल प्रॉम्प्ट से मल्टी स्टेप टास्क कंप्लीट कर सकता है जैसे रिसर्च, रिपोर्ट्स बनाना, ट्रांसलेशन एटसेट्रा। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो कॉर्पोरेट वर्कफ्लो काफी ऑटोमेट हो जाएगा और जॉब्स रीडिफाइन हो सकती हैं। एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोडोई का कहना है कि 1 in 4 चांस है कि एआई से एक बड़ी कैटास्ट्रोफी हो सकती है, लेकिन वो एम्फसाइज करते हैं कि पोटेंशियल और रिस्क दोनों को सीरियसली लेना होगा। बाय द वे ये वार्निंग किसी आउटसाइडर से नहीं, एआई के खुद के मेकर से आ रही है, तो बात तो सही है। वहीं वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2025 कहता है कि अगर एआई के गैप्स डिजिटाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेशन ब्रिज कर दिए गए तो ग्लोबल ट्रेड 40% तक बढ़ सकता है 2040 तक। गूगल के 2025 ड्यूरा रिपोर्ट ने दिखाया है कि डेवलपर्स के लिए एआई अब बैकबोन बन चुका है। कोडिंग सजेशंस, टेस्टिंग, डीबगिंग सब एआई के थ्रू। एआई अब सिर्फ यूजर्स के लिए टूल नहीं है बल्कि सॉफ्टवेयर क्रिएशन के अंदर भी एक साइलेंट पार्टनर बन गया है। वही नई रिसर्च ने अनवील किया है मानस एआई, एक जनरल पर्पस एजेंट जो रीजनिंग और एक्शन दोनों को कंबाइन करता है, इंटेंशन को एग्जीक्यूशन में बदल देता है। और जेमिनी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। सभी अपने अपने पिक्चर्स को जेमिनी के नए पावरफुल इमेज क्रिएशन टूल बनाना से अलग अलग चीजों में तब्दील कर रहे हैं और सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं, और जेमिनी ने वीडियो क्रिएशन में भी महारत हासिल की है अपने नए वीओ इंजन के साथ। वैसे एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक जितने भी मार्केट में चैटबॉट्स अवेलेबल हैं जैसे कि जेमिनी, कोपायलट, परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी, 80% लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो थी कुछ एआई अराउंड द वर्ल्ड, एआई की दुनिया में क्या क्या चल रहा है। और अब चलते हैं एक छोटे से गाने की तरफ, सॉन्ग ब्रेक के बाद वापस हाजिर होता हूँ, बात करेंगे एआई वर्ड ऑफ द वीक की।

0: You are listening to AI Unlocked. सुनिए AI की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, कौन सी ऐप कर रही है सोशल मीडिया में ट्रेंड, सारी मालूमात एक ही शो में. AI Unlocked with RJ Ved.
1: Only on FM 107, दिल से देसी.

0: सुनिए एआई की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, कौन सी ऐप कर रही है सोशल मीडिया में ट्रेंड, सारी मालूमात एक ही शो में, एआई अनलॉक्ड विद आरजे वेद,
1: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: और आज का एआई वर्ड ऑफ द वीक है अपस्किलिंग।
3: एआई वर्ड ऑफ द वीक।
2: अपस्किलिंग का मतलब है अपने स्किल्स को नए जमाने के हिसाब से अपग्रेड करना। जैसे एक अकाउंटेंट अब सिर्फ टैली पे काम नहीं करेगा, वो एआई बेस्ड फाइनेंस टूल्स सीखेगा। एक जर्नलिस्ट अब सिर्फ पेन पेपर पे नहीं बल्कि एआई फैक्ट चेक टूल्स इस्तेमाल करेगा और अपनी स्क्रिप्ट को सही करेगा। आज के जमाने में आपकी स्किल्स आपके अस्त्र हैं, आपके टूल्स हैं, और जितना ज्यादा आप अपने आप को अपस्किलिंग करते जाएंगे उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे। और अब चलते हैं हमारे शो के लास्ट सेगमेंट की तरफ जो है टूल ऑफ द वीक।
3: AI Tool of the Week।
2: इस हफ्ते का AI Tool of the Week है LinkedIn Learning। ये एक AI powered learning platform है जो आपके करियर के हिसाब से सजेस्ट करता है कि आपको कौन से courses लेने चाहिए। Example, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं, तो आपको सजेस्ट करेगा लर्न ChatGPT फॉर कॉन्टेंट, AI SEO टूल्स, डेटा एनालिटिक्स बेसिक्स एटसेट्रा। क्विक टिप, हर वीक एक छोटा कोर्स कम्प्लीट करो, छोटी छोटी स्किल्स के एडिशन लॉन्ग टर्म में एक बड़ी बड़ी शील्ड बन जाता है अगेंस्ट योर जॉब लॉस। ठीक वैसे ही जैसे हम छोटे छोटे मोती पिरो के एक हार बनाते हैं, वैसे ही छोटे छोटे कोर्सेज आपको और आपके रिज्यूमे को काफी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस मिलता हूँ आपको AI अनलॉक में। सुनते रहिए FM 107 दिल से।

0: सुनिए AI की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, कौन सी ऐप कर रही है सोशल मीडिया में ट्रेंड, सारी मालूमात एक ही शो में, AI Unlocked with RJ Ved,
1: only on FM 107 दिल से देसी।

0: You are listening to
1: AI Unlocked. सुनिए AI की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, कौन सी ऐप कर रही है सोशल मीडिया में ट्रेंड, सारी मालूमात एक ही शो में. AI Unlocked with RJ Ved.
0: Only on FM 107, दिल से देसी.
2: हमने इस एपिसोड में ये समझा कि कुछ जॉब्स खतरे में हैं, लेकिन कुछ सेफ हैं और बहुत सारे नए जॉब्स भी आपके लिए आ रहे हैं. तो फ्यूचर सिर्फ मशीन्स का नहीं है, फ्यूचर है इंसान और मशीन कोलैबोरेशन का. अगले एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे AI इन हेल्थ केयर, डॉक्टर का दोस्त है या कॉम्पिटिशन. मैं उम्मीद और आप सुन रहे थे AI Unlocked. अपने स्किल्स को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ और फ्यूचर को एम्ब्रेस करो. अगले एपिसोड में मिलता हूँ और भी बहुत सारी मालूमात के साथ. तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और सुनते रहिए
1: AI Unlocked. सुनिए AI की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, कौन सी ऐप कर रही है सोशल मीडिया में ट्रेंड, सारी मालूमात एक ही शो में. AI Unlocked with RJ Ved.
0: Only on FM 107, दिल से देसी. Number one hits music station.
3: Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.

और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। यह हमें बताता है क्या सही है, कौन सा रास्ता बेहतर है और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है। बचपन से हमने कुरान पढ़ा, तिलावत की, लफ्ज दोहराए, लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुककर सोचा नहीं, जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए खास तोहफा है जो सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाना चाहिए। इसलिए FM 107 लाया है एक ऐसा शो जहां बच्चे कुरान को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो सुनिए कुरान फॉर किड्स हर बुध शाम 3 बजे से आरजे तलहा के साथ।
3: पेरेंटिंग सिर्फ परवरिश नहीं, ये समझ और प्यार का सफर है। ये शो बात करता है मॉडर्न पेरेंटिंग, रोज के चैलेंजेस और उन फैमिली वैल्यूज की जो बच्चों को बेहतर इंसान बनाती है। सिंपल बातें, रियल एक्सपीरियंसेस और हर वालिदैन के लिए रहनुमाई। पेरेंटिंग को नए अंदाज से समझिए और सुनिए आरजे महविश के साथ पेरेंटिंग जर्नी में एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग 10 to 11 AM ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी,
4: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए आज महविश खान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ एफएम 107 पर।
2: अस्सलाम वालेकुम मिस्टर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश खान और शो है ये पल्स ऑफ कुरान। उम्मीद करती हूं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। आज पल्स ऑफ कुरान में मैं आपके लिए जो आयत लेकर आई हूं ये है सूरह अल हशर की आयत नंबर 18 और इसका तर्जुमा कुछ यूं है, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, उसका तकवा इख्तियार करो और हर शख्स ये देखे कि उसने कल यानी आखिरत के लिए क्या आगे भेजा है और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह खूब जानने वाला है जो तुम करते हो। यह आयत कुरान की उन अजीम आयात में से है जो इंसान को बेदार करती है। सूरह अल हशर में पहले बनी नज़ीर के वाकये, दुनिया की बेसबाती, मुनाफिकीन के अंजाम और अल्लाह की कुदरत के बयान के बाद अहले ईमान को एक निहायत गहरा पैगाम दिया गया, अपने अंजाम को ना भूलो। ये सिर्फ एक हुक्म नहीं बल्कि जिंदगी का पूरा निसाब है। इस आयत में तीन बड़े मजामीन जमा हो गए हैं, तक्वा इख्तियार करो, अपना मुहासबा करो, आखिरत के लिए तैयारी करो। यह आयत इंसान को गफलत से जगाती है कि जिंदगी सिर्फ आज का नाम नहीं, कल भी है और असल कल आखिरत है। कुरान में जब भी अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल लजीना आमन, ऐ ईमान वालो, तो ये आम खिताब नहीं होता, ये मोहब्बत भरा बुलावा, इज्जत वाला पुकारना और जिम्मेदारी का ऐलान होता है। ये पुकार क्यों?

देखे कि उसने कल के लिए क्या आगे भेजा है। ये सिर्फ सोचने का नहीं, मुहासबे का हुक्म है। मुहासबा यानी खुद अपना हिसाब लेना, अपने आप से सवाल करना, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, यही मुहासबा नफ्स है। मुहासबा क्यों जरूरी है? जो शख्स खुद अपना जायजा नहीं लेता वो अक्सर गफलत में रहता है। इंसान दूसरों की गलतियां जल्द देख लेता है मगर अपनी को नजरअंदाज कर देता है। मुहासबा इस अंधेपन को तोड़ता है, इंसान को खुद से मिलवाता है। हर शख्स देखे, आयत ने कहा हर नफ्स देखे, किसी और का नहीं अपना। ये बहुत अहम है। हम अक्सर दूसरों के हिसाब में लगे रहते हैं, वो ऐसा क्यों है, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ये क्यों किया। कुरान कहता है पहले खुद को देखो। मुहासबे का मतलब खुद को मलामत करना नहीं, ये सिर्फ खुद को बुरा भला कहना नहीं, इस्लाही जायजा है। मसलन आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, कहां बेहतर हो सकता था, ये तरक्की का रास्ता है। एक ताजिर की मिसाल लें, एक समझदार ताजिर रोज हिसाब देखता है, नफा कितना, नुकसान कितना, कहां गलती हुई। अगर वो हिसाब ना देखे तो कारोबार डूब सकता है। दिलो अमाल का भी यही हाल है। मुहासबा रूह का हिसाब किताब है। हजरत उमर का कॉल है, अपना हिसाब खुद लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। ये मुहासबे की रूह है। आखिरत के हिसाब से पहले दुनिया में खुद एहतसाबी। मुहासबा बेदार दिलों की अलामत है। गाफिल इंसान खुद को नहीं टटोलता, बेदार इंसान टटोलता है। वो रुक के सोचता है मैं सिर्फ चल नहीं रहा, सही सिमत में भी चल रहा हूं या नहीं। ये बड़ा फर्क है। कई चीजों का मुहासबा जरूरी है। ईमान का, क्या मेरा ईमान बढ़ रहा है या फिर सिर्फ दावा बाकी है। इबादत का, इबादत यानी नमाज कैसी है, दिल से है या बस आदत से। अखलाक का, मैं लोगों से कैसे पेश आता हूँ। फिर जबान का, आज मैंने क्या कहा, किसी को तकलीफ दी। नीयत का, ये काम अल्लाह के लिए था या लोगों के लिए। ये सब मुहासबा है। नीयत का हिसाब सबसे मुश्किल है। अमल का जायजा आसान है लेकिन नीयत का मुश्किल। बाहर से नेकी, अंदर रिया, बाहर खिदमत, अंदर तारीफ की ख्वाहिश। मुहासबा ये भी देखता है। रोजाना मुहासबा, मुहासबा साल में एक बार नहीं रोज होना चाहिए। सोने से पहले चंद मिनट, आज का दिन कैसा था, मैं अल्लाह के करीब क्या ये दूर। ये मामूल दिल बदल देता है। छोटे सवाल बड़ी तब्दीली लाते हैं। आज मैंने कौन सा गुनाह छोड़ा, कौन सी नेकी की, कौन सी बात पे नदामत है, किस पर शुक्र है। ये सवाल इंसान को जगाते हैं। मुहासबा तौबा तक ले जाता है। जब गलती नजर आएगी तभी इसलाह होगी। जो गलती पहचानता ही नहीं वो तौबा कैसे करे। इसीलिए मुहासबा तौबा का दरवाजा है। मुहासबा तकब्बुर तोड़ता है। इंसान अपनी कमजोरियां देखता है फिर वो दूसरों पर जल्द हुक्म नहीं लगाता, नरम हो जाता है, आजिज हो जाता है। नेकियों का भी मुहासबा, सिर्फ गुनाह नहीं नेकियों का भी। मसलन क्या नमाज बेहतर हो सकती थी, सदका इखलास से था, इल्म पर अमल हो रहा है। मुहासबा अच्छे को बेहतर बनाता है। वक्त कहाँ जा रहा है ये भी मुहासबा है। दिन किसमें गुजरा, फायदा, फजूलियात, आखरत की तैयारी। वक्त का हिसाब बड़ा अहम है। जिंदगी वक्त ही तो है। मुहासबा तब होता है जब इंसान

0: खुद से सच्चा हो, बहाने ना बनाए, अपनी गलती माने। नफ्स उजर तराशता है, मुहासबा पर्दा हटाता है। नफ्स अक्सर धोखा देता है, कहता है सब ठीक है, तुम अच्छे हो, फिक्र ना करो। मुहासबा इस फरेब को तोड़ता है। मुहासबा आईना है, चेहरा खराब हो तो आईना दिखाता है, रूह में दाग हो तो मुहासबा दिखाता है। आईना दुश्मन नहीं, मददगार है। एक बहुत ही अहम बात कि मुहासबा खुद का होता है। हम अक्सर दूसरों की निगरानी करते हैं। कुरान खुद को देखने का कहता है, ये इस्लाह का रास्ता है। इखलास बगैर मुहासबे के कमजोर हो जाता है, क्योंकि नफ्स आहिस्ता आहिस्ता दिखावा मिला देता है। मुहासबा नियत साफ रखता है। बहुत लोग शोर में रहते हैं, खुद से कभी मिलते नहीं। मुहासबा तन्हाई मांगता है, खामोशी, सोच, दिल से बात, ये रूहानी जरूरत है। रोज रात खुद से पूछें, आज अल्लाह के लिए क्या किया, आज किस गलती पर निदामत है, आज किस नेमत पर शुक्र है, कल क्या बेहतर करना है। ये मुख्तसर मुहासबा है, मगर बहुत ताकतवर।
1: आइए आरजे महविश खान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ एफएम 107 पर।
0: बाज लोग समझते हैं कि खुद को परेशान करना है, नहीं, ये रहमत है, क्योंकि ये आखिरत के बड़े हिसाब से पहले इस्लाह का मौका देता है। कामयाब कौन है? जो अपनी गलतियों को देखता है, जो सीखता है, जो बदलता है, जो लौट कर आता है, यही कामयाबी है। गफलत इंसान को दबा करती है, मुहासबा जगाता है। गफलत बहाव में ले जाती है, मुहासबा सिम देता है। कल के लिए क्या भेजा, ये सवाल मुहासबे का मरकज है। मैंने आज आखिरत के लिए क्या भेजा? नमाज, सदका, अच्छा अखलाक, इल्म, सबर, ये सिर्फ दुनिया जमा की? ये सवाल रूह हिला देता है। खुद से सवाल कीजिए, अगर आज जिंदगी खत्म हो जाए, मैं क्या साथ लेके जा रहा हूं? ये सवाल मुहासबे को गहरा करता है। जो रोज खुद को देखता है, वो आहिस्ता आहिस्ता बदल जाता है। गलतियां कम होती हैं, दिल नरम होता है, तकवा बढ़ता है, ये तरबियत है। मुहासबा मायूसी नहीं, उम्मीद है, क्योंकि जब तक देखने और बदलने की सलाहियत है, तब तक रास्ता खुला है। अकलमंद वो नहीं जो सिर्फ दुनिया संभाले, अकलमंद वो है जो अपने नफ्स का ख्याल रखे, हिसाब रखे, यही आयत सिखाती है। आज अगर मुझे अपने अमाल की फहरस्त देखनी पड़े, तो क्या मैं मुतमईन हूं या परेशान? ये सवाल मुहासबे की इब्तिदा है। आयत का अगला हिस्सा है जो उसने कल के लिए आगे भेजा है। यहां कल से मुराद सिर्फ अगला दिन नहीं, बल्कि आखिरत है। यहां अल्लाह ताला कुरान का एक निहायत गहरा अंदाज बयान फरमा रहे हैं। आखिरत को कल कह के उसको करीब और यकीनी बना दिया गया है। कल क्यों कहा गया? इंसान के लिए सबसे करीबी चीज कल होती है। कल यानी आने वाला दिन, जिससे कोई भी भाग नहीं सकता। कुरान ने आखिरत को कल कहकर ये समझाया, जिस तरह कल आना यकीनी है, इसी तरह आखिरत भी यकीनी है। बस फर्क ये है कि लोग कल को मानते हैं, लेकिन आखिरत को भूल जाते हैं। इंसान की बड़ी गलत फहमी यह है कि इंसान समझता है जिंदगी अभी है, वक्त बहुत है, बाद में देख लेंगे। यही सोच सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि हकीकत यह है, कल कभी भी अचानक बन जाता है और आखिरत भी इसी तरह अचानक सामने आती है। आगे भेजना क्या है? आयत में लफ्ज आया है

0: आदत बन जाती है। इस्लाम इस सिलसिले को तोड़ती है। बस लोग गलती छुपाते हैं, लेकिन असल हल छुपाना नहीं बदलना है। इस्लाह इंसान को आजाद करती है। इस्लाह का आगाज दिल से होता है, मैं बेहतर बनना चाहता हूँ। ये छोटा जुमला बड़ी तब्दीली लाता है। हर दिन कुछ ना कुछ दुरुस्त किया जा सकता है। जबान की गलती, रवैये की कमी, वक्त का ज़िया, छोटी इस्लाहें बड़ी शख्सियत बनाती हैं। यह आयत असल में हमें याद दिलाती है, तुम अकेले नहीं, वापस आ सकते हो, दरवाजा खुला है। गलतियां माजी में हुई, लेकिन मुस्तकबिल कैद नहीं। इस्लाम इंसान को आजाद कराती है। खुद से सवाल, क्या मैं अपनी गलतियों को दुरुस्त कर रहा हूँ या सिर्फ नजरअंदाज कर रहा हूँ? क्या मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ? ये सवाल इस्लाह की बुनियाद है। इंसान की असल खूबसूरती ये नहीं कि वो कभी ना गिरे, बल्कि ये है कि गिरकर संभल जाए। हर इंसान के अंदर एक बेहतर इंसान मौजूद है। इस्लाह उसे बाहर लाती है। गलती जिंदगी का अख्तिताम नहीं या आगाज हो सकती है, अगर इंसान संभल जाए। लिसनर्स, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।
1: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहू। स्ट्रे डॉग्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स ने कुछ खास प्रोटोकॉल्स रखे हैं, जिन्हें फॉलो करना बेहद जरूरी है। जैसे अगर अग्रेसिव स्ट्रे डॉग से आपका सामना होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मशवरा देती है कि काम रहें, डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट से बचें और पुलिस K9 सेक्शन को 2346555 पर कॉल करें। इसके अलावा डेंजरस एनिमल्स के लिए है लॉ नंबर 10 ऑफ 2019, जिसके मुताबिक डेंजरस डॉग्स जैसे रॉटवीलर्स, डोबरमैन वगैरह या वाइल्ड कैट्स और दूसरे डेंजरस पेट्स की रजिस्ट्री करवाना बेहद जरूरी है। नॉन कंप्लायंस पर 1,00,000 रियाल तक का फाइन हो सकता है। इसके अलावा इंपोर्टिंग पेट्स के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी एनिमल रिसोर्सेज से वैलिड इंपोर्ट परमिट लेना जरूरी है। साथ ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और माइक्रोचिप भी चाहिए। हेल्थ फॉर ऑल। कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी 2030 कहता है हेल्थ फॉर ऑल। और हमारे इस खास शो में बात होगी सेहत से मुतालिक मुस्तनद मालूमात और जिंदगी बचाने वाली आगाही की। सुनिए प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ हर जुमेरात शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी। पेरेंटिंग सिर्फ परवरिश नहीं, ये समझ और प्यार का सफर है। ये शो बात करता है मॉडर्न पेरेंटिंग, रोज के चैलेंजेस और उन फैमिली वैल्यूज की जो बच्चों को बेहतर इंसान बनाती है। सिंपल बातें, रियल एक्सपीरियंसेस और हर वालिदैन के लिए रहनुमाई। पेरेंटिंग को नए अंदाज से समझिए और सुनिए आरजे महविश के साथ पेरेंटिंग जर्नी में एवरी ट्यूजडे मॉर्निंग 10 to 11 AM only on FM 107। दिल से देसी।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

तो फ्लैट में कितने कमरे, कम गुरफ़ फिर शक्का, तो इस तरह जो ना आप सवाल कर सकते हैं। तो अगर कोई कह ये कहना चाहता है कि मेरे फ्लैट में एक कमरा और एक हॉल है, तो आप वो उसको अरबी में ऐसे कहेंगे, इस तरह कहेंगे फिशुक्कति गुरफ़ा वसाला, हॉल को साला कहते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर कोई ये कहना चाहता है कि मेरे फ्लैट में दो कमरे और एक हॉल है, फिशुक्कति गुरफ़तान वसाला। इसी तरह अगर कोई कहना चाहे मेरे फ्लैट में तीन कमरे हैं, तो वो कहेगा फिशुक्कति थलाथ गुरफ, थलाथ गुरफ यानी तीन कमरे। अच्छा जी, तो वैसे अरबी में अगर आप दो कमरे कहना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप इस्नैन गुरफा, जो हम आमतौर पर बोलचाल की जबान में जिन्हें अरबी नहीं आती तो वो इस तरह कह रहे होते हैं कि भाई इस्नैन गुरफा, इस्नैन दजाज, इस्नैन दो मुर्गी, इसके लिए कहेंगे इस्नैन दजाज, दो अंडे, इसके लिए कहेंगे इस्नैन बैबा। तो ये इस तरह ना कहिए, क्योंकि अरबी में अगर आप दो डिजिट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप उसी लफ्ज़ की जो यानी डुअल फॉर्म है उसे आप यूज़ कीजिए। जैसे गुरफा यानी एक गुरफा यानी एक कमरा, गुरफचान यानी दो गुरफा, इसी तरह बैदा यानी एक अंडा, बैदतान यानी दो अंडे, और इसी तरह जो है ना दजाजा एक मुर्गी, दजाजतानी दो मुर्गी। तो इस तरह जो है ना आप दो डिजिट के लिए आप ये आखिर में आन आन लगा दें तो बन जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ, जो कि एक एक जो कमरे हैं, एक एक कमरे का नाम अलग अलग होता है, कहीं बेडरूम है तो उसे अरबी में कहते हैं गुरफतुन नौम, यानी सोने का कमरा बेडरूम, तो गुरफतुन नौम सोने का कमरा। तो इस तरह जो है ना किड्स रूम, जो बच्चों का जो कमरा होता है, उसके लिए अरबी में अरबी है गुरफा, गुरफत अतफाल, ठीक है। गेस्ट रूम गुरफा, गुरफत अद्दैफ या गुरफा लिद्दयूफ, मेहमानों का कमरा। लिविंग रूम के लिए ये बैठक या जो लिविंग रूम है, इसके लिए अरबी में कहते हैं गुरफत अलमईशा या सालह अलमईशा, सालह अलमईशा, तो ये लिविंग रूम के लिए इस्तेमाल करते हैं अरबी में। किचन के लिए आप सब जानते हैं मतबख, ये कहते हैं किचन रूम, तो इसके लिए है मतबख, और बाथरूम या वॉशरूम के लिए है हमाम। तो इस तरह अगर आप ये कहना चाहेंगे मेरे घर में दो वॉशरूम है, तो आप कहेंगे फिल बैत हमामान, अल्लाह आप लोगों की जो है ना इज्जत अफजाई करे। अब घर के मुतालिक जो सवालात हैं वो ये हो सकते हैं, आपके घर में कितने कमरे हैं, कम गुरफा फी बैतिक, तो इस तरह जो है ना आप जवाब में इस तरह कह सकते हैं कि मेरे गुरफा मेरे घर में फी बैति गुरफा लिल अतफाल, बच्चों का कमरा, गुरफा लिल नौम सोने का एक कमरा, साल लिल मईशा, इस तरह लिविंग रूम है एक, मतबख एक है, मतबख मुस्तकिल यानी एक अलग किचन है, अलग किचन कहना चाहते हैं तो मतबख मुस्तकिल, मुस्तकिल इस लफ्ज का मतलब यानी अलग अलग, जो अलग हो अलग थलग हो यानी। तो इस तरह जो है ना काफ़ी सारे अल्फाज आ गए सकन या रिहाइश यानी जो इससे रिलेटेड, इसमें बैत है, शुक्का है, गुरफा, साला, मतबख, हमाम। इसी तरह ताबक हमने कहा कि ये कहते हैं ताबक है यानी फ्लोर, ओके जी। तो मज़ीद कई मिसाल ले लें, चूँकि मिसालों से जो है ना ये आपको ये अल्फाज याद रहेंगे। अना तस्कुन, आप कहाँ रहते हैं, अस्कुन फिर दोहा, मैं दोहा में रहता हूँ। हलिल बैत कबीर, क्या घर बड़ा है, नाम नाम बैत कबीर तरा फे अरब गुरफ, हाँ जी बैत बहुत, घर बहुत बड़ा है, इसमें चार कमरे हैं। तो इस तरह जो है ना बोल चाल की जिंदगी में आप ये एक इम्पैक्ट है, ये एक एक्सप्रेशन इसको यूज कर सकते हैं। ओवरऑल अरबी बात में थोड़ी आवाज़ जो है ना वो ज्यादा ही गूंजती है, तो इस तरह जो है ना आप बता सकते हैं अपने घर की डिटेल्स को अरबी में। लेकिन अगर आप घर खरीदना चाहते हैं या नई जगह मुंतकिल होना चाहते हैं, और ये बात जाहिर सी बात है कि भाई घर खरीदना ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसलों में से एक होता है, चूँकि यहाँ एक गलत सवाल या सवाल ना पूछना आपको मुश्किल में डाल सकता है, फिर आप पूरी ज़िंदगी पछताएंगे, ठीक है ना। इसलिए यानी हम अरबी जबान सीखने के साथ साथ आपको कुछ इस तरह फैक्ट्स भी बताएंगे, भाई घर खरीदने के वक्त आपने क्या जो है ना किस तरह के सवाल करने हैं। पहला सवाल ये बन सकता है, ये घर कब से मार्केट में है, नहीं कब से इसे जो है ना बेचने के लिए ऐलान इसका किया गया है। मंजुमता हादल मंजिल मारूद मारूद।

लेवल का कोई घर हो, लेकिन महल अच्छा है, मोहल्ला जो है ना वो अच्छा है, तो ये उसमें सुकून है। तो ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा मुनासिब है। अगर अच्छा महल और अच्छा घर दोनों अच्छे अच्छे हों तो भाई आप तो अच्छे बंदे हैं, तो आप लोग सारे अल्लाह सुब्हान तआला ने अच्छे मामलात किए हैं, तो फिर ये तो खुशी की बात है। अच्छा जी, जो हमारा आज का मौजू है उस्ताद तलहा के साथ लर्न अरबिक विद अस में आप सुन रहे हैं अरबी में आप कैसे घर किराए पर लेंगे या घर खरीदेंगे। यहाँ तक क्या हम आते आते बात हमारी आगे बढ़ी और हम महल्ले के हवाले से पूछने लगे कि भाई आपने तो पहले महल्ले के हवाले से जाने कि भाई महल्ला कैसा है। अहम सवालात को अरबी में आप कैसे बताएं, इस जिंदगी के हकीकी फैसले जो है ना आप कैसे करें अरबी में। तो चले हम देखते हैं। पहला सवाल है, क्या ये महल्ला आपके तर्ज जिंदगी के मुताबिक है? हर एक की जो है ना अपने अपनी एक तर्ज जिंदगी होती है, नमतुल हया इसे कहते हैं। तो इसके लिए अरबी में ये सवाल है, अरबी में आप मुतबादल ये जुमला यूज कर सकते हैं, हल युनासिबुल हाय नमत हयातिक, क्या ये महल्ला आपकी आपकी जो तर्ज जिंदगी के मुताबिक है, मुनासिब है आपके लिए, नमतुल हया उस्लूबुल हया यानी तर्ज जिंदगी। अच्छा, हम मजीद ये सवाल भी कर सकते हैं, हल तुहिब्बुल हुदू, हल तुहिब्बुल हुदू, क्या आप सुकून पसंद है यानी खामोशी पसंद करते हैं, या फिर आप हल तुहिब्बुल हयात नशिता, कुछ ऐसे होते हैं ना। मुझे याद है कि हमारी रिहाइश होती थी, बचपन के वक्त की बात है कि कहीं सड़क के बाजू में वो बिल्डिंग थी, तो रात को वो जो बड़े बड़े ट्रक्स जो है ना वहाँ से गुजरते थे तो इतनी आवाज़ें पैपो पैपो, तो आदत ऐसी बन गई थी कि अगर उस तरह की आवाज़ें ना आती हॉर्न की तो वो नींद भी नहीं आती थी। तो ऐसा बन गया था कि वो हमारे साथी हैं, नींद के वक्त जो माँ की गीत होती है ना उसकी तरह वो बन गई कि भाई वो भी एक गीत थी हमारे लिए, वो हमें सुलाती थी। तो इस तरह बाज लोग जो है ना काफ़ी मसरूफ़ और मुतहर्रिक ज़िंदगी पसंद करते हैं कि आप आस पास जो है ना ऐसी आवाज़ें हो रही हों, चावल वो नीचे से जो बेचने आ जाते हैं ना, ये मुझे अपने जो ना मुल्कों की सीन याद आ रही है। हमारे मुल्क में आपको पता है कि लोग जो है ना ऐसे छुट्टा सामान लेकर घर के नीचे आ जाते हैं, आए सब्जी तो सब्जी के लिए अरबी में क्या लफ्ज़ है, खदार, खदार। अरबी में सब्जी को क्या कहते हैं, खदार। तो अगर सोचें यानी अगर कतर में ऐसा होता कि आपके घर के सामने आगे आके कोई ऐसे सवाल कर रहा है, अरे खदार सब्जी किसके खरीदना है, मीन या बेखदार तो मे भी कोई ऐसा वक्त तो होता होगा यहाँ पर भी। मुझे याद है कि खलीजी ममालिक में कहीं किसी एक मुल्क में मेरी भी पैदाइश है, तो वहाँ पहले यानी ऐसे लोग आते थे घर में, लेकिन उनका आवाज़ जो है ना मुझे जितना याद है वो कहते थे लीला लीला लीला लीला, इस तरह की जो है ना आवाज़ यूज़ करते थे, और ये काफ़ी पुरानी सकाफत है इनकी। मुझे मैं तो ये समझता हूँ कि ये खलीजी ममालिक में ये मारूफ़ एक कल्चर था, यानी एक वक्त की बात मैं कह रहा हूँ, यानी काफ़ी अरसा हो गया इसको। ओवरऑल बात जो है ना इस तरह जो है ना बहुत शोर शराबा जिस महल्ले में हो उसे पसंद करते हैं। तो अल तुहिब्बुल हयात नशिता, एक्टिव जो लाइफ है जहाँ जिस मुल महल्ले में, या फिर एक्टिव लाइफ को अरबी में क्या कहते हैं, अल हयात नशिता, अल तुहिब्बुल हयात नशिता, नशात कहते हैं को, एक्टिवनेस को। तो इस तरह जो है ना आप सवालात, ये सवालात काफ़ी अहम हैं, सवालात के जवाब आपके पास होने चाहिए, महल्ला इस तरह आप मुंतखब करेंगे। इसी तरह महल्ला मुंतखब करने के लिए फैकल्टीज़ या फैसिलिटीज़ की बात आ जाती है, सहूलियात, यानी सब कुछ करीब हो। बास तो ये चाहते हैं, बास तो यानी चॉइसेस अलग हैं, कोई तो ये चाहते हैं कि भाई बस सुनसान किसी दूर दराज खामोश इलाके में, हाँ तो और इत्मीनान, इस तरह जो है ना मुझे ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ मेरे करीब हों, दूर दूर हों कोई मसला नहीं है, तो ये चाहता है। लेकिन ओवरऑल मसला तो ये बनता है कि भाई आप लंबे वक्त के लिए इस तरह के इलाकों में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अगर ख़ासतौर पर अगर शहर में रहते हुए आपकी आदत बन गई हो, तो शहरी जो होते हैं वो तो चाहते हैं भाई सब कुछ करीब हो, तो उसी पर वो मैटर करता है कि भाई कहाँ वो महल्ला मुंतखब करें या घर खरीदें, घर किराए में लें। तो इस तरह जो है ना अरबी में अगर आप ये सवाल करना चाहते हैं कि क्या करीब है, जो है ना सहूलियात मौजूद हैं, सहूलियात फैसिलिटीज़ जो भी हैं वो क्या करीब करीब हैं, इसके लिए आप अरबी में ये यूज़ कर सकते हैं ये वाला जुमला, हल तूजद खिदमात करीबा, हल तूजद खिदमात करीबा। हाँ जी, तो खिदमात में एक है स्कूल जैसे

0: क्या ये महल्ला मुनासिब है? हल हई मुनासिब? फातिमा जवाब देती है हाँ, यहाँ स्कूल और रेस्टोरेंट है, काफी मुनासिब है। नाम फी ही मदारिस व मताइम। अब अहमद कहते हैं क्या ये पुरसकून है? हल हो हादि? फातिमा जवाब में कहती है हाँ जी, ये तो पुरसकून है और काम के करीब भी है। नाम वो करीब मिन मकान अल-अमल कमान, यानी ये तो काम के करीब भी है। तो सामिन किराम, आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, काफ़ी सारे फैक्ट्स आपको बताएं, जिसमें आपने जो अरबिक लर्निंग वगैरह अल्फाज तो आपने ज़रूर आपने सुने होंगे, साथ साथ हमने कुछ यानी ये भी बताया कि भाई आपने अगर घर इख्तियार करना है तो आपने क्या क्या चीज़ें जो है ना मद्दनज़र रखनी है। इसमें हमने ये भी बताया कि महल्ला घर से ज़्यादा अहम हो सकता है, और इस सिलसिले में हमने 5 बुनियादी उसूल बताएं कि तर्ज़ ज़िंदगी, सहूलियात, रसाई, बजट, मार्केट, और इसमें इस सिलसिले में अरबी में आप कैसे सवाल करेंगे वो भी हमने तफसीली तौर पर आपको बताया है। जान लीजिए घर ये आपकी ज़िंदगी है, आपका सुकून है, आपका मुस्तकबिल है। तो इस तरह आज आप सब के लिए दुआ है कि आप जो भी जहाँ रह रहे हैं, आपका सकन, आपकी रिहाइश आपके लिए सुकूनत का बायस बने। आमीन या रब्बल आलमीन। इसी के साथ साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा शफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मासलामा।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: वेलकम टू पिच परफेक्ट शो।
2: FM 107 की जानिब से सन 2026 का एक नया स्पोर्ट्स प्रोग्राम।
1: ये वो लाइव शो है जहां क्रिकेट की हर डिलीवरी, हर शॉट और हर फैसला होता है बिल्कुल पॉइंट पर।
2: तो तैयार हो जाएं एक्सपर्ट एनालिसिस, ताजा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प क्रिकेट कहानियों के लिए
1: ऑन पिच परफेक्ट,
2: क्योंकि यहां क्रिकेट है बिल्कुल परफेक्ट।
1: सुनिए हर ट्यूसडे और थर्सडे, जुड़ जाइए हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन और आरजे फजील के साथ
2: दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: मॉडर्न लाइफ फास्ट है, लेकिन साथ ही है जहनों में एंडलेस क्वेश्चंस। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूं फेथ और मॉडर्न लाइफ को, तो सुनिए ये शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, जो आपको दिखाएगा इस्लामिक गाइडेंस आज के दौर के हिसाब से। सुनना ना भूले शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न जिंदगी का बैलेंस सिर्फ इसी शो में। हर थर्सडे सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आरजे महवेश खान के साथ, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
4: Absolute cinema.
5: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 से मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: दोस्तों, सड़कों पर मुकर्रर की गई या डेजिग्नेटेड लेन्स में चलना, खास तौर पर चौराहों और ट्रैफिक सिग्नल पर ट्रैफिक की रवानी में मदद फराहम करता है और सड़क हादसात को कम करता है। जब हर शख्स अपनी डेजिग्नेटेड लेन में चलने का एहतमाम करता है तो ना सिर्फ सफर ज्यादा आसान हो जाता है बल्कि सबको अपने रास्ते में चलने की सहूलत मिलती है। इससे ना सिर्फ वक्त की बचत होती है बल्कि हादसे और रुकावटों का खतरा भी कम हो जाता है। जब हर शख्स लेन का ख्याल रखता है तो ना सिर्फ सफर में बेहतरी आती है बल्कि सबके लिए सेफ एनवायरनमेंट भी बन जाता है। चौराहों और ट्रैफिक सिग्नल पर लेन में चलना रोड रेज को भी कम करता है और सबको अपनी मंजिल तक जल्दी और अहम वक्त में पहुंचने में मदद मिलती है। अगर हम सब अपनी अपनी लेन में चलें तो हम ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरे लोगों की भी जान को महफूज रख सकते हैं। रोड सेफ्टी को अपनाकर हम अपने सफर को बेहतर और सिक्योर बना सकते हैं। ट्रैफिक रूल्स का एहतराम करना हमारी जिम्मेदारी है जो सबके अमन और सेफ्टी के लिए जरूरी है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
2: हेल्थ फॉर ऑल। कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी 2030 कहता है हेल्थ फॉर ऑल, और हमारे इस खास शो में बात होगी सेहत से मुतालिक मुस्तनिद मालूमात और जिंदगी बचाने वाली आगाही की। सुनिए प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल
3: डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ
2: हर जुमेरात शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
4: हेलो बच्चों, तैयार हो जाइए एक सुपर फन आर के लिए। हर मंडे 3 बजे से हम लेकर आते हैं सॉन्ग्स, कहानियाँ और सरप्राइजेस जो आपको हंसाएंगे और सिखाएंगे। अपने फेवरेट कैरेक्टर से मिलिए और मैजिकल एडवेंचर्स डिस्कवर कीजिए, सब कुछ एक ही शो में। तो स्नैक्स ले आइए, दोस्तों को बुला लीजिए और ट्यून इन करिए हर मंडे 3 बजे से With RJ Fazeel, only on FM 107, Dil Se Desi.
5: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil Se Desi.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: FM 107 presents Your Health Matter. Your Health Matter with RJ Shruti.
2: Well, आज हम बात कर रहे हैं हाइड्रेशन एंड योर बॉडी की. पानी एक ऐसी चीज है जो हम रोज यूज करते हैं पर सीरियसली कम ही लेते हैं. इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम भूख को तुरंत पहचान लेते हैं पर प्यास को अक्सर इग्नोर कर देते हैं और बॉडी क्वाइटली एडजस्ट कर लेती है. पर डिहाइड्रेशन का मतलब सिर्फ प्यास लगना नहीं होता. कभी कभी डिहाइड्रेशन का सिग्नल होता है लो एनर्जी, हेडेक, ड्राई लिप्स, पुअर कॉन्सेंट्रेशन और बिना वजह का थकान. हमारी

0: बॉडी का ज्यादा हिस्सा पानी से बना होता है, इसलिए पानी सिर्फ थर्स्ट क्वेंचर नहीं बॉडी का फ्यूल होता है। पानी डाइजेशन को स्मूथ रखता है, जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, हाइड्रेशन का डायरेक्ट कनेक्शन मूड से भी होता है। जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो माइंड भी थोड़ा रेस्टलेस हो जाता है। अक्सर हम सोचते हैं चाय पी ली, कॉफी पी ली, काफी है, पर सच ये है कि चाय और कॉफी हाइड्रेशन का रिप्लेसमेंट नहीं होता। कभी कभी वो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। वेल, हाइड्रेशन का बेस्ट तरीका ये है कि दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पिया जाए, सिर्फ तब नहीं जब प्यास लगे बल्कि इसे रेगुलर हैबिट बना ले। प्यास लगना ऑलरेडी एक लेट सिग्नल होता है कि बॉडी थोड़ा पीछे रह गई है। और ये भी जरूरी नहीं कि आप हर वक्त बॉटल लेके साथ घूमें, बस अवेयरनेस चाहिए कि हाँ हर आधे घंटे में मुझे कम से कम 4 सिप पानी के पीने ही पीने हैं। सो अपना स्केड्यूल सेट कर लीजिए, सुबह उठते ही एक ग्लास पानी, मील्स के बीच थोड़ा सा सिप, वर्कआउट या गर्मी के दिनों में थोड़ा एक्स्ट्रा पानी और रात में सोने से पहले भी एक ग्लास फुल पानी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हाइड्रेशन को, पानी पीने को एक पनिशमेंट ना बनाइए, उसे रूटीन बनाइए। नींबू पानी, इन्फ्यूज्ड वाटर, कोकोनट वाटर, ये सब काउंट करते हैं। जब बॉडी हाइड्रेटेड होती है ना तो एनर्जी नेचुरली बेटर होती है, स्किन फ्रेश लगती है और फोकस भी इम्प्रूव होता है। तो आज का एक सिंपल सा रिमाइंडर, नेक्स्ट टाइम जब आप लो फील करें पहले अपने आप से पूछिए मैंने आज कितना पानी पिया है। हो सकता है सॉल्यूशन आपके सामने ही हो, क्योंकि जब आप पानी का ख्याल रखते हो आप अपनी बॉडी से ये कह रहे होते हैं मैं तुम्हारी जरूरत को समझता हूँ। और जब बॉडी को समझ लिया जाए ना तो सेहत और सुकून दोनों साथ आ जाता है। इसलिए याद रखिए, हाइड्रेशन सिर्फ हैबिट नहीं सेल्फ केयर का साइलेंट फॉर्म है। एंड योर हेल्थ मैटर।
1: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti। आप सुन रहे हैं FM 107।
2: दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे खास वाकया और एक इंसिडेंट, एक एपिसोड का जो हर कोई याद रखेगा आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में। फुटबॉल के बारे में जब हम बात करेंगे तो एवरीबॉडी विल ऑलवेज टॉक अबाउट दिस परफेक्ट मोमेंट। यहाँ दोस्तों, पिछले हफ्ते फुटबॉल हिस्ट्री के लिए खास दिन साबित हुआ है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर जगह इसकी आवाज फिर भी उतनी जोर से नहीं पहुंची। यह बात हो रही है मैरी लुई एटा के बारे में। मैरी लुई एटा यूनियन बर्लिन के लिए बुंडेसलीगा टच लाइन पर नजर आई। वो यूरोप की टॉप 5 लीग्स में किसी मेंस टीम को कोच करने वाली पहली खातून बन गई। यहाँ दोस्तों, इस इंसिडेंट के बारे में किसी ने कभी किसी न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में कभी किसी ने नहीं देखा, ना पढ़ा, ना सोशल मीडिया पे सुना। ये सिर्फ एक अचीवमेंट नहीं था दोस्तों, ये एक ब्रेक थ्रू मोमेंट था। अच्छा, दिलचस्प बात ये रही कि एटा ने खुद स्पॉटलाइट से दूर रहना पसंद किया। उनका

फोकस सिर्फ और सिर्फ गेम पर रहा। इसके कुछ दिन पहले एक बोल्ड डिसीजन लिया था यूनियन बर्लिन क्लब ने, जब उन्होंने स्टीफन बॉमगार्ड को हटाकर सिर्फ 34 साल की इस कोच पर भरोसा किया। एंड दैट्स व्हाट इज सो सो ग्रेट अबाउट दिस न्यूज। और ये कोई आम फैसला नहीं था, क्योंकि एटा पहले भी हिस्ट्री बना चुकी थी। 2023 में वो बुंडेसलीगा की पहली खातून असिस्टेंट कोच बनी थी और फिर उन्होंने फ्रंट से टीम को लीड भी किया। लेकिन इस सफर में सिर्फ तालियां नहीं बजी, बैकलैश भी आया और कई सवालात उठाए गए। और ये सिर्फ दिखाता रहा है कि फुटबॉल को अभी बराबरी तक पहुंचने के लिए काफी रास्ता तय करना पड़ेगा। इटा इस हकीकत से वाकिफ रही, उन्होंने पहले ही पायनियर्स को क्रेडिट दिया, जैसे स्टेफनी फ्रैपर्ट, सलीमा मुकासांगा और योशुमी यामाशिता, जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया था कि विमेन हाईएस्ट लेवल पर भी बिलोंग करती हैं। यानी फुटबॉल की मैदान, फुटबॉल की स्टोरीज के बारे में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। मगर ये लम्हा और भी बड़ा था, क्योंकि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की कहानी नहीं थी, ये सिस्टम के बदलने की दास्तान। इसलिए दोस्तों ये मोमेंट इम्पॉर्टेंट रहा, सिर्फ हेडलाइंस के लिए नहीं बल्कि एक नॉर्मल फ्यूचर के लिए। और याद रहा कि येटा सिर्फ हिस्ट्री बनाने नहीं आई थी, वो वहाँ अपनी मेहनत, अपनी क्वालिफिकेशंस और फुटबॉल समझ की वजह से थी। और उस दिन जब विसल ब्लो हुई तो वो सिर्फ एक मैच का आगाज नहीं था, फुटबॉल हिस्ट्री में एक नए दौर की शुरुआत। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाईलाइट का एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
2: फ्रॉड अवेयरनेस।
3: आपको ईमेल आता है, डियर कस्टमर, आपका KYC एक्सपायर हो रहा है, लिंक पे क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वेद और ये है फ्रॉड अवेयरनेस। KYC यानी नो योर कस्टमर। तो कई दफा आपकी डिटेल्स कुछ बची रह जाती हैं, जिसके चक्कर में कई सारे इदारे आपको KYC के लिए ईमेल करते हैं। मेनली ये बैंक या फिर सिम नेटवर्क प्रोवाइडर की तरफ से आता है, लेकिन ये लिंक्स फेक होती हैं, बट आपको बिल्कुल भी फेक नहीं लगेंगी। ये रियल वेबसाइट्स की इतनी ज्यादा रेप्लिका होती हैं कि आप खुली आंखों से समझ नहीं पाएंगे, आपको काफी डिटेल में देखना पड़ता है। जैसे कि .qa की जगह .qv हो सकता है। तो ऐसे स्कैम्स में क्या होता है, लिंक फेक होती है, आप डिटेल्स डाल और अकाउंट कंट्रोल स्कैमर के पास पहुंच जाता है। तो इसीलिए बैंक लिंक्स पे क्लिक मत करो। KYC सिर्फ ऑफिशियल ऐप ब्रांच से जाके कीजिए। SMS में स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर है, जो भी आपको SMS आया है या जो भी आपको ईमेल आया है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक या उनकी राइटिंग में थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिल सकता है, तो समझ लो ये स्कैम का हिंट है। लेकिन आजकल स्कैमर भी समझदार हो गए, बिकॉज दे आर ऑल्सो यूजिंग AI चैटबॉट्स। तो दोस्तों, KYC अपडेट करो, पर दिमाग अपडेट रख के, ऑफिशियल एप्स का इस्तेमाल करके या फिर बैंक की ब्रांचेस में विजिट करके।
2: सतर्क रहिए, सावधान रहिए। फ्रॉड अवेयरनेस
1: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
4: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: Values are values. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं हूं नाजिया आपके साथ एंड वेलकम टू द सेगमेंट कॉल्ड आवर वैल्यूज. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है. आज हम बात करेंगे हाउ टू रेज अ रेजिलिएंट चाइल्ड. जी हाँ, आज के दौर में बच्चों को रेजिलिएंट बनाना बहुत जरूरी हो गया है. देखिये, रेजिलिएंस का मतलब है मुश्किल हालात का सामना करना, गिर कर दोबारा खड़े होना और प्रॉब्लम्स को हिम्मत के साथ हैंडल करना. हर बच्चा जिंदगी में चैलेंजेस फेस करता है. स्कूल का प्रेशर, दोस्ती का मसला, फेलियर का डर या फिर इमोशनल कंफ्यूजन. पेरेंट्स का रोल ये होता है कि वो अपने बच्चे को इतना स्ट्रोंग बनाए कि वो हर सिचुएशन से कुछ सीख कर आगे बढ़ जाए. रेजिलिएंट बच्चा वो होता है जो मुश्किल में टूटता नहीं है बल्कि सॉल्यूशंस ढूंढता है. इसीलिए सबसे पहली चीज जो समझ में आती है वो है इमोशनल सपोर्ट.

गुस्सा पेरेंट्स के साथ शेयर कर सके तो उसे इमोशनल सेफ्टी मिलती है। बच्चों की बात सुनना, उनके इमोशंस को समझना और उन्हें जज किए बगैर एक्सेप्ट करना उनके कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरी अहम बात है कि बच्चे को फेल होने का मौका देना, ये बड़ा जरूरी है। अक्सर पेरेंट्स हर प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर देते हैं जिससे बच्चा कमजोर होता चला जाता है। अगर बच्चा गिरता है, हारता है, फेल होता है तो उसे समझ में आता है कि फेलियर जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। देखिए, जब हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि गलती से सीखना मुमकिन है तो उसके अंदर क्या पैदा होता है? रेजिलियंस। जी हाँ, उसके अंदर जो है वो रेजिलियंस डेवलप होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बच्चों को रेजिलियंट बनाने में बहुत मदद करती है। छोटी छोटी जिम्मेदारियां देना, जैसे अपना काम खुद करना, अपनी चीजों का ख्याल रखना या टाइम मैनेज करना, बच्चों के अंदर सेल्फ रेजिलियंस पैदा करता है। ऐसा बच्चा जिंदगी के चैलेंज को जितने भी आएंगे वो आसानी से मैच्योरली हैंडल कर लेगा। एक और जरूरी चीज है, वो है पॉजिटिव रोल मॉडल बनाना। बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने पेरेंट्स में देखते हैं। अगर पेरेंट्स स्ट्रेस में भी सब्र, शुक्र और प्रॉब्लम सॉल्विंग का एटीट्यूड रखते हैं तो बच्चा भी वही सीखता है। देखिए, रेजिलियंस सिर्फ बातों से नहीं बल्कि एक्शन से ट्रांसफर होती है। बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाना भी बहुत अहम है। तो हर सिचुएशन में उनसे सवाल पूछें और हर सिचुएशन का सलूशन निकालना भी उन्हीं के ऊपर छोड़ दें। इससे बच्चा सोचना, समझना, सीखना और अपने खुद की एबिलिटीज पर यकीन करना सीखता है। देखिए, आखिर में बस मैं यही कहूंगी कि रेजिलिएंट चाइल्ड जो है ना, वही चाइल्ड है जो अपने आप को एक्सेप्ट करता है, अपने इमोशंस को समझ लेता है और अब मुश्किल वक्त में भी उम्मीद नहीं छोड़ता। जी हाँ, जब पेरेंट्स बच्चों को प्यार, गाइडेंस और इंडिपेंडेंस का बैलेंस सिखा देते हैं तो वो बच्चे जिंदगी के लिए तैयार हो जाते हैं, बल्कि मैं ये कहूंगी कि बहुत अच्छे से तैयार।

ही बनाता है। दोस्तों बस जाते जाते यही कहूंगी, a resilient child is not about removing those difficulties. It is about preparing the child to face them. एक लाइन भी है बड़ी खूबसूरत सी कि strong child are not born, they are raised. और जब हम उन्हें पेशेंस, courage और सेल्फ बिलीव सिखाते हैं तो बच्चा जो है वो इन सारे टूल्स को लाइफ लॉन्ग इस्तेमाल करता है। मजबूत बच्चा वो नहीं है जो कभी गिरता नहीं, मजबूत बच्चा वो है जो गिरने से घबराता नहीं है और फिर दोबारा खड़ा हो जाता है। इसीलिए शायद कहा भी जाता है कि रेजिलियंस ग्रो थ्रू ट्रस्ट, योर लव एंड थ्रू योर गाइडेंस। जब बच्चा फील करेगा कि उसको सुना जा रहा है, उसे सपोर्ट किया जा रहा है, वो अपने आप में

जिसके बाद उसे कोई भी किसी भी तरह से झुका नहीं सकता। तो शुरू में झुक जाना आखिर में कभी ना झुकने की भी निशानी है। पहले से पॉजिटिव नोट के साथ अब मैं आपसे लूंगी इजाजत, यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से दी।

तू मुझसे इतना दूर है, अब कर लिया कबूल है, अंदर से तू भी जानती तेरे तेरे होने को है, पर तू जाने में मजबूर हूँ, मैं तेरा मशकूर हूँ, तू समझे मुझे अभी, तू जैसे कोई

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: ये कौन सा नया स्मार्ट टूल है?
2: इसमें कैची हुक्स कहाँ से लेके आऊँ?
1: आई नो दिस AI, लेकिन मैं प्रॉम्प्ट कैसे लिखूं?
3: और कौन सी ऐप है जो बेस्ट है?
0: इन सारे सवालों का एक ही जवाब, AI Unlocked।
4: सुनिए AI की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, सारी मालूमात एक ही शो में, AI Unlocked
5: with RGV.
4: Every Sunday शाम 7:15 PM, only on FM 107. दिल से देसी। दिल से देसी।
6: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
7: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

0: हमने मूसा को निशानियां अता की थी जो सरीह तौर पर दिखाई दे रही थी। अब ये तुम खुद बनी इसराइल से पूछ लो कि जब मूसा उनके हां आए तो फिरौन ने यही कहा था ना कि ऐ मूसा, मैं समझता हूं कि तू जरूर एक सहर ज़दा आदमी है। मूसा ने उसके जवाब में कहा, तू खूब जानता है कि ये बसीरत अफरोज निशानियां जमीन और आसमानों के रब के सिवा किसी ने नाजिल नहीं की हैं। और मेरा ख्याल ये है कि ऐ फिरौन, तू जरूर एक शामत ज़दा आदमी है। आखिरकार फिरौन ने इरादा किया कि मूसा और बनी इसराइल को जमीन से उखाड़ फेंके, मगर हमने उसको और उसके साथियों को इकट्ठा गर्क कर दिया। और उसके बाद बनी इसराइल से कहा कि अब तुम जमीन में बसो। फिर जब आखिरत के वादे का वक्त आन पूरा होगा तो हम तुम सबको एक साथ ला हाजिर करेंगे। इस कुरान को हमने हक के साथ नाजिल किया है और हक ही के साथ ये नाजिल हुआ है। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें हमने इसके सिवा और किसी काम के लिए नहीं भेजा कि जो मान ले उसे बशारत दे दो और जो न माने उसे मुतनब्बिह कर दो। और इस कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है ताकि तुम ठहर ठहर कर इसे लोगों को सुनाओ। और इसे हमने मौका मौका से बतदरीज उतारा है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दो कि तुम इसे मानो या न मानो, जिन लोगों को इससे पहले इल्म दिया गया है उन्हें जब ये सुनाया जाता है तो वो मुंह के बल सजदे में गिर जाते हैं और पुकार उठते हैं, पाक है हमारा रब, उसका वादा तो पूरा होना ही था। और वो मुंह के बल रोते हुए गिर जाते हैं और इसे सुनकर उनका खुशू और बढ़ जाता है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, जिस नाम से भी पुकारो उसके लिए सब अच्छे ही नाम है। और अपनी नमाज न बहुत ज्यादा बुलंद आवाज से पढ़ो और न बहुत पस्त आवाज से, इन दोनों के दरमियान औसत दर्जे का लहजा इख्तियार करो। और कहो तारीफ है उस खुदा के लिए जिसने न किसी को बेटा बनाया, न कोई बादशाही में उसका शरीक है और न वो आजिज है कि कोई उसका पुश्तेबान हो। और उसकी बड़ाई बयान करो कमाल दर्जे की बड़ाई।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।